وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

और तुम्हें क्या खबर कि क्या है वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर? एक लिखी हुई किताब जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। बेशक नेक लोग बड़े मजे में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। उनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों, वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। उस शराब में तस्नीम की आमेजश होगी। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारे करते थे। अपने घर वालों की तरफ पलटते तो मजे लेते हुए पलटते थे, और जब उन्हें देखते तो कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं, हालांकि वो इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे हैं, मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। मिल गया ना काफिरों को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे।

جديدة ونحن في صلاح وثبات واستقامة

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صلی

0: FM 107 Time Check.
1: हाँ भाई जेबस के एक मिनट हो गए डंबल प्रीत भाई सबकी गाड़ी चेक करियो भाई लाइसेंस और गाड़ी में क्या बदल रहा है हमारे ऐसे जो साहब आ रहे हैं ना तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है भाई सबकी गाड़ियां चेक होंगी ये चेक करो उनकी गाड़ियों में 107 है कि नहीं वॉल्यूम भी चेक करना है तो आप जरा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा वो ऐसे जो साहब थोड़े थे ना उत्साह जल्दी आता उन्हें तो इसीलिए ठीक है मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ वरना 506 रियाल का जुर्माना है आपकी मर्जी है आपकी चलो भाई चेक करो सबकी गाड़ी

आना और माँ बाप के लिए भी उठना, बट क्या कर सकते हैं बच्चे, दैट्स हाउ इट इज़। 10 मिनट 33 सेकंड के बाद मिलते हैं सुबह के अधिकार, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात तला भाई की आवाज़ के बाद मिलते हैं। जाना आपने ही नहीं, आपको तो पता ही है।

अच्छे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

0: अल्लाह आपका दिन खैर और बरकत से भर दे, गमों को खुशी में बदल दे और आपको दीन और दुनिया की कामयाबियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड कुछ मैसेज आ चुके हैं, कुछ आना बाकी है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आज धीरे धीरे यहाँ खुलती है, आज ज़रूरत से ज़्यादा स्लो हो जाती है पब्लिक, बट इट्स ओके। गुड मॉर्निंग मैगा जी। मैसेज सबसे पहले पढ़ेंगे आप, पहले मैसेज पढ़ जाएंगे। एक आया है तबस्सुम बहन का मैसेज है, वो भी है, पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, गुड मॉर्निंग। उठना, सिर्फ उठना, ना ना ना ना ना ना, खुद उठने से ज़्यादा डिफिकल्ट है बच्चे को उठाना या कन्विंस करना कि 5 मिनट पूरे हो गए, उठो बेटा स्कूल जाना है, स्कूल के बाद नींद पूरी कर लेना। ये स्कैम जो है ना, ये वाला स्कैम जो लास्ट में मम्मी कहती रहती है बच्चों को, बेटा स्कूल से आके नींद पूरी कर लेना, ये एक स्कैम है। पर ये मैं बच्चों को बताना नहीं चाहता, तो बच्चे अपने कान बंद कर लें, माँ बाप उनके कान वैसे ही बंद कर देंगे ये सुनने के बाद। ये स्कैम हमने भी दिखा है बहन, वेरी नाइस, इट्स अ वेरी स्वीट। ये इसी सपने को देख के बच्चा स्कूल जाता है कि जब मैं स्कूल से घर जाऊँगा तब मैं नींद पूरी करूँगा, और फिर आने के बाद उसका मन ही नहीं करता है नींद पूरी करने का। तो ये बच्चे को एक, ठीक है, अच्छा है, आई लाइक इट। बहन अस्सलाम वालेकुम, काजा साहब वालेकुम अस्सलाम, शाहिद साहब वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग, मोहम्मद इकराम साहब ने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ये कहते हैं स्कूल से आकर अक्सर नींद पूरी कर लो, ये भाई ये सब बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा। मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी बात है ये, मतलब कितने बच्चों को, हमें तो सुनने को जरूर मिलता था। और 5 मिनट की नींद यूनिफॉर्म पहन के जो आती है ना, उसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। आप मतलब पूरे तैयार हो गए आप, ठीक है, बस बूस लेट हो रही है आपकी, आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी जो है वो तैयार हो चुके हैं, और यूनिफॉर्म में आपने एक नींद खींची 5 मिनट की। ओए होए होए होए, ये जो प्रेशियस नींद है इसकी कीमत सिर्फ एक बच्चा ही जानता है भाई। जब हम बच्चे थे हमें पता है, उससे बढ़िया नींद आज तक नहीं आई, आज तक नहीं आई, उसकी कोई बात ही नहीं है भाई। एक मैसेज है, ये सब साथ होता है अभी तक होता है भाई। हाँ वही ना, स्टिल हैपन्स ब्रो, स्टिल हैपन्स। अभी मैं चाहूँ भी ना, जैसे अभी बड़े होकर तो हमारे साथ ही होता है कि अगर एक अलार्म बजा, अलार्म बंद करके सो गए, उससे बढ़िया नींद नहीं है मार्केट में। लेकिन वो जो स्कूल यूनिफॉर्म में आहा 5 मिनट की नींद आती थी ना, किलर ब्रो। एक मैसेज है, भाई उठो शो टाइम हो गया, ये देखो इनको देखो। क्या होगा भाई, नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्या? मुझे कह रहे हैं उठो भाई, मैं 4:30 बजे का उठा हूँ, मेरी जान क्या हो गया। इनका हैंड ब्रेक थोड़ा देर में लगा है। समीर साहब वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं सब? शानदार, बढ़िया। तो मैं वैसे तो सवाल मेरे पास बहुत है, लेकिन आज जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ ना, इट्स अ लिटिल क्या कह समझाऊँ मैं, ये ज़रूरी है क्योंकि मैं एक शो देख रहा था, उसमें बात हो रही थी इसी के बारे में, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपको इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लूँ। देखिए, हमारे टाइम पे नौकरियों का मतलब क्या होता था, वही 2-3, क्या आप जो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या कुछ और बन गए, कुछ नहीं किया तो ये बन गए, कुछ किया तो वो बन गए, सेलेक्टेड नौकरियां उतनी हमने सुनी है भाई, है ना। अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में ऑनलाइन भी एक करियर ऑप्शन होगा, अभी भी है, ऐसा नहीं कह रहा कि अभी नहीं है, अभी भी देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग चैनल्स एंड कमा रहे हैं, और कुछ लोग डर रहे हैं कमाने से, क्योंकि उनको डर इस बात का नहीं कि वो कमा नहीं पाएंगे, डर इस बात का है कि पब्लिक क्या बोलेगी। पब्लिक ना बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म के कमेंट पढ़ती है, हम और आप भी पढ़ते रहते हैं, और कमेंट्स पढ़ के हंसी भी आती है, मज़ा भी आता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर नहीं होते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी क्या सलाह है उन लोगों को जो ट्रोलर्स से डरते हैं। मैं समझाता हूँ, आसान कर देता हूँ सवाल को, आप उनको क्या सलाह देंगे जो लोग अपने ऑनलाइन करियर को शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें डर है कि लोग कमेंट में कुछ कह ना दें। अब देखो, मुझे आगे ये वाला ज्ञान मत देना मेंटल वो स्टेट वाला कि किसी की मेंटल स्टेट ख़राब होती है, वो तो होती है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। मेंटल स्टेट इज़ देयर, मगर कैसे डील किया जाए ट्रोलर से, चलो मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। मैं जब वीडियोस वगैरह बना रहा था, पोस्ट कर रहा था, तो कोई भी अगर कमेंट कर देता था पहले 3-4 साल पहले, तो मैं फ़ौरन जाके उसे रिप्लाई कर देता था, क्यों रे ऐसा कैसे बोल दिया, अब मैं जाके इसको कमेंट पे नीचे ज़रूर कमेंट करूँगा, ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। पर स्लोली एंड ग्रेजुअली इतने साल देने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं क्यों अपनी एनर्जी इस्तेमाल करूँ एक शख्स को कमेंट करने के लिए जिसने कमेंट ही इसलिए किया है ताकि वो मुझे ट्रिगर कर सके। तो फिर मैंने कमेंट करना ही छोड़ दिया, मगर ठीक है भाई, जो कहना कह ले। अभी भी आई एम वर्किंग ऑन इट, अभी भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता है कई मरतबा, अगर कोई कमेंट करता है तो मैं जाके उसकी ज़िंदगी में धनिया बोने की कोशिश करता हूँ, बट आई डोंट नो इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो आपका क्या कहना है, अगर कोई कमेंट करता है, मान लीजिए आपकी फ़ोटो के नीचे किसी ने कुछ कमेंट कर दिया जो मतलब बिल्कुल दिल को चुभने वाला है और आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो हाउ डू यू डील विद इट, व्हाट डू यू डू? देखो, एक ऑप्शन होता है कि आपने उसे ब्लॉक श्लॉक कर दिया, दूसरा ऑप्शन आता है कि आपने डील करने की कोशिश करी कि भाई मैं ज़रा इससे बात तो करूँ, परेशानी क्या है भाई, और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जो है थोड़ा मॉनिटर करेंगे कि अब क्या बोलेगा तब क्या बोलेगा और आप उस पर हंसने लगते। तो हाउ डू यू डील विद दीज पीपल, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है वो ऑनलाइन अपना करियर बनाएगी और इनकी बुद्धि को ख़राब करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप चाहें या ना चाहें, आपके और मेरे जनरेशन के बाद वाली जो पब्लिक है ये ऑनलाइन अपना करियर बनाएगी और इन लोगों का दिमाग भी ख़राब होगा, क्योंकि इनको कमेंट तो मिलेंगे बढ़िया वाले, अगर 10 लोग मोहब्बत करते तो 2 लोग तो आएंगे जो चिंगारी लगाएंगे भाई, तो वो 2 लोग से कैसे डील किया जाए? आप क्या कहेंगे ये आप बताइए, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू नो। हो सकता है आपके जरिए किसी को कुछ तरीका मिल जाए भाई, एक मैसेज आया, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये तो ठीक है इकबाल भाई, ये पता ये बोलने बहुत आसान लगता है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर जब कमेंट आता है ना भाई तो होता है असली टेस्ट, तब देखा जाता है कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। समीर भाई तो कह रहे हैं भाई फुल बेस्ट ऑप्शन है, पूरा इग्नोर कर दिया जाए, ध्यान ही ना दिया जाए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ समीर भाई, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि कोई अगर कमेंट शॉमेंट करता भी है ना कि ये क्या है और वो क्या है और फलाना का ढिमकाना, भाई मैं इग्नोर कर देता हूँ, अगर नहीं क्या करूँ उस पर कॉमेंट करके है? तो क्या किया जाए? क्योंकि पहले मैं डील करने की कोशिश करता था, मैं क्या करता था, किसी ने अगर कोई ख़तरनाक कमेंट कर दिया तो मैं उससे बात करने की कोशिश करता था, फाल मान लो किसी ने कह दिया कबीर भाई अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं उसके सीधा DM कर देता था, हाँ भाई ये परेशानी हो गई कि अच्छा नहीं लग रहा, एंड वो पता नहीं करना सही था कि नहीं, पर मैंने वो करना छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी एनर्जी उसमें बहुत जाती है और फिर पता नहीं सामने वाले को मजे आ रहे हो, हो सकता है उसका मकसद ही पूरा हो गया कि देखा आया ना मेरे पास, तो वो वाली चीज़ है। पर आपको क्या लगता है ये ख़राब कमेंट से कैसे डील किया जाए, हाँ क्या किया जाए इनका, इन्हें इग्नोर किया जाए, इनसे बातचीत की जाए कि भाई क्या परेशानी है भाई, क्या करना चाहिए? सो 666-22-107 में बताइएगा, 666-22-107, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे मैंने कहा कि जेन जीज़, जेन अल्फा, ये सारे के सारे तो नहीं होंगे लेकिन मेजरली ये लोग ऑनलाइन जाएंगे और फिर इनके पीछे भी लोग पढ़ेंगे, इनको लोग पूछेंगे, इनको लोग मजाक भी बनाएंगे, कुछ लोग इन्हें पसंद भी करेंगे, बट दे हैव टू लर्न कि कैसे डील किया जाए कीबोर्ड वालों से। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, गुड मॉर्निंग, इसलिए मैं ऑनलाइन या ओके वीडियो पर काम नहीं करता। नहीं, आप तो नहीं करते इश्तियाक भाई, आप समझे नहीं मेरे सवाल को, आप नहीं करते, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे नहीं करते, पर मैं कह रहा हूँ जो करेंगे आगे जाके है ना, और जो कर रहे हैं भाई, मैं तो हूँ, मुझे तो पता है कुछ लोग पसंद भी करेंगे मुझे, कुछ लोग मुझसे बहुत नफरत भी करते हैं, वो भी मैंने देखे, तो मैंने तो डील करना सीख लिया है। बट अभी जो आने वाली जनरेशन है ना, वो जब अपना करियर ही सोच रही है पूरी तरह से ऑनलाइन, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? बिकॉज वो जाएंगे ऑनलाइन, वो जाके अपना करियर भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, और बेचारे फिर कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में आएगा उनके दिमाग को ख़राब कर देने के लिए। क्या लिखते हैं इश्तियाक भाई, कह रहे हैं सबसे बच सकते हैं लेकिन रिश्तेदारों से नहीं। आप मेरे सवाल को समझे नहीं भाई, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई क्वेश्चन मेरी जान। बात यहाँ रिश्तेदारों की हो ही नहीं रही है मेरे भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, ये मैसेज क्या है, प्लीज़ विश माई बर्थ फ्रेंड माना, या क्या नाम है उनका, मन्ना माना, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, माना नाम है क्या भाई, माना को हैप्पी बर्थडे अलीना की तरफ से। अलीना ने ये एफर्ट डाला है अपनी दोस्त को विश करने का, इसका मतलब दोस्ती बहुत गहरी है, एंड अलीना की तरफ से मन्ना या माना, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड आज दोनों बच्चा पार्टी मिलके बनाओ बर्थडे बढ़िया तरीके से, एंड डू सेंड मी फोटोज, सेल्फीज होनी चाहिए। एक मैसेज है भाई कबीर, जब आप लोगों के मनफी बात को अपने दिमाग पर लोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, इग्नोर करो आगे बढ़ो, दैट्स हाउ इट इज़। ये बहुत प्लेन और अच्छी एडवाइस है, ये मैं करने का सीख रहा हूँ भाई, हो नहीं पाता क्योंकि मैंने भी बहुत देखा कि लोग आते हैं मेरे भी वीडियोस के नीचे लिखते हैं, उनको गुस्सा भी आता है कई मरतबा, मैं उन्हें पता नहीं क्यों ट्रिगर कर देता हूँ, और जब वो लिखते हैं तो पहले मैं उनको जवाब दे देता था पहले।

0: कई साल पहले क्या होता था, लड़ने बैठ जाता था, कमेंट में लड़ाई चल रही भाई साहब, 70-80 कमेंट हो चुके हैं लड़ते लड़ते. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि मैं क्यों कमेंट करूं यार, ठीक है. और फिर मैंने एक नया नुस्खा अपनाया, तो मैं उन्हीं का मजाक उड़ाने लगता हूं. कोई कमेंट करता है, कोई हेट कमेंट करता है, तो उसके नीचे कमेंट कर देता हूं मैं, और सुनाओ. एंड देन इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो मैं थोड़ा सा उनको भी ट्रिगर करने लग जाता हूं, बट आई थिंक वो भी गलत है. इग्नोर ही करना चाहिए, बट बड़ा मुश्किल है भाई. इट्स नॉट ईजी. कहना बड़ा आसान हो जाता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर जब आपके कंटेंट के नीचे लोग आते हैं ना, अरे रे रे रे, तब जो है ना बहुत कुछ आता है दिल में, बहुत कुछ. तो मैं बता रहा हूँ, एक मैसेज है, किसी को अगर किसी चीज़ से फोबिया है तो उसे था तो उसमें धक्का दे के फेंको, फोबिया ख़त्म, टाटा बाय बाय. हैं, कहाँ पहुँच गए आप भाई? ये अबु अहमद भाई किस बारे में बात कर रहे हो? कौन सा फोबिया, मैं समझा नहीं. ये अकेले ही खेल रहे हैं आज, अकेले बल्लेबाजी हो रही है भाई. आज ग्राउंड में अकेले खेलने गए हैं. मैं ही गेंदबाज, मैं ही बल्लेबाज, मैं ही अंपायर, मैं ही फील्डर. फोबिया की बात नहीं हो रही मेरे भाई. अरे यार, एक कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई.
0: जी मेरे भाई नदीम भाई, कैसे मेरा भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह. आज तो आपने देखो हमारे मतलब का सवाल पूछा
0: है ना. मैं लिटरली नदीम भाई जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो समझते हैं भाई, बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन इसलिए नहीं जाते करियर बनाने के लिए, बल्कि टैलेंट है उनको, डर लगता है अभी कुछ लोग कह
1: देंगे. हाँ. नए लोग तो ठीक है. हाँ. जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब ऑलरेडी जो बहुत फेमस है लोग.
0: हाँ.
1: वो लोग भी इस चीज से परेशान
0: है ना.
1: मतलब इनको बोला जाता है, मतलब हमारे जो टर्म्स है जो कंटेंट वाले में, उसमें बोला जाता है कीबोर्ड वॉरियर्स.
0: यस, कीबोर्ड वॉरियर्स. हाँ.
1: तो ये तो कुछ भी लिख देते हैं आके, ये कुछ नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ ये. और कितने लोग हैं, मतलब आप जितने बड़े बड़े स्ट्रीमर हैं, 40-50-60% तो ऐसे हैं जो क्लिप्स बनाते हैं खुद का पेज वायरल करने के लिए.
0: ट्रू.
1: तो अगर आप, ये लोग आते हैं आपकी स्ट्रीम पे या कहीं कंटेंट पे कमेंट करेंगे और कोई रिएक्शन आ गया, कुछ आ गया, उसकी क्लिप बनाएंगे और उल्टा बताएंगे और उसको पोस्ट कर देंगे वायरल न्यूज बना के, जैसे न्यूज चैनल मीडिया करती
0: है. आपको पता है रिसेंटली एक 15-16 साल का लड़का था, आई थिंक मुंबई का ही था. तो वो लड़का ना स्ट्रीमिंग किया करता था, गेमिंग किया करता था, स्कूल के बाद डाला करता था, 1-2 घंटे का वीडियो डालता था, उसका बहुत बढ़िया चल रहा था ऑनलाइन. लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसको ट्रोल करने के लिए लोग आ गए. वो आते ना चैट में, आ जाते हैं लोग लाइव चैट्स में. वो इतना परेशान हो गया, वो झेल ही नहीं पाया और उसने अपनी स्ट्रीमिंग रोक दी, एंड इट एंडेड कम्प्लीटली. और वो बहुत डिप्रेशन में चला गया एट वेरी लो एज. तो क्या कहेंगे आप ऐसे, क्या वो सजेशन, क्या आप, क्या किया जाए?
1: देखिए, एक चीज तो ये है कि जब बंदा नया नया होता है ना, तब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा. कोई मतलब इसका कोई भी इलाज नहीं,
0: इलाज
1: आने तो वाले ही है, 110% आने वाले ही है. तो या तो इग्नोर करे, ठीक है, या थोड़ा मतलब बहुत लोग आजकल यही करते हैं कि मतलब अभी जैसे मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, एक अच्छे ऑर्ग में है, सब कुछ है, स्ट्रीम कर रहे हैं, बट व्यूज उनको इतने नहीं आ पाते. मतलब करते भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, रेगुलर टाइम भी, लेकिन बाकी लोगों के जितना प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है.
0: अच्छा.
1: तो अब वो होता है ना, कुछ लोगों के एटीट्यूड की वजह से आते हैं, कुछ लोग बोलते ज्यादा है, तो वो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पब्लिक जाती है.
0: राइट.
1: तो इनको बार बार आके लोग टॉन्ट करते हैं कि यार तुम तो, तुमको किसने ले लिया है, और मैं तुम्हारी तो वॉचिंग भी नहीं आती. तो तुम तो कंटेंट भी सही नहीं बनाते. तो उसको वो पहले बहुत वो टेंशन लेते थे. मैं उनका मॉड ही हूँ. हाँ. मैं मॉडरेशन करता हूँ चैनल में, तो काफी मैसेजेस तो हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, मॉडरेशन में.
0: हाँ.
1: लेकिन जो वो पढ़ लेते हैं या जो वो देख लेते हैं, तो फिर उस पे ये रिप्लाई करना पड़ता है कि यार देखो, आप लोगों की वजह से वॉचिंग नहीं आ रही है, आप भी आओ, अपने दोस्तों को भी लाओ, तो वो लोग देखेंगे तो वॉचिंग आएगी.
0: हाँ.
1: तो हमारे वीडियो को शेयर करो.
0: तो अभी क्या डील करने का तरीका क्या निकाला है? मतलब हमेशा पॉजिटिव
1: पॉजिटिविटी,
0: हमेशा पॉजिटिव.
1: हाँ, पॉजिटिव रिप्लाई. मतलब जो भी आ रहा है छेड़ने के लिए, उसको पॉजिटिव रिप्लाई दे दे कि ये ऐसे करो यार, आप रहो मेरे साथ, आप मेरे को सपोर्ट करो, ये वाला सीन है अभी.
0: ये भी सही है.
1: पॉजिटिव रिप्लाई दे के उसको जाने दे. फिर एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, सीधा चैनल से हाइड.
0: अच्छा, ओके पर वही है ना कि आदमी कितना हिट करे, अब क्या है ना कि एक मेंटेलिटी होती है कि मेरा कंटेंट तो भाई इतना बढ़िया है।

0: अरे के सारे पॉजिटिव कमेंट चाहिए, और ये होगा नहीं, होगा नहीं भाई,
1: नहीं होता है, वो तो आने ही वाले हैं।
0: हाँ
1: वो कितने लोगों के पेज इसी से चल रहे हैं कीबोर्ड वॉरियर से, कि वो लोग अगर जब तक ट्रोल नहीं करेंगे तो वीडियो बनेगी कैसे, लोग हाँ। पैसा दे के ट्रोल कर रहे हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: सुपर चैट भेज के ट्रोल कर रहे हैं,
0: बिल्कुल कर रहे हैं, और दूसरे अपना कॉम्पिटिशन खत्म करने के लिए सामने वाले को भी ट्रोल करवा रहे हैं, तो दोनों ही चीजें हो रही है।
1: हाँ
0: वो दोनों चीजें हो रही है।
1: वो जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा जो हाँ। मतलब अच्छे खासे वॉचिंग वाले, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो आपके फैंस ही उनको भगा देंगे।
0: हाँ
1: जो आपके चैट में ऑलरेडी है
0: उसके लिए आपकी, उसके लिए आपकी जनता ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा, भाई मेरी वाली जनता हाँ। तो है वो नहीं झेलेगी अगर कोई मुझे बोलेगा।
1: वैसे
0: तो
1: भी वैसे हाँ। भी बहुत लोग है कि एक आएगा तो 10 उस पे चढ़ जाएंगे कि चल थाले दूंगा।
0: पर वो अचीव करने से पहले पहले के जो स्टेज है ना नदीम भाई, वो बड़ा मुश्किल है।
1: वो तो वही है, वो फिर या पॉजिटिव रिप्लाई दे दो या इग्नोर कर दो, फिर थोड़ा टाइम अगर बार बार कर रहा है बर्दाश्त कर दे, तो एक व्यूअर कम उसको साला ब्लॉक कर।
0: हाँ वही है, या तो ब्लॉक ही पूरी तरह से ब्लॉक किया था, मुझे नहीं लगता कोई और तरीका भी है इससे।
1: सुधरेंगे तो नहीं,
0: सुधरेंगे तो नहीं,
1: 10% सुधरेंगे।
0: देखो अगर अगर कोई आज किसी को हेट करता ना, किसी ने हेट कमेंट कर दिया, तो कल को तो वो एकदम से भाई सुधरेगा नहीं, वो कल से आपको मोहब्बत तो नहीं बरसाएगा, ये तो गारंटी है। तो वही है कि जैसे आपने कहा कि मोहब्बत से रिप्लाई करते रहो।
1: मैं भी आपको उस दिन बताया, मैं गेम खेलता हूँ, ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं खेलता हूँ, और अभी जैसे यंग लोगों के जैसे अपने रिफ्लेक्स है नहीं, वैसे गेम्स खेले, कुछ कुछ गेम्स ऐसे है जिसमें सामने वाली टीम के भी चैट्स ऑन रहते हैं, तो वो लोग बहुत बोलते हैं, तो हम लोग सब इग्नोर ही करते हैं, मतलब रिप्लाई चैट बंद कर देते हैं।
0: हाँ वही, मतलब
1: चैट दिखे ही ना सामने वालों की, तो इग्नोर करके खेलते हैं।
0: वही है, वही है ना कि आप इग्नोर कितना कर लेंगे आप, वो एक चीज है ना।
1: हाँ, मतलब
0: पॉइंट
1: याद तो रहे,
0: मतलब
1: हाँ। आपने पढ़ लिया तो फिर दिमाग में तो रह जाती है,
0: दिमाग में रह जाती है ना, वो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है सारी। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक वो देखा ना वीडियो, तो उसमें बहुत सारे ये जो यंग जनरेशन है, ये जो अभी 12th करके निकले हैं या कॉलेज में, ये कहीं ना कहीं अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, और फिर होता क्या है, बेचारे डरते हैं यार। हाँ
1: उन लोग के लिए एडवाइस है ना कबीर भाई, कि अगर बुरे लोग आ भी रहे ना बोलने के लिए, हाँ। वो आपकी रीच ही बढ़ा रहे हैं, देख रहे भी है और आपको कमेंट भी करके जा रहे हैं, तो वो उससे भी आपकी रीच ही बढ़ रही है, तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर लो।
0: बेस्ट वे भाई, बेस्ट वे,
1: कहीं ना कहीं मेरी रीच ही बढ़ाएंगे।
0: हाँ वो दिमाग पे नहीं लेने का, मतलब दिल पे लेने का बिल्कुल नहीं लेने का, मतलब कहीं पे नहीं लेने का, दिल पे भी नहीं, सॉरी लेने का।
1: अच्छा आ रहे कुछ खराब भी, और पता है कितने पेजेस तो इसी वजह से वायरल है कि उनको खराब कमेंट आते हैं।
0: हाँ हाँ सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। तो आपको भाई
1: तो
0: अगर
1: कमा रहे उसकी तो पैसा मिल रहा है, तो वो बोल रहे हैं और बोलो भाई पैसा,
0: एज लॉन्ग एज आई एम पेड नो प्रॉब्लम भाई, कीप कमेंटिंग। यही है यही है, ये अच्छा अच्छा डिस्कशन हो गया, थैंक यू सो मच नदीम भाई। और आप भी शायद इसलिए नहीं कर रहे स्ट्रीमिंग क्या?
1: नहीं नहीं, मैं तो बहुत सारे इश्यूज है अपना, थोड़ा एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए जैसे स्ट्रीम वगैरह के लिए, और एडिटिंग और वीडियोस बनाने के लिए एडिटिंग वगैरह उतना नहीं
0: है। ठीक है वो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, पर ग्रेट एडवाइस नदीम भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार भाई,
1: ओके
0: भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो नदीम भाई का पर्सपेक्टिव बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जो उन्होंने बोला मैं सच बता रहा हूँ, दैट्स हाउ इट इज़। मैं अपने भी सर्कल में जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को जो ऑनलाइन अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वही फ्यूचर है। कोई अगर सोच रहा है कि भाई फुल टाइम मुझे ये करना है, कोई अच्छा कॉन्टेंट बनाना भी चाहता है, तो लोग उसको बनाने नहीं देना चाहते, धनिया बोल देते हैं कॉमेंट सेक्शन में, एंड दैट काइंड ऑफ हिंडर्स योर माइंड, एंड थोड़ा सा मेंटल स्टेट ख़राब होती है। पर डील करने का तरीका क्या है इन बैड कमेंट्स और सॉर्ट ऑफ से हेट कमेंट्स से डील करने का तरीका क्या है भाई? जैसे नदीम भाई ने कहा कर रहे हैं तो कमेंट। मैं भी पता, मैं बहुत मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मेरे खिलाफ आते हैं, पहले मैं डिलीट कर देता था, नहीं यार ये पढ़ के दुख होता है, दिल में दर्द होता है, मैंने करने दो भाई, यही तो इंगेजमेंट है, कर भाई कर और लिख और लिख। एक मजे हसन भाई का, सलाम भाई जयंतीस को मशवरा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, दे नो हाउ टू हैंडल और वो सुनेंगे भी नहीं। नहीं भाई, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल हसन भाई, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ जयंतीस भाई, नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार हेट कमेंट आना शुरू होते हैं ना भाई, तो बहुत ऐसा लगता है ट्रक ने हिट किया हो। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, द टॉपिक इज एक्सेलेंट, मैनी मैनी कमेंट्स विल कम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई विल स्टार्ट विद माय ब्रदर भैया बाबा एंड ट्राई टू स्वीटली एक्सप्लेन हिम द सिनेरियो वेरी वेरी पेशेंटली, 1-3 मैसेजेस एंड देन ही स्टॉप मैसेजिंग, बी पॉजिटिव, डोंट
2: क्या, डोंट टेक द नेगेटिव, डोंट लेट द नेगेटिविटी कम ऑन यू. मैं ये भैया भाव वाला खाजा भाई ये कमेंट नहीं समझा, समझा दीजिए ज़रा. एक और मैसेज है, आई थिंक ये वो लोग, ये इसरा बहन हमारी लिखती हैं, आई थिंक ये वो लोग होते हैं जो आपके लेवल तक नहीं आ सकते, उसके बाद जब वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तब वो आपकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं. जस्ट इन शॉर्ट, दे वांट टू पुट यू डाउन व्हेन यू आर ग्रोइंग. लोगों से आपकी सक्सेस देखी नहीं जाती, ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा. इसरा बहन ने एकदम सही कहा. इफ़ एनीबडी इज थिंकिंग ना कि मैं ऑनलाइन अपना करियर बना लूँ, और आपको ये डर है कि पता नहीं यार दुनिया बोलेगी भाई, पता नहीं इनको मेरे बाल अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, पता नहीं मैं कैमरा के सामने, भाई भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ये हेट कमेंट वाले भी ना, ये इनसे कुछ हो नहीं रहा इसलिए आ रहे हैं. मैं भी यही मान के चल रहा हूँ, कुछ भी हो मैं यही मान के आगे बढ़ रहा हूँ भाई. एक कॉल आ, ए भाई स्कूल जाते हुए बच्चे कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड रुको भाई. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
3: अच्छा हो?
2: कैसा आज की क्या तैयारी? अभी क्या है मतलब? अभी कुछ नहीं है, अभी तुम स्कूल जा रहे हो ना, अभी कुछ नहीं है. आज स्कूल में क्या है?
3: अच्छा मैं टॉपिक बोलने वाला था ना.
2: हाँ बताओ टॉपिक.
3: आज का टॉपिक है
2: हाँ?
3: कि
2: क्या
3: आज हाँ? अपने बारे में हर चीज बोलना है.
2: नहीं कि ये वाला टॉपिक नहीं है.
3: सुबह से रात तक क्या करते हो?
2: मैं क्या करता हूँ?
4: अभी सो के आया
2: है. वो मुझे पता लग रहा है, आंख नहीं खुली है. आज तैयार नहीं है हमारा लड़का. भाई आज स्कूल में क्या है स्पेशल? क्या है स्कूल में?
3: आज स्कूल में स्पेशल है कि आज हमारा संडे है.
2: वाह, आज हमारा इसमें स्पेशल क्या बात हुई? वो स्पेशल बात थोड़ी हुई. आज हमारा संडे मतलब क्या?
3: संडे तो स्पेशल होता ना, संडे हो गया मंडे रोज का अंडे.
2: बहुत बढ़िया, तो आज तो अंडे खाए होंगे तुमने.
3: हाँ?
2: आज अंडे खाए?
3: नहीं, टिफिन में बने अंडे.
2: यार अच्छा ठीक है ठीक है. तो जाओ आज, आज मन है, मन तो होगा नहीं तुम्हारा स्कूल जाने का है ना, क्योंकि संडे है आज. वीकेंड, वीकेंड पे क्या किया ये बता दो. मम्मी पे डिपेंड करता ना. वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए. अब बताओ वीकेंड पे क्या किया?
3: वीकेंड पे हम लगा स्विमिंग करने गए फ्राइडे को, और थर्सडे को कहीं नहीं गए.
2: सैटरडे का हिसाब किताब दो. सैटरडे को क्या किया?
3: सैटरडे को तो मतलब डैडी को छुट्टी नहीं रहती, तो रात में हम संडे को हम लोग को स्कूल जाता बोल के, इसलिए हम लोग को घर पे छोड़ लेके सैटरडे मम्मी डैडी शॉपिंग करने चले गए.
2: अरे तुमको नहीं लेके गए, अकेले के लिए चले गए दोनों? अरे रे, क्यों ऐसा? क्यों नहीं लेके गए तुम्हें?
3: क्योंकि रात में जा रहे थे ना हम लोग को स्कूल था बोल के.
2: जानबूझ के क्या है मम्मी पापा ने? जानबूझ के, ताकि तुम्हें ना ले जाए. मैं सही बता रहा हूँ. हंस तो रहे हो, यही सच है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. अगली बार से कहना कि नहीं दोपहर में चलो, शाम में मत जाने देना, वो ऐसे वरना छोड़ देंगे तुम्हें पीछे फिर. ठीक है? अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
3: अच्छे हैं.
2: आज मन नहीं है ना स्कूल जाने का, ऐसा सुनाई दे रहा है मुझे आवाज से, ऐसा लग रहा है.
3: नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठ के नींद, टीवी नहीं देखे, मैं जल्दी बहुत जल्दी उठ के टीवी देख रहा था.
2: अच्छा तभी, ओके ओके. नहीं तुम दोनों को ऑल द बेस्ट फॉर द स्कूल, ठीक है? एंड बताना मुझे आज क्या रहा, कब है पीटीएम भी तो है ना बहुत जल्दी, आई थिंक
3: 10th को है.
2: ठीक है, मैं बिल्कुल अपने कैलेंडर पे मैंने मार्क कर दिया, मैं जरूर बात करता रहूंगा डेली. ठीक है, अपना ख्याल रखो दोनों. ओके चलो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. तो भाई ये जो है ना, इनका मेरा अलग बॉन्ड चलता रहता है. हाँ तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक और कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
5: वालेकुम सलाम कबीर भाई, खैरियत?
2: खैरियत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम. मेरे भाई आप सुनाइए.
5: अल्लाह करम है अल्हम्दुलिल्लाह. टॉपिक जबरदस्त थी आज.
2: थैंक यू सो मच भाई. आज थोड़ा सा वो है सीरियस मामला, लेकिन मैंने सीरियस मामला चुना ही है जानबूझ के भाई.
0: आप बताइए क्या कहना चाहेंगे?
5: नहीं नहीं नहीं एकदम सही है, मैं भी बहुत से मेरे जो है ना कजन ब्रदर है ना, लोगों को मेरे खुद के भी भाइयों को बोलता हूँ ये चीज में अगर करियर बन रहा तो बनाओ भाई, कहीं को नहीं बनाना बोलता हूँ मैं।
0: हाँ वो तो
5: मैं बोल रहा हूँ
0: भाई, करियर तो बनाने की बात तो है ही, लेकिन होता पता है क्या है जो मैं भी देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द, लोग इसलिए करियर बनाने से थोड़ा पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार हेट कमेंट आएंगे, और आते हैं भाई आते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अरे मुझे आते हैं, मैंने तो किसी को कुछ उखाड़ा भी नहीं भाई, तब भी मुझे आते हैं, तो मुझे तो आदत हो गई है। पर
5: लोगों के दिमाग को शाइन करते भाई जो बैड कमेंट डालते हैं ना, लोगों के हमारे को ऊपर लेके जाते हैं, एक नेगेटिव कमेंट की वजह से दूसरा सोचता आ रहा है उसको नेगेटिव कमेंट आया करते बोल के, दूसरे फिर लोग देखते उसकी वजह से।
0: यही अप्रोच चाहिए भाई, ऐसा दिमाग हो जाना आदमी का तो सब सेट है। यही बात तो समझानी है, यही बात समझानी है।
5: वही तो है ना, जितने हम अगर सब लोग हमारे बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दिए तो मतलब हम गलत है।
0: हाँ।
5: कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो चुरका लगता ना भाई हमारे काम
0: भाई, पता होता क्या है कि कोई मान लो कोई बच्चा है ठीक है, अब उसको घर वाले कह रहे हैं बेटा क्या टैलेंट है सब तारीफें करे जा रहे हैं, जब वो ऑनलाइन लेके जाता है अपना टैलेंट तो वहाँ पे उसको हेट कमेंट मिल रहे होते हैं, तो उसको बेचारे को हजम नहीं होता कि यार ये तो यार घर वाले तो कह रहे थे सब अच्छा है।
5: वैसे टाइम पे अपना बच्चों के साथ हमला ठहरे हुए रहना, एक ही बच्चों को दिमाग में डालना कि हमारी हम जो कंटेंट बना रहे हैं अगर वो हलाल है, अगर वो सही है तो दुनिया का ही भाड़ में बोलना।
0: क्या बात है भाई, यही अप्रोच है, हैदराबादी अप्रोच, क्या बेस्ट है भाई। और बताओ भाई लाइफ कैसी कट रही है भाई?
5: ओ वल्लाह करम है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो बस, नहीं मेरे को अच्छा दिखा।
0: हाँ।
5: और आगे का फ्यूचर पूरा ऑनलाइन का ही छे
0: भाई, अपना पूरा नाम बता दो, ये माज भाई पूछ रहे हैं।
5: अरे मेरा नाम ख्वाजा इरफानुद्दीन है।
0: समझ गया भाई, ख्वाजा इरफानुद्दीन है ये माज भाई एक्चुअली हैदराबाद से है ना, तो इसलिए पूछ रहे थे, वो कनेक्शन बनाना चाह रहे थे आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की मेरी जान, और बहुत ही सही एटीट्यूड है भाई आपका, ऐसे चलते रहो भाई।
5: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया कबीर भाई, दुआ करो बस। अल्हम्दुलिल्लाह
0: इंशाल्लाह मेरे भाई, ख्याल रखिए अपना बस, चलिए ठीक है, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़। तो भाई जल्दी से मैसेज कर दो, मैं पढ़ लूँ, कर दिया दूँ, पढ़ लेता हूँ। तो एक मैसेज है, नहीं इग्नोर मत करो। अच्छा अब सिद्धरा भैन ने हमारे मैसेज किया है, वो कहते हैं नहीं इग्नोर मत करो अगर हेट कमेंट्स आ रहे, तो ऐसे तो मैं किसी से बहस में नहीं पड़ती, पर अगर रील पे कमेंट आता है आई विल रिप्लाई, रील बूस्ट होती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव रिप्लाई करो एंड डोंट लेट इट अफेक्ट यू, स्पेशली नेगेटिव वाले फारिग लोग हैं, कुछ नहीं है उनके पास, तो फ़ायदा देखो और रिप्लाई करो। एक दफ़ा मेरी रील पे दो यूज़र्स बहस में पड़ गए थे, आई लेट दम, क्योंकि रील बूस्ट होती है भाई। एक नंबर बात कही है इन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको, ये अगर कोई अपना करियर स्टार्ट करने वाला है ना, कोई भी यंग एज का भी मुझे सुन रहा है या कोई भी एज का सुन रहा है, ये बहुत अच्छा कॉमेंट है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, अरे करने दोनों कॉमेंट, हमें थोड़ी वक्त पड़ रहा है, हमें तो रीच मिल रही है। तो एक हमारा निसर्ग भाई ने मैसेज किया, मेरा भाई कुछ ही तो ढंग के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो नहीं कह सकता हूँ, निसर्ग भाई गुड मॉर्निंग मेरे भाई को, सल्यूट। एक कॉल आ रही थी, ड्रॉप हो गई। कह रहे हैं टॉपिक क्या है माज भाई, टॉपिक मुद्दा भाई ये है कि जो हेट कमेंट्स आते हैं, जो ट्रोलर्स होते हैं, जो आपके ऑनलाइन करियर को ख़त्म करने में लगे रहते हैं, इनसे कैसे डील किया जाए भाई। मुझे भी आते हैं, मैं तो डील करना सीख चुका हूँ, मैं तो अलग ही ढीट चमड़े का हूँ, पर कैसे डील किया जाए। एक लास्ट मैसेज तो नहीं, पहले मैं कॉल उठा लेता हूँ, उसके मैसेज पढ़ लूंगा। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम दिल्ली वाले कबीर भाई,
0: क्या हाल है? बढ़िया भाई, एकदम शानदार, आप सुनाइए भाई क्या हाल है?
6: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम, आप लोगों की दुआएं है, अभी जस्ट उठा हूँ, गाड़ी पे बैठा हूँ, आपको सुन रहा हूँ।
0: बेहतरीन, मुझे लग भी रहा है आपकी आवाज से कि जस्ट अभी नींद खुली है भाई, चाय वाय नहीं गई सिस्टम में मुझे लग रहा है।
6: नहीं अभी नहीं, बिल्कुल नहीं
0: पता लग रहा है भाई। अच्छा बताओ भाई क्या
6: कहना ये था। सर दो चार दिन पहले आपके साथ कोई आदमी ज्ञानी बाबा ज्ञान दे रहे थे कि ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो, तो उनको ये बोला कि भाई सैलरी मिले और फट से अपनी वाइफ को भेज दिया करो या 200 रियाल ज्यादा भेजा करो, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा।
0: नहीं मैं नहीं वो तो थैंक यू सो मच, नहीं वो तो बेचारे पता बाद में उन्होंने मुझे पता है बहुत जगहों पे कॉल वॉल करी थी, और फिर कहने लगे नहीं मेरा वो मतलब, मैंने कहा भाई ठीक है रिलैक्स करो कोई बात नहीं, चिल
6: उनको टेंशन मुक्त चाहिए तो वाइफ को टाइम से सैलरी भेज दो,
0: क्या बात है। अब जरा वो भी बता दो कि अगर कोई ट्रोल कर रहा है हेट कमेंट कर रहा है क्या किया जाए इस पब्लिक का भाई।
6: सर अभी तो मैं जस्ट
0: नहीं मैं समझ गया, आपको माफी है कोई बात नहीं, आप चाय भाई पीजिए आराम से, सुन के दोबारा कॉल कर लेना भाई, कोई टेंशन नहीं है ठीक।
6: ओके
0: मेरा भाई, ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज़। एक इनके पास

0: मैसेज ले लेता हूँ। तो सुभाष भाई कह रहे हैं आज का टॉपिक बहुत सीधे से, ये जो न्यू जनरेशन है इनके माइंड बहुत फ्रेजाइल होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों पर इफेक्ट हो जाते हैं। और यही कहूँगा, कमेंट को हेल्दी वे में लो, जस्ट चिल एंड इग्नोर, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। लास्ट वाला ज्ञान कोई लेगा नहीं भाई। एक मैसेज है, हेट कॉमेंट्स क्या होता है, जिसके कॉमेंट उसका मुँह मुझे क्या, ये एटीट्यूड चाहिए भाई। एक मैसेज है, आई विल टेल द ट्रोलर भैया बाबा ब्रदर इन जॉनी लीवर स्टाइल एंड एक्सप्लेन हिम द मैटर पॉजिटिवली। ये अच्छा था खाजा भाई। और आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, ट्रैफिक में फंस गए, कोई बात नहीं भाई, रिली सॉरी ये बात है इसमें। शहजाद सलीम वालेकुम अस्सलाम, अच्छा हाँ ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। और तब उसमें बहन ने मैसेज किया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इग्नोर सच कमेंट्स कबीर भाई, बट आई रिसेंटली रियलाइज इट्स डन जस्ट टू ट्रिगर मी। पहले मैंने जब प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड पे रखा था तब की बात है, हर कमेंट का रिप्लाई, उस कमेंट का रिप्लाई, ये कमेंट का रिप्लाई देने की आदत थी, अब नहीं। आई जस्ट इग्नोर, पीस इज टू इग्नोर। कुछ तो ट्रिगर करने के लिए डीएम में ऐसे रील्स भेजेंगे, फिर बोलेंगे इट्स जस्ट अ रील। इनफैक्ट आई स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दीज ट्रोल्स ओनली एंड ऑल्सो इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉम ओन पीपल। मैंने कहा ना, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहन ने जो बात बोली एकदम सही है। आधे लोग इससे अपना ऑनलाइन करियर हॉल्ट पर डाल देते हैं या परसू नहीं कर पाते, क्योंकि उनको डर है कि भाई ये ऐसे आएंगे कमेंट हुटर वाले। एक मैसेज है, भाई की बातें उसे सहमत हूँ, हमेशा पॉजिटिव जवाब देना चाहिए। और एक मैसेज है, द न्यू जनरेशन विल इवॉल्व इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया विद इट्स गुड्स एंड बैड्स, देयर वे ऑफ थिंकिंग एंड कैपेसिटी हैंडल द कमेंट्स विल बी डिफरेंट, समथिंग वी कांट कॉम्प्रिहेंड एज आवर माइंड इज सेट टू ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड रिएक्टिंग। कासिम भाई दैट आई अंडरस्टूड ब्रो, लेकिन सिर्फ नई जनरेशन थोड़ी बना रही है करियर, हम भी तो बना रहे हैं भाई। हमारा क्या होगा भाई। एक मैसेज, जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, और एक कॉल मुझसे ड्रॉप हुई है, आई गेस तला भाई कॉल कर रहे थे, परी वाली कॉल उठा लेते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कबीर भाई मैं मोइन बात कर रहा हूँ।
0: जी मोइन साहब, बस बढ़िया मोइन भाई, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैं ठीक हूँ।
0: जी जनाब बताइए। तो
1: कबीर भाई एक्चुअली आपका जो आज का टॉपिक है सीरियस नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड भी है टू बी डिस्कस विद जेन जी, नॉट ओनली जेन जी, सारे ही जो भी ऑनलाइन क्रिएटर्स है ना, ये सभी के लिए है।
0: जी जी जी
1: भाई, ये जो नेगेटिव कमेंट्स देख के जो अपने आप पे तरस खाते है ना लोग, उनको यही बात है कि भाई अपने आप पे तरस नहीं खाने का बेसिकली। तो जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं भाई आने दो, तो जो गुस्सा आता है ना वो जिम जाओ, जिम में वेट्स उठा के जिम गुस्सा उतारो।
0: आपको पहली बात ना मुझे बहुत बढ़िया लगी कि अपने ऊपर तरस खाना, भाई क्या बात बोली आपने, मैं भाई आपको उत्तर देना चाहता हूँ, बेहतरीन बात। हाँ जी आगे क्या करते हैं बताइए आप।
1: थैंक यू भाई। और दूसरा चीज क्या है ना, एक चीज सबसे पहले तो अपने आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ चुके हो या फिर आप एजुकेशन जो भी चीज में परस्यू कर रहे हो उसमें तो बेसिक सेट बना ही लो।
0: हाँ।
1: उसके बाद अगर आप करियर ऑनलाइन में मतलब कंटेंट क्रिएटर बनाना हाँ, चाहते हो ना हाँ, हाँ, तो भाई एक चीज है हसल करो, ऐसा मत करो कि भाई एक ही दिन या एक महीने में आपको रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि हाँ, ये जो ऑनलाइन क्रिएटर का जो ये है ना मतलब करियर हाँ, हाँ, ये बहुत ज्यादा क्लटर्ड है और कॉम्पिटिशन तो तगड़े लेवल पे।
0: और मैं आपके वजह से करके एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बेसिकली जो आपने बात बोली वो एकदम सही है। अगर आप ऑनलाइन करियर बना रहे हैं आपको उसको नौकरी की तरह लेना पड़ेगा भाई, टाइम पास करोगे तो नहीं हो पाएगा, यही मैं बात करना चाहता हूँ। जी आगे क्या,
1: कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए कम्प्लीटली, और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन इमीडिएटली मत करो। छह सात महीने एक साल लगाओ उसके पीछे, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई ये परस्यू कर सकते हो कि नहीं। और लास्ट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है भाई, एक्सेप्ट करना कि भाई ये हमसे नहीं हो पा रहा है तो फिर मूव ऑन कर दो।
0: ये अगर आगे तो
1: ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है ये बेसिकली,
0: बिल्कुल।
1: और अगर समझ में नहीं जा रहा है तो फिर भाई मूव ऑन कर जाओ लाइफ में, एक साल बहुत टाइम होता है मूव ऑन करने के।
0: और उनको क्या कहेंगे जो ये हेट कमेंट झेलते हैं बेचारे, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत सारे आधे तो करियर अपने इसलिए नहीं बना पा रहे।
1: मेरे दिमाग में वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर
0: हाउ वुड यू डील, अपना बता दो हाउ वुड यू डील। आप मान लीजिए कुछ बनाया और आ गए लोग कहने के लिए आप कुछ ना कुछ, तो क्या करेंगे कमेंट में, डू यू फाइट विद देम और जस्ट लेट इट गो, क्या करेंगे आप
1: भाई? आप जब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल बचपन में देखा था, अभी तो नहीं देखता, उसमें अफ्रीकन एलिफेंट जो जब जाता है ना उसके आजू बाजू कोई कुछ भी चला जाए फर्क ही नहीं पड़ता है उसको, मतलब लिटरली रिवर में क्रोकोडाइल्स बैठे होते हैं, उसको पानी पीना है तो भाई पीना है।
0: क्या बात है, क्या बात है मोहन भाई, आज आप बहुत खतरनाक मूड में है, यही मूड चाहिए, यही मूड चाहिए।
1: हेटर के लिए जगह ही नहीं है भाई मेरे पास, कहीं भी हो मेरे को जो करना है करना है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है तो चाहिए।
0: ये हुई बात भाई, दिस इज द राइट अप्रोच टू डू इट एंड देयर इज नो अदर वे। ये अपने

0: बहुत अच्छे तरीके से बताया. आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आप सुनते हैं पहली बात तो शो, और जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स देते हैं भाई, इट रियली मींस अ लॉट टू मी भाई. थैंक यू सो मच फॉर
1: टेकिंग द टाइम.
0: बहुत प्यार, बहुत प्यार भाई. थैंक यू सो मच भाई.
1: माय प्लेजर भाई. थैंक यू.
0: ओके भाई, लाफिस लाफिस. तो मोइन माने जो बात बोली ना भाई, सॉलिड बात बोली भाई, सॉलिड. मीन ने भीतर बन जाएगी बॉडी, ऐसी बात बोली भाई ने, पर अच्छी बात बोली. देखो स्पीच ज्ञान बांटो तो ऐसा बांटो जो बोरिंग ना लगे. बहुत बढ़िया भाई. एक मैसेज है निसर्ग भाई, कहते हैं भी पॉजिटिव, जब लोग आपके खिलाफ बोलने लगे समझो तरक्की कर रहे हो. निसर्ग भाई जो कह रहे हैं मान लो, क्योंकि ये खुद ऑनलाइन क्रिएटर. निसर्ग भाई आपने कह दी तो कह दी भाई. एक कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम. भाई तला क्या हाल है? मैं तो बढ़िया चल रहा हूँ, आप सुनाओ
2: भाई. बिनाई कमजोर हो गई है क्या भाई आपकी?
0: भाई आपका नंबर देख के जानबूझ के मैं यूं फेर लेता हूँ, इंडिकेटर देके लेफ्ट चला जाता हूँ.
2: हाँ. बस इसी यही मोहब्बत की वजह से कॉल पे कॉल कर रहा था.
0: ये मेरा भाई,
2: ये सुनना था.
0: तो तला भाई हाउ वुड यू डील, मेरा भाई अगर आप कंटेंट बनाते तला भाई और कोई हेट कमेंट आता, हाउ वुड यू डील, क्या करते आप?
2: भाई आप तो मुझे जानते हैं, अपन तो हेट पॉलिसी पे चलते ही नहीं है, इग्नोर पॉलिसी भी चलते हैं. तो एक सुट्टा दो क्या है, मर्दार आया है, हम तो इस पे घास करने वाले लोग हैं.
0: पर आपके मतलब आपको नहीं लगता कि आपके मेंटल स्टेट पे आ जाते हैं? क्योंकि यार मैं बताऊं तला भाई, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, हमारे और आपकी तरफ के, अब इंडिया और पाकिस्तानों किधर के भी हों, बहुत सारे यंगस्टर्स अभी चाहते हैं अपना करियर बनाना, एंड यू कांट स्टॉप देम, वही फ्यूचर है. बेचारे यार रुक जाते हैं बीच रस्ते में ना. मैं आधो को जानता हूँ वो रुक गए क्योंकि उनको कॉमेंट बहुत खतरनाक आते हैं. तो उनको क्या बोले
2: यार कबीर भाई? देखो सीधी सी बात है, हमारी जनरेशन हो या जेन जी जो भी हो ना, बैकिंग सपोर्ट लाजमी है सबके लिए ना. बैकिंग सपोर्ट लाजमी है, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो फ्रेंड्स हो, ठीक है ना. कोई ना कोई एक बैकिंग सपोर्ट होता है ना, बंदा ना अपने आप को ना पैरों पे खड़ा कर लेता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, इवन दो नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से भी. और बहुत सारी चीजें होती है, लर्निंग फेज जो है ना ये सब सिखाता है इन चीजों से ना. जैसे आप नेगेटिव हो गए, बहुत से लोगों को जो है ना फेम बर्दाश्त नहीं होता, मतलब बर्दाश्त इन सेंस उनको हैंडल करना नहीं आता कि फेम होता हैंडल किस तरह करना है.
0: Correct.
2: या फिर सक्सेस को हैंडल किसका, बेसिकली सक्सेस को हैंडल किस तरह करना है.
0: सही सही सही, ये तो मैंने भी देखा. अच्छा,
2: है बात जो भाई ने करी ना पहले, वो बहुत अच्छी करी कि एक्सेप्टेंस ना, अगर आप फेलियर पे हो बहुत एक्सेप्टेंस है. लेकिन जो ऑनलाइन मार्केट है ना नाउ डेज, मतलब ऑनलाइन मार्केट में अब अगर मैं और तुम भी एक्सप्लोर करने जाएंगे ना, तो हम थाउजेंड्स ऑफ प्लस जो ऑप्शन है हमारे पास ना, हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं.
0: करेक्ट.
2: तो इट डजंट मीन कि भाई आपका एक एक एक चीज पे क्लिक नहीं हो रहा ना तो दूसरी चीज पे नहीं होगा. मे बी आप मार्केटिंग में अच्छे हो, मे बी आपका फेस अच्छा है लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो बैकएंड पे काम कर लो भाई मेरे.
0: और एक और बात निकलती है इसी बात से कि आप अपने आसपास ना यस मैन बिठाना बंद करो भाई. ये जो सब कहते रहते ना भाई बहुत बढ़िया हो भाई तुम तो आग लगा दोगे, ये सच्चे लोग भी रखो जो आपको बता सके कि नहीं हो रहा भाई, मजा नहीं आ रहा इसमें.
2: क्रिटिक बहुत जबरदस्त चीज है दुनिया में जो इन्वेंट हुई है, क्रिटिक बहुत आला चीज है ये. लेकिन क्या है कि उसका इमेज जो है ना वो नेगेटिव हो चुका है क्रिटिक का.
0: करेक्ट.
2: हाँ लिटरली पार्टी तो वही पता है, तुम तो मेरे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, तुम तो स्पीड से हो.
0: हाँ नहीं सही कह रहा हूँ,
2: तुमने हमसे ज्यादा चीज है क्योंकि तुम्हारी कस्टमर डीलिंग है, तुम्हारी पब्लिक डीलिंग है बेसिकली. कस्टमर तो मैं कहीं और ले गया, तो वो वाला काम नहीं करते हो.
0: नहीं बात सही है, ये बात सही है. बताइए जाओ ना कि ये क्रिटिक का जो इमेज है आप बड़ी नेगेटिव हो चुकी है, अगर कोई क्रिटिक कर रहा तो बुरा ही है वो, ऐसा नहीं है.
2: भाई डेफिनेशन ही चेंज हो गई ना, डेफिनेशन ही लोगों ने चेंज कर दी, मतलब हम लोगों ने चेंज किया, लोगों का हम लोगों ने चेंज किया, जबकि नहीं है. क्रिटिक इज वन ऑफ दी थिंग के आपके लूप होल्स को आपके आपसे बेहतर तरीके से पॉइंट आउट करके बता देगा, आप काम कर लो भाई उस पे, जीत हो जाओगे. ठीक है ना, अगर भाई मैं छोड़ा चल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तो घर वाले वो होए भाई घास बड़ा अच्छा चलता है, बचपन से ना मेहमानों को ना ठुमके ला के बड़े बड़े अपना माइकल जैक्सन समझ रहा, लेकिन अब तो भाई कुछ भी नहीं है, मनोज वाजपेयी निकला मतलब.
0: भाई ये फैक्ट है, बता रहा जो आपने बात बोली ना हंसी मजाक में, सच है भाई. आसपास के लोग जो ये पंप देते हैं ना, को रहे भाई तुम तो ये कर दोगे, क्या भाई क्या मूव है, इन लोगों का पंप देना रुक जाना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए कि भाई नहीं मजा नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ, ये बताना जरूरी है
2: भाई. देखो करियर के कोई भी स्टेज पे हो ना, चाहे जेंसी हो जो भी हो ना, बेसिकली ऑनलाइन करियर पे जाओ ना, इवेल्युएशन बहुत जरूरी है और बहुत आसान है आज के दौर में ना. ये ना चार बंदे पकड़ो, चार अच्छा आप तो आजकल तो चार बंदे पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, सब कह रहे ना कि ऑनलाइन कमेंट्स आ रहे होते हैं. भाई बेस्ट चीज है,
0: आने दो,
2: बोरिंग पॉलिसी चलो, लेकिन उसमें आने दो, लेकिन उसमें चीजें निकालते भी रहो बादशाह. ये रिपीटिव हो रही है कि भाई तू काला है, तू काला है, तू काला है, तू काला है भाई, तू मैं मुझे लग रहा है मैं काला क्यों, मुझे लगानी चाहिए वो जो जो जो वो जो क्रीम मैंने तुम्हें बता दी अम्मी वाली
0: दो
2: मैं कह रहा हूँ
0: मैं तला भाई ये कमेंट को फिल्टर कर दूं, ये कहना चाह रहे हैं कुछ कमेंट ऐसे होंगे जो फालतू के होंगे आप समझ जाएंगे, कुछ ऐसे हेट कमेंट होंगे जिनमें सच में कुछ छुपा होगा उस पर काम कर लेना
2: जो रिपीटिव कमेंट है ना उस पर थोड़ा काम कर लो, जो रेगुलर वो जब आने जाने वाले ना उसको भरे इग्नोर मार दे बंदा
0: है।
2: ये चिल रहा मेरी जान,
0: ये एटीट्यूड चाहिए, ये एटीट्यूड चाहिए तला भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
2: क्योंकि भाई प्रॉब्लम देखो तुम और मैं अपनी प्रॉब्लम खुद जनरेट करता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम खुद जनरेट करते हो,
0: सीधी
2: सी बात है,
0: ट्रू भाई,
2: ठीक है ना। कोई बाहर वाला आगे नहीं, बाहर वाले का क्या मसला है भाई, वो आगे बोल के चले भाई तू इग्नोर कर यार अल्लाह के बंदे, तू उसको घर वाले सीरियस नहीं ले रहे, तू सीरियस ले रहा है
0: ये वाली बात भाई, ये लास्ट कॉमेंट भाई इस पे बनता भाई, यही मैं कहना चाहता हूँ भाई, वो खुद परेशान है, वो तो मैं इसलिए परेशान करने आया है, वरना किसके पास इतना फालतू टाइम है कि किसी के वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, दैट इज हाउ इट इज। क्या बात बोली तला भाई, वेरी नाइस, आज तो ग्रेजुएट कर गए तला भाई, आज तो आज क्या बात कह दी भाई, क्या बात है
2: भाई, आज गर्दा पे लाना था मैंने मेरे प्यार,
0: बहुत बढ़िया भाई, एकदम मजा आ गया तला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए तला भाई, ओके मेरा भाई, अभी देखो क्या अभी बहुत प्यार, बहुत प्यार तला भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और तला भाई की बात, कुछ मैसेजेस और पढ़ दूं मैं, तला भाई की का ये पॉइंट है, माजिद भाई लिखते हैं नेगेटिविटी को कैश करो, हाँ माजिद भाई ये फैक्ट है, करने दो भाई हेट कमेंट, ये तो कैश करने के लिए है, मैं सही बता रहा हूँ। एक मैसेज है, आई रिकमेंड देम टू रीड दिस बुक विच हैज दिस पॉइंट, डोंट बाइट द हुक, ट्रोलर्स इंटेंशनली थ्रो यू आउट टू बेट, throw out bait to get an angry reaction from you, your anger is exactly what they want, if you get upset you lose and they win, the moment you recognize the provocation is just as a hook you can choose to simply walk past। देखो मैं किताबें विताबें ख्वाजा जी मैं मुझे नहीं पता कितने लोग पढ़ेंगे, I get your point and you're truly stating it इन द राइट वे, मेरे साथ भी होता है, मैं बता रहा हूँ, मैं जब कुछ टाइम पहले वीडियो बना भी रहा था, बहुत सारे हेट कमेंट आते थे भाई उसमें, बहुत सारे, तो पहले तो मैं एकदम दिमाग ऐसा ना गर्म हो जाता था, मैं बस अभी सबको कमेंट पे रिप्लाई कर दूँ, बट देन आई थॉट कि नहीं यार, मतलब मुझे तो मज़े लेने चाहिए इन हेट कमेंट से, फिर मैंने पता क्या करना शुरू किया, कोई लिख रहा है ना हेट कमेंट, नीचे जाता था और मैं लिख देता था थैंक यू सो मच फॉर द एंगेजमेंट, बहुत बढ़िया मेरे वीडियो को रीच मिल रही है, और लिख और लिख और वो चिड़के भाग जाता था भाई। तो यही बेस्ट तरीका है, आपको नेगेटिविटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, पॉइंट नंबर वन, और दूसरा उसको कैश करना सीख लो भाई, करने दो कमेंट, सामने वाले का खून जलने दो। फरद भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज तला भाई को सलाम कहता, लाइट क्या लाइट लो, पुकारने वाले पुकारते रहते हैं, क्या बात है, कितने अच्छे से बोला, पुकारने वाले पुकारते रहते हैं। एक मैसेज आया है इमरान भाई का, अस्सलाम वालेकुम भाई, जब स्टार्ट किया तब बुरा लगता था, कुछ को सेटिस्फाई करने के की ट्राई, फिर कीवर्ड्स फिल्टर स्टार्ट, नाउ आई डोंट केयर, पेज इज ग्रोइंग नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू इमरान भाई, इमरान भाई भाई भाई भाई इमरान भाई के लिए देखा, ये है जर्नी, इमरान भाई ने जो बताया ना ये है जर्नी, वो खुद कह रहे हैं कि शुरुआत में बहुत बुरा लगता था यार, कि हर किसी को कैसे खुश करूँ मैं, और नहीं कर सकते आप, जो हर किसी को खुश कर रहा है ना भाई वो अपने आप को तो बिल्कुल ही उदास कर रहा है। तो बहुत बढ़िया भाई, आप आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग राइट नाउ बट एज यू स्टेटेड आप शायद ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, एक और भाई ने मैसेज किया है, ताहिर भाई ने मैसेज किया है, ताहिर भाई कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की, इफ वन बिलीव्स इन हिमसेल्फ एंड डजंट मैटर, समवन गेव नेगेटिव कमेंट ऑन वन ऑफ माय मार्शल वीडियोस, आई जस्ट रिप्लाइड ब्रो कम एंड ट्राई योरसेल्फ, ही जस्ट थम्स अप एंड डिडंट इवन रिप्लाई फर्दर, समवन मेंशनड अबाउट लुक्स, वन ऑफ माय क्लास फेलोज इज रनिंग दिस ओके चैनल, नॉट ग्रेट लुक्स बट कंटेंट इज सो स्ट्रांग दैट ही इज मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एग्जैक्टली भाई यही होता है, ये ताहिर भाई ने मैसेज किया, ताहिर भाई कंप्लीटली एग्री विद यू भाई, लोग सोचो भाई ना मार्शल आर्ट सिखाते हैं, अब उस वीडियो के नीचे भी अगर कोई नेगेटिव आ जाए तो सोचो उसकी बुद्धि कहाँ पे होगी समझ रहे हैं आप कौन सी मिनट है मार्शल आर्ट्स की वीडियो के नीचे, और मैंने देखे हैं भाई इनकी वीडियो बहुत बढ़िया बनाते हैं, उसके नीचे हेट कमेंट अरे भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम हिदायत भाई लिखते हैं, फॉर द हेट रिलेटेड थिंग, बुरे लोग बुराई बोलेंगे उनको इग्नोर करता जाता, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग मी इन गेटिंग मोर एंगेजमेंट, फॉर एनी वल्गर कमेंट्स आई डिलीट देम, बाकी आई लेट देम बी, यही सीन है भाई, मैं तो सारे छोड़ देता हूँ हिदायत भाई, मैं तो सारे के सारे छोड़ देता हूँ भाई, कर कब तक लिखेगा एक मैसेज है, मेरे वीडियो पे कोई कमेंट ही नहीं करता है भाई, भाई अभी ना इमरान भाई आएंगे कमेंट, अब जब एकदम से आएंगे ना भाई तब आपको रियलाइज होगा, तब आने देना, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, सीधी बात। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम। एक इरफान भाई को मिले तो, इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। इरफान भाई हमारे आ गए। हाँ जी, आप बताइए आसिफ भाई क्या कह रहे थे। अरे इरफान भाई मैसेज में आए भाई, उनका मिस हो गया था ना, इसलिए इरफान भाई को मैंने बोल दिया। इरफान भाई उससे वाला आदमी
2: भाई, एकदम समझ सकते हम लोग।
0: हाँ तो बताओ आसिफ भाई क्या कहना चाह रहे थे
2: भाई। वही मैं बोला भाई हाजिर लगा दो यार भाई, तो आज बहुत लेट हो गया मेरे को।
0: नहीं भाई कोई टेंशन नहीं, लगा दी हाजिरी भाई। आसिफ भाई सब बड़े
2: लग गई ना भाई हाजिरी,
0: लग गई भाई हाजिरी।
2: आज का क्या सीन है भाई?
0: भाई आज का कुछ नहीं, आज ऐसी कहानी सुनाएंगे आसिफ भाई, आज सुन के ही जाना भाई, आज सोचते रह जाओगे पूरे दिन ये क्या सुना दिया इसने मुझे, ऐसी कहानी है भाई।
2: तो ऐसी कहानी सुननी नहीं भाई।
0: सुना के तो रहूंगा। मैं ऐसा वायरस सुना बताऊंगा।
2: एक आदमी बोलता है भाई मेरी बात सुन, समझ रहा मेरी बात सुन के जाओ वरना पागल, नहीं अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो पागल हो जाएगा। अरे मैं बोला भाई नहीं सुनने का, पागल ही नहीं होने
0: का। नहीं नहीं नहीं मैं वही हूँ, मैं वही आदमी जिसने आप सुना, सुनना
2: वही है भाई।
0: ठीक है भाई, घड़ी में हो रहे हैं 7:02 और आप भी साथ देते रहो, जो भी लोग सुन रहे हैं आसिफ भाई।
2: भाई 7:02 ट्रोलर का क्या शॉट है भाई?
0: भाई 7:02 ट्रोलर वाला शॉट नहीं है, 7:02 तो हो रहा है टाइम, इसलिए बोलना था। और वो मैं ही कह रहा था, कुछ लोग ना कमेंट सेक्शन में देखते हैं ना, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे खराब खराब आते हैं, तो वो बेचारे झेल नहीं पाते, तो उनको क्या एडवाइस है, मैं ये कह रहा था जल्दी से बता दो मुझे
2: ना चला। ये सब चीज के लिए ना भाई एक ही बात बोलूंगा, चलते रहो फास्ट फास्ट, देखो मत आसपास।
0: करेक्ट, यही मैं टी शर्ट पर छपाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, मुझे जंगल चलाना
2: है। सलमान खान जैसे लोग को नहीं बख्शे तो हम जैसे लोग क्या है भाई।
0: Exactly. यही पॉइंट है भाई। यही पॉइंट है।
2: वो बेचारा वीकेंड पे आके वाट लगा के गया सबकी।
0: यही कुछ भी नहीं, यही करने की जरूरत है फॉर द राइट मोमेंट। चलो फिर मुझे जिंगल चलाना आसिफ भाई, जिंगल के बाद बात करते हैं।
2: बजाओ बजाओ बजाओ।
0: ओके मेरा भाई, जजाकला, थैंक यू सो मच। ओके मिलते हैं जिंगल के बाद।

0: FM 107 Time Check.
1: सात दो तो बोल चुका मैं, अभी सात चार हो रहे हैं, एक कॉल आ रही है, जल्दी से उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम रहमतुल्लाह सर, सुबह बखैर सर।
1: जी भाई, आपका नाम?
2: जी मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ।
1: जी इब्राहिम भाई बताइए।
2: आपको मेरे ख्याल से शायद पहले ही कॉल होगी, बहुत काम कॉल करता हूँ, सुनता ज्यादा हूँ।
1: हाँ मुझे भी लग रहा है कि इससे पहले हमारी बात हुई नहीं है शायद।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं आपकी कहानियाँ सुनता रहता हूँ।
1: अच्छा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: जबरदस्त है माशाल्लाह,
1: बहुत बहुत बहुत प्यारे,
2: जबरदस्त।
1: जी भाई
2: आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज तो।
1: जी जी
2: लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया ही क्यों, मेरा ये कहना है कि जिंदगी में तो हर जगह पे मनफी और मुस्बत एनर्जी आपको मिलती रहती है।
1: नहीं मैं बताता हूँ मैंने क्यों जिंदगी, बाकी टॉपिक इसमें क्यों नहीं मिला है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज वो जो ऑनलाइन वाला सीन होता है ना, उसमें क्या है कि आपको स्ट्रेंजर सुना रहे होते हैं, वो आपकी जनता है जो कंज्यूम करते हैं आपका कॉन्टेंट, समझ रहे हैं आप? मतलब इफ़ यू आर मेकिंग कॉन्टेंट, वो एक तरीके से आपने एक दुकान खोली है, और ये बिल्कुल वैसा है कि कोई कस्टमर आके बोले क्या तुम्हारी दुकान का सामान अच्छा नहीं है, है ना? तो वो प्रॉब्लम अलग किस्म की है, वो वहाँ पे टेंशन लेके ना कुछ लोग अपनी दुकान बंद कर देते हैं, इफ़ दैट मेक सेंस, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो बाकी जनरलाइज सिचुएशन में थोड़ा अलग सिचुएशन होती है। और इसी के साथ कॉल कट चुकी है। इब्राहिम भाई थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, आपने कॉल करी रख दी, ये कट गई जो भी हुआ, बट दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये बाकी जगहों में इब्राहिम भाई की बात को पूरा कर देता हूँ मैं, जनरली मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, बिकॉज ये ऑनलाइन ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये बिल्कुल वैसे ही कि आपने भाई साहब

0: पागल हो गया क्या? नहीं क्या क्या कर रहा है, इंस्टेंट ब्लॉग बनाता है, किधर भी कैमरा ऑन कर देता है, क्या क्या करता है। आज मालूम है मेरा फॉलोवर कितना है फेसबुक में? आज मेरा 2.75 thousand।
1: अरे बहुत बढ़िया भाई, मुबारकबाद मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्र, बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह माशाल्लाह, कीप ग्रोइंग मेरे भाई।
0: जब मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ ना तकरीबन सन 2024 में, कद्दू है ना, कद्दू मालूम है आपको?
1: अच्छा मुझे नहीं पता भाई।
0: लौकी लौकी,
1: अच्छा कद्दू, कह हमारे यहाँ कद्दू अलग है लौकी अलग है, बट ठीक है मैं समझ गया, आगे बोलो।
0: तो ये 6 फुट वाला मेरा उधर माँ ने लगाया था, तो 6 फुट वाला लंबा एक हो गया था।
1: और क्या 6 फुट
0: बनाया था उसका, 6 फुट लंबा, 6 फुट लंबा हो गया था।
1: हाँ, फिर
0: उसका कंटेंट बनाया था मैं, कोई दफा बनाया था, जो पहला जब आखिर में जो वीडियो बनाया था ना उसका, इसमें से मेरे को, इसमें मेरे को फेमस कर दिया।
1: अच्छा,
0: उसका एक वीडियो में 10 मिलियन व्यू आ गया।
1: चलो ये तो आपके वीडियो की बात चल रही, मैं बात कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन की, उसमें हेट मिलती तो कैसे
0: डील करते हैं? ये मैं आ रहा हूँ,
1: इसी पे टाइम थोड़ा कम है मेरे भाई, इसलिए
0: पहले जब मैं कंटेंट बनाता था छोटा छोटा ट्रेवल का, इधर इधर जाता हूँ, छोटा छोटा कंटेंट बनाता हूँ, तो इतना गलिया भी देता है बंदा, क्या कर रहा है, पागल हो गया है, इसमें कुछ नहीं है, पूरा दिन पेरा रहता है इधर, दिन में 10 वीडियो डालता है, ऐसा ऐसा बहुत बहुत ताने सुना हुआ है। लेकिन आज वो जो लोग मेरे को ऐसा किया ना, आज वो लोग मेरे को आके अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं।
1: पर उनको क्या कर रहे थे उस टाइम पे, इग्नोर कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, क्या कर रहे थे?
0: मैं बस, मेरे को तो कमेंट चाहिए था उसी टाइम,
1: कमेंट चाहिए था बस,
0: मेरे को एंगेजमेंट चाहिए, मेरे को कमेंट चाहिए, कुछ भी करो कमेंट करो, ज्यादा करो मुश्किल नहीं, फायदा है। वो लोग गलती से मेरे को कमेंट किया है, गाली दिया, चिल्लाया, लेकिन मेरे को दिन आखिर में मेरे को फायदा ही हुआ ना।
1: अरे क्या बात है,
0: शेरा, ये मेरे को फायदा हो गया उधर से,
1: बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, एक सब चीजों से हट के शुरुआत में आपने चीज बोली, ये लौकी जो हो गई 6 फुट की लौकी, कैसे भाई?
0: हाँ भाई, ये होता है लंबा वाला, एक होता है आप,
1: अरे पर 6 फीट,
0: हाँ 6 फीट, 6 फीट
1: तो उसका क्या,
0: क्रेडिट से ऊपर सेविक प्लस है, सेविक प्लस है,
1: तो क्या किया उसका?
0: उसको नहीं, उसको खाया नहीं है, उसको पकाया उधर, उसका अंदर से जो क्या बोलते हैं आपको, उसका अंदर को जो चीज हम लोग बीज बोलते हैं उसको,
1: अच्छा
0: वो निकाल के सुखाया था दोबारा फेर लगाने के लिए
1: भाई,
0: इन्हों खाया नहीं
1: भाई। 6 फीट तो अच्छा, ठीक है, ओके
0: भाई, अगर
1: ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, ये बताने के लिए मैं जरूर सर्च करूंगा आज, ठीक है रोहल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच भाई कॉल करने के लिए, जज़ाकअल्लाह। ओके तो रोमेल भाई ने जो है बहुत कुछ बता दिया, रोमेल भाई थैंक यू सो मच, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने बातों बातों में बहुत डेंजर थी भाई। हैरी भाई लिखते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम सुन रहा हूँ आपको, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैसेज है, ट्रिगर नहीं होने का भाई, बस भाई यही चीज़ है, ट्रिगर नहीं होने का, ईशान भाई भी कहें, ईशान भाई यही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नदीमा कह रहे हैं 90% लोग फेक अकाउंट होते हैं उनका, उनके पास नीचे इतना कॉमेंट लिख दो असली आई डी से आ। हाँ ये भी चढ़ाने वाली बात है, देते भाई तला भाई को काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं भाई, पढ़े लिखे वो रहते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, है ना। एक मैसेज फरद भाई कह रहे हैं, इब्राहिम भाई आए थे कुछ कहने के लिए लेकिन आपने कहना शुरू किया। कबीर भाई, भाई मैं देखो फरद भाई सही बात नहीं बोली, नहीं मैंने कैसे, क्योंकि वो जनरलाइज बात नहीं है कि दुनिया में भी, तो दुनिया में नहीं होता भाई, ऑनलाइन की दुनिया बहुत अलग है, कहाँ उसको रिलेट करें। फराज भाई वालेकुम अस्सलाम, टुडेज़ टॉपिक इज़ अ बिट सीरियस, सब अपना ज्ञान दे रहे हैं, मैंने तो ज्ञान किसी को नहीं देने दिया फराज भाई अभी तक, अच्छा ही ज्ञान गया है। इरफान भाई कह रहे हैं, कंट्रोल उदय, कंट्रोल इग्नोर एंड कंट्रोल, इरफान भाई होता नहीं है। सकीब भाई कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग? जमाल साहब कह रहे हैं, वेलकम बैक, चैन खोल खोल खोल कूल। तो देखो कैसे बताऊं मैं आपको, जब ऑनलाइन आप कुछ नया नया करने की कोशिश करते हैं ना, मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने शुरुआत में देखा कमेंट बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तब तक तो बहुत बढ़िया है, फिर एक हेट वाला कमेंट आता है ना, तो आप चाहे या ना चाहे ट्रिगर तो होता है बाबू, कहीं ना कहीं तो लगती है जाके। पर वहीं पर जैसे अभी भाई के गए, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो कमेंट जो है जो कर रहा है आपको एंगेजमेंट है, वो आपको पंप दे रहा है, बस नेगेटिवली दे रहा है। आपका वीडियो रीच, आप क्या चाहते हैं, वीडियो रीच तक पहुंचे ना, सही जगह पे पहुंचे, करने दो कमेंट, कर भाई एक पैराग्राफ नहीं, 2-3 और लिख। कोई टेंशन नहीं है। एक मैसेज, इरफान भाई के नंबर को कैसे इग्नोर करना है? इरफान भाई के नंबर को क्यों इग्नोर करना, अच्छा गाड़ी के नंबर को? इरफान भाई प्लान बना रहे हैं उसको ढकने का, इरफान भाई अब से गाड़ी देंगे नहीं, उसको थोड़ा सा धक वक देंगे और रात में नंबर प्लेट के ऊपर की लाइट को बंद रखेंगे वो, ताकि कोई देखे नहीं। ठीक है आशीष भाई।

0: इरफान भाई बहुत हो रहा है इरफान भाई, मैं आप झेलूंगा नहीं। एक मैसेज है, हम तो अच्छा पुराने ब्रांड का नाम नहीं ले सकता मैं, लोग हैं ऐसी तैसी करने वाले। मैं जकी भाई आपके साथ हूँ भाई, जकी भाई हमारा नेता कैसा हो। एक मैसेज है क्या लिखते हैं, अब तो नया जवाब मिल गया है, एक कचोरी दो समोसा इन हेटर्स का क्या भरोसा। साजी भाई आप वाला एटीट्यूड हो ना भाई, तो कितने भी हेट कमेंट आ जाए फर्क नहीं पड़ता भाई, कम्प्लीटली कम्प्लीटली एग्री। नसीम साहब लिखते हैं अच्छा है, कहाँ किधर क्या अच्छा है भाई, समझा नहीं भाई। और एक और मैसेज है, फेक आईडी बना के मैनेजर को है, समझा नहीं ये आपने जो बोला उसका इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सेंस नहीं बन रहा मेरे भाई। फराज भाई कह रहे हैं माज माज माज सुन रहे हो, डू यू स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू माज। भाग गए माज, इतना सुन के बेचारे ने कंटिन्यू करना छोड़ दिया। खैर 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। और मैं जेन्युइनली पूछ रहा था कि भाई अगर कोई अपना ऑनलाइन करियर बनाना चाहता है तो लोग ना अक्सर कमेंट करते हैं, हेट कमेंट्स बहुत करते हैं, इन हेट कमेंट से कैसे डील किया जाए भाई। इग्नोर करें, ब्लॉक करें, बातचीत कर लें या करने दें, क्या करें, करें तो करें क्या, 666-22-107 में बता दो भाई। ठीक है, और भाई अगला गाना बहुत बढ़िया भाई, जब ये चाल लेगा ना भाई थमने बेरा पाटेगा, बहुत ही बढ़िया गाना भाई, वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगी। एक पहले मैं कॉल उठा लूँगा, चलो एक कॉल लेता हूँ उसके बाद चला देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, इब्राहिम
0: दोबारा जी, इब्राहिम भाई पार्ट टू, बताइए इब्राहिम भाई
1: पार्ट टू। नहीं वो कॉल था लेकिन मैं ड्राइव कर रहा था, मैं दोबारा कर
0: नहीं। कोई बात नहीं इब्राहिम भाई, बताइए।
1: मुझे उसको अभी इग्नोर करना था, बिल्कुल मैं भागा नहीं हूँ।
0: अरे नहीं, मैंने कब कहा भागे, मैं तो मजाक करता हूँ इब्राहिम भाई, कैसी बात है।
1: आपकी बात भी सही है, उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि मैं एक तो सोशल मीडिया का बंदा नहीं हूँ, मेरी कोई पोस्ट नहीं है, कोई मेरे कोई ना कोई कमेंट होते हैं ज्यादा,
0: अच्छा
1: जस्ट मैं वॉच और ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ भी नहीं है। देखिए नेगेटिव कमेंट को भी आप इग्नोर तो कर सकते हो, बिल्कुल अगर अननेसेसरी कमेंट्स है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसको सेल्फ असेसमेंट तो करनी चाहिए कि मेरे नेगेटिव कमेंट आ क्यों रहे इतने ज्यादा।
0: अच्छा,
1: अब मुकम्मल आप इग्नोर मोड में डाल नहीं सकते उसको,
0: पर जैसे क्या है ना कि आप कितने भी अच्छा कर लें आपको वो हेट मिलना ही मिलना है। मैं इतने कंटेंट क्रिएटर्स को जानता हूँ जो बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे, उनकी आवाज भी नहीं है, वो बस सिर्फ कुकिंग कर रहे हैं, उसमें भी हेट कमेंट्स भाई।
1: हाँ। वो तो अपना खुद नहीं कुछ कर सकते, आपका क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते।
0: हाँ,
1: वही तो इग्नोर मोड पे डाल नहीं डालना है,
0: इग्नोर मोड पे एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, इन सिचुएशंस में वही
1: आपको इग्नोर मोड पे रखते ही रखना है। लेकिन अगर आपको हेट कमेंट का कंसिडरली ज्यादा आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको सेल्फ असेसमेंट तो करनी है, कंटेंट क्रिएटर
0: आगे हो रहे हैं। अच्छा ओके ओके, आगे हो रहे हैं, एक मरतबा देखने की जरूरत है,
1: देखने की जरूरत तो है। अगर आप उसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे इट मीन्स कि अल्टीमेटली वो कमेंट तो है, एंगेजमेंट भी आपकी हो रही है, अच्छी चीज है, लेकिन क्या आपकी हेट कमेंट ज्यादा होते जा रही है,
0: ये भी सही है, ये भी सही।
1: नेगेटिव कमेंट क्या नेगेटिव कमेंट ज्यादा होते जा रहे हैं, हम इसको भी तो देखते हैं।
0: नहीं सही सही बात है, आई एग्री।
1: मेरा तो ये पॉइंट व्यू है
0: कि अच्छा पॉइंट
1: अच्छा हो तो उसमें बहुत से लोग आएंगे बोलेंगे, उसको सिंपल इग्नोर मत, जैसे एक भाई ने कहा था कि आपको रिएक्टिंग करना किसी चीज पर भी सिंपल सी चीज है।
0: हाँ, नहीं आपने बहुत सही कहा कि अगर ज्यादा हो रहा तो एक बार देख भी लो भाई कि क्या है, थोड़ा सेल्फ असेसमेंट भी हो जाता है कि हो सकता है कोई सेंस की बात कर रहा हो, सकता है उसको कोई बात अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है आपको ठीक करने की जरूरत है। कंप्लीट लग रही भाई, ये पॉइंट भी एकदम सही है इब्राहिम भाई, और इब्राहिम भाई सब सही है। नाश्ता वाश्ता हो गया,
1: थैंक यू मच, थैंक यू मच।
0: ओके जी, ख्याल रखिए अपना, नाश्ता कर लेना बस, बहुत प्यार भाई को। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। तो इब्राहिम भाई ने अपनी बात पूरी करी भाई, अच्छी बात करेगा, सही बात करेगा। हमजा भाई कह रहे हैं सलाम कभी ब्रो, इग्नोर करें क्यों, वो कहते हैं ना बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हमारा हमजा भाई। हमजा भाई एकदम चिल मूड में रहते हैं, आई लाइक इट हमजा भाई, लाइक इट। एक मैसेज है, सादी भाई कहते हैं ज़्यादा हिट आ रहा हो तो कक्कड़ सिबलिंग की तरह उस पर करियर बना लो। मेरा भाई क्या बात बोली है, हूटर डिजर्व करने वाली बात है भाई, हूटर। टोनी कक्कड़ बन जाओ भाई, आ रहे ना एक कमेंट, ठीक है अब मैं इस पे भी गाना बना दूंगा, पर अभी तो गाना टोनी कक्कड़ वाला नहीं, बहुत प्यारा गाना है भाई, बहुत बहुत प्यारा गाना, बहुत ही प्यारा गाना। सीसा भाई, स्वरा वर्मा और मित्ता रोड, क्या हाल है भाई साहब, बढ़िया मनु गर्दा जमा जहज बना देंगे सो, ठीक है भाई।

भाई साथ साथ 18 होली है हमारा दिल के भीतर में, तो भाई ऐसे भूपर भूप भूप भूप भूप कर रहा है, मजा आ गया भाई कसम से। इतना प्यारा गाना, लोग कहते हैं हरियाणवी में सारे गाने ऐसे होते हैं कि सिर्फ ऐसे होते हैं गाड़ी के बारे में, देखो कितना प्यारा गाना लिखा है, इससे प्यारा गाना क्या लोग हरियाणवी में, मजा आ गया भाई। चलो भाई, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ येट अगेन।

0: भाई साहब 7:20 हो लिए, मैं जी दोहा वाला कबीर, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, आपने सुन लिए भाई बहुत सारे कमेंट बाजी सुन ली। मैं देखो एक दो कमेंट्स और पढ़ देता हूँ, फिर फाइनल कंक्लूजन देता हूँ आज की बात का। अनीस भाई हमारे जामिया वाले क्या कह रहे हैं, क्या वाह वाह आपका प्यार हमारा मीठा, मतलब मैं समझा नहीं भाई क्या बात हो गई। अनीस भाई से बढ़िया चल रहा है मेरा भाई। और मैसेज आया है अस्सलाम वालेकुम बब्बर शेर, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई को बहुत प्यार। जैस भाई एकदम बढ़िया चल रहा है भाई, आप सुनाइए। और एक मैसेज है आपकी इलूमिन योंग की स्टोरी, मैं बरीरा वॉज क्वाइट इन्वॉल्व एंड क्वाइट हैप्पी दैट शी आइडेंटिफाइड द मर्डर फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। एंड बरीरा को बहुत सारा प्यार, एंड मिकाइल को भी मेरा भाई, दोनों को कहिएगा आई एम मिसिंग देम एंड इंशाल्लाह विल मीट सून। हमजा भाई थैंक यू सो मच फॉर द हॉस्पिटैलिटी दैट यू गिव भाई रिसेंटली, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार हमजा भाई को। एंड शाउट आउट टू बरीरा एंड मिकाइल, दोनों को बहुत सारा प्यार, एंड आई होप दोनों को स्टोरी सुनती अच्छी लगे। और एक और जिनकी हॉस्पिटैलिटी का मैं भाई साहब कायल हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिसेंटली आई मेट मिस्टर सुदीप्तो सर एंड सृजन सर, थैंक यू सो मच, अब दोनों को बहुत सारा प्यार। बहुत ही भाई क्यूट आदमी है सुदीप्तो सर, कह रहे हैं कि ऑनलाइन कॉन्टेंट पर अगर हेट कॉमेंट्स आता है देख लो पढ़ लो आगे बढ़ चलो, बंदा खुद की नज़र में सही होना चाहिए, दुनिया तो भाई ऊपर वाले से भी दुखी है। भाई साहब मैं आपको ये गेंद देना चाहता हूँ, अग्री भाई। अब जरा कॉल आ रही है हमारे फवाद भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है फवाद भाई के?
1: बहुत ही अच्छे हैं।
0: क्या बात है, बहुत बुरे सुर लगाते हैं हम और आप।

0: अरे यार फवाद भाई, फवाद भाई, जब से आपने ये वजन कम करने का इंस्पिरेशन दिया है लोगों को, आप भी खुश नजर आ रहे हैं। I'm really happy for you, bro. मैं देखना चाहूंगा जल्दी आपको।
1: आपने बताया कि कोशिश की कि 2 किलो और कम हो गए।
0: 2 किलो और कम कर लिया आपने? ये कितने वक्त में किया आपने? इसी हफ्ते भर में कर लिया क्या भाई? भैया क्या कर रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? मेरे समझ में आ रहा, कहाँ जाके रुकोगे?
1: लोगों से गालियां खा रहे हैं।
0: अच्छा क्यों?
1: तो आपने कहा ऑनलाइन खाए, हाँ तो कमेंट्स खा रहे हैं। अच्छा, ये कह सकते हैं।
0: तो आप कैसे डील करते हैं भाई, आप कैसे डील कर रहे हैं फिर?
1: सर बेसिकली आपकी बात सही है कि वो हमारे कस्टमर ही है।
0: हाँ
1: ठीक है।
0: हाँ
1: आपने हर कमेंट को अगर आप पॉजिटिव वे में लेना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव होगा।
0: हाँ
1: लेकिन अगर आप अगेंस्ट जाना शुरू कर देंगे तो बेसिकली आप अपने लोगों को दूर करना शुरू कर देंगे।
0: हाँ।
1: तो अगर अपने आप को ग्रोथ करना है ऑनलाइन में,
0: हाँ,
1: तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेने पड़ेंगे।
0: दोनों के लिए तैयार रहिए। हर कोई खुश नहीं रहेगा, हर कोई खुश नहीं रहेगा आपसे, साफ सीधी बात है।
1: नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, आपको जेस्चर अच्छा ही रखना पड़ेगा। कस्टमर कभी खुश रहा है जिंदगी में?
0: कभी नहीं। बात तो सही है।
1: ये लोग जो खानों की वीडियोस डालते हैं, कई लोग तो डालते जो प्रमोटेड होते हैं,
0: सब कुछ करना पड़ेगा अब चाहे ना चाहे, क्योंकि हर कोई खुश नहीं रहेगा और हर कोई दुखी नहीं रहेगा। कोई एक तो अच्छा ही
1: होगा। कभी कोई खुश नहीं
0: रहा। हाँ वो तो है, कुछ भी कर लें आप।
1: ठीक है, तो ऑनलाइन तो आप लोगों को जानते ही नहीं है वो किस कैफियत से आपकी वीडियो देख रहे हैं और किस वीडियो के बाद आपकी वीडियो देख रहा है, ये भी नहीं पता आपको।
0: किस वीडियो के बाद? अरे फवाद भाई, यू डिजर्व इट ब्रो। क्या बात है महीने के बाद बोलिए कौन सी वीडियो के बाद आपकी वीडियो देख रहे हैं, दैट आल्सो मैटर्स भाई। क्या बात है फवाद भाई, वेल डन भाई।
1: तो ऐसे ही चलता है जिंदगी में।
0: हाँ
1: तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेने पड़ेंगे और आगे से कहना पड़ेगा थैंक यू सर,
0: आप बहुत अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे।
0: थैंक यू सो मच फॉर द
1: ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कहते हैं नौकरी की तनखरा की।
0: क्या कहते हैं?
1: नौकरी की तनखरा की।
0: हाँ
1: यानी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो
0: तुम्हें नखरा नहीं होना चाहिए। हाँ साफ सीधी बात है, अग्री भाई, बिल्कुल।
1: ऑनलाइन कंटेंट आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करें कि कुछ ना कुछ तो आएगा।
0: हाँ ये भाई तैयार रहे, यही मेंटेलिटी होनी जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन कॉन्टेंट बनाने की सोच रहे हैं तो भाई तैयार रहो, चारों तरफ से आएंगे लोग और अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, तो ये आपको ये कलरफुल लोगों से बच के रहना पड़ेगा। बच के क्या रहना पड़ेगा, आएंगे बस, तैयार रहो।
1: ट्रेनिंग एंड द क्लास अपॉइंटमेंट ले ले मेरे से आप, प्लीज ओनली कुछ डॉलर्स एंड कोई मसला नहीं
0: जी। थेरेपिस्ट साहब आप कौन सी पार्टी मिलेंगे, कौन सी गुफाएं मिलेंगे बता दीजिएगा, वहीं पहुंचता हूं मैं अभी। आप कुर्सी अपनी लानी है, आपके पास है कुर्सी?
1: बीच साइड
0: व्यू
1: में होगा,
0: बीच साइड में होगा। अरे वाह वाह वाह फवाद भाई, लेकिन बात भाई सेंस वाली करके गए, माशाल्लाह क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू फवाद भाई, बहुत प्यार।
1: वीडियो कहाँ की है सर?
0: वीडियो कहाँ की है मतलब? मैं को कौन सा वीडियो भेज दिया भाई? मैं भी अपने व्हाट्सएप चेक करने वाला। नहीं, आज की स्टोरी भाई फवाद भाई छोटी सी है, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन आपको सीरियसली गाड़ी रुकवा देगी आपकी, ऐसी कहानी है भाई।
1: ठीक है सर, वैसे
0: रुकी है। बस सुनो, अभी सुनाता हूँ आपको, बस शुरू कर रहा हूँ मैं बस। ठीक है भाई, बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। फवाद भाई की बात, एक तो कमेंट जरूर पढ़ देता हूँ मैं। कमाल भाई वालेकुम अस्सलाम, और एक और मैसेज है, इग्नोर द बैड कमेंट्स एंड मूव ऑन। असद भाई ने मैसेज किया है। असद भाई के बाद इरफान भाई का मैसेज है, आई कीप कमेंटिंग नेगेटिव ऑनलाइन फॉर न्यू रेस्टोरेंट्स अंटिल दे कॉल मी एंड ऑफर फ्री फूड डिलीवरीज टू माय होम। कह रहे हैं मैं तब तक रेस्टोरेंट वालों को नेगेटिव कमेंट देता हूं जब तक वो मुझे खुद कॉल करके ना कह दें कि आपकी तो फूड डिलीवरी हम करेंगे सर। अरे इरफान क्या खाओगे, मेरी जान के अलावा सालन खाओगे? हैं, मेरा जिगर तो खा लिया तुमने, सालन भी ले लो, कहाँ है तुम्हारा घर? अरे तो बेसिकली इरफान भाई से बच के रहिए कुल मिला के। ये एक मैसेज है इश्तियाक उस्मानी भाई के, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आज मैं लेट ट्यून किया, कोई दिक्कत नहीं भाई। कहते हैं मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस भी इसी से रिलेटेड है, मैंने रिसेंटली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। वेरी गुड मेरे भाई, लिखते हैं 2 महीने में वीडियोस को 10,000 से लेकर 5 लाख तक व्यूज़ मिले, भाई बहुत ही बढ़िया। आगे लिखते हैं, साथ में कुछ हेटर्स भी आते हैं जो लैंग्वेज एक्सेंट या बैकग्राउंड को लेकर ट्रोल करते हैं, लेकिन मेरा सिंपल रूल है, हेटर्स को इग्नोर करो और अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि जिस दिन आपने हर कॉमेंट को जवाब देना शुरू कर

दिया, उस दिन आपका फोकस अपने करियर से हट जाएगा। उसको बोलने दो, अपना काम करते रहो, करियर कमेंट से नहीं कंसिस्टेंसी से बनता है। मेरा भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू इश्ताक उस्मानी भाई, सो प्राउड ऑफ यू भाई के लिए उड़ रहा है भाई, बनाते रहने का वीडियो भाई, छोड़ने का नहीं एकदम, बिल्कुल बनाते रहो भाई। और आगे लिखते हैं, मैं इंडिया से और मेरे कमेंट्स में ये भी बहुत आता है, अच्छा ख़राब नहीं लगता मुझे, अच्छा लोग समझते हैं आप बांग्लादेश से हैं, फ़ायदा हो जाता है, कहते सपोर्ट आ जाता है, फ़ायदा मिल जाता है कहते हैं बांग्लादेशी से सो स्वीट। भाई मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा था लोग कन्फ्यूज से, ये है किधर से ये इंडिया से है कि पाकिस्तान से है, और उस कन्फ्यूजन को मैं कभी क्लियर नहीं करता, कभी क्लियर नहीं करता, क्योंकि देखो आप तो मुझे जानते हो मैं कहाँ से हूँ, ठीक है, पर वो जो लोग बाहर सुनते हैं ना, स्पेन वगैरह इन सब जगहों से मैसेजेस आते हैं जो इंडियंस और पाकिस्तानी से, दे गेट कन्फ्यूज्ड, और वो बड़ी प्यारी कन्फ्यूजन है, आई लेट देम बी, सोचते रहो भाई वो इसी मिस्ट्री में खोते रहते हैं और वीडियो देखते रहते हैं। एक मैसेज है, नौकरी ते के नखरा की है, हाँ यही एग्जैक्टली उस्मान भाई, और बताओ उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। और सजीव तो सर कह रहे हैं, रेस्टोरेंट को नेगेटिव कमेंट देना फ्री में खाना भेजने तक, माशाल्लाह क्या आइडिया है इरफान भाई। सजीव तो सर इंस्पायर हो चुके हैं, इरफान भाई आपने ज़िंदगी बदल दी है मेरी और सजीव तो सर की, अब हम दोनों यही करने वाले हैं, हम क्यों मेहनत करें हैं? किचन क्यों ख़राब करें कह रहे हैं मैंने कितनी दफ़ा बिरयानी मंगवाई है विद एक्स्ट्रा चिकन, इरफान भाई सुधर जाओ यार एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, हाँ बताइए भाई क्या हाल है। ये जो मैसेज किया है इन आलम साहब ने, ये क्या है, बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा थैंक यू सो मच मेरे भाई, अच्छा थैंक यू सो मच, तारीफ ही करी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका कमेंट, अभी दिल खोल के पढ़ता हूँ मैं, ज़रा कहानी की तरफ पढ़ाऊँ और सुनिएगा ज़रूर। एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम, इरफान भाई का तरीका अपना भाई मत अपनाना, डोंट ट्राई दिस एट होम, वो तो इरफान भाई पूरी दुनिया से बदला ले रहे हैं, आपने देखा एक विजिलेंटी होता है, एक विजिलेंटी होता है सबके बीच में ना, यू नो बैटमैन, बैटमैन इरफान भाई इज बैटमैन फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज़ ऑल्सो बैटमैन। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि दिन में वो ब्रूस वेन है, ठीक है, तो ये वो ब्रूस वेन है जिनकी गाड़ी के नंबर का मजाक उड़ा दिया, तो ये बाद में घर में जाके बैटमैन बन जाते हैं, फिर कॉस्ट्यूम पहन के दुनिया भर से बदला लेते हैं हमारे इरफान भाई इज एक्चुअली बैटमैन, मिस्ट्री सॉल्व्ड कह रहे एक बार एक बिरयानी से रबर बैंड निकला था, मैंने खूब क्लास लिया, अरे बेचारा जिसे ये भेजा होगा उसे पता नहीं था, मैं उसके बिहाफ पे माफी मांगता हूँ आपसे अरे भाई कहते फ्री क्या, फ्री रेस्टोरेंट जाके सबने खाना खाया। इरफान भाई की तरकीबें बहुत अलग हैं इनसे ज़रा संभल के रहें, 666-221-07 नंबर है भाई। और एक गाना चलेगा बटियाला, और इसके बाद मिलते हैं सीधा कहानी के साथ। तो आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, छोटी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट डेफिनेटली एक बहुत बहुत पावरफुल स्टोरी है, एंड याद रहेगी आपको, मतलब आपको ये याद रहेगा कि संडे की शुरुआत कबीर ने बहुत बढ़िया कराई है, इस बात की पूरी गारंटी है। और एक दूसरी लैंग्वेज में शेर व शायरी सुनना और समझ में आ जाना बहुत कमाल का होता है। ये वाला गाना आप सुन के देखिए, जरूर नहीं सुना है, बहुत बहुत प्यारी राइटिंग है, बहुत प्यारी राइटिंग है भाई, डाना न्योली वाला और एक्सवीर ग्रेवाल, मगा जी सुन के देखो, मजा आ जाएंगे आपको। 7:30 हो लिए भाई, उसकी गली ना जानती थी, एक था मागा जी, गुड मॉर्निंग, ईसा लागे रोग मेरे, गाने के उस पार मिलते हैं भाई।

ओए होए होए होए भाई साहब, राइटिंग देख रहे हैं आप, वजन देख रहे हैं आप, मीने भीतर बन जा मोटिवेशन वाला गाना भाई, ऐसा लग गया भाई, मतलब बहुत बढ़िया राइटिंग करी है डांडा भाई ने और एक्स ग्रेवल, मजा आ गया। अब क्योंकि वक्त कहानी का है तो थैंक यू सो मच। एक भाई ने बड़ा कमाल का मैसेज किया, पढ़ दूंगा, पहले मैं आतिफ भाई लिखते हैं, इरफान भाई अगर पिट जाए तो ब्रूस वेन से ब्रूस्ड वेन हो जाएंगे। भाई एक नंबर बात गई, भाई एक नंबर पंच बहुत बढ़िया था, और कहीं ना कहीं मैं ये रैप लिखते हुए कभी ना कभी यूज़ करूंगा भाई। मैं एक मैसेज, सलाम अलैकुम जनाब, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच उज़ैर इकबाल साहब। अच्छा अब वक्त है आज के किस्से का, एज आई मैंशन अर्लियर, जो लोग लाइव सुन रहे हैं पहली बार तो मैसेज कर दें, एंड आज का किस्सा छोटा है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका, पर आपको मज़ा पूरा आएगा इस बात की तो पूरी गारंटी आज, ठीक है। सो क्या ये गाना सरवर भाई के लिए था, है सरवर भाई के लिए क्यों था, सरवर भाई का तो लेने देने नहीं इस गाने से, अरे क्यों। एनीवे, सो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस गाने का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा, लेकिन अच्छा किस्सा भी एकदम असली है एंड बहुत बहुत अलग किस्म का है। तो मैं शुरू कर चुका हूं, आप भी रेडी हो जाइए, चलो जी वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। सो जो आज का किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं आपको वक्त में बहुत बहुत पीछे ले चलता हूं। लेट्स गो टू 1970 में जरा चलते। मार्च की 12 तारीख थी और अपने घर पे थी लीसा कूपर। लीसा कूपर जो थी अपने लिविंग रूम में आराम कर रही थी, इनका घर था डेटोना बीच फ्लोरिडा में। उस वक्त लिविंग रूम में उनके साथ उनके हस्बैंड थे और दो बच्चे थे। बच्चे जो थे वो बोर्ड गेमिंग्स में लगे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली फोन नहीं था तो बोर्ड गेमिंग ही होती थी, तो वो बोर्ड गेम्स खेल रहे थे। और जो उनके हस्बैंड थे लीजा के, वो आराम से कोने में काउच पे बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे और बस बिल्कुल शांति चल रही थी, बच्चों की आवाज़ और उनके हस्बैंड।

उनके न्यूज़पेपर पढ़ने के पास। इट वॉज अ वेरी चिल्ड आउट डे, ज़्यादा कुछ काम था नहीं, छुट्टी लेके बैठे थे उनके हस्बैंड। और ऐसे में क्या हुआ, लीज़ा को जो है अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी, और वो उस वक्त किचन में गई थी और वो आवाज़ कॉन्स्टेंटली आ रही थी, और ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई घंटी बजा रहा हो, और वो किचन में सी चिड़चिड़े मूड में हो रही थी। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, अरे ये कौन है इस टाइम, कौन घंटी बजा रहा है। लिविंग रूम में बैठे हुए उनके पति और बच्चे दोनों कंफ्यूज से हैं क्या हो गया, और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन घंटी बजा रहा है, हमें तो कोई घंटी सुनाई नहीं थी। फिर उन्होंने बोला, अरे बंद करो यार, कौन है ये, बाहर देखो जाके। उन्होंने अपने हस्बैंड को चिल्ला के बोला, बाहर जाके देखो कौन है ये, कौन बार बार घंटी बजा रहा है। हस्बैंड ने बोला, कोई घंटी नहीं बजा रहा, क्या हो गया। और वो गए अंदर, बोला, लीज़ा नोबडी इज रिंगिंग अ बेल और समथिंग, कुछ भी नहीं है, क्या हो गया। और लीज़ा ने बोला, तुम लोग प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ, प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज मजाक मत करो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। एंड बच्चे भी कंफ्यूज, पति भी कंफ्यूज, अरे क्या हो गया, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। देन इसके कुछ दिनों तक तो शांति रही, फिर तारीख आई 15 मार्च की, संडे का दिन था, अब तो बिल्कुल ही छुट्टी है, किसी को छुट्टी लेने की जरूरत भी नहीं है। इट वॉज अ नाइस चिल्ड आउट डे अगेन। अगेन उनके हस्बैंड से वो आराम से बैठ के कुछ पढ़ाई कर रहे थे, साथ में अखबार भी पढ़ रहे थे और कुछ ढूंढ रहे थे सॉल्विंग पजल्स। उस टाइम पे अखबारों में पजल सॉल्व करने का बहुत शौक होता था, अभी भी होता है लोगों को, विच इज़ अ वेरी गुड हैबिट एनीवे। और बच्चे इस वक्त जो थे बस एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, जैसे बच्चे होते ही हैं। तो लीज़ा के सर में बहुत ज़बरदस्त शदीद दर्द हो रहा था, सर पकड़ के बैठी थी वो, मगर लग रहा था ये दर्द नॉर्मल वाला नहीं है। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने एक तो सर दर्द की दवाइयाँ ली, ऊपर से उनके डेंटल का इशू और चल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था लगातार, तो उस चक्कर में उनका सर का दर्द अलग ही था, अलग लेवल पे। वो था ना ब्लाइंडिंग पेन, जब आपकी आपसे आँखें नहीं खोली जाती, वैसा वाला ब्लाइंडिंग पेन उनको हो रहा था। तो वो लेट गई आराम से और आँख बंद करके बस वेट कर रही थी कि अभी मुझे आराम आ जाएगा, अभी नींद आ जाएगी। फिर एकदम से जैसे उन्होंने आँख बंद करी, लीज़ा को आवाज़ आई गाने की। पहले तो धीरे आवाज आ रही थी, फिर समझ में आया किसी ने रेडियो ऑन किया, और फिर बहुत जोर से साउंड आने लगी ऑर्केस्ट्रा की, और ये साउंड बड़ी अग्रेसिव थी, वो तो नहीं मार्चिंग वाली साउंड, 1 2 3 4 बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, तो बहुत ही ग्लेयरिंग, बहुत ही अग्रेसिव मार्चिंग साउंड चल रही थी और ऑर्केस्ट्रा बज रहा था पूरा का पूरा, और ऊपर से उनके सर में दर्द हो रहा था। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने दोनों बेटियों की तरफ, एक बेटा जो था वो रेडियो के बिल्कुल साइड में बैठा हुआ था। तो उससे बोला, सुनो रेडियो बंद करो, रेडियो बंद करो, मामा के सर में दर्द है ना, बंद करो रेडियो। और वो जो बेटा था जो रेडियो के साइड में था, वो कह रहा था, मामा कौन सा रेडियो बंद करूं। और वो चिल्लाई जा रही है उस पर, बोली, मजाक मजाक हो गया तुम्हारा, रेडियो बंद करो, अभी बोला ना बेटा बंद करो, ऐसे मजाक नहीं करते। लेकिन बेटा कंफ्यूज है कि कौन किधर क्या, रेडियो तो बंद पड़ा है। एंड लीज़ा वॉज अनॉयड, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि मेरा बेटा है मुझसे मजाक कर रहा है। वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी, उन्हें आवाज भी आ रही है और चिड़ भी रही हैं, शी कुडंट स्टैंड। उन्होंने कहा, भाई बहुत हो, वो उठी चिड़चिड़ाते हुए, अपने सर को मसलते हुए पूरे हाथों से, और खुद जाके रेडियो की तरफ बढ़ी बंद करने के लिए। पर जब वो रेडियो की तरफ बढ़ी, शी रियलाइज कि सच में रेडियो तो बंद है, उनका बेटा सही कह रहा है, रेडियो तो बंद है। एंड इट डिडंट मेक एनी सेंस। उनके सर में दर्द भी था और गाना भी बज रहा था उनके दिमाग में, एंड शी कुडंट फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ी देर में वो गाना फिर से रुक गया। लीज़ा वॉज फ्रोजन इन शॉक, और उनके साथ साथ ऑब्वियसली उनके घर पे उनके हस्बैंड और बच्चे दोनों ही उतने शॉक थे कि ये क्या हुआ अचानक से लीज़ा को। हस्बैंड ने पूछा भी कि क्या हुआ लीज़ा, तो उन्होंने बोला, तुम लोग बाप बेटे सब मिलके प्रैंक कर रहे हो ना। लेकिन लीज़ा के हस्बैंड ने बोला, लीज़ा सच में मुझे नहीं पता तुम क्या किस बारे में बात कर रही हो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके हिसाब से क्या, वो सब कह रहे थे कि कोई म्यूजिक बज ही नहीं रहा है, एंड देयर इज नो वे, तो कहां से क्यों सुनाई दे रहा है। एंड ये बहुत जारिंग, बहुत वियर्ड सा था। तो लीज़ा को भी लगा कि अब तीन लोग तो गलत हो नहीं सकते, उनके दो बेटे और उनके हस्बैंड। श्योर सो शी डिसाइडेड कि भाई मैं शायद इमेजिन ही कर रही हूँ, मे बी आई एम द रॉन्ग पर्सन। उन्होंने आंखें बंद करी वापस काउच पे जाके, फिर वही आवाज़ अखबार की और बच्चों के खेलने की, एंड शी डिसाइडेड कि व्हाटएवर इट इज़ आई डोंट केयर।

प्रैंक है तो है, नहीं है तो नहीं है, और वो आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। बट अगले ही दिन व्हेन शी वोक अप विद अ साउंड, एक माइल्ड साउंड जो बार बार आ रही थी उनको, और वो फिर से सोच रही थी कि ये हो ना हो घर वाले उनके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत अगली काइंड ऑफ ह्यूमर है जहाँ पर मजाक की थोड़ी बाउंड्री क्रॉस हो रही है। एंड वो बार बार चिल्ला रही थी अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे, एंड उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये तीनों मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे। एक हफ्ता बीत गया एंड वो किचन में थी, स्क्रैम्बल्ड एग्स बना रही थी, फैमिली डिनर टेबल पे वेट कर रही थी कि ब्रेकफास्ट मिलेगा भी आने वाला है। पर कुकिंग के दौरान ही जब वो कुकिंग कर रही थी तो लीजा को बेल और चाइम की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, काफ़ी अब्रप्टली सुनाई दे रही थी, था म्यूजिक ही और समझ में आ रहा था किसी किस्म का फेस्टिव म्यूजिक है। उन्होंने किचन में से आवाज़ लगाई, अपनी फैमिली से पूछा कौन प्ले कर रहा है अब, कम ऑन, कौन बताएगा तुम तीनों में से, दिस इज टू मच, और वो चिल्ला रही थी। तीनों ने बोला कौन सा म्यूजिक, उनके हस्बैंड ने बोला लीजा व्हाट इज रॉन्ग विद यू, बट उन्हें बार बार बार बार बार बार ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो क्या करे। अब बच्चे जो थे वो मजाक भी बनाने लगे थे, यू नो छोटे बच्चे थे वो मजाक बना रहे, मम्मा आज कौन सा सॉन्ग चल रहा है आपके दिमाग में, मम्मा आज क्या आवाजें आ रही हैं। शी गॉट द जोक, आई मीन माँ है, अब इतना जोक तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। शी अंडरस्टूड के बच्चे मजाक कर रहे हैं, पर हंसने के साथ साथ वो अंदर से दुखी भी थी बिकॉज उनके दिमाग में म्यूजिक कॉन्स्टेंटली बज रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे जो उनके सेंसरी परसेप्शन हैं वो चेंज हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कभी ये म्यूजिक बहुत लो वॉल्यूम पर है, कभी बहुत हाई है, और उनका सर बहुत दर्द कर रहा है। उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि मैं, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आई हैव टू सी अ डॉक्टर, एंड शी वेंट, अपने फिजिशियन से मिली। फिजिशियन ने भी कहा कि दवाई ले लो, नॉर्मल दवाइयाँ दी जो वो ओवर द काउंटर भी ले सकती थी, बट उन्होंने बताया डॉक्टर यू डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल कानों के पास आके मेरे म्यूज़िक बजा रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को। डॉक्टर ने बोला ठीक है लीजा, ऐसा होता है, यू आर अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड शुरुआत से, जैसे आपने बताया, और आपका इमेजिनेशन बहुत हाई है, कुछ लोगों को चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं तो कुछ लोगों को क्लियरली सुनाई देती हैं, हो सकता है। और उन्होंने भी, डॉक्टर ने मजाक करते हुए लीजा से बोला, हो सकता है कि आपके अंदर एक म्यूजिशियन हो लीजा, यू नेवर नो कि आप साउंड को, एजोनेंस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, यू माइट एज वेल मेक अ करियर आउट ऑफ इट, तुम इससे करियर बना सकती हो। लीजा डॉक्टर के सामने बैठ के सोच रही थी कि अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, इससे मैं करियर कैसे बना लूँ, व्हाट आर यू सेइंग। पर वो चुप रहे, उन्होंने अपने आप पे काबू किया, उन्होंने बोला डॉक्टर सी आप समझ नहीं रहे, आप मेरी जगह होते और ऐसे सर में दर्द हो रहा हो तो आप मुझे करियर बनाने की सलाह देते। डॉक्टर ने कहा ओके रिलैक्स, हम कुछ स्कैन्स करते एंड वी विल सी, ठीक है। उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, सारे टेस्ट करने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। लीजा वाज कंफ्यूज्ड कि इतनी बड़ी बात हो रही है मेरे साथ और सब कुछ नॉर्मल आ कैसे रहा है। लीजा ने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एक पार्टी रखी थी अपने घर पे, एंड पार्टी में उनके दोस्त अहबाब सब वहां पर मौजूद थे, उनके हस्बैंड और उनके दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे इस पार्टी के लिए। ये पार्टी का कोई रीजन नहीं था, लीजा जस्ट वॉन्टेड टू गेट अवे, मतलब अपनी दुनिया से अलग, चाह रही थी कि लोग आ जाएंगे तो शायद दिमाग बट जाएगा, हम लोग कोशिश करते हैं ना थोड़ा दिमाग को भटकाने की, तो वही उनकी भी कोशिश थी। तो लोग आए, लोगों ने म्यूजिक चलाया और 1970s का म्यूजिक, थोड़ा सा बूम बैट टाइप बीट होती थी, बूम बैट आप सर्च कर लीजिएगा, एक अलग किस्म की बीट होती है जो थोड़ा रेट्रो साउंड करती है, तो वो म्यूजिक लोग बजा रहे थे। एंड वो म्यूजिक पे लीजा पहले तो डांस कर रही थी, थोड़ी थिरक रही थी, एंड शी वाज सिंगिंग अलोंग, लेकिन पर साथ साथ उनके माइंड में एक अलग ही ट्रैक बज रहा था। जस्ट इमेजिन कि आप अभी जो है किशोरदा को सुन रहे हैं, बट अचानक से एकदम से प्लग इन करके सोनू निगम का गाना आपके दिमाग में बजने लग जाए तो व्हाट विल हैपन, बिल्कुल ऐसा ही कुछ लीजा के साथ हो रहा था। तो उस पार्टी में somebody was playing a track जो कि 1950s का कोई हिट गाना था, और वो सुनते सुनते साथ में इनफैक्ट गाते गाते 1970 का यानी करंट डेट का गाना चलने लगा, और वो कंफ्यूज थे कि दो दो गाने कहाँ से चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि अच्छा आप लोग मिक्स कर रहे हैं दोनों गानों को, तो लोग बोल रहे कौन सा गाना मिक्स कर रहे हैं।

क्या क्या हुआ लीजा, दिस इज अ 1950s हिट, कौन सा गाना? बाकी सब जो थिरक रहे थे उनको एक गाना सुनाई दे रहा था, लीजा को पूरे पूरे दो गाने सुनाई दे रहे थे। एंड अब लीजा को लगा था कि शायद शी इज लूजिंग हर माइंड कंप्लीटली, उनकी नींदें उड़ चुकी थी एंड शी कुड नॉट ब्रीद प्रॉपरली, स्लीप प्रॉपरली, क्योंकि वो जब भी कोशिश करें बीच में पता नहीं क्या होता था, ऐसा लगता था कि बस ये गाना बंद नहीं होगा, मुझे सहना ही पड़ेगा। ऐसा हो गया था ना कि जब वो चलती हुई कहीं जा रही होती थी या बैठी होती थी, वो वेट कर रही होती थी कि कब ये गाना मेरे दिमाग में बजना शुरू होगा और तब मैं सोने की कोशिश करूंगी। यू नो हाउ मॉर्बिड दैट इज, कितना वियर्ड है ये, कितना अजीब है। उन्हें इस कदर आदत हो चुकी थी इस चीज़ की कि वो सोचती थी कि अगर मैं सोने गई और तब ये दिमाग में मेरे गाना बजा तो मैं वापस उठ जाऊंगी, तो उससे बेहतर है कि पहले गाना बजना शुरू हो जाए उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। एंड समटाइम्स होता ये था कि मुझे सोचती थी, वो हो जाता था कि म्यूजिक चला और म्यूजिक चलते चलते उन्हें नींद आ गई, बिकॉज इतनी यूज्ड हो चुकी थी वो। और कभी कभार बेचारी कोशिश करती थी बैठे बैठे कि अब चलो गाना बजेगा दिमाग में, उसके बाद ही मैं सोने जाऊंगी, लेकिन पूरी रात कोई गाना नहीं बजता था। एंड शी वॉज लाइक कन्फ्यूज, कह रहे अब चल क्यों नहीं रहा, अब चल क्यों नहीं रहा। उन्हें अपनी बीमारी की आदत हो चुकी थी, ऑफकोर्स उनके आसपास के लोग बहुत परेशान थे इस चीज़ से। उन्हें पहले लग रहा था कि लीजा शायद ड्रामा कर रही है, क्योंकि ऐसा कुछ किसी ने सुना नहीं था, देखा नहीं था, दिस इज 1970s। आज भी अगर कोई ऐसा बोलेगा तो आप उसे शायद मेंटल स्टेट में ना होने का बोल देंगे, हम और आप भी यही बोलेंगे। तो 1970 तो यू कैन इमेजिन, हर तरकीब लगा ली लीजा ने लेकिन नथिंग वॉज वर्किंग आउट। उन्होंने एक रिवर्स थेरेपी अपनाने की कोशिश करी। अब उनको नींद तब आने लगती थी जब म्यूजिक बजता था, तो उन्होंने रेडियो को अपने कानों के पास में रखना शुरू कर दिया कि मैं अपने पास में रेडियो रखती हूँ सोने से पहले, उसको थोड़ा सा लो वॉल्यूम पर रखूंगी और जब साउंड आएगा तो मुझे जल्दी नींद आ जाएगी। और ऐसा कुछ दिनों तक चलता भी रहा, बट देन अप्रैल महीने के खत्म होते होते दो दो गाने एक साथ बजने लगते थे, तो अब क्या कैसे झेला जाए समझ के पार हो रहा था। मई की स्टार्टिंग में लेकिन कुछ अलग हुआ। लीजा जो थी अपना सर पकड़े हुए डिनर टेबल पे बैठी हुई थी और एकदम से उन्होंने देखा, बिकॉज इट वॉज संडे मॉर्निंग, उनके हस्बैंड भागते हुए आए बेडरूम से, उनके हाथ में एक अखबार था और वो अखबार लेकर आए और बोले लीजा लीजा लीजा लीजा मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लीजा ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज तुम क्या बात करो, क्या समझ में आ गया तुम्हारे, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और उनके हस्बैंड ने बोला लीजा मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें ये क्यों सुनाई दे रहा है, यस मैंने सॉल्व कर लिया है। लीजा वाज लाइक क्या क्यों क्यों सुनाई दे रहा है। एंड जब उन्होंने ये बताया और ये बताया कि उन्होंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा है तो लीजा वाज शॉक्ड। उसके बाद लीजा ने एक बहुत ही स्पेसिफिक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक किया एंड उन्होंने एक पेड एड भी दिया न्यूज़पेपर में, एक रिक्वेस्ट डाली, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हुआ ये कि लीजा कोई अपने दिमाग को लूज नहीं करेंगी, शी वॉज नॉट गोइंग क्रेजी। उन्हें जो गाने सुनाई दे रहे थे वो उनके डेंटल वर्क की वजह से सुनाई दे रहे थे। समझाता हूं कैसे। बेसिकली मेटल फ्लिंग्स और जो क्राउन्स दांतों में लगाए जाते हैं वो लीजा के लगाए गए थे, तो उनके जो क्राउन और जो फिलिंग्स थी वो थोड़े ढीले पड़ गए थे। तो होता क्या है, अगर ठीक ठाक भरा हुआ हो, ज्यादा फिलिंग हो और क्राउन ठीक से ना हो, तो कुछ केसेस में आपका जो मुंह है वो रेडियो की तरह हो जाता है। कुछ केसेस में जिसमें मेटल डेंटल फिलिंग्स होती हैं और क्राउन्स होते हैं वो एक स्मॉल रेडियो वेव डिटेक्टर बन जाते हैं, लिटरली छोटे रेडियो वेव डिटेक्टर जो रेडियो के फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं। अगर फिलिंग लूज है या राइट टाइप ऑफ मेटल्स हैं उसके अंदर, तो रेडियो वेव से क्योंकि पकड़ लिया रेडियो वेव को तो फीलिंग वाइब्रेट होने लगती है क्योंकि थोड़ी ढीली है, तो वाइब्रेट जब होती है तो उसकी वजह से आपका स्कल, आपका भेजा

0: इसके अंदर समझ लीजिए कि एक स्पीकर की तरह काम करने लगता है और गाना बजने लगता है। तो लीजा एक्चुअली में असली म्यूजिक ही सुन रही थी, एक असली रेडियो, पर वो जो प्रोजेक्शन हो रहा था वो गाने का, वो उनके दांतों के जरिए हो रहा था। एंड ये मेडिकली पॉसिबल है, इट इज राइट देयर। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये बहुत बहुत बहुत बहुत रेयर है, बहुत कम ऐसा होता है। मगर लीजा के केस में एक बहुत अच्छी बात ये थी कि उनके हस्बैंड क्योंकि अखबार डेली पढ़ा करते थे, तो अखबार में ऐसे ही केस के बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ था जो उनके हस्बैंड ने देखा। और जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा ये तो मेरी वाइफ के साथ हो रहा है। एंड इत्तफाक इतना खूबसूरत था कि उन्होंने ये चीज अपनी बीवी को जाके बताई और रिकमेंड करी, और फिर जाके डेंटिस्ट ने उनके क्राउन को रिप्लेस किया। लेकिन म्यूजिक सिर्फ कम हुआ, गया अभी भी नहीं, बीच बीच में अलग अलग स्टेशन के गाने उनके दांत पे, दांत से उनके स्कल में बजते रहे। अब दूसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग, लीजा ने लिटरली परेशान होकर न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया, पेड ऐड, लिटरली पे किया उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि मेरे साथ ये परेशानी है तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि ये वाला गाना प्लीज़ कोई रिक्वेस्ट ना करे क्योंकि मैं पागल हो जाती हूँ, ये गाना बजने लगता है। तो ये उन्हें लगा था ये चीज़ काम करेगी, लोग देखेंगे, बट नो बडी केयर्ड। सब ऑब्वियसली कोई मानने को तैयार नहीं था कैसा होता है, मगर उनके साथ ये हो रहा था। एंड पीरियोडिकली अपनी पूरी ज़िंदगी में लीजा ये सुनती ही रहीं। हालांकि अभी उनके जो क्राउन था दांत का वो काफ़ी ठीक कर दिया गया था, मगर बीच बीच में वो फ्रीक्वेंसी, वो वेव्स पकड़ता था रेडियो की, और उनके दिमाग में जो स्पीकर की तरह काम कर रहा था, गाने बजते रहे लाइफ टाइम। दिस इज द स्टोरी ऑफ लीजा कूपर। एंड आप, एंड मैं नहीं जानता आपने इससे पहले ऐसी कहानी सुनी नहीं सुनी, दिस मेरा ये पहली बार था भाई। और आप बताइएगा कि आपको ये किस्सा लगा तो लगा कैसा, आपके हवाले है। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। नाउ डू लेट मी नो कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्या मैसेज है, सोफे की तरफ, मतलब डोंट से कोने पड़े थे सोफे की तरफ मैं समझा नहीं। अच्छा, तो आप ये कैसा लगा आप ये बताइए, सीरियसली ये छोटी कहानी है जी, ये छोटी कहानी है, कौन है भाई साहब उस्मान भाई, तो छोटी नहीं है कहानी है भाई, लंबी चाहिए कहानी और छोटी चाहिए, कल से चार मिनट वाली उस्मान भाई को भेज देना कहानी। तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम, और एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग अमन भाई, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, आपका वॉइस सुन लेता, अभी सुन लेता हूँ। एंड अजहर भाई ने बहुत ही अच्छा खासा मैसेज किया है, ये मैं सुनता हूँ भाई, अभी एक मैं कॉल उठा लेता हूँ फिर आपका पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी भाई, वालेकुम अस्सलाम, बताइए
1: कबीर भाई कैसे हैं आप, सब खैरियत
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह खानी भाई, बताइए
1: कबीर भाई। कबीर भाई आप स्टोरी को छोड़ दे, स्टोरी को एक साइड में रख दे, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि आपका सुनाने का जो तरीका है
0: जी,
1: आप यकीन करें कि लोग कानों से सुनते हैं और हम लोग दिल से सुनते हैं।
0: थैंक यू सो मच खादिम भाई, बहुत
1: कमाल की स्टोरी, कमाल की, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी। ड्यूटी में हूँ, नहीं तो मैं बात थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाता था, लेकिन कमाल की स्टोरी, बहुत शुक्रिया जी,
0: जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: अल्लाह खुश रखे।
0: वालेकुम सलाम। तो इनके बाद एक मैसेज है मजहरुद्दीन साहब का, उन्होंने अच्छा खासा मैसेज किया, पढ़ देता हूँ, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, एक्चुअली आई वेंट थ्रू द सेम एक्सपीरियंस अबाउट 3-4 years अगो, आए आपके साथ हुआ ये, लिखते हैं, आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ यूजिंग एयरबड्स टू क्लीन माई ईयर्स, ठीक है, वेन एवर दे फेल्ट इची, अच्छा एयरबड्स यूज करते थे और थोड़ा इची फील होता था तो इस्तेमाल करते थे, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द एयर वैक्स आई वॉज अनोइंगली पुशिंग इट डीपर इनसाइड, भाई ध्यान रखें जो भी लोग यूज करें, आई लिखते हैं, ओवर टाइम द वैक्स अक्यूमुलेटेड नियर माई ईयर ड्रम बिकेम वेरी hard and dry and started causing a strange knock sound, especially at night, sometimes around 2-3 a.m. I would think someone was working in the garage downstairs. This continued for 6 months to a year, and strangely I noticed it mainly when I was here, not when I went home. अच्छा आगे लिखते हैं, finally I visited an ENT specialist. He found a large amount of very hard compacted air wax stuck close to my eardrum. Whenever sound or vibrations reached it, it was causing that knocking sensation and sound. After that, ENT specialist strictly advised me never to put earbuds inside my ears. Since then, I stopped using them and I'm careful not to let air wax build up for a long time. So that was my experience. I really liked your story today because it reminded me of what I went through. So I thought I would share it with you. Bye.

0: Hey, thank you so much for sharing, Mazharuddin bhai. Mazhar bhai, thank you so much for sharing this. I never knew ke ye alag alag tarike se log experience karte hain. But I'm glad ki aapne share kari kahani. Uske liye bahut mohabbat bhai ko. Thank you so much, bhai. Assalamu alaikum.
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बढ़िया कमाल भाई, आप सुनाइए भाई, क्या हाल है भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है भाई, कह दूं कि ये कहानी झूठ है यार भाई?
0: एकदम सच है भाई,
1: सच्ची कहानी की नहीं है,
0: एकदम सच है,
1: तो कंफ्यूजिंग हो रही है भाई।
0: ये एकदम सच्ची कहानी है भाई।
1: तो बीच में आपने एक दिमाग की कहानी सुनाया था कि उसके दिमाग में बज रहा था, तो उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम था, उसने म्यूजिक तक भी जो उससे बनाई थी मालूम है?
0: या मुझे याद है। तो ये
1: याद है ना,
0: ये वाली कहानी कैसे लगी आपको?
1: ये वाली कहानी बहुत सस्पेंस वाली थी भाई, मेरे को लगता है कि बाद में इसी तरह समझ लो कि वो दांतों जो है जासूसी के लिए इस्तेमाल जो किया था ना स्पाई वाले, मेरे को लगता है इसके बाद ही ये ट्राई हुआ है।
0: नहीं, आप सोचिए कितनी कितनी अजीब चीज है ये, वाइब्रेशन से कितना कुछ इफेक्ट पड़ता है।
1: अजीब बताइए, इतना खतरनाक है कि आप किसी और को सुनाई नहीं दे रहा, खाली आपके दिमाग में बज रहा है, समझ लो आपका दिमाग नहीं हो गया, आपका स्पीकर हो गया।
0: एक्चुअली में स्पीकर की तरह काम करता है वो, जो फीलिंग है, मैंने इसके बारे में डेंटल चीजें पढ़ी ना, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये तो बहुत कॉमन चीज है, मतलब अब होने लगी है लोगों के साथ।
1: मैंने इसलिए सुन रहा कि एक बार डेंटल का वो हुआ था ना, तार लगाते हैं, उससे भी रिएक्शन हुआ था जो है
0: वो ब्रेसेस वाला।
1: आज जो आपने सुनाया तो बहुत खतरनाक है भाई, अब तो लोगों को डरना चाहिए।
0: नहीं नहीं देखो भाई,
1: लगाओ भाई, गाने सुनाई देंगे।
0: देखो मजर भाई ने जो बात बोली कि दांतों में जो एयरबड्स लोग साफ करते हैं ना कानों को, वो भी जरूर ज्यादा साफ नहीं करनी चाहिए। जब आप करेंगे तो ज्यादा पुश ना करें, ख्याल रखें कानों का, ये बड़ा जरूरी है।
1: वो तो है।
0: हाँ, तो थैंक यू सो मच,
1: कहानी बहुत जबरदस्त एक सबक थी लेकिन बहुत खतरनाक भी थी।
0: थैंक यू सो मच भाई, मकसद पूरा हो गया मेरा कमाल भाई, आई एम रियली हैप्पी। ठीक है भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इनके बाद प्रिंस भाई ने मैसेज किया, प्रिंस भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? फिर ये कह रहे कह दो ये स्टोरी झूठी, स्टोरी एकदम एकदम सच्ची। अमन भाई, नाइस स्टोरी फॉर म्यूजिक लवर्स, दिस इज गुड, बट फॉर एंटी लवर्स इज नहीं भाई। म्यूजिक लवर होना हो, जब ऐसे अजाने से गाने बजने लग जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, हुसैन भाई ने मैसेज किया, हुसैन भाई थैंक यू भाई, एक कॉल आ रही है क्या? अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू जनाब, क्या हाल चाल? खैरियत?
0: बढ़िया जज़्बा, बढ़िया भाई, आप सुनाइए भाई।
2: वाह अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया भाई, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप भाइयों की।
0: जी भाई बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप?
2: क्या हाल चाल है भाई, क्या टॉपिक क्या था आज का? मैंने तो लास्ट सुना भाई, तो म्यूजिक
0: टॉपिक को छोड़ दो, म्यूजिक वो सुना, कहानी सुनी नहीं सुनी वो बताओ, टॉपिक को जाने दो।
2: लास्ट सुना है कि दांतों में म्यूजिक बज रहा है भाई।
0: हाँ कहानी
2: कैसे हो सकता है दांतों में, मतलब ये तो है कि सोते में चबड़ चबड़ करते रहे, चन चन चन वो म्यूजिक भी बजाना शुरू कर दिया।
0: कहानी सुनना भाई, ऐसा एक्चुअली में हो चुका है और कई मर्तबा होता भी है, अभी तो खैर बहुत सारे केसेस हैं, आई थिंक 100-200 केसेस हैं अभी भी इस चीज के, ईयर ड्रम साफ करने वालों से लेकर दांत लगवाने तक बहुत सारे मामले हैं भाई।
2: डर लगने लगा अब तो, कान भी साफ नहीं करूंगा तो।
0: ज्यादा भी साफ नहीं कराना चाहिए भाई, मजा ही बताओ, मुझे भी रिसेंटली पता लगा वो अच्छा बहुत लगता है, मजे पूरे आते हैं लेकिन ज्यादा नहीं।
2: ना ना भाई साहब, यार्ड बन जा भले से अंदर,
0: ना ना ना अपना भाई ख्याल रखो। अजस भाई लेट उठे आज मेरे हिसाब से, क्या हुआ आज?
2: नहीं नहीं लेट नहीं उठा यार, आज लेट नहीं उठा मैं था, मगर क्या ना थोड़ा काम में था, इस वजह से टाइम नहीं मिला। अभी भी जो है ना बस मैडम को हॉस्पिटल में उतारा, तो मतलब यार भाई को तो जब सुने।
0: नहीं नहीं ठीक है भाई, बहुत बढ़िया आपने सुना, आज मैं भेजूंगा आपको कहानी, सुन के बताइएगा जरूर।
2: टॉपिक क्या था ये तो बताओ यार, कुछ
0: टॉपिक ये था? नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन ट्रोलर्स जो होते हैं, जो बेचारे अपना करियर शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनको हेट कमेंट्स मिल जाते हैं तो वो अपना करियर छोड़ देते हैं बेचारे, तो शरीफ लोगों की जनता भी है, वो डील नहीं करना चाहते, उन्हें लगता कि यार बहुत ज्यादा हो गया और आने वाली जनरेशन तो बनाएगी ऑनलाइन कॉन्टेंट, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे डील करें इन हेट कॉमेंट्स? मैं ये पूछ रहा
2: हूँ भाई इस चीज के लिए, तो मैं भी देखता हूँ, क्योंकि बहुत से तुम्हें तो पता है मैं कैसे कैसे रील्स देखता हूँ, उसके बाद में कमेंट में ज्यादा तो जो है ना कमेंट ही पढ़ता हूँ, मगर ये चीज भी गलत है यार, अगर कोई कंटेंट शेयर कर रहा है उसकी अगर हिम्मत है, उसकी हिम्मत बढ़ाओ कि हाँ वो थोड़ा बहुत आगे बढ़े, उसको जो है डिसलाइक मत करो कि बिल्कुल ही उसको इतने नेगेटिव वे में जाके तुम परेशान करना, ये चीज अच्छी नहीं है यार।
0: हाँ तो वही ना, डील कैसे किया जाए ये पूछ रहा था मैं लोगों से कि भाई क्या करें, करें क्या, ये था सवाल मेरा,
2: करना क्या चाहिए भाई? अगर ये है ना कि अगर सुनने वाला इंसान होगा तो सुन लेगा, ना सुनने वाला होगा तो रिप्लाई करेगा जरूर।
0: हाँ तो ये आपने तो एक नजरिया बता दिया, मैं कह रहा हूँ करना क्या चाहिए, ये तो हो गया कि सुनने वाले तो करेगा वाले तो करेगा, वो तो वाली वाली बात होगी ना, कैजुअल बात होगी।
2: करना चाहिए भाई साहब, अगर नहीं ले सकता तो छोड़ दे।

0: प्लेटफॉर्म को भाई साहब दूसरा कोई प्लेटफॉर्म पकड़ ले, नहीं तो वैसे भी रिक्शा पकड़ ले और चलाए आराम से भाई।
1: बहुत बढ़िया,
0: रोज के 500-600 रुपए कमाएगा।
1: मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया जेस भाई, जेस भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। जिंगल का वक्त, जिंगल चलाएंगे अब।
0: ओके भाई,
1: ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो जी, जिंगल का वक्त हो गया। आपको कहानी किस तरीके जरूर बताइएगा, 666-22107 पर, 666-22107। हुसैन भाई कह रहे हैं, बीवी का ताना और एफएम का गाना पसंद हो या ना हो सुनना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया मेरा भाई, ये भी सुनो।

0: फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा
2: हाँ जी
1: सुबह सुबह
0: वेक अप
2: भाई कॉल सी आके दिख रही थी मुझे चली गई कहाँ गई एक वैसे यूसुफ भाई कह रहे हैं मैंने पूछा आपका वीकेंड कैसा रहा आप हमेशा से कहते हैं ना कोने जी मैं कोने में पड़ा नहीं था गेम खेला बहुत बढ़िया यूसुफ भाई मजा आ गए सही में मौज आ गए ऐसी स्टोरी थी ना तगड़ी वाली अस्सलाम वालेकुम भाई रेडियो की वॉल्यूम को बंद कर दो हाँ हेलो आपका नाम क्या भाई
3: कैसे कबीर भाई
2: मैं बढ़िया भाई आपका नाम बता दो एक बारी
3: जी
2: अहमद भाई बताइए भाई क्या कहना चाह रहे हैं अहमद भाई
3: कुछ भी नहीं अहमद भाई सुबह सुबह रेडियो खोला तो आप एकदम आप आगे बोलते कि पहले कॉल कर लिया मैं कुछ सुना भी ना क्या क्वेश्चन है
2: अरे भाई ये तो आपकी मोहब्बत है मेरी जान थैंक यू सो मच कि आपने कॉल कर ली भाई कब उठे अभी भी उठे क्या
3: मैं साहब हमारी ड्यूटी वही चूड़ी पुकारने से पहले उड़ जाते चूड़ी पुकारना बन के रात में सोते हम
2: अरे क्या बात है तो पहले सुन लेते भाई तो कुछ कॉन्टेंट वॉन्टेंट पे बात कर लेते अभी तो क्या ही बात करें भाई
3: भाई आपका फोन फिर नहीं लगता ना कबीर भाई
2: भाई तो मैसेज करने का ना मैं कॉल कर लेता भाई पहले तो रेडियो की वॉल्यूम कम करो रेडियो की वॉल्यूम
3: कबीर भाई मैं अभी भी ड्यूटी पे ही हूँ गाड़ी चलाते हुए आपको कॉल कर रहा हूँ मैं
2: अच्छा ऐसा क्या चलो कोई बात
3: नहीं मैसेज नहीं कर सकता ना कबीर भाई
2: कोई बात नहीं कहीं साइड में रोक के मैसेज कर दो कॉल करने के लिए मैं कॉल कर ले तो कोई दिक्कत नहीं
3: साइड में रोक के मैसेज करा बोलते हैं फिर स्टार्ट हो जाते फोन भाई
2: बहाने हैं बहाने भाई मोहब्बत में बहाने भी चलते हैं चलो ये भी हम झेल लेंगे कोई टेंशन नहीं है भाई ठीक है मतलब नहीं भाई कुछ नहीं सब सब हो गया भाई ना ना ना कुछ भी नहीं भाई सब हो गया निपट गया भाई अब भाई आप सुनो मजे से बस ठीक है
3: ठीक है कुछ गाना वगैरह लगा सकते हैं
2: नहीं भाई रिक्वेस्ट स्टार 4 बजे भाई
3: अच्छा ठीक है चलो
2: ओके भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़

0: जमाल को हमारी तरफ से प्यार और मैं बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए भाई।
1: मैं तो सुनने के लिए फोन किया हूँ, आप सुनाओ बोलेंगे तो कैसा काम चलेगा?
0: ऐसे ही चलेगा ना भाई, आप बोलेंगे नहीं तो चलेगा कैसे?
1: वो किसी ने बोला कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके
0: हाँ
1: दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके।
0: ए बॉय। तो जमाल भाई कुछ सुना आपने? आज नहीं सुन पाए कुछ भी।
1: मैं फोन ही किया हूँ इसलिए कि स्टोरी पर एक दो लोगों की बात सुना, तासुरात सिर्फ सुने। मसला यह था कि मैं उठ के वो क्या कहते हैं अपनी गाड़ी थोड़ी लोड करवा रहा था।
0: अच्छा।
1: तो उस टाइम में स्टोरी का कुछ हिस्सा निकल गया।
0: कोई बात
1: तो
0: नहीं।
1: मैं हम्बली रिक्वेस्ट टू यू कि आप जरा प्लीज अपनी उंगलियों को थोड़ी सी जहमत गवारा करने की।
0: कैसी बात कर दी है जमाल भाई, इतनी मोहब्बत से तो यार आपको मैं घर आके कहानी सुना दूंगा भाई, क्या दिक्कत है? सुना मिल जाइए।
1: नसीब
0: ये। और रही जमाल भाई, क्या चल रहा है सुबह सुबह, क्या सीन है, वीकेंड पे क्या किया?
1: बस यार भाई वो तो दिल दुखाने वाली बात करी है भाई अभी।
0: क्यों क्यों क्यों
1: यार, मरहम लगाने की कोशिश।
0: अरे तो अरे जुमे जुमे के दिन तो कुछ क्या होगा भाई, जुमे के दिन क्या किया कुछ खास तो होगा?
1: मैं सुनो ना वो सुबह शाम दिन रात मेरे हिस्से में वो सब वीकेंड छुट्टी का लफ्ज ही निकल गया है। वो मतलब किताब के वो जो वर्क है ना, उस वर्क पे से वो हर्फ मिट गया है। उसकी तबाद फिर से करवानी पड़ेगी, तजदीद की जरूरत है।
0: ओके ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब आप इतनी ज्यादा गाड़ी उर्दू बोल चुके हैं तो मैं इसके आगे क्या ही बोल सकता हूँ। मैं भी एन आइन लगा के बात करूंगा। मैं जमाल भाई चाय पियोगे क्या? अरे यार जमाल भाई कमाल है।
1: सच में मेरे ख्वाब, वो लोग होता है ना कभी कभी आदमी सो जाता है तो कुछ ख्वाब आते हैं, ख्याल आते हैं, इंसान तसव्वुरात की वादी में भटकने का आदी है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मेरे तो ख्वाब में भी लफ्ज छुट्टी नहीं है।
0: अरे जमाल भाई मैं तो ये दुआ करूंगा, ऑपोजिट दुआ करूंगा, छुट्टी तो चलो मिलेगी नहीं मिलेगी वो अल्लाह जानता है, लेकिन आपके काम में अल्लाह मियां बरकत दे और ऐसी बढ़िया रहे आपका काम भाई, रज रज के।
1: आमीन सुम्मा आमीन
0: भाई, यही दुआ भाई।
1: हाँ मगर ये है भाई कि देखिए हाँ। ये लफ्ज मैंने इसलिए नहीं कहा है कि मुझे किसी तरह की हमदर्दी की ख्वाहिशमंद हूँ, नहीं, मैं इस चीज को एंजॉय बहुत तगड़ा कर रहा हूँ, इसी वजह से कर पा रहा हूँ।
0: हाँ वेरी गुड, यही चाहिए, यही जज्बा है मिस्टर जमाल शेख, बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू।
1: नहीं भाई वो हिम्मत हारने वाली टीम में नहीं है, हम आपकी टीम में।
0: ए, ए, जमाल भाई ऐसी बात बताओ, आज की टीम में क्या खाना है, सुबह सुबह क्या है नाश्ता में?
1: सुबह में भाई अभी तो सिर्फ मैंने केला खाया है बस।
0: ये बहुत बढ़िया तरीका, दिन की शुरुआत के लिए अच्छा है।
1: हाँ तो बस क्या कहते हैं अरे आईटी से बिल वगैरह पंच करके जैसे निकले बाहर गाड़ी में बैठे थे, केला हमने खा लिया।
0: हाँ, तो सेकंड राउंड का
1: जो दूसरी चीज खाई है वो मैं बता नहीं सकता।
0: अच्छा ठीक है, वो मैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जवाल, मैं समझ सकता हूँ भाई, दिन का रिचार्ज चाहिए होता है ना, मैं समझ सकता हूँ भाई, दिक्कत कौन है।
1: हाँ वो जरूरी है, थोड़ा पुश करता है वो।
0: जी भाई डबल ए बैटरी है भाई, वो आपकी डबल ए बैटरी है, मैं जानता हूँ भाई।
1: जी भाई तवा ना दरकार होती है ना, मसला ये।
0: उसको भी आपने इतनी खूबसूरती से बता दिया, बहुत बढ़िया जवाल भाई। सही जा रहा हूँ
1: भाई,
0: सही जा रहा
1: हूँ भाई। देखो
0: हाँ
1: मैं तो आपको पहले ही बताया हूँ, एक बार फिर आज दोहरा देता हूँ याद दहानी के तौर पर, कि इंसान को है ना वो किसी ने कहा था कि तुमने अल्फाज के तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते
0: हैं। पिघला दिया आपने भाई साहब, पिघला दिया आपने, क्या बात कर रहे हैं।
1: तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तब बहुत दूर निकल सकते
0: हैं। क्या बात है जवाल भाई यार, आपके लिए भाई एक बजाने दो भाई, जवाल भाई के लिए भाई पब्लिक।
1: बहुत शुक्रिया मेरा भाई। मैं सोचता हूँ कि आपके काम में आजकल मैं हाथ बटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ, कामयाब कितना मुझे पता नहीं।
0: अरे कामयाब है भाई एकदम, आप भी तो डबल ए बैटरी से कम थोड़ी है भाई। फुल चार्ज भाई, फुल चार्ज। लग रहा जमाल भाई हम आपके साथ
1: वाइच मांगता है,
0: वाइच मांगता है भाई, एकदम सही भाई, एकदम सही जमाल भाई, खुश रहिए मेरा
1: बराबर
0: भाई।
1: बोला ना
0: एकदम भाई, फिट्टूस
1: भाई,
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए जमाल भाई,
1: बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
0: ख्याल रखिए भाई, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो जमाल

भाई देखिए ऐसे खुश देखें आपने वहाँ माशाल्लाह मजा आ जाता है सुबह सुबह ऐसी खुशी बिखेर के जाते हैं वो भी गाड़ी उर्दू में। मैं सोच रहा हूँ जमाल भाई से एक दिन आयन लगा लगा के बात करूँगा। आसिफ भाई कह रहे हैं, आसिफ भाई कह रहे हैं भाई हमने तो कुछ नहीं खाया तो मैं क्या करूँ, मेरे जान गा लो। नहीं आसिफ भाई कुछ खाया करो भाई सुबह सुबह, बहुत ज़रूरी है। वालेकुम सलाम। ज़ीशान अहमद साहब ने मैसेज किया है और एक हमारी बहन है मुना, वो कहती हैं कि हेरा फेरी वाली मूवी वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। बेचारा जब जब सुनील शेट्टी वॉज हेयरिंग सब गोलमाले ही वॉज एक्चुअली हेयरिंग इट। ये एक्चुअली में होता भाई, वो जो याद है वो क्या मूवी का नाम था, कमबख्त इश्क नाम था मूवी का, वो पेट में वो गिर जाती है उसकी घड़ी और बजता रहता है। ये सब पता नहीं कैसे होता है, लेकिन ये वाली जो आज मैंने स्टोरी सुनाई ऐसा होता है भाई, ऐसा सच में होता है, दांतों के जरिए भी हो सकता है, जस्ट इमेजिन। और बाकी बात रही है कॉशियस होने की, जो अभी हमारे मजहरुद्दीन भाई गए उनको प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए एयरबड्स से कान साफ करने के लिए ना ज़रा भी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। कुछ आपको अंदर तिजोरी नहीं मिलेगी कानों के, ठीक है। कुछ लोग सफाई करने के चक्कर में ज़्यादा गहरे चले जाते हैं, खजाना मत ढूंढो वो बाहर है, ठीक है। बाकी इशाम साहब वालेकुम अस्सलाम। और अगला गाना भाई, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो है हमेश शमिया और हमारे इमरान हाशमी का, तो ये कॉम्बिनेशन तो सुनना बनता है। ये रिमेंबर दोज डेज जब इमरान हाशमी के चेहरे पर हिमेश शमे की आवाज़ एकदम चिपक जाती थी, लगता था भाई यही गा रहा है। वो दौर कहीं खो गया था, बट इट हैज कम बैक। गन मास्टर G9 भाई, सोना हिमेश शमिया इज बैक ब्रो, क्या बात है, क्या बात है। Combination of Imran Hashmi and Himesh Shamia. भाई ये लुक इमरान हाशमी का रखना पड़ेगा मेरे को, क्या लुक दिया भाई, क्या लुक दिया है। फिर से इमरान हाशमी जो है ट्रैफिक रोक रहे हैं इस गाने में। ब्यूटिफुल ट्रैक भाई, ये लो।

0: कि मेजबान आ गई है। आशीष कौन एंड गन मास्टर जी नाइन से ये गाना एंड 8:19 बाय द क्लॉक। जो आज मैं बात कर रहा था ना उसके प्राइम एग्जांपल है मिशी शमिया। मैं कह रहा था ना कि ट्रोल्स को कैसे हैंडल करें, जो हेट कमेंट करते हैं कैसे, भाई कहते रहिए कुछ भी आप, मिशी शमिया को कहते रहिए। कहाँ पहुंचे आदमी बता आपको भाई, बढ़िया म्यूजिकलिटी है इसकी, ठीक है नाक से गाते हो मानता हूँ सकी भाई, पर है बंदा भाई हिट, ये मानना पड़ेगा। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम प्यारे स्वीट कबीर भाई।
0: भैया आप आपका तो मैंने वो इश्तिहार लगवाया था इश्तिहार मंसूरों में कि हमारे करीम भाई कहीं खो गए, जिन साहब को मिले बाइज्जत बराए करम छोड़ दे हमें। किधर हैं आप
1: भैया, हम आपको कितने मिस करते हैं, आप हमारे दिल में, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। लेकिन हालात कुछ ऐसे आते हैं ना, कि बंदा चाहे भी कॉल नहीं कर सकता, मसला ये नहीं होते नहीं है ना, इस टाइम मौजूद नहीं होते।
0: पर देखिए करीम भाई, मोहब्बत में दूरियां भी जरूरी हैं, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, ये भी हम मान लेते, मोहब्बत थोड़ी खत्म हो गई है।
1: बिल्कुल नहीं, ऐसा हकीकत है ना, ये अल्लाह गवाह है आप हमारे दिल में है।
0: क्या बात है करीम भाई, पर आज कैसे, आज कैसे,
1: आज
0: हाँ बताओ बताओ,
1: किसी की गाड़ी के पीछे, किसी की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाई थी ना, उसने कॉल किया, फोन आया, मैंने कहा उठा लूँ ना उठाऊं, फिर मैंने कहा ओ ये वही बंदा हो सकता है जिधर आपने गाड़ी लगाई।
0: अच्छा,
1: बस उसकी उसकी कॉल से मैं उठा, क्योंकि मैं नमाज पढ़ के फिर सोता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, कभी कभी न्यूज सुन लेता हूँ, कभी कभी गुजर जाता है,
0: ऐसे गुजरने नहीं देना है करीम भाई। देखिए फजर के बाद थोड़ा सा जगना पड़ेगा भाई के लिए आपको, ये तो नहीं चलेगा।
1: आज मैंने कहा उठाऊं, यकीन जानो मैं उठाऊं गाड़ी, देखा मैंने कहा आज भाई से बात हो जाएगी।
0: हाँ ये बढ़िया किया आपने। देखिए करीम भाई मैं मुखालफ हो जाता, आप भी कुछ दिनों तक नहीं सुनते, आप इतनी दूरी भी अच्छी नहीं। और बताइए करीम भाई, आज आज जल्दी उठ गया, चलो अच्छी बात है।
1: कोई मसला ही है ना, वो थोड़ा कभी रात देर तक काम कर लेते हैं, तो सुबह नमाज के बाद इसलिए सोते हैं कि जाहिर है ना, जब सोना वाकई एक चीज है, अगर एक बंदा अपना नींद पूरा कर लेगा तो सेहतमंद रहेगा, वरना सबसे बड़ी जड़ जो है ना कमजोरी का नींद है।
0: चलो ज्ञान तो अच्छा है करीम भाई, लेकिन सुबह थोड़ा जग के सुन लिया करो।
1: हाँ नहीं सर, अभी बस एक एक आदत है मेरा, अगर एक दिन किसी ने उठा लिया ना,
0: हाँ
1: तो फिर मैं इंशाल्लाह रेगुलर उठूंगा।
0: अच्छा ऐसा है क्या?
1: इंशाल्लाह कल भी कॉल आ जाएगी आपके पास।
0: डन है करीम भाई, अब तो नंबर तो है मेरे पास, मैं आपको धनिया बोल दूंगा आपके फोन पे भाई, उठाओ उठा के।
1: मैं कभी कभी चाहता हूँ यार आपसे पर्सनल में, फिर मैं कहा यार भाई का भी पता नहीं कहाँ होगा, बिजी रहता है ना, आप लोगों का भी माशाल्लाह जहनी दबाव है ना।

0: ऐसा कोई जहनी दबाव नहीं है आपका भाई, जहनी दबाव लेता नहीं है ना भाई करीम भाई, बात ये भी तो है।
1: अल्लाह आपको खुश रखे भाई,
0: बहुत
1: भाई से बात भाई। हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू सो मच।
1: और सुनता हूँ सर, बस आप बैठा हूँ अभी गाड़ी में, रेडियो ऑन हो चुकी है सर।
0: नहीं बहुत प्यार, बहुत प्यार करीम भाई, और जब भी आपको मौका लगे जरूर याद कीजिएगा। और थैंक यू सो मच याद करने के लिए।
1: अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे।
0: वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो करीम भाई के बाद एक मैसेज आ रहा है, यूसुफ भाई कहते हैं कि हिमेश रेशमिया की कमबैक की ये फिल्म भी है और राजश्री प्रोडक्शन की ये प्रेम मोलिया भी आ रही है। वो उसका मैंने देखा नहीं है यूसुफ भाई, कुछ आ रहा हो भाई? हमें तो देखो मतलब है इमरान हाशमी आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कह रहे हैं ब्रो चेक चाहत अली खान। आई नो भाई जकी भाई। एक मैसेज तौफीक भाई फिर आ गए, करीम भाई का नंबर, ये फोन डायरेक्टरी बना रहे हो तौफीक भाई? कहाँ से दे दूँ नंबर, वो चला गया नंबर भाई मेरे पैसे नहीं है। एक मैसेज है, क्या जी क्या है, जहनी मरीज बोला भाई ने, अल्फाजो खेल है। चला भाई देखो जलने वालों को क्या सीन रहता है ना चला भाई, अब अभी हम क्या बात कर रहे थे सुबह सुबह ध्यान नहीं देने का, तो जलने वाले जलते रहे ये वाला सीन है तला भाई। तो अंडरस्टैंड माई प्रायोरिटीज, दे आर सेट। शहजाद सलीम क्या कह रहे हैं, गुजारा नहीं होगा करीम भाई, शेखू कौन सा गुजारा। एनीवे मैं ज़रा खबरों की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि कुछ खबरें भी हैं जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। 666-22107 मीनवाइल नंबर है, इस पर भी आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहली खबर है टीम कतर से, टीम कतर से राशिद नवाफ और मुशारे नवाफ ने गोल्ड मेडल जीत लिया है इतिहास में पहली मर्तबा, और इसके लिए बनता भाई। एंड ये गोल्ड मेडल मिला है आफ्टर डिफीटिंग मलेशियन काउंटर पार्ट इन स्ट्रेट सेट्स टुडे, मतलब आज की नहीं कल की बता रहा हूँ। फाइनल जो था वो हुआ एज अ पार्ट ऑफ एची नागोया 2026 एशियन गेम्स, और करंटली ये जापान में हो रहा है और ये कंक्लूड कर दिया गया है और इसमें गोल्ड मेडल लेके आ गए हैं। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। और ये जो कतरी पेयर है इन्होंने जो विक्ट्री सिक्योर करी है फाइनल, बिल्कुल टक्कर का माहौल है, ऐसी बात नहीं है। ऐदान यूनुस और क्रिश्चियन चिंद थे उनके खिलाफ ये सेट जीते हैं 3-6, 3-6, 1 से। इसके अलावा जो अगली खबर है वो है मिनिस्ट्री म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, बिकॉज दे आर स्टेपिंग अप। अब वो लोकल फार्मर्स को और सपोर्ट पहुंचाना चाहते हैं जिसके जरिए अब उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। तो डिजिटली एग्रीकल्चरल जो वाउचर प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है जो कि 75% कवर करेगा कॉस्ट को ऑफ एसेंशियल इनपुट्स, जिसमें सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब कुछ कवर होगा। और कतर चाहता है कि हमेशा से इस बारे में जोर भी दिया गया, इनफैक्ट हमने वीडियोस बनाए, जो डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो और फूड सिक्योरिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाए। सो दैट इज अप ऑन द लिस्ट, जो कि कहता 2030 का जो विजन है उस पर भी, उसकी ब्रांच में भी ये आता है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाए, और साथ में जो फार्मर्स हैं, जो लोकल फार्मर्स हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिले ताकि वो इंडिविजुअली अपने एरियाज को बढ़ा सकें। बाय द वे मोर देन 400 प्रोडक्टिव फार्म्स इससे अभी भी फायदा पा रही हैं इस वाउचर सिस्टम से, एंड दिस विल गो ऑन एंड कवर अ लॉट मोर फार्मर्स इन फ्यूचर। सो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। और इसके अलावा कतर रैपिडली काम कर रहा है रिसाइकलिंग और रीयूज के पर्पज़ पे, इस फिनोमेना पे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेके इस चीज़ को आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो इकोनॉमी है वो काफ़ी एक सर्कुलर इकोनॉमी बन सके, विद मिलियंस टन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जो कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ की बहुत बड़ी परेशानी है। देर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो, कभी आप देखना चाहते हो मैं सजेस्ट करूँगा। एंड उस वेस्ट को रिसाइकल और रीयूज करने के लिए पब्लिक प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको नज़र भी आ जाएंगे। एंड ये कुछ खबरें थी जो आप तक पहुँचानी थी, बाकी कुछ मैसेजेस हैं। क्या कह रहे हैं, डिनचक पूजा, हाँ डिनचक पूजा में चलाने का बहुत मन है मेरा, ये थोड़ा रुक के चलाता हूँ तला भाई, मैं मेरा शो हो जाए 9:30 करीब चलाऊंगा तला भाई, आप सुन लीजिएगा तब। बाकी 666-22107 नंबर है, 666-22107 कहानी के बारे में बोल सकते हैं, और ट्रैफिक कहीं मिल रहा हो तो बोल दीजिएगा। आज बहुत सारे लोग आराम से उठे और जिनकी शिफ्ट 9 वाली है, हाँ भाई आँखें खुल गई, क्या हाल है। दिलों का शूटर है मेरे स्कूटर, दिलों का शूटर, चला भाई के लिए गाना जरूर चलाओ दिलों का शूटर है मेरे स्कूटर, बूम शाकलाका।

हाँ जी, 8:30 हो लिए, धारणा न्यूली वाला और खेड़ डॉलर साइन कृष्णा गाना बूम शाखा लगा, 100 मिलियन क्रॉस कर चुका, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों भाइयों को। हाँ जी, मेरा इंट्रोडक्शन, दिस इज मी।

0: boom kar shake up aankhon mein fire level makeup kal jo khwab the aaj chase up duniya jo bole side mein karke aankhon ko kholo wake up hey doha wala main kabir
1: haan ji
2: yehi kahunga subah subah
0: wake up
3: jaagte raho mere bharose mat raho assalam alaikum हाँ भाई सेकंड शिफ्ट वालों जिनकी ड्यूटी अभी शुरू हुई है आज जो सुबह सुबह नहीं आए थे कैसे हैं अब आँख खुल गई क्या मजे आ रहे हैं वीकेंड की बात अस्सलाम वालेकुम और खादर अब्दुल अदीब लिखते हैं ये कौन है जो इंडियन अपाची को पीछे छोड़ इंडियन अपाची वाज नॉट रियली अ रैपर रैपर R&B करते थे इंडियन अपाची और उसके बाद उन्होंने फिर कभी ऐसा रैप में कदम नहीं रखा तो ये जो जो हिप हॉप है वो बहुत अलग है खादर भाई पर थैंक यू सो मच कहते हैं कबीर भाई आपने दिमाग की रगों को खुलवा दिया थैंक यू सो मच भाई बहुत बहुत प्यार थैंक यू सो मच और एक और भाई ने हाई लिखा भाई हाय हेलो कैसे हैं आप अच्छा कुछ दिन है जो आज के दिन सेलिब्रेट तो नहीं कहूँगा लेकिन इंटरनेशनली मार्क्ड किए गए हैं तो उनको जरा मैं डिस्कश कर लूँ एक भाई खुद आए हैं 8:30 बजे मुझे कह रहे हैं वेलकम बैक मकसूद भाई अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू यू मेरा भाई मैं तो सवेरे से हूँ यहाँ पे बातें देखो

0: अच्छा तो कुछ दिन है इंटरनेशनली जो मार्क किए गए, एक है सिनेमन रोल डे, ट्राई किया कभी आपने? मैंने भी बाद में ट्राई किया भाई, ये सब चीज़ें सिंगल आदमी नहीं ट्राई करता, जब हो जाता ना डबल, जब समझ में आता है कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं। तो सिनेमन रोल डे है आज, इफ़ यू हैवन ट्राइड इट प्लीज ट्राई इट। इसके अलावा है गोल्फ लवर्स डे, पहले बचपन से मुझे लगता है कि गोल्फ बड़ा ही रईसों वाला खेल है, इसलिए मैं इससे 100 मीटर की दूरी बना के रखता हूँ, पर कोशिश करने का बड़ा मन है, एक बार मन तो है कि ट्राई तो करूँ कि गोल्फ है कैसा, हालांकि मुझे पता है कैसा, पर कभी खेला नहीं, कभी ट्राई भी नहीं किया कभी गोल्फ की। भाई मैं माफ़ करता हूँ, माफ़ कर देना अगर मैं गोल्फ की किसी भी टर्म को गलत बोलूँ, बट आई थिंक उसमें बर्डी होता, बर्डी हाँ होता तो है, कुछ तो होता है, देखा है बस, ऐसी दूर से देखा है भाई, टीवी पे देखा है, कभी खेला नहीं है। तो गोल्फ लवर्स डे है आज, और आज है ट्रकर्स डे, जिनने भाई हमारे सारे ट्रक ट्रुक चलाते हैं भाई, सब के लिए है भाई, स्पेशली वो लोग जिनका ये काम होता है कि रात में हाईवे क्रॉस करना है भरे हुए ओवरलोडेड ट्रक के साथ, उनको मेरा सलाम सलूट, एंड प्लीज़ ड्राइव केयरफुली भाई। मैं कौन होता हूँ बताने वाला, खुद ही जानते हैं, बट जस्ट बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा आज है वर्ल्ड एनिमल डे, सारे जानवरों का दिन, और मैं इसी में सजेशन एक दूंगा, लगेगा आपको ये ज्ञान दे रहा है पर ज्ञान ले लो कुछ ना, बहुत प्यारी प्यारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं भाई, अगर चाहिए हो तो मैं आपको दूंगा, देखना आप वर्ल्ड एनिमल डे, इसी बहाने चलते फिरते कभी किश्तों में देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको, मैं सही बता रहा हूँ। इसके अलावा आज है इम्प्रूव योर ऑफिस डे, हैं अच्छा ये वही है, ये वो फैंसी लोगों के लिए, ये कह रहे हैं हमारे आप जो ऑफिस वाले लोग हैं, अपने डेस्क को सजाएं, उस पर अपने नाम लिखें, मोटिवेशन कोई नहीं कर रहा, जो कर रहा है भाई बहुत बढ़िया, मैं आपको सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, बहुत बढ़िया, इतना कर नहीं पाता मैं, इसलिए मैं इस दिन को इतना सीरियसली ले नहीं पाऊँगा, पर ठीक है, इम्प्रूव योर ऑफिस डे आज है, जो अपनी डेस्क को बड़ा प्यार से सजा के रखते हैं। इसके अलावा आज है चेंज अ लाइट डे, आज भाई साहब बल्ब बदलने का दिन भी है, किसने सोचा होगा ये कि बल्ब बदलने का दिन बनाऊंगा मैं आज आज बल्ब बदलने का दिन है, मेरा पता क्या मन है ऑनेस्टली, और मन क्या, अगर मेरे घर वाले भी सुन लेना तो भाई छोड़ेंगे नहीं मुझे, मैंने इतनी सारी लाइटें मंगा के रखी हुई है ना, आप यकीन जानो बहुत लाइटें मंगा रखी हैं भाई मैंने, बहुत लाइटें अभी तक उन्हें लगाया नहीं है, रखी हुई है भाई, आलस आलस और क्या, जिस दिन भाई साहब मेरी अड़गी जे गरारी, फिर मैंने फिर पीछे नहीं हटना है, तो आज बल्ब चेंज करने का दिन है, स्पेशली लाइट चेंज करने का दिन है, और ये दिन को मैं सीरियसली लेना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे घर पे बहुत लाइटें पड़ी हुई है जो मैंने खुद मंगाई है, जो मैंने मंगा के रखी हुई हैं, जो मैंने इसलिए मंगाई थी कि मैं अपना स्मार्ट होम बनाऊँगा, वो 10 मिनट का जोश नहीं होता आपका कि मैं कुछ बदलाव लेके आऊँगा भाई तो वो 10 मिनट का जोश था भाई, जो जोश में मैंने स्मार्ट लाइट्स मंगा ली पड़ी हुई में, वो करूँगा भाई मैं, आपका भाई एक दिन तो ज़रूर करेगा, वो लाइटें ऐसे वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा मैं, और कौन सी लाइटों पे वो जंग लग रहा है भाई, टेंशन थोड़ी है। कहते हैं बल्ब बदलने का दिन, हाँ जी आप बल्ब बदलने का दिन है यूसुफ भाई लिखते हैं, अच्छा बल्ब भी रहा तो भी बदलना है, अच्छा बल्ब रहा तो भी बदल दो आज देखी जाएगी यूसुफ भाई क्या दिक्कत है। खादिर भाई कह रहे हैं ढंग का बल्ब बदलने का डे, हाँ वैसे आई डोंट नो आप कितने लोगों को वो डिजिटल घर बनाने का सपना है, मेरा भाई एक छोटा सा सपना है, भले ही छोटा सा करो, ज़्यादा बड़ा घर मुझे ख्वाहिश है भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बढ़िया है, छोटा सा करो पर उसके अंदर ना मुझे डिजिटल वाला लाइटें लगानी है, डिजिटल मतलब कि मैं बोलूँ अपने फ़ोन से कि भाई बंद कर दे लाइट, बंद हो जाए, वैसा वाला सिस्टम चाहिए, करूँगा ये तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। हाँ तो कह रहे हैं दिमाग का बल्ब, अच्छा दिमाग का बल्ब बदलने का, बदल लो भाई, वैसे भाई वाई सर्वर है, भाई वाई सर्वर भाई ही सेट टू मी आस्क फॉर प्रॉपर नेम, कबीरुल इस्लाम इज़ योर नेम, दिस इज़ ट्रू, नहीं भाई वो उनका मजाक है, मेरा कोई नाम कबीरुल इस्लाम नहीं, वो सर्वर भाई का मजाक है, ये हो चुका भाई, नया ले गया हूँ अब एक मैसेज है मोहसिन भाई का, आ गए प्रेजेंट, वालेकुम अस्सलाम भाई, आज ये रोल नंबर 2 बहुत लेट आए हैं, विच आई अंडरस्टैंड, भाई आज लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यही कुछ दिन हैं जो आज इंटरनेशनली मार्क्ड हैं, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, बाकी तो ट्रैफिक की अपडेट दे दीजिएगा, 666-22107 नंबर है, 666-22107, एंड अगला गाना बिलाल सईद, नेहा कक्कड़,
1: ला ला ला ला ला
0: ला ला ला ला ला, मैसेज व्हाट्सएप वाले पे कॉल नहीं, कॉल कर दूसरा नंबर है 666-22107।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: आज 666-2107 नंबर, प्लीज बताइए कहीं पर ट्रैफिक जैम हो। ट्रैफिक होना मेरे लिए फायदा हो जाता है ना, क्योंकि आप ज्यादा सुन पाते हैं।

ऐसे कैसे जाने दूं, पहले बता दो सी कहीं जा रहे हैं तो कितना ट्रैफिक है क्या है, इतना तो मेरे बताना बनता है जितना मुझे पता लगा होता। तो जकी भाई कह रहे हैं मेरा गाना, भाई आपका गाना मैंने भेज दिया, प्लेलिस्ट में लगेगा इंशाल्लाह, कल सुन लीजिएगा आप, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा तो क्या है, अभी जो है अगर आप दुहेल की तरफ हैं और ये अरब लीग स्ट्रीट की तरफ से जा रहे हैं तो आपको हल्का फुल्का ट्रांजेक्शन की तरफ मतलब सिग्नल की तरफ आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर आप उनाइजा स्ट्रीट की तरफ है तो यहाँ पे बड़ा सुकून है, कोई ट्रैफिक ट्रूफिक कुछ नहीं है। अगर आप मरखिया स्ट्रीट से होते हुए जा रहे हैं तो अल इस्तिक़लाल स्ट्रीट की तरफ आपको ट्रैफिक मिलेगा, वादी अल सैल की तरफ ट्रैफिक है तमाम सिग्नलों पर। तो इन तमाम सिग्नलों पर से निकलते हुए आपका ट्रैफिक वेलकम करता हुआ नजर आ जाएगा। वादी मुशारिफ की तरफ अगर आप हैं, इनफैक्ट मुशारिफ का जो एरिया है वहाँ पे अल दीवान स्ट्रीट की तरफ थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, वरना तो क्लियर दिख रहा है। अल खैल स्ट्रीट की तरफ जाएंगे, इंटरनल स्ट्रीट की तरफ थोड़ा ट्रैफिक है, अल रयान रोड की तरफ से आते हुए आपको हल्का सा जाम मिलेगा। रौदा दरखैल स्ट्रीट यानी मेरे घर के पास में बे रिंग रोड एकदम बढ़िया चल रहा है आज तो, मगर सी रिंग रोड थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है 5-6 मिनट की, और डी रिंग रोड तो आपको बढ़िया रोक के रखेगा। तो आप तैयार हो जाइए इन तमाम ट्रैफिक्स के लिए, ट्रैफिक्स के लिए अरे कुछ भी बोल देता हूँ कभी कभार, मजा आ जाता है मुझे। एनीवे अगर आप कॉर्निश की तरफ भी हैं तो अभी तो इतना ट्रैफिक नहीं नज़र आ रहा है, हो सकता है कि मेरा ही नेट आगे पीछे हो रहा हो, तो बता दीजिएगा अगर आपको कहीं भी ट्रैफिक मिल रहा है। कॉर्निश रोड इज़ क्लियर, ये अच्छा हुआ मैसेज कर दिया आपने खादिर भाई, इसलिए मैं जानना चाह रहा था, थैंक यू सो मच। तो कॉर्निश रोड एकदम क्लियर चल रहा है मामला, लेकिन एज आई कैन सी ये और कहीं है क्या, इतना कुछ नहीं भाई आज, सब एकदम ट्रैफिक ही नहीं है, तो मुझे सुन कौन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है मुझे, ये क्या चक्कर है भाई ट्रैफिक चाहिए मुझे, मेरी रोजी और रोटी दोनों का क्या होगा। अब बाय द वे सी रिंग रोड से अगर आप होते हुए जा रही हैं एंड इफ यू आर कनेक्टिंग सी रिंग रोड से होते हुए अलसद की तरफ जाएंगे, अलसद स्ट्रीट की तरफ स्पेशली, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा। इब्न सीना स्ट्रीट की तरफ से होते हुए जाएंगे, ये अपना जो रौदा खैल का PSCC है इसके सामने से आपको ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ बढ़िया जाम लगना शुरू हो चुका है। और सलवा रोड की तरफ कटते हुए अगर आप जा रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप जायदा ब्रिज की तरफ से जाएंगे तो आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, हालांकि 5-6 मिनट का स्टॉप उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में लेके चलिएगा बिफोर यू कमिट कि मैं बस अभी आया, ये सब कमिटमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है। 666-22-107 नंबर है। अब बाकी बता दें क्या कर रहे हैं आप, क्या प्लान है, वैसे भी संडे कोई प्लान तो होगा नहीं, सारे प्लान तो धरे के धरे रह जाते हैं, वीकेंड पे ये करूंगा नहीं वो करूंगा, कर लिया कुछ कर पाए हैं, अगली बार देखेंगे कोई बात नहीं सरताज रश्मित कौर जी मागा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, हाल किया

مستر تاج رشمي بكار الرفطار. सलवार रोड की तरफ है ट्रैफिक में कैंदिया, एक भाई ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच भाई बताने के लिए। अच्छा ट्रैफिक ट्रैफिक तो अपनी जगह है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट 8:50, तो अभी आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ जाएगा। इजाज़त लेने से पहले हफ्ता भी ये अभी शुरू ही हुआ है, सो थैंक यू सो मच कि आप सुबह से लेकर इतना एंटरटेन करते हैं भाई, मजा आ जाते हैं। तो ऐसे ना बस जुड़े रहिए। आई अंडरस्टैंड कि आज जो है सब एकदम ऐसे रहते हैं, हाँ भाई बोलो क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, पर एनर्जी आती रहेगी इंशाल्लाह, बढ़ते रहेंगे। अब इसी के साथ आगे एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं क्या अलसद में हूँ, आपको सुन रहा था कुछ देर पहले, अभी घर पहुँचा हूँ भाई। स्टोरी वॉज वंडरफुल एंड आई वॉज peacefully listening to it until you mentioned the song in her head. And मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मैं भी earbuds से कान बहुत तरतीब करके साफ करता था, अब करना छोड़ दिया है, वरना मेरे कानों में भी गाने बजते रहते। By the way, कबीर भाई, I'm also a silent listener and keep doing what you're doing. Thank you so much भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नाम नहीं बताया, अपना नाम बता दिया करें आप, इतनी प्यारी बात करके आपने नाम नहीं बताया तो गलत बात है। एनीवे, 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल मेरे पास एक बहुत ही शॉकिंग गाने है, कल भी एक शॉकिंग गानी है, एंड यू विल बी लाइक कि ये क्या था। तो कल कमज़ोर दिल वाले दूर रहें क्योंकि कल है भाई, कल बढ़िया वाली गानी है, यू विल बी सरप्राइज्ड, ऐसी कहानी है। ठीक है, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह फेवरी 6 बजे। फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद ज़रूरी है। मा सलामा।

0: कतर गल्फ कप के फाइनल से बाहर हो चुका है। कतर की टीम सऊदी अरब के खिलाफ सेमीफाइनल में 0-0 ड्रॉ के बाद पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हार गई। इस शिकस्त के साथ कतर का फाइनल में पहुंचने का सफर खत्म हो गया है। यूएई गल्फ कप के फाइनल में पहुंच गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ओमान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। यूएई की तरफ से उस्मैन कैमारा ने 22वें मिनट में फैसलाकुन गोल स्कोर किया। फाइनल में यूएई का मुकाबला अब सऊदी अरब से होगा। कतर ने पैडल में तारीखी गोल्ड मेडल जीत लिया है। कतर के राशिद नवाफ और मिशरी नवाफ ने मलेशिया की जोड़ी को 6-3, 6-1 से हराकर एशियन गेम्स की तारीख का पहला पैडल गोल्ड मेडल जीता। यह कतर के लिए एक यादगार कामयाबी है। बीच वॉलीबॉल में कतर की गोल्ड मेडल हैट्रिक। कतर के शरीफ यूनुस और अहमद तिजान ने इंडोनेशिया को फाइनल में 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ कतर ने एशियन गेम्स में लगातार तीसरी बार बीच वॉलीबॉल का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं रेसलिंग में कतर के शाहीन मोहम्मद ने ब्रॉन्ज जीता है। कतर के रेसलर शाहीन मोहम्मद ने 77 किलोग्राम ग्रेको रोमन रेसलिंग कंपटीशन में इंडोनेशिया के एंडिका सुलेमान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स में कतर की मेडल टैली 16 तक पहुंच गई, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आइए अब रुक करते हैं न्यूज हेडलाइंस का।
1: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
2: साहिब सुमू अमीर ने मुमलिकत लिसोथो के बादशाह को उनके मुल्क की यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम इरसाल किया है। कतर रेड क्रीसेंट सोसाइटी ने जलजले से निमटने की तैयारी के मौजू पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज़ के ज़ेर एहतमाम दो रोज़ा इलाकाई मवासलाती वर्कशॉप की मेज़बानी की। कतर फाउंडेशन फॉर सोशल वर्क के फैमिली कंसल्टिंग सेंटर विफाक की जानिब से ख़ानदानी हम आहंगी के मौजू पर कल आर्ट नुमाइश रवाबित मुनक़िद की गई, जो आज इतवार के रोज़ तक जारी रहेगी। और गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फिजाई हमलों और फायरिंग के नतीजे में 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। उर्दू रेडियो एफ एम 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी मावू नूर और न्यूज़ स्टूडियो से सरवर मिर्ज़ा, युसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफ एम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामीन, प्रोग्राम आज की दुआ में हम अहले ईमान की एक नहायत पुर असर दुआ पेश करेंगे जो कुरान करीम की सूरतुल फुरकान में मजकूर है। ये दुआ हमें अल्लाह के अजाब से डरने और उसकी पनाह मांगने का सबक देती है। मतन दुआ यूं है, ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما। اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، بے شک اس کا عذاب بہت چمٹ جانے والا اور نہایت سخت ہے، یعنی ایسا چمٹ جانے والا اور دائمی عذاب جس سے نجات ممکن نہیں۔ اہل ایمان کو یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ نیک اعمال اور عبادات کے باوجود جہنم کے خوف سے لرزتے رہنا چاہیے۔ عبادت کے باوجود خوف خدا ضروری ہے۔ کامل ایمان والے اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جہنم سے پناہ مانگنا ایمان کی علامت ہے، کیونکہ کوئی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتا، بلکہ بھروسہ تو

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऐसे नाम की जिन्होंने पहले बैट से अपने मुल्क का नाम रोशन किया और अब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई जिम्मेदारी संभाल रहा है। यह नाम है तमीम इकबाल खान। तमीम इकबाल बांग्लादेश के सबसे मशहूर ओपनिंग बैटर्स में शुमार होते हैं। 1989 में चट्टोग्राम में पैदा होने वाले तमीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2007 में कदम रखा। उनकी एग्रेसिव बैटिंग, कवर ड्राइव्स और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ कॉन्फिडेंस ने बहुत जल्द उन्हें बांग्लादेश नेशनल टीम का अहम हिस्सा बना दिया था। तमीम ने अपने इंटरनेशनल करियर में 70 टेस्ट, 243 ODIs और 78 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और तीनों फॉर्मेट्स में मिलाकर 15,249 रन बनाए। देखा जाए तो वह बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन का माइलस्टोन क्रॉस किया। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 सेंचुरीज भी शामिल हैं। सो दैट्स एन एस्टाउंडिंग फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ बांग्लादेशी फॉर्मर क्रिकेटर हु हैज बिकम अ रोल मॉडल और अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। तमीम की खास बात ये थी कि वो तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले बांग्लादेश के पहले और अब तक वाहिद बैटर हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका हाई स्कोर 206 है जबकि ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 158 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स खेली। T20 इंटरनेशनल में भी तमीम ने सेंचुरी बनाई और 2016 T20 वर्ल्ड कप में ओमान के खिलाफ 103 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। आपने सुना 2016, विच मीन्स तमीम इकबाल इज नॉट अ पास्ट क्रिकेटर। आई मीन कहने का मतलब है कि 40 साल पुरानी बात नहीं है, बहुत बहुत रीसेंट बात है। और ही हैज बिकम द यंगेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट। एंड ये जो सिलेक्शन, जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो पिछले साल किया गया था। एंड उसके बाद अगर हाल के परफॉर्मेंस की बात करूँ फॉर बांग्लादेश क्रिकेट टीम, तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने कई ऐसे यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं जिससे ये साबित होता है कि तमीम इकबाल की लीडरशिप सही रास्ते पर है, सही डायरेक्शन पर है। 2011 में तमीम इकबाल को विजिटिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऑनर भी मिला और ये अवार्ड उनके इंटरनेशनल करियर का अहम अचीवमेंट्स में से एक है। बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए तमीम इकबाल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे बल्कि कप्तान भी रहे। 2019 से 2023 तक उन्होंने बांग्लादेश की ODI टीम की कप्तानी की और उनकी लीडरशिप में बांग्लादेश ने 35 ODIs में 21 मैचेस में फतेह हासिल की। 2023 में तमीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी 17 साल की सर्विसेज को सैल्यूट किया। उनका इंटरनेशनल करियर 2007 से 2023 तक वाज स्प्रेड आउट एंड 16 सालों में तमीम इकबाल ने एस्टैब्लिश किया कि साउथ एशियन, स्पेशली बांग्लादेश जैसे एक मुल्क से जो क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करती है, वहाँ पर ये एक तरह का डैशिंग ओपनर, स्टाइलिश बैट्समैन तमीम इकबाल डिफाइंस एवरी मोमेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट ग्लोरी। स्पेशली मुझे याद आता है 2007 वर्ल्ड कप में जब तमीम इकबाल की उस शानदार पारी ने इंडिया को मात दी थी। आई मीन बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया। दैट वाज अ शॉकिंग रिजल्ट एंड अ बिग रिजल्ट फ्रॉम बांग्लादेश क्रिकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन तमीम इकबाल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 2026 में उनकी क्रिकेट जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। पहले वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एडहॉक कमेटी के हेड बने और फिर 7 जून 2026 को BCB के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। तमीम BCB के 18th प्रेसिडेंट और 6th इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। यानी जिस शख्स ने सालों तक बांग्लादेश के लिए क्रीज पर ओपनिंग की, वो अब बोर्ड रूम में बांग्लादेश क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए फैसला कर रहा है। तमीम इकबाल का सफ़र एक क्रिकेटर से एडमिनिस्ट्रेटर तक का सफ़र है और ये एक तरफ उनके नाम हज़ारों इंटरनेशनल रन्स हैं तो 25 सेंचुरीज और कप्तानी का तजुर्बा है और दूसरी तरफ उनके सामने अब बांग्लादेश क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लीड करने की जिम्मेदारी है। तमीम इकबाल बांग्लादेश का स्टार ओपनर, फॉर्मर कप्तान और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर। एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और आज भी कमाल की वेबसाइट्स हैं, मजेदार वेबसाइट्स हैं। और आज मैंने सोचा कि ना सिर्फ काम आने वाली वेबसाइट्स मगर ऐसी हों जिनमें नॉस्टैल्जिया छुपा हो। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होनी चाहिए ना जो आपको बैठे बैठे कहें यार ये तो बड़ी कमाल की चीज बता दी, इसने बढ़िया टाइम पास हो रहा है मेरा। तो आज टाइम पास करने के लिए भी कुछ चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। नंबर वन ऑन द लिस्ट वेबसाइट का नाम है cartoons.me, पर ये C से शुरू नहीं होता कार्टून्स, ये K से शुरू होता है। सो KARTOONS.ME, cartoons.ME। अब क्या होगा, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको अपने बचपन के बहुत सारे कार्टून्स नजर आएंगे जो आप लिटरली देख सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं, माँ बाप मैंने देखे तो चाहते हैं बच्चों को वो कार्टून्स दिखाएं जो 1990s में अर्ली 2000s में आते थे, क्योंकि उन कार्टून्स में कुछ बात थी यार, वो एक चार्म थी उसमें, बड़ी कमाल की चीज थी। अभी तो पर वो जो कार्टून्स थे वो देखने लायक थे, उसमें आप कुछ भी देख सकते हैं और पूरी लिस्ट आपके सामने जाएगी, जस्ट हैव टू क्लिक एंड प्ले इजीली। सो cartoons.me पे आप जा सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए नहीं, यू कैन आल्सो जस्ट सिट टाइम पास कर रहे हैं एंड यू जस्ट वांट टू वॉच। मैं इस पर करेज द काउंटली डॉग देख के आया हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। सो KARTOONS.ME, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली जो वेबसाइट है ये बड़ी काम की है, इसका नाम है लूट और आगे हाइफन या डैश drop.io, ध्यान से सुनिएगा गलती हो सकती है। लूट LOOT, लूट फिर डैश फिर ड्रॉप DROP.IO, ये सुनिएगा गौर से। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको दुनिया जहां में जितने भी स्टार्टअप्स बनाए गए बिजनेस आइडियाज के तौर पे आगे ले जाया गया और वो फेल हो गए, तो वो कहां फेल हुए और क्या सही कर सकते थे वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये लिटरली केस स्टडी है और बड़ी बड़ी कमाल की चीज है। आपको कोई बिजनेस आइडिया आप देख सकते हैं, बिजनेस आइडिया ऐसा किसी ने कभी ट्राई किया है, और अगर किसी ने ट्राई किया है तो क्या वो फेल हुआ है, और अगर फेल हुआ है तो कहां फेल हुआ है, और अगर फेल हो गया ये करके तो क्या करके वो कामयाब हो सकता था, सारी डिटेल आपको मिलेगी। सो प्लानिंग समथिंग इन फ्यूचर, आई थिंक बहुत बहुत कमाल की चीज है। मुझे भी दो तीन चीजें नजर आई, हालांकि मेरे अंदर बिजनेस एक्यूमन माइनस में है तो मैं सोच भी नहीं सकता, बट यू हैव इट इन यू, तो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं वेबसाइट का नाम फिर से बता देता हूँ, लूट LOOT डैश ड्रॉप DROP.IO, ठीक है। चलो अब आए हो तो तीसरी भी सुन लो। अगली वेबसाइट का नाम है myemulator.cc, myemulator EMULATOR, myemulator.cc। इसमें जब आप जाएंगे तो निंटेंडो के बहुत सारे गेम्स जो अर्ली एरा के थे, जो रेट्रो गेम्स हैं, वो सारे के सारे आप इजीली खेल सकते हैं। छुट्टियों का खेल है भाई ये, बहुत बढ़िया टाइम पास है, मुझे बड़ा मजा आया इसको एक्सप्लोर करने में, एंड आई लव्ड इट कि मैं इजीली सुपर मारियो ब्रदर्स 3 खेल सकता हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि उसमें उसकी पूंछ होती थी मारियो की, उड़ा करता था, जिन्होंने मारियो को बहुत दिल लगा के प्यार किया वही जानते हैं। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, मतलब खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो खबर देखिए बड़ी सिंपल सी है लेकिन बड़ी कमाल की है, बड़ी हैरान कर देने वाली है। दुनिया में अब वायर्ड एयरबड्स आना शुरू हो चुके हैं। पता नहीं आपको इस बारे में अभी जानकारी मिली है कि नहीं, पर रिसेंट

0: टाइम्स में देखा होगा कि लोग जो हैं वो वायरलेस एयरबड्स छोड़ के वायर्ड वाले की तरफ जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसका सबूत दो, मैं आपको सबूत देता हूं। बोस जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, वो वायर्ड हेडसेट बना चुकी है, मार्केट में उतार दिया, एंड पीपल आर लविंग इट। तो ये जो पीछे पहिया घूमा है, ये भी बड़ी कमाल की चीज है। पीपल आर नाउ विलिंग टू बाय वायर्ड हेडसेट, क्योंकि लग रहा है भाई यही सही है। वो जो आपको याद है मॉडर्नाइज सीडी प्लेयर का जमाना था, तो बोस ने कहा कि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो उन्होंने इसके अंदर काफी सारी चीजें डाली हैं। एयरबड्स में कनेक्टिविटी दी है, 4.2 फुट लॉन्ग USB-C केबल, और इसमें काफी कंट्रोल्स हैं जो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे, और ANC सेटिंग मोड भी है, तो क्वाइट मोड भी है, अवेयर मोड भी है, और नॉइस कैंसिलेशन भी है। तो कमाल है यार ये, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और इसमें लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट भी डाला है ताकि नॉइस कैंसिलेशन आपको उतनी ही लेवल की मिल सके। एक्सलेंट, ये थी अपडेट, मिलते हैं अगली वाली में, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट।
1: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
2: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद RJ फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।
5: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं, और उम्मीद है कि इन स्कैम्स के शो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये थोड़ा सा इमोशनल फ्रॉड अवेयरनेस का या स्कैम का शो हो सकता है, क्योंकि ये आपके हेल्थ से, आपके फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके रिलेटिव के हेल्थ से रिलेटेड ये स्कैम हो सकता है। ये स्कैम क्या है? इस स्कैम का नाम है ट्रीटमेंट स्कैम। दोस्तों ये स्कैम काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। ट्रीटमेंट स्कैम एक निहायत ही संगीन धोखा है एक्चुअली, जहां प्रेडेटरी स्कैमर्स ऐसे मजबूर लोगों को टारगेट करते हैं जो किसी बीमारी के इलाज की तलाश में होते हैं। ये स्कैमर्स ऑनलाइन अनऑथराइज्ड हेल्थ सर्विसेज, फेक क्लिनिकल स्कीम्स और ऐसी मेडिकल कंसल्टेशंस मार्केटिंग के जरिए बेचते हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपने झूठे दावों को सच साबित करने के लिए वो नकली क्लिनिकल ट्रायल्स रिजल्ट और धोखेबाज मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हैं। बेबस और परेशान मरीज मदद की उम्मीद में अपनी जेब से बहुत बड़ी रकम ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो बिल्कुल बेअसर होती हैं, जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंट होलिस्टिक क्लिनिकल रिजर्वेशंस या नकली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इस फ्रॉड की वजह से ना सिर्फ लोगों का बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है, बल्कि मरीजों का असली और प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत डिले हो जाता है, जो उनकी जान के लिए खतरनाक साबित होता है। दोस्तों कई बार ये स्कैमर्स मरीज के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, या फिर उनके इस तरह के इलाज जो बहुत ज्यादा महंगे हैं उनको सस्ता करके भी दिखाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मरीज के मेडिसिन को सस्ता कर बेचते भी हैं। और ये प्रोडक्ट यानी कि मेडिसिन आपके पास आता भी है, लेकिन ये नकली भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने के कुछ तरीके भी हैं, और जो सबसे पहला तरीका है वो है हमेशा सर्टिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाना। किसी भी ऑनलाइन मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, हमेशा किसी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ही अपना इलाज करवाएं। कई बार ऑनलाइन कोई डॉक्टर बना बैठा है और कहता है कि भाई वो किसी प्रॉब्लम को या किसी मेडिकल या किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम को आसानी से सही कर सकता है, वो सिर्फ 200 या 500 कतरी रियाल लेता है या फिर इंडियन रुपीस लेता है या पाकिस्तानी रुपीस लेता है, और वो आपको आसानी से ट्रीट कर सकता है ऑनलाइन। वो आपसे बैठेगा, बात करेगा, वो कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जो कि डॉक्टर ही इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप इस तरह के झांसे में आ जाते हैं और फिर आप उनको कंसल्टेशन फीस दे देते हैं। उसके बाद आप जो उन्होंने मेडिसिन बताया है आप वो मेडिसिन भी खरीद लाते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह से आपको फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होता है। मेडिसिन का पैसा आ जाता है, उन्होंने जो आपको मेडिसिन के बारे में बताया वो भी इलॉजिकल किसी भी तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके हेल्थ को सही नहीं करता है, और फिर आपके साथ हो जाता है स्कैम, क्योंकि आप

0: कंसल्टेशन फीस भी दे चुके हैं। उसके अलावा मेरेकल क्योर्स और झूठे दावों से भी बचे। अगर कोई प्रोडक्ट या क्लिनिक अचानक हर तरह की पुरानी या लाइलाज बीमारियों को फौरन ठीक करने का दावा करे तो होशियार हो जाए। मेडिकल साइंस में हर चीज का एक प्रॉपर और सर्टिफाइड प्रोसीजर होता है। तीसरा तरीका है इन स्कैम से बचने का, हेल्थ अथॉरिटीज की वेरिफिकेशन करना। किसी भी नई दवा, हेल्थ प्रोडक्ट या क्लिनिक की रिजर्वेशन करने से पहले चेक करें कि क्या वो आपके मुल्क की ऑफिशियल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं। दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को स्कैम होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शो से काफी कुछ पता चला होगा कि कैसे ये हेल्थ को लेकर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको टारगेट कर सकते हैं, आपको स्कैम कर सकते हैं, आपकी जेब को, आपकी हेल्थ को लेकर खाली कर सकते हैं। इसलिए आज के वक्त में नए जमाने के नए स्कैम को समझने के लिए जरूरी है कि आप होशियार रहें और सुनते रहें एफएम 107, क्योंकि इस तरह के स्कैम के बारे में हर रोज मैं आपको इत्तला करता हूं और आगाह करता हूं, और आप उम्मीद है कि होशियार भी बन रहे होंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको अलर्ट करते हुए। सुनते रहें एफएम 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन एफ एम 107, दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।
5: हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नासिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने बैंकिंग का पूरा तरीका बदल दिया है। जी हाँ, आज का टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। कुछ साल पहले तक बैंक का कोई भी काम करने के लिए हमें ब्रांच पे जाना पड़ता था। अकाउंट बैलेंस चेक करना हो, फंड्स ट्रांसफर करने हो, बिल्स पेमेंट करनी हो या फिर स्टेटमेंट हासिल करना हो, हर काम के लिए लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन आज डिजिटल बैंकिंग ने ये सब काम हमारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर तक पहुँचा दिए। सिंपल वर्ड्स में कहें, डिजिटल बैंकिंग उन तमाम बैंकिंग सर्विसेज को कहते हैं जो इंटरनेट या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आपका ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है, अकाउंट मैनेजमेंट है, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट है, लोन एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, सब कुछ शामिल है। आजकल सिर्फ कुछ क्लिक्स के जरिए आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा है कन्वीनियंस। आपको बैंक के वर्किंग आवर्स का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप घर पर हो, ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, बैंकिंग सर्विसेज आपके स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होती हैं। और दूसरा बड़ा फायदा है टाइम सेविंग। जी हाँ, बैंक ब्रांचेस में जाकर फॉर्म फिल करना, लंबी क्यूज में वेट करना अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना? लेकिन डिजिटल बैंकिंग इस प्रोसेस को फास्ट और कन्वीनियंट बनाता है। तीसरा बड़ा बेनिफिट है फाइनेंशियल कंट्रोल। जी हाँ, मोबाइल एप्स और इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप हर ट्रांजेक्शन मॉनिटर कर सकते हैं। आपको अपने खर्चों और अपनी सेविंग्स का बेहतर अंदाजा रहता है, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद

मददगार साबित होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डिजिटल बैंकिंग हर किसी के लिए इक्वली यूजफुल है? जवाब है हाँ और ना, आई मीन जरूरी नहीं है। मास पॉपुलेशन के लिए डिजिटल बैंकिंग बहुत फायदेमंद साबित हुई है, खास तौर पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो, बिजनेस ओनर्स हो, वो लोग जो बिजी रूटीन रखते हैं उनके लिए ऑनलाइन बैंकिंग एक बहुत ही कन्वीनियंट सोल्यूशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रूरल एरियाज की या दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की, तो उनके लिए डिजिटल बैंकिंग आज भी चैलेंज है। डिजिटल बैंकिंग की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज उन तक आसानी से पहुंच भी नहीं पाती, और इस तरह से उन्हें बैंक को विजिट करना है, उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होता, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो या वो लोग जो स्मार्टफोन्स या मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करने की आदत नहीं रखते, उनके लिए डिजिटल बैंकिंग मुश्किल है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस का भी एक बड़ा इशू है। अगर नेटवर्क वीक हो या इंटरनेट अवेलेबल ना हो तो डिजिटल ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और डिजिटल बैंकिंग ने वाकई बैंकिंग सेक्टर में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। आज के दौर में डिजिटल बैंकिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि स्मार्ट बैंकिंग का मतलब सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है बल्कि सेफ और इन्फॉर्म्ड बैंकिंग भी है। टेक्नोलॉजी पर भरोसा कीजिए, लेकिन हमेशा उसे समझदारी के साथ यूज कीजिए। स्मार्ट मनी का आज का लेसन ये है कि डिजिटल बैंकिंग ऐप आपका वक्त बचाती हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी आपकी वाहिद जिम्मेदारी है। बस अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक

Assalamualaikum. Yes, listeners, आप सुन रहे हैं यू मैटर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान. और आज कुछ होगा यूं कि आज मैं अकेली रहूंगी आपके साथ क्योंकि आज कुछ सफा को कुछ इमरजेंसी में कुछ काम पड़ गया जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी. तो इंशाल्लाह ताला कल से वो हमारे साथ होगी. तो आज मेरा और आपका साथ रहेगा 11 बजे तक. और इस वक्त घड़ी में हमारे हो रहे हैं 10:02. उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे. 2 दिन की जो छुट्टी है आपकी अच्छी गुजरी होगी और आपने काफ़ी कुछ मतलब जो आपके काम शाम होंगे वो निपटा लिए होंगे. अगर कुछ प्लान किया हुआ था तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने भी गए होंगे या फिर

0: कोई भी जो भी प्लानिंग थी वो हुई होगी आपकी, मतलब उम्मीद ये है कि सब कुछ अच्छा गुजरा होगा इन दो दिनों में आपके साथ। मतलब मुझे ना, मतलब वैसे एक घंटे का शो है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब वो एक आदत सी हो जाती है ना कि दो लोग साथ साथ हैं तो फिर वो बात करने में एक अलग सी फील आ रही होती है, तो भी थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है। खैर जी, हमारे साथ कॉलर है, लेकिन कॉलर लेने से पहले मैं ये बता दूँ आपको कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फेलियर क्या आपका सबसे बड़ा टीचर होता है, या फिर आप फेलियर को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर बात करनी है कि आपको क्या लगता है कि नाकामियाँ जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं उनको ईजीली लेना, उस पर कंफर्टेबल रहना, और बचाए मतलब ये सोचने के, परेशान होने के, दुखी हो जाने के, रोने पीटने के, क्या ये ज़्यादा मुनासिब है कि हम उस फेलियर को अपने टीचर के तौर पे लें, हम ये सोचें कि जो गलती है, जो नाकामी हमारे हिस्से में अभी आई है, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आई है, तो क्या हमें ये करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। आप हमें बताएंगे आप किस तरह से लेते हैं बेसिकली फेलियर को, एक्सेप्ट कर लेते हैं ईजीली या फिर आपके लिए मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। अच्छा जी, तो कॉलर हमारे साथ और देखते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे
1: हैं?
0: जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुदस्सर बात कर रहे
1: हैं? जी जी
0: जी जी। मुदस्सर कैसे हैं? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है इसलिए मैं समझ नहीं पाई थी।
1: अभी सही है?
0: हाँ, बेहतर। कैसे?
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ, आप कैसे हो? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है।
1: वीकेंड कैसा गुजरा आपका?
0: वीकेंड अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। जी,
1: सबसे कॉल पहले मैं आज मैंने कहा रईस भाई को थोड़ा पीछे छोड़ेंगे।
0: हाँ जी बिल्कुल। तो मुदस्सर भाई क्या कहेंगे आप?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो बताता है, यानी जो हम उसको फिक्स करता है, तो उसको हम या टेंशन लेते
0: उससे
1: कोई फायदा नहीं होता है ना। तो हम इसको समझें कि नुकसान हो गया, लेकिन किस चीज से हो गया, तो उसको दोबारा रिमाइंड नहीं कर
0: सकते।
1: तो एक आपको नुकसान मिलती है ना, नुकसान से भी बहुत कुछ सीख जा सकते हैं अगर आप सीखोगे ना, उसे भी बहुत दिख जाती है। लेकिन मैंने जैसे दुख भी देखे, उसको बार बार नुकसान हो रहा है, उसको फिक्र भी नहीं होता है, वो बोलते हैं बस अभी बड़े छोड़। अभी मेरा एक दोस्त है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें नुकसान करवाया। फिर दूसरा स्टार्ट किया, उसमें भी नुकसान करवाया। तीसरा स्टार्ट किया, उसने भी नुकसान करवाया। वो बोलते हैं कि अभी बड़े छोड़। आप करेंगे तो आपको नुकसान भी नुकसान आएगा।
0: हाँ,
1: आपको एक बार नुकसान आए तो नुकसान क्यों आया, कैसे आया? तो आप नुकसान से भी बच जाओगे तो नुकसान को तुम फेस नहीं करना मांगते। जब तुम अच्छी तरह फेस करोगे तो नुकसान फिर दोबारा नहीं आएगा।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब गलती करके आपको सीखना चाहिए उससे।
1: तुमको गलती सीखना है, अगर नहीं सीखना है तो तुमको दूसरा गलती पे लाने में आएगा।
0: सही हो गया।
1: हमारे बड़े बोलते हैं ना कि जब आदमी को समझ में नहीं आता है ना, जब वो सफर पे निकल जाए ना, परदेश में जाता है ना, तो फिर वहाँ से वो टोकरे का के उसको समझ आती है।
0: बिल्कुल।
1: जब फिर भी उसको समझ आती है ना, तो फिर वो किधर भी नहीं समझता है। तो मेरा वो दोस्त का मिसाल वही है, उसने बहुत टोकरे कहा है लेकिन वो फिर भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे किया है, मुझे यही है कि वो अपने नुकसान को समझते नहीं कि मैंने नुकसान किया है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं।
1: जब सीखता नहीं है तो फिर नुकसान और भी ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसे लोग हैं जो नुकसान करते हैं, वो सिर्फ रोते हैं, बोलते हैं वो क्या हो गया, उसे हो गया, बोलने से भी कुछ नहीं होता है। आप इसको फेस करो, अच्छी तरह फेस करो, इंशाल्लाह तो आपका नुकसान देने वाला था अल्लाह, इसने कि आपको नुकसान देता है, तुम उसका नहीं करे, अल्लाह इसे तुमको बेहतर दिन दिखाएगा।
0: सही हो गया, बिल्कुल सही।
1: ओके
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और जी, तो हमारे साथ हैं मुदस्सर, उन्होंने कहा कि जो बंदा गलती करके नहीं सीखता यहाँ पे मसला है। मतलब अगर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हो और गलती के बाद भी आप उससे लेसन नहीं ले रहे, कोई सबक नहीं सीख रहे, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी में गलतियाँ ही होती रहेंगी और ऐसा बंदा फिर कभी भी कुछ सीख नहीं पाता, कुछ मतलब ग्रो नहीं कर पाता, अपनी ज़िंदगी में बेहतर नहीं हो पाता। तो ये है मुदस्सर का ख्याल। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि गलती करके उससे सीख लेना चाहिए, या फिर मतलब गलती

आपकी टीचर हो सकती है या फिर आप एकदम से पैनिक में आ जाते हैं कि ये कैसे हो गया, मुझसे कैसे गलती हो गई। अच्छा, ये हम में से कोई कह नहीं सकता ज़िंदगी में कि हमसे गलतियाँ नहीं होती। हर बंदा ना चाहने के बावजूद और पूरी पूरी कोशिश करने के बावजूद

0: एक्सीडेंट से जहन में मेरे आया कि अगर आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो उसमें भी ये हो नहीं सकता कि कभी भी आपका एक्सीडेंट ना हो, छोटा मोटा थोड़ा बहुत मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फाइन पड़ जाता है जबकि आप चाह नहीं रहे होते। तो ये चीज़ें जो ना ये एक तरह से पार्ट ऑफ लाइफ हैं और ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहती हैं, चलती रहती हैं साथ में इसी तरीके से ज़िंदगी के। लेकिन बात वही होती है कि हम उन चीज़ों को किस तरह से ले रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं गलती को अपनी, और किस जाविये से देख रहे हैं, क्या हम उसके ऊपर घबरा के बैठ जाते हैं कि आइंदा के बाद हम ये काम ही नहीं करेंगे, या फिर हम उससे कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये असल चीज़ है। खैर जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे और साथ ही 6622107 पे आप हमें कर सकते हैं मैसेज। मैं देख लेती हूँ मैसेज मेरे पास किसका आया है और फिर अगर कोई मैसेज है तो वो मैं शामिल करती हूँ, और इस दौरान आप लोग कॉल भी मिला सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, गुड मॉर्निंग मामा जी, कैसी हैं आप, होप वेल, वेलकम टू यू मैटर्स, और दिल से देसी हैप्पी संडे मॉर्निंग। कैसा रहा आपका वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, होप गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं मोहम्मद यूसुफ, आपका कैसा रहा? और हमारे साथ एक और कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू।
0: जी क्या हाल चाल हैं? आई थिंक अंसारी भाई
1: नहीं, मैं आसिफ बोल रहा हूँ।
0: आसिफ अंसारी नहीं है?
1: नहीं।
0: अच्छा अच्छा, वो वाले आसिफ, समझ गई।
1: पहले भी आप हमेशा मुझे जो है नाम से कंफ्यूजन होता था आपका।
0: हाँ, अब आपने बहुत दिनों के बाद कॉल किया, बताएं कैसा चल रहा है सब कुछ, काम शाम कैसा है?
1: जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक चल रहा है। दरअसल होता ही है कि आपको पता ही है कि मैं एयरबेस के अंदर में रहता हूँ,
0: बिल्कुल,
1: और वहाँ फोन अलाउड नहीं है, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है तो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा, तो मैं बोला आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला है तो आप लोगों के प्रोग्राम तो मैं हमेशा सुनता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: बट ये है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, मोबाइल नहीं होता पास में।
0: सही सही, ठीक है। तबीयत को क्या हुआ, मतलब यही मौसमी नज़ला जुकाम वगैरह जो चल रहा है?
1: नहीं, वो मौसमी नहीं है, दरअसल हमारा जो स्पाइन का सर्जरी है और उसमें कुछ पेन पड़े हुए हैं, तो उसके लिए जा रहा हूँ डॉक्टर को देख रहा हूँ।
0: चले अल्लाह ताला सब बेहतर करे इंशाल्लाह ताला, सब बिल्कुल खैरियत से हो आपका इंशाल्लाह, अल्लाह सेहत शिफाए कामला अता फरमाए।
1: आमीन आमीन, हम सबों को अल्लाह अपनी हिफाज़त में रखे,
0: आमीन सुमा आमीन। जी भाई, तो आप क्या कहेंगे हमारे आज के टॉपिक पे, गलती आपको सिखाती है, टीचर होती है, या फिर मतलब गलती जो है वो परेशान करने के लिए आती है जिंदगी में?
1: नहीं नहीं, गलती जो है समझिए कि आपकी जो है टीचर होती है वो। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगेगा वो समरेंगे नहीं, वो सुधरेंगे नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से लाइफ में एक बार ठोकर लगना जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जो है जब तक ठोकर नहीं लगा तो हमारे कजन और हमारे भाई हमारा ये हमारे वो, लेकिन जब एक बार ठोकर लग गया तो सब ठीक हो गया। इसलिए जिंदगी में जो है बहुत जरूरी है इंसान को एक बार जो है ठोकर लगना, और गलतियाँ जो है दोबारा आप कर रहे हैं तो फिर ये ऐसी गलती नहीं है, एक ही तो आप बार बार दोहरा, क्योंकि अपने इस्लाम में भी है कि एक बंदा जो दो तीन बार गिरफ्तार से ठोकर खाए तो वो मोमिन नहीं है। तो हमें सुधर जाना चाहिए, हमें अगर किसी से भी लगता है अंदेशा हो रहा है कि ये बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है या हमारे साथ ये गलत हो चुका है, तो दोबारा उस चीज को दोहराना मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज नहीं है।
0: सही हो गया, बिल्कुल, वैसे मेरा भी यही ख्याल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो जो है नहीं सुधरते हैं।
0: हाँ।
1: बोलते नहीं यार वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था।
0: हाँ।
1: चले मर्जी आपकी है कैसा हो गया था, लेकिन फिर बहुत देर हो जाता है जब वो अपने आप को जो है संभालने की कोशिश करते हैं, उस वक्त तक बहुत देर हो चुका होता है। एक हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, नाम नहीं लेंगे, उनको मैं हमेशा समझाता था, वो बेचारे हमेशा बोलते थे नहीं हमारे कजन जो है हमारी जो है ये है वो है, आज ऐसा बता चुका उनके ऊपर कजन लोग कोई पूछ नहीं रहे उनको, ये नौबत नहीं आनी चाहिए जिंदगी में किसी के साथ भी। लोग को हमेशा जो है एक लिमिट एक दायरा बना के रखना चाहिए, किसी के ऊपर अंधा इतमाद नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारे कजन है या हमारा सगे भाई जो आजकल होते हैं जो ब्लड रिलेशन, वो तो जो है कुछ न कुछ आपके साथ गलत कर जाते हैं, तो किसी और पे आप क्या इतमाद करेंगे।
0: सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही,
1: ये मेरी सोच है, अब सबकी अलग अलग सोच होती है, ये मेरी सोच है।
0: नहीं नहीं, ऐसा ही मेरा ख्याल है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपको हर रिश्ते को ना पता है आसिफ सब होता है क्या, कि हम लोग ना बहुत मतलब अगर हमारी यहाँ की बात करें ना, आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हम

0: सब लोगों का मिजाज तकरीबन एक जैसा है और हम लोगों की ना जज्बाती वाबस्तगियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं लोगों के साथ, मतलब हम बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर, बस कोई हमें मिला और हमें लगा कि बस हम उसके मुकम्मल तौर पे हो जाए ना, बस इसके ऊपर भरोसा करें, यही सब कुछ है हमारा, ये हमारी गलती होती है।
1: ये गलती होती है और इसका लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो नाजायज फायदा उठा लेते हैं, जिसे बोलते हैं गलती का नाजायज फायदा उठाना, मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना, वो लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो है बिजनेस में भी जो है उनके साथ धोखा कर दिया, फायदा उठा लिया और बेचारे जो है रोड पे, जिसको बोलते हैं रोड पे आ जाना, अच्छी हालत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मतलब ये अकल तो हमें अल्लाह ताला ने दी है ना, उसका हम इस्तेमाल करें, ऐसी गलतियां ना करें जो कि हमें पता हो कि गलती है। सही बात है, बिल्कुल।
1: इंसान को हमेशा अपने आप को इन सब चीजों से बचा के रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और लोगों की नीयत का जो है पता नहीं चलता है ना, आपके साथ बैठेंगे, खाएंगे, साथ में घूमेंगे, आपसे बातें करेंगे, लेकिन सडनली अगर आपको पता चल गया कि इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, जी, तो वो एक शॉकिंग, जिसको बोलते शॉकिंग न्यूज, वो होता है। और कभी इस्तेमाल भी नहीं हो कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, नहीं। तो ऐसा भी होता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, नहीं मेरे साथ तो इन्होंने ऐसा नहीं करना था, हो जाता है।
0: ऐसे ही
1: अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको को जो है बुरे लोगों से, बुरी चीजों से अपनी जुबान में रखें बस।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, इंशाल्लाह ताला अमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपकी कॉल करने का, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपकी शाम के वक्त में ज्यादा कॉल आती थी, फिर उसके बाद सुबह के वक्त में शुरू में आ रही थी, तो आज काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, लेकिन अच्छा लगा बहुत।
1: इत्तेफाक है कि आज मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ और आपसे जो है बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे ठीक करे आपको, फिर जरूर कॉल करके बताइएगा, ठीक है?
1: इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह।
0: ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रोहित जी तो हमारे साथ थे आसिफ साहब, और इनका बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, कहते हैं कि ठोकर ना बहुत सारे लोगों को मतलब अकल सिखाने के लिए ही आती है, तो ठोकर लगना ज़रूरी होती है। इन्होंने मिसाल भी दी उसके ऊपर कि इनके अपने जानने वालों में इस तरह से हुआ कि भाई नहीं समझ में आ रही थी, फिर एक ज़िंदगी ने ठोकर दी, तो फिर उसके बाद समझ में आ गई। तो ये वाकई मामला ऐसा है, और कहीं कहीं हम ये जो जानबूझ के कर रहे होते हैं ना लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद, इतना भरोसा, कि फिर वही शख्स हमें कहीं ना कहीं जो है ना दगा दे जाता है, और फिर हम बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो इसमें थोड़ी सी गलती हमारी अपनी होती है, बल्कि काफी हद तक होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, हाँ जी बहन, कैसी हो? ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तौफीक भाई बात कर रहे हैं, राइट?
2: हाँ बिल्कुल।
0: कैसे हैं?
2: और कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सफा बहन बीमार ही?
0: नहीं नहीं, बीमार नहीं हुई है, उनको कुछ काम पड़ गया है इसलिए नहीं आई। जी
2: क्यों, इस्लामाबाद जा चुकी है क्या?
0: नहीं नहीं, इस्लामाबाद यही पे कुछ काम पड़ गया उसे जरूरी।
2: नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सही। ये टॉपिक जो अभी भाई ने भी किया, आसिफ भाई कैसे हो? और हम लोग जो लिसनर के नंबर आप भेज दी ना, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग के साथ हम लोग मुलाकात हो गए तकरीबन 7-8 आदमी।
0: अच्छा माशाल्लाह।
2: तो सबको मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा और सलीम भाई, शहजादा सलीम भाई नहीं, उसी का भी थोड़ा हिम्मत था, तो हमको भी हिम्मत मिला, तो हम लोग मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ग्रेट, जबरदस्त भाई।
2: और सब अच्छे भाई, अच्छे भाई भाई मिले मुझे,
0: जबरदस्त। और तौफीक भाई को तो शौक माशाल्लाह से बहुत है लोगों से मिलने का, लोगों को जो ना बुलाने का,
2: बहुत शौक है
0: माशाल्लाह।
2: मैं सबको दावत दे रहा हूँ, 107 को भी दावत देना चाहता हूँ।
0: आपने तो अपने बेटे की पूरी मतलब कतर को दावत दी हुई थी बेटे की शादी की।
2: बिल्कुल बिल्कुल दी हुआ। वो जो खेमा खुला होता है ना, जब आप जो बाहर ओपन करता है ना, इसी की तरह मेरा दिल भी ओपन है।
0: जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे हमेशा। जी तौफीक भाई, तो क्या कहना चाहेंगे गलती के ऊपर?
2: जिसके दिल में रहम हो या दिल बड़ा हो, दिल साफ हो ना, वो कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते कभी भी। सीखना तो जरूरी, लेकिन मैं सीख के भी फिर भी मैं धोखा और दोबारा हो रहा है। एक बार नहीं, मेरे पास 14-15 दफा हो गया। क्या करें, दिल अच्छा है ना, साफ है, रहम बहुत है ना। तो अंदर तो वो जो
0: एक बात बताए, एक ही तरह के धोखे मिलते हैं या फिर अलग अलग रूप बदल बदल के मिलते हैं?
2: नहीं, हमको एक ही तरह, ज्यादा एक ही तरह मिला।
0: एक ही तरह का मिलता है।

0: वो भी मतलब जिसको पैसे देना फिर वापस हालात भूल जाओ.
1: ओके, उधार मोहब्बत की कैंची है.
0: बस वो ये जिसको मजबूरी हो है, मतलब मजबूरी का फायदा आपसे लेके ना ऐसा सर. वो जैसा अभी आसिफ भाई ने बोला ना, ऐसी बात है, अंदर किसको नहीं मालूम है ना. तो ऐसी अभी भी मुझे याद है, 13-14 आदमी मुझसे पैसे लिया वापस भूल जा. अच्छा. वापस भूल गया. भाग गए कोई किधर कोई किधर. अल्लाह करीब सबर का पल मीठा होता है ना.
1: बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा, मेरे हिसाब से तो आप पैसे उसको दो और उतने दो जितने आपको पता हो कि वापस तो नहीं देगा लेकिन आप बर्दाश्त कर सकते हो.
0: बस ये बस यही बात है. जो वापस कर सकते, मतलब मैं मॉडल दिया है, 200 रियल भी दिया, 6000 भी दिया, उससे ज्यादा भी दिया. वो 200 रियल भी वापस नहीं मिल रहे, वो 6000 तो छोड़ो. ये बात
1: सही.
0: चलो अल्लाह करीब, अल्लाह करीब बाद में पर देख लेंगे. जब कोई जिसका दिल में रहे वो तो खुद वापस अमानत वापस करे.
1: सही हो गया. चले ठीक है तौफीक भाई, और बताएं सब ठीक ठाक है, सब सेट है घर पे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: चले गुड.
0: अभी मैं घर से निकला, थोड़ा बाहर एक जगह में गया, बाकी की तरफ. अच्छा, बाद में थोड़ा काम है उसके लिए गया, फिर इंशाल्लाह वापस जाऊंगा.
1: चले तब बहुत ख्याल रखिएगा, पराठे खाएंगे. चले एंजॉय कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. वालेकुम सलाम. रोहित जी, तो हमारे साथ तौफीक भाई और हर जगह से एक ही तरह के धोखे खाते हैं, यानी पैसे देते हैं उधार वापस नहीं मिलता. अच्छा, इस मामले में ना मुझे ये लगता है कि आपसे कोई उधार मांगे तो आप उसको बोलोगे भाई देखो इतने तो नहीं है जितने तुम कह रहे हो, इतने हैं रख लो वापस मत देना, ये वाली आइडियोलॉजी के साथ आप दोस्त को, ताकि क्योंकि दिमाग में ही ना हो ना उस बंदे ने वापस आपको पैसे देने, तो फिर आपको तकलीफ ही नहीं होगी. वरना होता ही है कि कोई बोल देना कि हाँ दे दूंगा यार अभी दे दो, उसके बाद फिर आप सोच रहे होते हैं वो अगला बंदा अगर टाल मटोल करे या फिर उसका सिरे से कोई जिक्र ही ना करे तो वो बंदा ना डीवैल्यू हो जाता है. तो अगर आपने अपना ताल्लुक और रिश्ता बचाना है तो उतने दें जो आपने पहले ही उम्मीद की हुई होगी, उसने देने ही नहीं है वापस, मैंने लेने ही नहीं है वापस. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
1: अस्सलाम. ओए होए होए, क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं, कैसे गुजर रहे हैं दिन?
2: अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन पहले से अच्छा और पहले से बेहतर ही होता है.
1: माशाल्लाह ग्रेट, जबरदस्त.
2: आज गलतियों पर बात हो रही है.
1: हाँ, गलती उस्ताद होती है या फिर क्या?
2: मीन पुतला है. पुतला कमर पतीला ज्यादा है मेरा ख्याल है. गलतियों से ही सीखता है, गलतियां फिर गलतियों पर गलतियां करता जाता है. जैसे भी एक भाई बात कर रहे थे ना, तो ऐसा ही होता है इंसान के साथ, गलतियां करता है गलतियों से सीखता है लेकिन गलती पर फिर गलती करता है और उसमें सबसे बड़ी गलती यही धोखा है, एतबार है. जो एक बार इंसान एतबार करता है फिर धोखा खाता है, उसके बाद फिर एतबार कर लेता है लोगों से धोखा खाने के लिए. तो यही सबसे बड़ी इंसान की गलती है मैं समझती हूँ. बाकी जिंदगी में जो गलतियाँ होती हैं वो वाकई इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. और जिंदगी में अपनी गलती का इतराफ़ कर लेना मैं समझती हूँ इंसान की बेहतरीन खसूसियत है. वो इंसान में आजिज़ी लाती है, तकब्बुर ख़त्म करती है. जो इंसान अपनी गलती मान लेता है ये भी बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि दूसरों की गलतियों पर पॉइंट करना तो आसान होता है लेकिन अपनी गलती मानना आसान नहीं होता.
1: अच्छा, इसमें ना इनका जो अपनी गलती मानता है ना फिर वो ही सीखता है, अगर वो मानेगा ही नहीं तो सीखेगा ही नहीं.
2: यही तो चीज़ है, जो मानता है वही सीखता है, जो नहीं मानता वो सीखता भी नहीं है. क्योंकि दूसरों की गलतियों पर जो है हमें आदत हो गई हुई है ना, दूसरों पर बात करना, दूसरों के नुक्स निकालना. इंसान जब अपनी इस्लाह करना शुरू कर देता है, अपनी गलतियों को देखना शुरू कर देता है, तो उसे पता चलता है मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे कहाँ सही होने की जरूरत है. तो वहीं पर वो अपनी गलतियों को समझना और सीखना शुरू कर देता है. वैसे भी जिंदगी बड़ी उस्ताद है, भी सिखाती है इंसान को.
1: सही बात है.
2: ऐसे ऐसे सबक देती है ना कि इंसान को लग पता जाता है तो समझ आ ही जाती है फिर वक्त के साथ साथ.
1: ऐसा ही भाई,
2: क्योंकि उम्र का भी बड़ा अमल दखल है. सॉरी मैं उल्टा बोल रही थी. तो उम्र का भी एक बड़ा अमल दखल है. वक्त के साथ साथ भी इंसान को उम्र के साथ साथ भी अकल आ जाती है. तो बाकी गलतियों की जहाँ तक बात है वो तो बचपन से इंसान किसी भी चीज़ पर, जब स्कूलिंग शुरू होती है तो तभी से हमें सिखाया जाता है कि अगर हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, तो उस चीज़ को कभी भी दिल पर नहीं लेना बेटा, आगे बढ़ना है. और गलती ही इंसान को जो है आगे बढ़ना सिखाती है. कोई होती है हमारी. और आप बताइए आप कैसी हैं?
1: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह.
2: आपने क्या क्या सीखा अपने

0: गलतियों से।
1: यार मैंने ना मतलब मैं वही आपकी बात पे भी अभी सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं ना वो नहीं होते जो लोग जो जिनके लिए वो मुहावरा ईजाद किया गया है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है तो मेरा ना वो वाला मामला है, और ये वाला मामला मेरे साथ, मैं मतलब मैं बड़े आराम से ये बात कह देती हूँ कि यार मुझे बड़े कम लोगों ने धोखा दिया है, क्योंकि मैंने उनको मौका ही नहीं दिया कि मुझे धोखा दें। मैं बहुत छोटी सी थी उस वक्त से मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, और मैंने गलती छोटी छोटी उम्र में जो एक गलतियाँ होती हैं ना बिल्कुल बचपन में, वो क्योंकि मैं ऑब्जर्व ज़्यादा करती थी तो मुझे अंदाज़ा हो जाता, तो दूसरा मैंने अपने अम्मा अब्बा की गलतियों से सीख लिया, तीसरी किताबें पढ़ के सीख लिया, तो मैं लोगों से इतना वाकई मौका नहीं देती ये लोग मुझे धोखे दे सके, तो मैंने ज़िंदगी में धोखे नहीं खाए इतने कोई ख़ास, इतना भरोसा ही नहीं किया किसी के ऊपर। मतलब जो बिल्कुल करीबी लोग हैं उनसे मिलने वाली एक अलग बात होती है कि वो आप कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत, कि आप ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ये कि उससे हटकर वो चलो यार चलता है ना, मतलब अपने करीब के लोग हैं आप जानबूझ के भी कभी कभी धोखे खा लेते हैं कि चलो यार चलता है, लेकिन वैसे मैंने इतना कोई धोखा वोखा नहीं खाया किसी से।
0: नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी एग्री करती हूँ, इंसान रिजर्व हो जाता है बहुत सी जगहों पर, तो यही चीज होती है जो इंसान को सिखाती है ना फिर कि अब ऐसा नहीं करना।
1: हाँ, जैसे मेरे अम्मी पापा मासूमुल फितरत लोग थे, बहुत ज्यादा बहुत ही
0: सारे लोग थे, मुझे लगता है बहुत हम लोग ज्यादा क्लेवर हो गए,
1: हम लोग बहुत चलाक हैं यार, हम लोग बहुत चलाक हैं,
0: लोगों को कर दिया ना मीडिया ने कर दिया।
1: हाँ ये भी एक बात है यार, ये वाकई आप सही कह रही हैं कि मीडिया से हम लोगों ने, हम चूंकि टीवी देखते हुए बड़े हुए, फिल्में देखते हुए बड़े हुए, तो हमें ना वो सही गलत हीरो विलन वो सारे जो है ना उन लोगों को हमने बकायदा सीखा है कि ये क्या होते हैं कैरेक्टर्स। मैंने ना ये सोच के पहले हफ्ते नहीं देखा था, मैंने वो उसी की बात करी है ना अपना ये देखे नाम मट्टी दिबावे, हाँ तो वो जो है ना मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा था उसमें, मैंने कहा यार पंजाबी मुझे तो समझ में भी नहीं आती इतनी ज़्यादा, मतलब आती तो है लेकिन ये कि उतना नहीं मुझे इंटरेस्ट हो रहा था, मैंने कहा यार क्या मतलब देखेंगे इसको क्या करेंगे, लेकिन फिर बहुत तारीफ़ें देखी मुख्तलिफ जगहों पे, फिर मैंने देख लिया और यकीन करें अनिका कि मुझे वो इतना अच्छा लगा है कि मुझे बाकी सारे ड्रामे भूल गए लेकिन शुरुआत तो जो की है ना उन्होंने, जैसे कहते हैं ना जकड़ लेना, मतलब आपका दिमाग उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, वो वाला सीन है तो जरूर देखें।
0: नहीं मैं देख रही हूँ, मैंने देखी 4 एपिसोड उसकी देखी हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: मुझे इसमें जो चीज़ हुई, माहिर हनका तो है बहुत ही बेहतरीन एक्ट कर रही हैं और आज भी, लेकिन मुझे इसमें जो चीज़ सॉरी अभी एकदम माइंड में आ रही थी मेरे, हाँ मुझे ये कि थोड़ा एक्सट्रीम पे, और मैंने इसको जब गूगल किया तो उसमें बताया लव स्टोरी, मैंने कहा ये तो हेट स्टोरी लग रही है,
1: हेट स्टोरी लग रही है, इसी में मुझे मजा आया,
0: हेट स्टोरी है ये तो,
1: लव नहीं होनी चाहिए, मजा नहीं आएगा अगर ये लव स्टोरी बना दी इन्होंने तो।
0: हाँ लेकिन है अच्छी, और कास्ट भी बहुत अच्छी है ओवरऑल, काफी इन्होंने सीनियर जो है उसमें लिए, तो अच्छा है, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन आगे जो आपने प्रोमोस देखे इसके,
1: नहीं मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखे,
0: लेकिन अच्छा है, स्टार्टिंग अच्छी है।
1: हाँ मुझे लग रहा है मतलब कुछ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, जैसे अक्सर लोग बोल रहे होते हैं ना कि यार एक तरह की कहानियाँ होती हैं ये वो, खैर मुझे तो वैसे भी पाकिस्तानी ड्रामा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो इस तरह की कहानियाँ लोग ला सकते हैं तो फिर मैं सेकंड करूँगी कि हाँ वाकई लानी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है।
0: नहीं अच्छा है, इससे पहले जो है फरार मुझे बहुत अच्छा लगा,
1: फरार भी अच्छा था, रुतबा शुरू हो रहा है ट्यूजडे से शुरू हो रहा है रुतबा, वो भी उमेरा मत का एक और आ रहा है।
0: अच्छा नहीं मुझे नहीं पता ना, प्रोमो भी नहीं देखा मैंने।
1: ए आर वाई पे बस तेरा साथ होगी जगह शुरू होगा। वैसे अंसा का रोल बहुत अच्छा था, अंसा बहुत अच्छी थी, लेकिन अनस जो है ना वो तो बस मतलब बिल्कुल ही उसकी वजह से लोग बोर हो गए। सबसे मजेदार मतलब बंदा जो राना है उसमें वो शयान रहा, अगर शयान ना होता तो ड्रामा नहीं हो सकता था, फिर दूसरी अंसा।

0: अभी पता है कि हम लोग ना जो वो होती है ना यूजुअल चीजें उनसे हम थोड़े से बिजार हो चुके होते हैं, तो हमें थोड़ा सा कुछ अनयूजुअल चाहिए होता है. मतलब आप हीरो एक कैरेक्टर देख देख के, अब जो सैनस इतना सीधा इतना बोंगा तो वो नहीं मजेदार लग रहा था, लेकिन उसके मुकाबले में शायान चाहे नेगेटिव कैरेक्टर था लेकिन वो बहुत मजे का कैरेक्टर था.
1: बात सही है, क्योंकि सम टाइम नेगेटिव रोल ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत से ट्रॉमास में देखा गया है. अभी इसमें भी जैसे तरह से चार्ट में दिखा रहे हैं अबू बकर का करेक्टर, इसीलिए कहा जा रहा है ना आउट ऑफ स्टॉक है ऐसे
0: लोग कह रहे हैं एआई ये रियल नहीं है भाई.
1: रियल नहीं हो भी नहीं सकता था यार, देखिए कुछ तो इंसान, अब इंसान भी मर्द चले ठीक है, औरत भी बुरी होती है, लेकिन औरत कहीं पर थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी मोल्ड सी होती है, थोड़ी काइंड सी होती है.
0: अच्छा पता है थोड़ा सा बिलीवेबल इसलिए है अनिका कि हमारे यहाँ के जो बड़े सगीर के जो वो है ना माशरे में जो बेटे होते हैं ना, आपने देखा हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं वो माँ और इस तरह की सारी, और माँ के कहने पे ना वो जरियाब के लिए नहीं कर रहा कुछ भी, वो बेसिकली अपनी माँ के लिए कर रहा है. और यहाँ हमारे माशरे में मैं मान सकती हूँ कि बहुत सारी जगहों पर आप देखें तो बेटे तो कुछ भी कर जाते हैं भाई माँ के लिए.
1: नहीं वो तो एग्जैक्टली कर जाते हैं, लेकिन उसका ओवरऑल आप करेक्टर देखे ना,
0: हाँ वो तो कमाल है भाई.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं कहती हूँ हर माँ को ऐसी तरह
0: ऐसी तरबियत करनी चाहिए,
1: ऐसा होना चाहिए. इसलिए कल मैं देख रही कि उसको तमगा है शराफत और आउट ऑफ स्टॉक है कि भाई ये चीज़ है ही नहीं है. तो मैंने कहा वाकई ऐसा ही है कि भाई आउट ऑफ स्टॉक ही होगा ये.
0: हाँ एग्जैक्टली,
1: कहाँ होगा भाई
0: इतना कम्प्लीट बंदा.
1: हाँ माँ के लिए तो है ही, लेकिन ओवरऑल आप उसकी क्वालिटीज देखें ना, कि आप ओवरऑल देखें उसमें क्या क्या एबिलिटीज हैं.
0: मैं भी अपने बेटों को बोल रही थी, मैंने कहा देखो ये जुमे की नमाज के बाद सूरह काहफ पढ़ता है.
1: ना सिर्फ सूरह काहफ पढ़ता है और बहुत सी खूबियां भी उसमें.
0: बिल्कुल
1: वो पक्का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं
0: मिलेगा. बिल्कुल ऐसे ही चले अनिका, लेकिन आपकी कॉल आई भी बहुत अरसे की बात थी, तो थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा इतने अरसे के बाद आपसे बात करके. थैंक यू जी,
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह चले जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी. और इसके साथ ही आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ हम ड्रामों पे चले गए, तो ऐसे ही होता है. मतलब शौकीन जो लोग होते हैं ना, मेरा तो दिल चाह रहा होता है यार लोग, मतलब कौन देख रहा है. अभी तक मेरी बहन ने नहीं देखा था मिट्टी दी बावे, अब देख लिया होगा, तो आज मैं उससे बात करूंगी. मैं उसको रोज प्रेशराइज करी थी कि देख लो बहन देख लो, क्योंकि मुझे तो क्रेज हो गया इसका. खैर जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं.

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी
2: वेलकम बैक आप सुन रहे हैं यू मैटर विद आरजे माविश और सफा आज नहीं है इंशाल्लाह ताला कल हमारे साथ होगी मैसेजेस आपके शामिल कर लेते हैं असमत अफरीदी का मैसेज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपी एंड वेलकम बैक अनिका जी एंड थैंक्स अनिका जी आपकी वजह से ड्रामे पे बात हुई और तो कोई करता नहीं है मेरे अलावा मिट्टी दे बावे बनस्पति इश्क एक फेमस इंग्लिश थिंग है कि एवर ट्राइड एवर फेल्ड नो मैटर ट्राई अगेन फील बेटर एंड देन द वर्ल्ड इज योर्स ओके कमाल भाई बनस्पति इश्क भी वाकई बड़ा पॉपुलर हुआ है आजकल बड़ा कमाल ड्रामा है यार मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा अच्छा मैंने जब लास्ट थर्सडे को आप बात कर रहे थे असमत तो उस वक्त हुआ ये था कि मैंने देखा तो था लेकिन इतने ना गौर से नहीं देखा था बस ऐसे चलते फिरते देखा था फिर मैंने कहा यार मतलब देखना बनता है फिर मैंने दोबारा फट के देखा फिर एक दफ़ा देखा फिर उसके बाद फिर दोबारा देखा मतलब इतना अच्छा लगा मुझे बड़ा कम ऐसा होता है कि इतनी अच्छी कोई आपको चीज़ लग जाए और ख़ासतौर पर उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है ना वो बहुत कमाल है आरिफ लोहार का की आवाज़ का जादू फिर बीच में और भी जो मुझे नहीं पता कौन सिंगर्स हैं क्या है लेकिन बड़े कमाल के अच्छे लोग सॉन्ग्स जो है ना वो हमें सुनने को मिल रहे हैं खैर जी इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं उनको ले लेती हूँ फिर बाकी के मैसेजेस की तरफ भी आती हूँ मैं आपके हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम सबको गुड मॉर्निंग और हम सभी मैटर करते हैं
2: कैसे हैं जुल्कनन साहब
3: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह की जात का
2: जबरदस्त
3: तो बाकी जो आपका वो सब्जेक्ट चल रहा था
2: गलती से सीखते हैं या क्या
3: बिल्कुल गलती से सीखते हैं और गलती को इतना सोचते हैं कि ये गलती हमने क्यों की कैसे की हमें करनी नहीं चाहिए लेकिन बाज़ूकात इंसान ना रिश्तों में और ताल्लुकात में और एतमाद में उस वक्त नहीं सोचता ही नहीं है इन चीजों के ऊपर जब बाद में वो कहते हैं ना आपने हम पे अंधा एतमाद किया तो फिर वो जब बताते हैं कि अब आपने अंधा होने का जो सबूत दिया है अब इसकी आंखें चेक कराएं फिर आंखें चेक कराते हैं हमने कहा
2: सही
3: हाँ आप किसी भी रिश्तेदार को ना खास तौर पे जो हमारे बाहर दोस्त ही थी मेहनत से कमाते हैं आप उनको बताएं ना कि तुमने कोई काम कारोबार करना है हमेशा घाटे में जाएगा जब तक उसके अपने पैसे शामिल नहीं होंगे इसी तरह बच्चों को भी हम लोगों ने देखा है कि हम लोग वहाँ से जो फैमिलीज आते हैं ना अगर हमारी समझ लें महरूमियाँ तो हम बच्चों को उनसे निकाल देते हैं तो हम बेसिकली हम बच्चों से वो खुशियाँ छीन लेते हैं मिसाल के तौर पे कहते हैं ना मैं बच्चों को आइसक्रीम दिलाने लेके जा रहा हूँ तो घर में ही दो चार किस्म की आइसक्रीम हो गई तो वो खुशी उसकी ख़त्म हो गई जैसे पाकिस्तान में ना बिजली आने की खुशी गैस आने की खुशी पानी आने की खुशी इस तरह और बच्चों को भी हर चीज़ किसी मौके पे यानी उनकी किसी कारकर्दगी पे दी जाए वरना फिर उनके अंदर ना एक एफर्ट करने का ख़त्म हो जाती है जस्तजू कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ आसानी से मिल जाए और ये हैबिट डेवलप हो जाए ना तो आप उसको जाके मैनेज करने के लिए बड़ी मुसीबत और इस चक्कर में बाज़ूकात माँ बाप जो है ना अपने बच्चों के नौकर बन जाते हैं
2: अच्छा पता है यहाँ पे ना मेरे जैसे आज हमारा टॉपिक है गलती से सीखना यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने कहीं सुनी भी थी बहुत पहले मुझे सही एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किससे सुनी थी लेकिन हम लोग ना अपने बच्चों को गलती का मार्जिन नहीं देते उसमें होता ही है कि वो गलतियों से सीखने के आदी भी नहीं होते मतलब आप अगर ख़ासतौर पर देखो कुछ जगहों पर इस तरह से है बात कि वहाँ पर फेल होना पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो आपको सुसाइड जो है ना नज़र आ रही होती हैं कि सुसाइडल रेट जो है ना वो बढ़ रहा है क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारा बच्चा कैसे फेल हो सकता है या फिर ज़िंदगी में कहीं पर भी किसी भी मौके पर जो एक रिजेक्शन एक्सेप्ट करना होता है फेलियर एक्सेप्ट करना होता है वो माँ बाप अपने बच्चों को चांस नहीं दे रहे होते आप जैसे कह रहे हैं ना माँ बाप अपने बच्चों के नौकर बन जाते हैं तो उनके मैंने देखा है ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के बड़े फ़खर से ये बात करते हैं कि उनके जो स्कूल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो माँ बाप ही करके दे रहे होते हैं बच्चों को उस चीज़ का मौका ही नहीं दे रहे होते कि वो एक्सपेरिमेंट करें अच्छा बनाएं बुरा बनाएं लेकिन खुद से करें जहन में ये बात होती है नहीं यार हमारा ना हमारे बच्चे का सबसे अच्छा जाना चाहिए उससे होता ये है कि बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कि वो एक दफ़ा गलत बना के सही बनाना सीखे
3: इस बात से एग्री करता हूँ लेकिन स्कूल के अंदर बच्चों को

0: जो टीचर जज करते हैं ना कि ये कर सकता है, जो ये करके लाया ये इसको रिफ्लेक्ट करता है या नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो अब वो टीचर भी नहीं रहे. और ईमानदारी से देखा जाए अपने बच्चों की बात की, एक तो माहौल ऐसा हो गया, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना छोटी एज में, कि आपके बच्चे जाए ना छोटी छोटी चीजें लेके आए, एक तो उनको चलना फिरना रोड पे, रोड सेंस, और एक चीज लेके आने की. और फिर अक्सर आप देखें लोग बड़े हो जाते हैं उनको याद ही नहीं रहता मैंने करना क्या है, ये भूल गया आखिरी वक्त में अफरा तफरी. लेकिन जब ये छोटे बच्चे ला रहे होते हैं ना, उनको होते हैं माँ ने दो चीजें कही थी या चार चीजें कही थी, यू यूज टू रिमेम्बर, उसकी एक मेमोरी डेवलप हो जाती है वो अपनी चीजों को. तो इन चीजों की वजह से बचपन में, और बड़े हो जाए तो फिर वो लाते नहीं. आप उनको कहें ना बड़े हो गए लाओ, वो लाते नहीं है. ये चीज ये काम कर लो, ये इस तरह कर लो, वो उनको आदत नहीं. उनको ये माँ बाप भी करते आए हैं, उन्होंने इस तरह किया. और अच्छा एक चीज अनफॉर्चुनेटली शायद अच्छा ना लगे आपको सुनने में, उनके लिए एक रूटीन की लाइफ हो जाती है ना, तो उनके लिए माँ बाप के लिए ये जालिमाना सोच में इसलिए कहूंगा कि वो सामने कमजोर बीमार या इस तरह भी हो तो वो इतना असर नहीं लेते.
1: ऐसे ही
0: वो रोज देख रहे होते हैं उनको, है तो कई दफा आप देखें आपके बहन भाई या दोस्त देखें तो यार तुम कमजोर हो गए हो या इस तरह हो गए हो या ये तुम कर रहे हो, माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं वो करें. वो बेचारा शर्मिंदा होकर कुछ बताते नहीं है कि वो तो करने को तैयार ही नहीं है.
1: हाँ ऐसा ही है, ऐसे ही, क्योंकि वो उसमें गलती लेकिन उस बच्चे की है भी नहीं ना, उसको सीखने ही नहीं दिया पहले से.
0: यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जरा, और हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, डर और खौफ ने इस तरह कर दिया है कि लोग अब डर और खौफ से वो बस कहते हैं ना, बस बच्चों को हम लोग घर में ही रखें. अल्लाह करे हम लोग वो हों, छोटे छोटे बच्चे गले मोहल्ले दोस्तों में खेलें कूदें, यानी एक आपको फ्रीडम का एहसास हो और लर्निंग का एहसास हो. मैं थोड़ा सीरियस मौजू की तरफ ले गया हूँ तो इससे करी थी, लेकिन बिल्कुल है कि आप कोई भी चीज़ों का गलती का या उनका वाकई और याद भी तो यार रिश्ते ही रहते हैं, अनजाने लोग आप इतना याद नहीं रखते हैं. किसी के साथ आपकी बात हो गई वो हो गई. देखिए मुझे अगर गाड़ियों के कहीं मुझे अक्सर नंबर भी याद रखने की ना आदत है, मैं देख लूँ मेरी यार दोस्त, वरना रोड पे हजारों जा रही हैं, वी डोंट केयर. तो जो आपके साथ कनेक्शन है आप उसको याद रखते हैं.
1: बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करैन साहब, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू. रीन जी, तो हमें एक मैसेज आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि मुझे कॉल करें आसिफ अंसारी. चले मैं आपको कॉल करती हूँ, मिलाती हूँ. बस ये होता है कि अक्सर यूँ होता है कि मैं जब कॉल मिला रही होती हूँ तो बीच में कोई और कॉल करना शुरू कर देता है, इस वजह से हम कॉल मिला नहीं पाते. लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अगर इंशाल्लाह आपकी लक अच्छी हुई तो हम कुछ कर ही लेंगे. हाँ मिल जाएगा, चलें गुड. तो बात करते हैं आसिफ अंसारी से और जरान में कुछ और भी मैसेजेस जो हैं वो शामिल कर दूँ. अस्सलाम वालेकुम. गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में. सही है, वो तिफल ही क्या जो गिरे, तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. अच्छा, तो और ज़िंदगी जीने के लिए ठोकर लगना ज़रूरी होती है, यही असल ज़िंदगी है. और ये हैं कौन, ये उज़ैर इकबाल हैं. बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर आपके मैसेज का. मावा जी, हमारा वीकेंड भी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ा बाहर गए थे मॉल तक ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए बस. और अबाउट टॉपिक आई वुड से फेलियर से इंसान बहुत कुछ सीखता है, लेकिन ये अपने आप पर डिपेंड करता है किससे सबक लें, या फिर ये कि सोचें कि फेलियर है तो सभी को मिलती है. और मैं भी फेलियर से सीखता ही हूँ और याद रखता हूँ कि ये किसी रीज़न से मिला है फेलियर. उस पर थोड़ा सोच के एक्स्ट्रा केयर करता हूँ कि वो रिपीट ना हो. ज़बरदस्त मोहम्मद यूसुफ. इसके साथ ही जी मेरे पास मैसेज है, किसका है ये, असमत अफरीदी कहते हैं कि आरिफ लोहार का प्लीज़ प्ले कर दें पार्ट चनाते. अच्छा मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ ये वाला, इसी टाइटल से ज़रा थोड़ा सा सर्च कर लेती दौरान, इस दौरान फिर मैं बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं सर्च करती हूँ. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वरकात.
1: जी आसिफ भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं?
2: जी अल्लाह का शुक्र.
1: जी
2: मौजू बहुत अच्छा चल रहा है आपका. गलतियों.
1: जी जी जी जी
2: मतलब दो टॉपिक चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक गलती और एक धोखा.
1: नहीं नहीं, बेसिकली टॉपिक हमारा है कि गलती से बंदा सीखता है, मतलब गलती टीचर होती है आपकी.
2: बिल्कुल बहुत सारी चीजें सिखा के जाती है गलती. और सबसे बड़ी चीज है उस वक्त में जब आप गलती करते हैं, उस गलती का एहसास कौन दिलाता है? ठीक है, गलती का एहसास दिलाता है जो लोग ताने मारते हैं वो अपने सच्चे दोस्त.

0: मोटिवेशन देते हैं. लाइक मेरा बिजनेस साहब जो भी हुआ प्रॉब्लम हो गई खत्म हो गई, लेकिन मेरे वाले साहब ने उन्होंने सीधे ये बोला ये तुम्हारी अटैक है तुम अपना देखो. ठीक है, उस वक्त में मुझे बुरा लगा यार ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा उस तरह की बात कर रहा, लेकिन जब मैं उस चीज को कुछ दिन के बाद रियलाइज किया ना तो मुझे ये लगा इन्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि ये जो है कर सकता है आगे चल के कुछ भी. ठीक है, तो मजबूर करना मतलब हमें लाचार करने की जगह वो मजबूत कर देते हैं. जैसे अभी भाई बात कर रहे थे कि हम बच्चों को क्या कर, लेकिन बच्चों हो या कोई भी हो उस वक्त में इंसान जो है इस तरह का सहारा ना दे जिससे बच्चा कमजोर हो जाए. उसको स्ट्रांग करना है, उसके हाथ में सारी चीजें, भाई आप हैंडल करो, आपको हैंडल करना है ये चीजें. और गलती तो गलती होना बहुत जरूरी है इंसान से. गलती होना, धोखे मिलना, फेलियर होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें हम जब सक्सेस होते चले जाते हैं ना बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं. बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, इवन हम अपने रब का शुक्र अदा करना भी भूल जाते हैं कभी कभी. ठीक है, तो जब ठोकर लगती है तो क्या याद आता है, अल्लाह का घर की.
1: जी बिल्कुल,
0: ये है. तो बेहतर ये है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है.
1: आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है.
0: जी जी, मैं बोल रहा हूँ कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है. इस ही हालात में अपनों का पता चलता है, ऐसी कुछ है ये चीज.
1: सही
0: बहुत जरूरी है. फेलियर होना पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है.
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है.
0: इस चीज को जो है निगेटिव लेके अगर हम उस चीज को सोचते रहेंगे ना जितना टाइम उसको उस चीज को रियलाइज करते रहेंगे मेरे से ये गलती हो गई एक सबक मिला मूव ऑन आगे चलो. क्योंकि जितना टाइम उसने सोचने में बर्बाद करेंगे उतने टाइम पे चार कदम आगे चल के कुछ और कर सकते हैं.
1: बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बंदे को वहीं नहीं अटकना चाहिए. जी
0: रही बात धोखे की, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर कोई ना कोई लालच होता है. लालच का मतलब ये नहीं कि किसी से पैसा लेना या जैसे हमने किसी को पैसे दिए. इंसान को लालच ये होता है कि मेरे करीबी है, रिश्तेदार है, कहीं अगर मैंने मना कर दिया तो ये नाराज ना हो जाए. ठीक है, फ्यूचर आदमी देख के चलता है. ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर भी एक लालच होता है इंसान को.
1: बिल्कुल,
0: ये है संपूर्ण. धोखा तो खैर धोखा क्या है, किसी के पास मजबूरियां होती है. रही होंगी कोई मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता.
1: ठीक
0: है, कभी कभी कोई पैसे ले लेता, हो सकता है कोई मजबूरियां हो या बहुत से लोगों की एक आदत बन जाती है, वो तो एक अलग चीज हो गई. लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं उनकी मजबूरियां बन जाती है कि नहीं लौटा पा रहे कोई भी चीज हो या अपने वादों को नहीं पूरा कर पाए, तो मजबूरियों को समझना चाहिए हम सबको. मतलब निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव में जाना चाहिए. जो ले गया वो ले गया खत्म, अल्लाह करीम है उससे ज्यादा देगा. उसकी नीयत क्या थी वो हम जज नहीं कर सकते हैं. वो तो अल्लाह बेहतर जानता है उसकी नीयत में क्या था.
1: बिल्कुल सही. अच्छा, असल गलती कहाँ पे होती है ना, जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर आपसे कोई मतलब समझे लाखों मांग रहा है और आपको उसकी आदत का भी पता है फिर भी आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये गलती है.
0: वो गलती नहीं है, वो एक बेवकूफी है. उसको गलती नहीं बोलेंगे, उसको बेवकूफी बोलेंगे.
1: आंखों देखी मक्खी निकलना.
0: हाँ, आपको मालूम है ये जहर रखा हुआ ये हमें नुकसान करेगा, तो आप जहर पीने के लिए रेडी हो.
1: हाँ बिल्कुल ऐसे ही. लेकिन अक्सर लोग इस पे भी चल रहे होते हैं कि नहीं यार हमसे मना नहीं होता, तो वो फिर बड़ी एक संगीन किस्म की गलती है.
0: आप मेरा एक मैं एक चीज जानता हूँ. मतलब मेरा एक सोच है कि अल्लाह ताला ने कभी मुझे दिया, अगर कोई मुझसे पैसे मांग रहा है नहीं पैसे मत ले तू, इसकी जगह मैं तुझे कोई कारोबार करा देता हूँ उसमें पैसा लगा देता हूँ वो ठीक है, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाएगी आगे से.
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है.
0: ठीक है,
1: बिल्कुल.
0: मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि उसको पैसा देने की बजाय, क्योंकि आज वो मेरे से मांग रहा है कल दूसरे से मांगेगा, फिर उसकी एक आदत पड़ जाएगी तो वो

0: आदत से बेहतर है उसके लिए कुछ कर दो।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होना चाहिए रवैया
0: बस। यही है और कुछ नहीं है, बस लाइफ है। और नाजिया जी कहाँ है? वो
1: सफा सफा आज जो थोड़ा सा उसको कुछ काम पड़ गया था तो इस वजह से वो नहीं आई, इंशाल्लाह ताला कल होगी।
0: चलें ठीक है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी।
0: मैं काफी टाइम से कॉल कर रहा था तो मेरी कॉल लग नहीं रही थी।
1: अच्छा,
0: तभी मैंने मैसेज किया
1: हुआ था। सही। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप कर दिया करें, अगर ऐसा कभी हो तो बिल्कुल हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ है आसिफ साहब और इसके साथ ही कुछ मैसेजेस बचे हुए, उनकी तरफ मैं आ जाती हूँ। अच्छा असमत भाई, हमें जो है ना ये वाला गाना आरिफ लोहार का नहीं मिल रहा, क्या इन्होंने अभी नया गाया है, इन्होंने दोबारा से गाया है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। जो मुझे मिल रहा है उसके ऊपर नूरी और शिल्पा राव लिखा हुआ है, तो वो मैं आपके लिए चला दूँगी। और इसके साथ तौफीक के मम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने पहले मैसेज किया था। इसके साथ ही जस्ट टू चेक, ऐसा कॉमेंट पर आपका क्या जवाब आता है, कौन सा जवाब? और इसके साथ मेरे पास मुबीन बुखारी के काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, कॉल आ रही है लेकिन अब मैं ले नहीं सकती क्योंकि हमारा बिल्कुल अब टाइम हो गया साइन ऑफ का, तो मैं अभी नहीं ले पाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, गुड मॉर्निंग कतर एमबीबी ने सबको कहा है, और अल्लाह कितने टाइप की खुशियाँ हैं मतलब ऐसी वैसी खुशियाँ हैं, बहुत से टाइप की खुशियाँ हैं, पानी आने की खुशी, बिजली आने की खुशी और गैस आने की खुशी भी, अब तो भाई उसकी भी लोड शेडिंग होती है, तो बहुत सारी तरह की खुशियाँ हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो हमें देती रहती है फ्री में बिल्कुल खैर जी इसके साथ ही मुझे लेनी है आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल, सफ़ा ज़रूर होगी साथ में, तो अपना ख्याल रखिएगा कल तक के लिए, मुझे दीजिए इजाज़त। और आखिर में छोड़े जा रही हूँ आपको इस ट्रैक के साथ जो कि अनफॉर्चुनेटली आरिफ लोहार वाला तो नहीं है लेकिन है वही, मतलब मेरा ख्याल है वही वाला है, तो सुनते और एंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।

असर अंदाज होते रहते हैं, कभी इबादत उसे उठाती है और कभी गफलत उसे नीचे ले जाती है। इसलिए ईमान को सिर्फ विरासत में मिलने वाली शनाख्त न समझिए, उसे एक ऐसी अमानत समझिए जिसकी मुसलसल हिफाजत भी करनी है। अपने दिल से बार बार पूछिए, मेरा ईमान आज किस हाल में है? जो चीज कल मुझे अल्लाह के करीब करती थी, क्या आज भी करती है? मेरे अंदर क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? और कोई ऐसी बीमारी तो खामोशी से जगह नहीं बना रही जिसे मैंने अभी नाम भी नहीं दिया। सबरिक्राम, हम नमाज में अल्लाह ताला से कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। जरा गौर कीजिए, मुसलमान होने के बावजूद, हिदायत मिलने के बावजूद, नमाज पढ़ते हुए भी हमें हर रकात में ये दुआ सिखाई गई। क्यों? क्योंकि सिरात मुस्तकीम तक पहुंच जाना ही काफी नहीं, उसे पहचानते रहना, उस पर आगे बढ़ना और उस पर साबित कदम रहना भी हिदायत का हिस्सा है। और इस साबित कदमी के जराए में से एक ये भी है कि इंसान अपने ईमान का इल्म हासिल करता रहे, उसके मसाइल को समझे, उसके दुश्मनों को पहचाने और उन कल्बी बीमारियों को जाने जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देती मगर अंदर से खोखला कर रही होती है। रास्ता जितना तवील हो, मुसाफिर को अपने कदमों की उतनी ही खबर रखनी पड़ती है। और फिर जमाने के फितने भी हमेशा एक ही सूरत में नहीं रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि तुम पर कोई जमाना ऐसा नहीं आएगा मगर उसके बाद आने वाला जमाना उससे ज्यादा शर लिए हुए होगा। अब इसे यूं नहीं समझना चाहिए कि हर आने वाले दिन का हर पहलू लाजमन पिछले दिन से बदतर होगा। बात ऐसी नहीं, बल्कि ईमान के सफर के तराजुर में एक बड़ी हकीकत यह है कि फितनों की सूरतें पेचीदा हो सकती हैं, आजमाइशें बढ़ सकती हैं और दिल को महफूज रखने के लिए ज्यादा शऊर और ज्यादा मेहनत दरकार हो सकती है। कभी फितना सामने से आए, आज जैसा कि जेब में मौजूद हर किसी के पास फितने के आलात मौजूद हैं, स्क्रीन है, कभी एक शुबा इंसान तक पहुंचने के लिए किताब दरकार थी, आज जब सेकंड की वीडियोस इसके लिए काफी हो जाती हैं। और इसलिए जो जो हम देखते हैं कि आजमाइशों की शक्लें पेचीदा हों, ईमान की हिफाजत भी अब यानी काफी मुश्किल हो जा रही है। ईमान के लिए अब इल्म भी चाहिए, मुहासबा चाहिए, बसीरत चाहिए और दिल की बीमारियों को उनके इब्तदाई मरहले में पहचानने की सलाहियत भी चाहिए। और इसीलिए सामिन किराम, आज हम ईमान से रिलेटेड, ईमान को कम करने के हवाले से एक बीमारी है जो बहुत खतरनाक भी है और बहुत खामोश भी, एक ऐसी बीमारी जिससे कुरान ने खुद खबरदार किया है। इस बीमारी का नाम है वहन। अल्लाह फरमाता है, वला तहिनु, कमजोर न पड़ो, हिम्मत न हारो। जब अल्लाह ताला अपने कलाम में किसी कैफियत से बाकायदा मना कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि कैफियत मोमिन के सफर में संजीदा रुकावट बन सकती है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहन क्या है, उसकी अलामत क्या है, ये दिल में दाखिल कहाँ से होता है, इंसान को कैसे मालूम होता है कि उसका शिकार हो रहा है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। सामिन किराम, इन सवालात पर गुफ्तगू से पहले एक और सवाल जरूरी है कि हमें वहन पर बात करने की जरूरत पड़ी क्यों, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी पहली वजह तो यह है कि वहन शोर मचाकर नहीं आता, ये दिल के दरवाजे पर तख्ती लगाकर नहीं आता कि खबरदार आज से आपके ईमान में कमजोरी दाखिल हो रही है। ये अक्सर आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता है। बाहर से जिंदगी तकरीबन वैसे ही रह सकती है, नमाजें हो रही हैं, मस्जिद से ताल्लुक मौजूद है, दीनी दर्स में हाजिरी भी है, जाहिरी दीनी शनाख्त भी बरकरार है, लोग आपको देखकर शायद कहें माशाल्लाह सब ठीक है, मगर अंदर अंदर कोई चीज खामोशी से कमजोर हो रही है। वो शौक नहीं रहा, वो कुव्वत नहीं रही, वो दीनी जिम्मेदारी उठाने की आमादगी कम होने लगी, गुनाह के खिलाफ वो अंदरूनी मुसाहमत नहीं रही, नेकी का तसव्वुर मौजूद है मगर उसके लिए उठने की ताकत मध्यम पड़ने लगी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को खुद ही मालूम ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे जिस्म में कोई बीमारी इब्तिदा में मामूली अलामात के साथ नमूदार हो। कुछ थकन महसूस हुई, इंसान कहता है अरे कोई बात नहीं, बुखार सा महसूस हुआ, कहता है शायद मौसम का असर है, मसला बढ़ता रहता है मगर मरीज हर नई अलामत के लिए एक छोटा सा उजर तलाश करता रहता है। और एक दिन मालूम होता है कि जिस चीज को हम मामूली समझ रहे थे वो तो किसी बड़ी बीमारी का इब्तदाई इशारा था। सामिन किराम, बिल्कुल दिल की बीमारियां भी कभी उसी तरह काम

0: सिर्फ FM 107 पर।
1: इमाम राज़ी रहमतुल्लाह की तफसीर में आने वाली एक निहायत बहुत ही माना खेज एक ताबीर है। वहन को यूं समझा जा सकता है इस ताबीर में, इन्फिसाख व अज़ाइम अल-क़ुलूब, यानी दिल के पुख्ता इरादों का आहिस्ता आहिस्ता खुल जाना। वहन का मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने आज फैसला किया कि बस अब मैं अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलूंगा। बात ऐसी नहीं, आप चलना तो चाहते हैं, क़िबला वही है, मंजिल भी वही है, दीन से मोहब्बत भी शायद मौजूद हो, मगर वो आज़म जिसने कभी आपको इस रास्ते पर मजबूती से बांधा था, उसकी गिरहें आहिस्ता आहिस्ता ढीले होने लगती हैं। ये वहन है। कभी आपने आगाज में अपने दिल से एक अहद किया था कि मैं अपनी नमाज की हिफाजत करूंगा, आप करते थे। मैं अपनी निगाह की हिफाजत करूंगा, आप जद्दोजहद करते थे। कुरान से मेरा रोजाना ताल्लुक होगा, आपका वर्द था। हराम से बचूंगा, आप मुजाहमत करते थे। फजर की हिफाजत करूंगा, नींद भारी थी मगर दिल कहता था कि उठो। फिर वहन आया। उसने जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में छीन लिया हो, उसने सिर्फ गिरहें ढीली करना शुरू कर दी। पहले कुरान का वर्द रह गया, दिल ने कहा कि आज मसरूफ हूं, कल कर लूंगा। फिर नफल छूटा, फर्ज तो पढ़ रहा हूं ना। फिर निगाह की हिफाजत में पहले जैसी मुजाहमत नहीं रही, अरे जमाना ही ऐसा है। फिर फजर के लिए उठने की वो जंग कम हो गई। फिर हराम से बचने में पहले जैसी हसासियत न रही। फिर दीनी काम के लिए पहले जैसी तवानाई न रही। हर मरहले पर इंसान के पास एक छोटी सी दलील है, अगर वो तमाम छोटी छोटी तब्दीलियों को एक साथ रख कर देखे तो शायद उसे एक बड़ी तस्वीर नजर आए। मेरे अमाल से पहले मेरे अज़म में कमजोरी आई थी, और यही वहन है। अमल बाद में गिरता है, कभी उससे पहले दिल का अज़म ढीला पड़ता है। इसलिए वहन की तारीफ को एक मरतबा फिर जहन में बिठा लीजिए। अल्लाह की इताअत, इस्तकामत और खैर के रास्ते पर चलते रहने के लिए दिल में जो पुख्ता अज़म था, उस अज़म का आहिस्ता आहिस्ता खुलने और कमजोर होने लगना, यही वहन कहलाता है। अब इस रास्ते में मुश्किलात भी आएंगी, कभी नफ्स मुज़ाहमत करेगा, कभी माहौल, कभी घर के लोग, कभी माशरती दबाव, कभी अपनी ही थकन आपका इम्तिहान बनेगी। इस्तकामत का मतलब ये नहीं कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस्तकामत का मतलब है कि रुकावट तो आए मगर दिल का अहद न टूटे। वहन इस अहद पर ज़र्ब लगाता है। पहले दिल कहता था कि मुश्किल है मगर करना है। वहन के बाद दिल कहना शुरू करता है, अरे करना तो चाहिए मगर अब मुझसे नहीं हो रहा। और यही दोनों जुमलों के दरमियान वो बारीक फासला है जहां हमें अपने दिल को जब्त और कंट्रोल में लेकर आना चाहिए। सामिन किराम, वहन की पहचान के लिए एक खूबसूरत सवाल अपने साथ रखिए, ये कि मेरे अंदर उन नेकियों पर कायम रहने का अज़म किस हाल में है। क्योंकि कभी अमल अभी मौजूद होता है मगर उसके पीछे जो अज़म है वो जख्मी हो चुका होता है। दरख्त खड़ा है मगर जड़ों में बीमारी उतर चुकी है। इमारत अभी गिरी नहीं मगर अंदर की बुनियाद में दरार आ चुकी है। और साहिब बसीरत वो नहीं जो सिर्फ चिराग बुझने के बाद जागे, साहिब बसीरत तो वो है जो रोशनी मध्यम होते ही वजह तलाश करना शुरू कर दे। इसीलिए वहन को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इन्फिसाख व अज़ाइम अल-क़ुलूब, दिल के अज़म की गिरहें खुलने को इब्तिदाही में पहचान लिया तो अल्लाह की तौफीक से उन्हें दोबारा मजबूत किया जा सकता है, और अगर नज़रअंदाज कर दिया तो यही वहन आगे बढ़कर ज़ौफ़ बन सकता है, और ज़ौफ़ के बाद इस्तेकानत। लिहाजा अब सामिन किराम, प्रोग्राम के इस मरहले में चलें आपको बताते हैं वहन और ज़ौफ़ में क्या फ़र्क है। दोनों का तर्जुमा बज़ाहिर कमज़ोरी से किया जा सकता है, लेकिन अहले लुगत व तफ़सीर ने दोनों के दरमियान एक लतीफ़ फ़र्क की तरफ तवज्जो दिलाई है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह मफातिहुल ग़ैब में वहन को दिल की कमज़ोरी के मफहूम से बयान करते हैं। इसी तरह अबू हिलाल अस्करी रहमतुल्लाह ने अल-फ़ुरूक़ुल लुग़विया में वहन और ज़ौफ़ के इस्तेमाल के फ़र्क पर गुफ्तगू की है। हमारी मौजूदा गुफ्तगू के तनाज़ुर में उसे यूँ समझिए कि वहन पहले दिल में पैदा होता है, ज़ौफ़ के आसार फिर क़ुव्वत और अमल पर ज़ाहिर होने लगते हैं। यानी इब्तिदा में मसला ये नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कर तो सकते हैं, जिसम में ताकत भी है, वसाइल भी मौजूद हैं, मगर दिल पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। फ़र्ज कीजिए कि एक नौजवान कई बरस से दीन के रास्ते पर चल रहा है, पांच नमाजों की हिफाजत, हराम से बचने की कोशिश, निगाह की हिफाजत, कुरान का मामूल, इल्मी मजालिस में शिरकत, क़ियामुल लैल, सुनन व नवाफिल का अहतमाम वगैरह वगैरह, यानी उसके दिल ने अल्लाह की तरफ चलने का फैसला कर रखा है। फिर एक वक्त आता है कि बाहर से सब कुछ फौरन नहीं बदलता मगर अंदर से कुछ बदलने लगता है। पहले फजर के लिए अलार्म बजता तो नहीं

0: के बावजूद अंदर से एक आवाज उठती थी, उठो। अब अलार्म भी वही है, बिस्तर भी वही, जिस्म भी तकरीबन वही, लेकिन अंदर की आवाज मध्यम हो गई है। पहले कुरान का रोजाना विर्द रह जाए तो कमी महसूस होती थी, अब कई कई दिन गुजर जाए तो दिल उतना बेचैन नहीं होता। पहले हराम सामने आता तो दिल फौरन मुजाहमत करता था, अब दिल कहता है कि बस इतनी सी बात है। गौर कीजिए, अभी इंसान ने दीन नहीं छोड़ा, अभी नमाजें मौजूद हैं, अभी बहुत सी नेकियां जिंदगी में बाकी हैं, लेकिन अजम की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी है और यही वहन का इब्तदाई मैदान है। सामने कराम, इस कैफियत को कभी हम फतूर भी कहते हैं कि दिल की वो सुस्ती, वो बेरगबती जिसमें इंसान पहले जैसी आमादगी महसूस नहीं करता। अब एक बात और भी याद रख लीजिए कि हर फतूर तबाह कुन वहन नहीं होता। इंसान की तबीयत में नशीब व फराज आते हैं, कभी थकन, कभी बीमारी, कभी जहनी दबाव, कभी जिंदगी की जायज जिम्मेदारियां तवानाई कम कर देती हैं। ईमान की कैफियत भी हमेशा एक दर्जे पर नहीं रहती। खतरा उस वक्त है जब इंसान इस तब्दीली को मुस्तकिल मिजाज बनने दे, यानी पहले जो आरजी फतूर था मामूल बनने लगे, पहले एक दिन कुरान रह गया था अब हफ्ते गुजरने लगे, पहले कभी फजर की जमात रह गई थी अब उसके छूटने का अफसोस भी कम हो गया, पहले एक नेकी मुश्किल महसूस हुई अब नेकी से बचने के लिए मुसलसल रास्ते तलाश किए जाने लगे। मसला ये बन गया, मेरा दिल अब मुसलसल साथ नहीं दे रहा। और यही वो मकाम है जहां इंसान को रुक कर अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे साथ क्या बदला है। एक साल पहले, दो साल पहले कुरान के साथ रोजाना बैठना मेरी जरूरत थी, अब क्यों बोझ महसूस हो रहा है? कभी क्याम की चंद्रकात में सुकून था, अब मुसलसल क्यों छूट रही है? कभी गुनाह के सामने मेरे अंदर मजबूत मुजाहमत थी, अब समझौता इतनी जल्दी क्यों हो जाता है? सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि शायद उम्र के साथ जज्बा कम हो गया है, बात ऐसी नहीं, कभी दिल का मुआयना जरूरी होता है, क्योंकि मुमकिन है जिसे हम सिर्फ मसरूफियत कह रहे हैं ना उसके पीछे वहन हो, जिसे हम थकन कह रहे हैं उसके पीछे किसी कल्बी अजम की गिरा खुल रही हो, जिसे हम जिंदगी का नॉर्मल मरहला कहकर छोड़ रहे हैं वो दरअसल हमें किसी अगले मरहले की तरफ ले जा रहा हो। तो सामने कराम, इस पूरे सफर को तीन मरहलों की एक तरतीब से समझना बहुत मुफीद है। वहन, दौफ, इस्तकानत। वहन यानी दिल कमजोर पड़ने लगता है, अजम मौजूद है, नेकी मौजूद है, इंसान अभी रास्ते पर है मगर कदम के पीछे मौजूदा कुव्वत घट रही है। तस्वीर यूं समझिए कि एक शख्स बहुत देर से किसी चीज को मजबूती से थामे हुए था, वो मुकाबला कर रहा था, अभी नफ्स को रोकता था, इबादत के लिए अपने आप को उठाता था, गोया उसने अपने इरादे की मुट्ठी मजबूती से बंद कर रखी थी। फिर अचानक हाथ नीचे होने लगा, उसने अभी मैदान नहीं छोड़ा, बस मुजाहमत की कुव्वत कम हो गई, ये वहन है। लेकिन अगर यही कैफियत मुसलसल रहे, इंसान उसे पहचाने नहीं, उसके असबाब तलाश न करे, अपने कल्ब की गजा दुरुस्त न करे, तो जो कमजोरी पहले दिल के अजम में थी उसके आसार रफ्ता रफ्ता आमाल और जवारह पर जाहिर होने लगते हैं। अब सामने कराम, यहाँ हम दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं। वहन का दूसरा मरहला है दौफ, यानी पहले दिल कहता था मेरा दिल नहीं कह रहा मगर मैं फिर भी उठूंगा, अब कैफियत ये होने लगती है कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। पहले कुरान पढ़ने की रगबत कम थी मगर इंसान अपने आप को बिठा लेता था, अब कुरान खोलने की अमली कोशिश भी कम हो गई है। पहले फजर के लिए दिल में कश्मकश थी मगर उठ जाता था, अब जिस्म भी बिस्तर से ताउन नहीं करता। सामने कराम, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम दुआ का मफहूम और नुमाया हो जाता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल अज़्ज़ि वल कसल, ए अल्लाह मैं बेबसी और सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ। सुस्ती में इंसान के पास सलाहियत तो होती है मगर हरकत में कमी आ जाती है, जबकि आजिज में मामला मजीद गहरा महसूस होता है, इंसान खुद को अमल के लिए बेकुव्वत पाने लगता है। तो सामने कराम, हासिल गुफ्तगु यही है, इसके नक्शा को अगर हम इस तरह सामने रखें कि पहले दिल सुस्त पड़ना ये बड़ा ख़तरा है, फिर वो सुस्ती मुसलसल रही, फिर अमल कम हुआ, फिर बार बार अमल छोड़ने से बदन और मामूलात भी उसी कैफियत के आदी होने लगे, गोया पहले दिल ने हाथ छोड़ा फिर जवारह ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, खबरदार वो दिल है। समय ग्राम मोहन के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी अगले हलके में भी, तब तक के लिए तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से दे

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामीन, प्रोग्राम आज की दुआ में हम अहले ईमान की एक निहायत पुर असर दुआ पेश करेंगे जो कुरान करीम की सूरतुल फुरकान में मजकूर है। ये दुआ हमें अल्लाह के अजाब से डरने और उसकी पनाह मांगने का सबक देती है। मतन दुआ यूं है, ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما। ए हमारे परवरदिगार, हमसे जहन्नम का अजाब दूर कर दे, बेशक उसका अजाब बहुत चिमट जाने वाला और नहायत सख्त है, यानी ऐसा चिमट जाने वाला और दायमी अजाब जिससे नजात मुमकिन नहीं। अहले ईमान को यहाँ ये सिखाया गया है कि नेक अमाल और इबादत के बावजूद जहन्नम के खौफ से लरजते रहना चाहिए। इबादत के बावजूद खौफ खुदा जरूरी है। कामिल ईमान वाले अपनी नेकियों पर गुरूर नहीं करते बल्कि अल्लाह के अजाब से डरते हैं। जहन्नम से पनाह मांगना ईमान की अलामत है, क्योंकि कोई अपने अमल पर भरोसा नहीं कर सकता, बल्कि भरोसा तो सिर्फ अल्लाह की रहमत पर है। आइए हम सब मिलकर एक मरतबा फिर ये दुआ पढ़ें। ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما।
2: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
2: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
4: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
5: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
6: आप सुन रहे हैं FM 107,
7: दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सभी किराम, जब कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करे तो अच्छा जवाब देना आसान है, जब कोई एहतराम से बात करे तो एहतराम से बात करना भी आसान है, लेकिन अखलाक का असल इम्तिहान वहाँ शुरू होता है जहाँ सामने वाला जान बूझ कर आपको तकलीफ पहुँचाना चाहे, तंज करे, बदतमीजी करे, ऐसा जुमला कहे जो दिल को लगे आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तब सवाल ये नहीं रहता कि सामने वाले का अखलाक कैसा है असल सवाल तो ये हो जाता है अब मेरा अखलाक कैसा रहेगा उरवा इब्न जुबैर रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कुछ यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम के बजाय अल्फाज बदल कर कहा अस्सलामु अलैकुम यानी तुम पर मौत हो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके अल्फाज समझ लिए और जवाब में फरमाया तुम पर भी मौत और लानत हो वालेकुम अस्सलाम वल लानत हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहरो आयशा बेशक अल्लाह ताला हर मामले में नरमी को पसंद फरमाता है महलन या आयशा इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क फिल अम्र कुल्लिही आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह क्या आपने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा फकुल्तु या रसूलुल्लाह अवलम तस्मा मा कालू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कह दिया था वअलैकुम और तुम पर भी قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم سامعین کرام اس واقعے کا بہت اہم پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الفاظ کو غلط نہیں سمجھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں نے سنا ہے اور جواب بھی دے دیا ہے وعلیکم یعنی خاموشی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے اپنے رد عمل کو قابو میں رکھا اور یہی اصل قوت ہے سامنے کہ یہاں سے زندگی کا ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے کہ دوسرے شخص کا رویہ یہ طے نہ کرے کہ آپ کا رویہ کیسا ہوگا وہ سخت بولے تو ضروری نہیں کہ آپ اس سے زیادہ سخت بولیں وہ بدتمیزی کرے تو ضروری نہیں کہ آپ اپنی زبان کا معیار بھی گرا دیں کیونکہ اگر ہر شخص ہمارے اخلاق کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ پہ لے لے تو پھر ہمارے اخلاق ہمارے کہاں رہے اس نے غصہ دلایا ہم غصے میں آ گئے اس نے گالی دی ہم نے گالی دے دی اس نے طنز کیا ہم نے دو طنز واپس کر دیے پھر ہمارے رد عمل کا مالک کون ہوا ہم یا سامنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ ٹھہرو عائشہ کتنا خوبصورت سبق ہے غصے میں انسان کو سب سے پہلے شاید اسی لفظ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھہرو جواب بعد میں پہلے ٹھہرو پیغام بعد میں بھیجا جا سکتا ہے کچھ لوگ بہت ہی دقیق اور باریک حسابات رکھتے ہیں کہ تم نے 3 دن پہلے یہ کہا تھا پچھلے مہینے بھی تم نے یہی کیا تھا میں نے تمہیں فون کیا تھا تم نے 7 منٹ بعد جواب دیا اگر گھر میں ہر چھوٹی بات پر عدالت لگے تو رشتے تھک جاتے ہیں کبھی ازدواجی زندگی میں کبھی دوستی میں کبھی خاندان میں کبھی چیزوں کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے بہترین علاج صرف یہ ہے کہ نظر

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो, तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है, हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं, तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो, तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

पास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और आज भी कमाल की वेबसाइट्स हैं, मजेदार वेबसाइट्स हैं। और आज मैंने सोचा कि ना सिर्फ काम आने वाली वेबसाइट्स मगर ऐसी हों जिनमें नॉस्टैल्जिया छुपा हो। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होनी चाहिए ना जो आपको बैठे बैठे कहें यार ये तो बड़ी कमाल की चीज बता दी, इसने बढ़िया टाइम पास हो रहा है मेरा। तो आज टाइम पास करने के लिए भी कुछ चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। नंबर वन ऑन द लिस्ट वेबसाइट का नाम है cartoons.me, पर ये C से शुरू नहीं होता कार्टून्स, ये K से शुरू होता है। सो KARTOONS.ME cartoons.ME। अब क्या होगा, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको अपने बचपन के बहुत सारे कार्टून्स नजर आएंगे जो आप लिटरली देख सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं, माँ बाप मैंने देखे तो चाहते हैं बच्चों को वो कार्टून्स दिखाएं जो 1990s में अर्ली 2000s में आते थे, क्योंकि उन कार्टून्स में कुछ बात थी यार, वो एक चार्म थी उसमें, बड़ी कमाल की चीज थी। अभी तो पर वो जो कार्टून्स थे वो देखने लायक थे, उसमें आप कुछ भी देख सकते हैं और पूरी लिस्ट आपके सामने जाएगी, जस्ट हैव टू क्लिक एंड प्ले इजीली। सो cartoons.me पे आप जा सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए नहीं, यू कैन आल्सो जस्ट सिट टाइम पास कर रहे हैं एंड जस्ट वांट टू वॉच। मैं इस पर करेज द काउली डॉग देख के आया हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। सो KARTOONS.ME अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली जो वेबसाइट है ये बड़ी काम की है, इसका नाम है लूट और आगे हाइफन या डैश drop.io। ध्यान से सुनिएगा, गलती हो सकती है। लूट LOOT लूट, फिर डैश, फिर ड्रॉप DROP.IO। ये सुनिएगा गौर से, वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको दुनिया जहां में जितने भी स्टार्टअप्स बनाए गए बिजनेस आइडियाज के तौर पे आगे ले जाया गया और वो फेल हो गए, तो वो कहां फेल हुए और क्या सही कर सकते थे वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये लिटरली केस स्टडी है और बड़ी बड़ी कमाल की चीज है। आपको कोई बिजनेस आइडिया आप देख सकते हैं, बिजनेस आइडिया ऐसा किसी ने कभी ट्राई किया है, और अगर किसी ने ट्राई किया है तो क्या वो फेल हुआ है, और अगर फेल हुआ है तो कहां फेल हुआ है, और अगर फेल हो गया ये करके तो क्या करके वो कामयाब हो सकता था, सारी डिटेल आपको मिलेगी। सो प्लानिंग समथिंग इन फ्यूचर, आई थिंक बहुत बहुत कमाल की चीज है। मुझे भी दो तीन चीजें नजर आई, हालांकि मेरे अंदर बिजनेस एक्यूमन माइनस में है तो मैं सोच भी नहीं सकता, बट यू हैव इट इन यू तो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं वेबसाइट का नाम फिर से बता देता हूँ, लूट LOOT डैश ड्रॉप DROP.IO। ठीक है, चलो अब आए हो तो तीसरी भी सुन लो। अगली वेबसाइट का नाम है myemulator.cc myemulator EMULATOR myemulator.cc। इसमें जब आप जाएंगे तो निंटेंडो के बहुत सारे गेम्स जो अर्ली एरा के थे, जो रेट्रो गेम्स हैं, वो सारे के सारे आप इजीली खेल सकते हैं। छोटियों का खेले भाई, ये बहुत बढ़िया टाइम पास है, मुझे बड़ा मजा आया इसको एक्सप्लोर करने में, एंड आई लव्ड इट कि मैं इजीली सुपर मारियो ब्रदर्स 3 खेल सकता हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि उसमें उसकी पूंछ होती थी मारियो की, उड़ा करता था। जिन्होंने मारियो को बहुत दिल लगा के प्यार किया वही जानते हैं, तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, मतलब खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो खबर देखिए बड़ी सिंपल सी है लेकिन बड़ी कमाल की है, बड़ी हैरान कर देने वाली है। दुनिया में अब वायर्ड एयरबड्स आना शुरू हो चुके हैं। पता नहीं आपको इस बारे में अभी जानकारी मिली है कि नहीं, पर रीसेंट टाइम्स में देखा होगा कि लोग जो हैं वो वायरलेस एयरबड्स छोड़ के वायर्ड वाले की तरफ जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसका सबूत दो, मैं आपको सबूत देता हूँ। बोस जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, वो वायर्ड हेडसेट बना चुकी है, मार्केट में उतार दिया, एंड पीपल आर लविंग इट। तो ये जो पीछे पहिया घुमा है ये भी बड़ी कमाल की चीज है। पीपल आर नाउ विलिंग टू बाय वायर्ड हेडसेट क्योंकि लग रहा है भाई यही सही है। वो जो आपको याद है मॉडर्नाइज सीडी प्लेयर का जमाना था, तो बोस ने कहा कि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो उन्होंने इसके अंदर काफी सारी चीजें डाली हैं। एयरबड्स में कनेक्टिविटी दी है, 4.2 फुट लॉन्ग USB-C केबल, और इसमें काफी कंट्रोल्स हैं जो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे, और ANC सेटिंग मोड भी है, तो क्वाइट मोड भी है, अवेयर मोड भी है, और नॉइस कैंसिलेशन भी है। तो कमाल है यार ये, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और इसमें लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट भी डाला है ताकि नॉइस कैंसिलेशन आपको उतनी ही लेवल की मिल सके। एक्सलेंट, ये थी अपडेट, मिलते हैं अगली वाली में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: wake up. Hey, Doha wala mein kabir.
1: Yehi kahunga. Subah subah.
0: Wake up. Har hafte Sunday to Thursday subah 6 baje se sirf FM 107 par. Dil se desi.
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी
4: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं और उम्मीद है कि इन स्कैम्स के शो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं ये थोड़ा सा इमोशनल फ्रॉड अवेयरनेस का या स्कैम का शो हो सकता है, क्योंकि ये आपके हेल्थ से, आपके फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके रिलेटिव के हेल्थ से रिलेटेड ये स्कैम हो सकता है। ये स्कैम क्या है? इस स्कैम का नाम है ट्रीटमेंट स्कैम। दोस्तों ये स्कैम काम कैसे करता है सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। ट्रीटमेंट स्कैम एक निहायत ही संगीन धोखा है एक्चुअली, जहां प्रेडेटरी स्कैमर्स ऐसे मजबूर लोगों को टारगेट करते हैं जो किसी बीमारी के इलाज की तलाश में होते हैं। ये स्कैमर्स ऑनलाइन अनऑथराइज्ड हेल्थ सर्विसेज, फेक क्लिनिकल स्कीम्स और ऐसी मेडिकल कंसल्टेशंस मार्केटिंग के जरिए बेचते हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपने झूठे दावों को सच साबित करने के लिए वो नकली क्लिनिकल ट्रायल्स रिजल्ट और धोखेबाज मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हैं। बेबस और परेशान मरीज मदद की उम्मीद में अपनी जेब से बहुत बड़ी रकम ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो बिल्कुल बेअसर होती हैं, जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंट होलिस्टिक क्लिनिकल रिजर्वेशंस या नकली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इस फ्रॉड की वजह से ना सिर्फ लोगों का बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है बल्कि मरीजों का असली और प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत डिले हो जाता है, जो उनकी जान के लिए खतरनाक साबित होता है। दोस्तों कई बार ये स्कैमर्स मरीज के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं या फिर उनके इस तरह के इलाज जो बहुत ज्यादा महंगे हैं उनको सस्ता करके भी दिखाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मरीज के मेडिसिन को सस्ता कर बेचते भी हैं। और ये प्रोडक्ट यानी कि मेडिसिन आपके पास आता भी है लेकिन ये नकली भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने के कुछ तरीके भी हैं, और जो सबसे पहला तरीका है वो है हमेशा सर्टिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाना। किसी भी ऑनलाइन मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हमेशा किसी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ही अपना इलाज करवाएं। कई बार ऑनलाइन कोई डॉक्टर बना बैठा है और कहता है कि भाई वो किसी प्रॉब्लम को या किसी मेडिकल या किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम को आसानी से सही कर सकता है, वो सिर्फ 200 या 500 कतरी रियाल लेता है या फिर इंडियन रुपीस लेता है या पाकिस्तानी रुपीस लेता है और वो आपको आसानी से ट्रीट कर सकता है ऑनलाइन। वो आपसे बैठेगा, बात करेगा, वो कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जो कि डॉक्टर ही इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप इस तरह के झांसे में आ जाते हैं और फिर आप उनको कंसल्टेशन फीस दे देते हैं। उसके बाद आप जो उन्होंने मेडिसिन बताया है आप वो मेडिसिन भी खरीद लाते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह से आपको फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होता है। मेडिसिन का पैसा आ जाता है, उन्होंने जो आपको मेडिसिन के बारे में बताया वो भी इलॉजिकल किसी भी तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी हेल्थ को सही नहीं करता है, और फिर आपके साथ हो जाता है स्कैम, क्योंकि

0: आप कंसल्टेशन फीस भी दे चुके हैं। उसके अलावा मेरेकल क्योर्स और झूठे दावों से भी बचें। अगर कोई प्रोडक्ट या क्लिनिक अचानक हर तरह की पुरानी या लाइलाज बीमारियों को फौरन ठीक करने का दावा करे तो होशियार हो जाए। मेडिकल साइंस में हर चीज का एक प्रॉपर और सर्टिफाइड प्रोसीजर होता है। तीसरा तरीका है इन स्कैम से बचने का, हेल्थ अथॉरिटीज की वेरिफिकेशन करना। किसी भी नई दवा, हेल्थ प्रोडक्ट या क्लिनिक की रिजर्वेशन करने से पहले चेक करें कि क्या वो आपके मुल्क की ऑफिशियल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं। दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को स्कैम होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शो से काफी कुछ पता चला होगा कि कैसे ये हेल्थ को लेकर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको टारगेट कर सकते हैं, आपको स्कैम कर सकते हैं, आपकी जेब को, आपकी हेल्थ को लेकर खाली कर सकते हैं। इसलिए आज के वक्त में नए जमाने के नए स्कैम को समझने के लिए जरूरी है कि आप होशियार रहें और सुनते रहें FM 107, क्योंकि इस तरह के स्कैम के बारे में हर रोज मैं आपको इत्तला करता हूं और आगाह करता हूं, और आप उम्मीद है कि होशियार भी बन रहे होंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको अलर्ट करते हुए। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऐसे नाम की जिन्होंने पहले बैट से अपने मुल्क का नाम रोशन किया और अब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई जिम्मेदारी संभाल रहा है। ये नाम है तमीम इकबाल खान। तमीम इकबाल बांग्लादेश के सबसे मशहूर ओपनिंग बैटर्स में शुमार होते हैं। 1989 में चट्टोग्राम में पैदा होने वाले तमीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2007 में कदम रखा। उनकी एग्रेसिव बैटिंग, कवर ड्राइव्स और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ कॉन्फिडेंस ने बहुत जल्द उन्हें बांग्लादेश नेशनल टीम का अहम हिस्सा बना दिया था। तमीम ने अपने इंटरनेशनल करियर में 70 टेस्ट, 243 ODIs और 78 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और तीनों फॉर्मेट्स में मिलाकर 15,249 रन बनाए। देखा जाए तो वह बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन का माइलस्टोन क्रॉस किया। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 सेंचुरीज भी शामिल हैं। सो दैट्स एन एस्टाउंडिंग फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ बांग्लादेशी फॉर्मर क्रिकेटर हु हैज बिकम अ रोल मॉडल और अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। तमीम की खास बात ये थी कि वो तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले बांग्लादेश के पहले और अब तक वाहिद बैटर हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका हाई स्कोर 206 है जबकि ODI क्रिकेट में उन्होंने 158 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स खेली। T20 इंटरनेशनल में भी तमीम ने सेंचुरी बनाई और 2016 T20 वर्ल्ड कप में ओमान के खिलाफ 103 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। आपने सुना 2016, विच मीन्स तमीम इकबाल इज नॉट अ पास क्रिकेटर। आई मीन कहने का मतलब है कि 40 साल पुरानी बात नहीं है, बहुत बहुत रीसेंट बात है। और ही हैज बिकम द यंगेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट। एंड ये जो सिलेक्शन, जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो पिछले साल किया गया था। एंड उसके बाद अगर हाल की परफॉर्मेंस की बात करूँ फॉर बांग्लादेश क्रिकेट टीम, तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने कई ऐसे यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं जिससे ये साबित होता है कि तमीम इकबाल की लीडरशिप सही रास्ते पर है, सही डायरेक्शन पर है। 2011 में तमीम इकबाल को विजिटिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऑनर भी मिला और ये अवार्ड उनके इंटरनेशनल करियर का अहम अचीवमेंट्स में से एक है। बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए तमीम इकबाल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे बल्कि कप्तान भी रहे। 2019 से 2023 तक उन्होंने बांग्लादेश की ODI टीम की कप्तानी की और उनकी लीडरशिप में बांग्लादेश ने 35 ODIs में 21 मैचेस में फतेह हासिल की। 2023 में तमीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी 17 साल की सर्विसेज को सैल्यूट किया। उनका इंटरनेशनल करियर 2007 से 2023 तक वाज स्प्रेड आउट एंड 16 सालों में तमीम इकबाल ने एस्टैब्लिश किया कि साउथ एशियन, स्पेशली बांग्लादेश जैसे एक मुल्क से जो क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करती है, वहां पर ये एक तरह का डैशिंग ओपनर, स्टाइलिश बैट्समैन तमीम इकबाल डिफाइंस एवरी मोमेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट ग्लोरी। स्पेशली मुझे याद आता है 2007 वर्ल्ड कप में जब तमीम इकबाल की उस शानदार पारी ने इंडिया को मात दी थी। आई मीन बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया। दैट वाज अ शॉकिंग रिजल्ट एंड अ बिग रिजल्ट फ्रॉम बांग्लादेश क्रिकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन तमीम इकबाल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 2026 में उनकी क्रिकेट जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। पहले वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एडहॉक कमेटी के हेड बने और फिर 7 जून 2026 को BCB के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। तमीम BCB के 18th प्रेसिडेंट और 6th इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। यानी जिस शख्स ने सालों तक बांग्लादेश के लिए क्रीज पर ओपनिंग की, वो अब बोर्ड रूम में बांग्लादेश क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए फैसला कर रहा है। तमीम इकबाल का सफर एक क्रिकेटर से एडमिनिस्ट्रेटर तक का सफर है और ये एक तरफ उनके नाम हजारों इंटरनेशनल रन्स हैं तो 25 सेंचुरीज और कप्तानी का तजुर्बा है और दूसरी तरफ उनके सामने अब बांग्लादेश क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लीड करने की जिम्मेदारी है। तमीम इकबाल बांग्लादेश का स्टार ओपनर, फॉर्मर कप्तान और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी दस्तरखान पर कुछ खाने अपने सादा अज्जा की वजह से मशहूर होते हैं। सुरेद एक ऐसा रिवायती खाना है, रोटी, सब्जियों और गोश्त से तैयार होने वाला ये खाना सादगी को भरपूर जायके में बदल देता है। सुरेद में आमतौर पर पतली रोटी खास तौर पर रुक्का को टुकड़ों में रखा जाता है, फिर इसके ऊपर गोश्त, सब्जियों और मसालों से तैयार गर्म शोरबा डाला जाता है। रोटी शोरबे को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और नरम, खुशबूदार और दिल को गर्म करने वाला खाना बन जाता है। इस खाने में आलू, गाजर, टमाटर, तुरई और प्याज जैसी सब्जी शामिल की जा सकती है। गोश्त या मुर्गी के साथ पकाए जाने वाले अंदाज के अलावा सब्जियों वाला सुरेद भी तैयार किया जाता है। हर घर की रेसिपी में मामूली फर्क हो सकता है, मगर इसका बुनियादी निजाम यानी रोटी को खुशबूदार शोरबे के साथ पेश करना हमेशा कायम रहता है। सुरेद को समझने के लिए हमें पुराने गर्ल्स घरों को, जो उनकी जिंदगियां होती थीं, उनको जहन में लाना होगा। ऐसे खाने उस जमाने में पसंद किए जाते थे जो सादा अज्जा से तैयार हो जाए, ज्यादा लोगों के लिए काफी हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग खा भी लें और साया कम से कम हो। बची हुई रोटी या फिर दस्तियाब सब्जियों को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता था कि सिर्फ पकाने का हुनर नहीं बल्कि चीजों को कदर करने की एक सोच भी थी। कतर में सुरेद का ताल्लुक खास तौर पर रमजान और खानदानी जमात से जुड़ा हुआ है। अफ्तार के वक्त गर्म शोरबे वाला ये खाना लोगों को ताकत और सुकून देता है। कई घरों में इसे फैमिली गैदरिंग या खास मौकों पर भी पेश किया जाता है। सुरेद की सबसे दिलचस्प बात इसकी बनावट है। अगर रोटी बहुत देर तक शोरबे में रहे तो बिल्कुल घुल सकती है, और अगर बहुत कम वक्त के लिए मिले तो जायका अंदर तक नहीं जाता। इसलिए तजुर्बेकार खवातीन और बावर्ची जानते हैं कि रोटी और शोरबे का तवाजुन किस तरह से कायम करना है। इस खाने का रिश्ता सिर्फ किचन से नहीं बल्कि मेहमान नवाजी से भी है। बड़ी थाली में पेश किया गया सुरेद कई लोगों को एक साथ बैठने का मौका देता है। लोग खाना खाते हुए बातें करते हैं, एक दूसरे का ख्याल पूछते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लम्हे शेयर करते हैं। यही वजह है कि सुरेद को कंफर्ट फूड कहा जाता है। इसकी गर्माइश सिर्फ शोरबे से नहीं आती बल्कि उन यादों से आती है जो घर, बुजुर्गों और मिल बैठने से जुड़ी होती हैं। कतरी कुजीन की एक खूबी ये भी है कि वो साहिल और सहरा दोनों माहौल से मुतासर नजर आती है। सुरेद में इस्तेमाल होने वाली रोटी और सब्जियां रोजमर्रा जरूरियात और दस्तियाब चीजों की तरफ इशारा करती हैं, जबकि गोश्त और मसाला जो भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो मेहमानों के लिए फराकी को जाहिर करता है। आजकल इस रिवायती खाने को रेस्टोरेंट्स और कल्चरल इवेंट्स में भी पेश किया जाता है। कुछ लोग इसे गोश्त के बजाय सब्जियों से बनाते हैं, जबकि कुछ घरों में पुराना खानदानी तरीका अभी भी जिंदा है। नए अंदाज जरूर आए हैं, लेकिन सुरेद की बुनियादी पहचान यानी रोटी का शोरबे के साथ मेल अब भी कायम है। अगर आप इसे पहली मर्तबा चख रहे हो तो सिर्फ इसे रोटी और शोरबे का सादा मेल ना समझें। इसमें कतर की पुरानी जिंदगी, घर के इंतजाम, मेहमान की इज्जत और एक साथ मिलकर बैठने की रिवायत झलकती है। आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा यह है कि सुरेद एक ऐसा खाना है जो सादगी से तैयार होता है लेकिन अपने अंदर तारीख, मोहब्बत और जमात की गर्मजोशी लिए हुए होता है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: हाँ जी ये बदली सी आवाज सुन लो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का मेरा नाम है फजील और ये शो है स्पोर्ट्स न्यूज का इट्स अ गोल
3: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: ये थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया इसलिए मोहम्मद अमीन का नाम है लेकिन आज ये बदली हुई आवाज़ यानी कि फजील के साथ है आप और इसका रीज़न ये है कि अमीन भाई छुट्टी पे हैं एक खास ज़रूरी काम जो है अमीन भाई के पास आ गया लेकिन इन सब के बीच आपको जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है स्पोर्ट्स की दुनिया से खबरें हैं वो सारी खबरें इस शो में मिलती रहती है और इस शो में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है सवाल जहां पर आप सवाल के साथ खेलते हैं और इस खेल में आपको जवाब देना होता है 666-22107 पे आज तक आपने वैसे इससे पहले यानी कि जुलाई के मंथ में मैं यहाँ पर था और काफ़ी सवाल का आप लोगों ने जवाब दिया था क्योंकि खिलाड़ी तो आप हैं ही हैं और आज भी हम सवाल पर ही खेलेंगे और आज का सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि अमीन भाई जो है ये सवाल लेकर आते तो भी आप इसका जवाब दे पाते और मैं थोड़ा अलग तरह से पूछ रहा हूँ एक ज़माने में स्विंग को लेकर ना या बॉलिंग को लेकर नाम बहुत ज़्यादा दिया जाता था क्योंकि आजकल तो क्या है कि IPL वगैरह शुरू हो गया है इतने ज़्यादा बॉलर्स आपको दिखाई देते हैं तो आप नाम नहीं दे पाते हैं है ना लेकिन जब ज़हीर खान हुआ करते थे या फिर मैकग्राथ वगैरह हुआ करते थे ज़बरदस्त बॉलर हुआ करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा नए बॉलर नहीं आते थे तो आपको इतना पता नहीं होता था इसलिए आप नाम दिया करते थे उस दौर में जैसे एक विस्परर का नाम दिया गया था वेस्ट इंडीज़ के ख़तरनाक बॉलर थे उनकी हाइट बहुत अच्छी थी कैसी भी पिच हो कम बाउंस वाली भी पिच हो तो उनकी हाइट का एडवांटेज उनको मिला करता था और जब भी वो बॉलिंग कराते थे गुड लेंथ से कान के पास से होकर वो बॉल जाती थी तो बॉल जब बहुत तेज़ हो और कान के पास से जा रही हो या बैट्समैन के पास से जा रही तो आवाज़ निकलती फर्र करके आवाज़ निकलती है और इस आवाज़ से होता ये है के लोग नाम दे दिया करते थे और उस ज़माने में जब वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हुआ करते थे बड़े तगड़े हाइट अच्छी रफ्तार तेज़ उछाल भी बॉल की बहुत अच्छी हुआ करते थे कान के पास से गुजरती थी तो डेथ विस्परर का नाम दे दिया गया और भी ऐसे कई नाम जो है वो दिए गए जब स्विंग की बात आई तो स्विंग को भी लेकर नाम दिया गया तो एक नाम था सुल्तान ऑफ स्विंग तो ये आज का सवाल है सुल्तान ऑफ स्विंग

किस बोलर के लिए कहा जाता था, ये आज आपको जवाब बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर है 666-22-107, 666-22-107, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जहां पर आप हमें जवाब दे सकते हैं। और मुझे लगता है बड़ा सिंपल सा है, और 082 वाले भैया कॉल कर रहे हैं प्लीज़ कॉल ना करें क्योंकि हम कॉल नहीं उठा पाएंगे। आप बेहतर है कि व्हाट्सएप पर जवाब दें, और कॉल कर रहे हैं अगर तो 443-443-77 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कॉल कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22-107, दो अलग नंबर, एक नंबर अलग 666-22-107 ये व्हाट्सएप वाला है, लैंडलाइन का है 443-443-77। वेल दोस्तों, सुल्तान ऑफ स्विंग किस बॉलर के लिए यूज किया जाता था, ये आपको जवाब बताना है। और नंबर जिस पे आपको मैसेज करना है तो वो है 666-22-107, और लैंडलाइन का नंबर है 443-443-77। ये जो दूसरा नंबर है इस पे कॉल कर सकते हैं। बाकी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है या क्या कुछ हुआ बाकी गेम्स में, जैसे कि एशियन गेम्स और कतर नेशनल टीम ने क्या अचीव किया है कल के दिन, उस पर बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे सैटरडे छुट्टी थी, ज्यादा आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन सबसे बेहतरीन बात है टीम कतर ने 3-3 बास्केटबॉल में एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल जीत लिया है, और ये एक बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से कतर खेल को, मैं ये नहीं कहूँगा कोई स्पेसिफिक खेल, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, पिकल बॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, बीच वॉलीबॉल हो, हर एक खेल को प्रमोट कर रही है, और ऐसे ही खिलाड़ी जो हैं वो अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और 3-3 बास्केटबॉल में कतर ने एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल जीत लिया है। 3-3 बोले तो बास्केटबॉल में तीन प्लेयर एक। सो मेडल सेलिब्रेशन जो है कतर डेलीगेशन ने नुगाया 2026 में शानदार सिल्वर मेडल की जीत का जश्न भी बनाया, क्योंकि यार ये जश्न का माहौल तो है ही है, क्योंकि बास्केटबॉल की टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और उम्मीद है कि मेडल जो है वो गोल्ड मेडल तक भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त इसमें लगेगा क्योंकि हम अब तैयार हो रहे हैं। यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, कतर के जो प्लेयर्स हैं, वो तैयार हो रहे हैं। आप देखें जो स्कूल्स हैं, जो स्टेडियम्स हैं, खिलाड़ियों की जो जगहें हैं ना, वो भरी रहती हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खुश नसीबी की बात है कि आप इस ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर खेल को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। फिर हैंडबॉल की भी सक्सेस रही, कतर हैंडबॉल टीम ने जापान को हरा कर क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह को पक्का कर लिया है। सो आप कतर में जब फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स जब देखेंगे, कतर हैंडबॉल टीम आपको देखने को मिलेगी, और जापान को हराया है तो ये बहुत ही बड़ी एक तरह से अचीवमेंट है। स्विमिंग में भी एक अपडेट है एशियन गेम्स कतर नेशनल टीम को लेकर, और वो है साद एडिन को लेकर। साद एडिन ने 400 मीटर की फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और 6th पोजिशन हासिल करी। नाम याद रखिएगा, साद एडिन, और 400 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबले में 6th पोजीशन हासिल की है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये साद जो है बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी बनेंगे और 6th के बजाय 1st पोजीशन भी हासिल करेंगे। अब बात कर रहे थे घुड़सवारी की, यानी कि इक्वेस्ट्रियन की। टीम कतर की इक्वेस्ट्रियन जोड़ी अब इंडिविजुअल ड्रेसेज कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, और उम्मीद है कि ये जो खेल हम देखेंगे ये भी एक यूनिक खेल होगा, और इस घुड़सवारी में भी कतर अचीव करेगा, और कुछ ऐसा अचीव करेगा जिसके बारे में हम यहाँ पर खबर बताएंगे, हम आपको शो में बताएंगे, जिस शो का नाम है ऑब्वियसली इट्स अ गोल। तो सवाल की तरफ हम बढ़ चुके थे, और सवाल मैंने पूछ भी लिया था, कई लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों जहां पर आप जवाब दे सकते हैं, नंबर है 666-22-107, 666-22-107। सुल्तान ऑफ स्विंग किस बॉलर के लिए यूज किया जाता था, अगर आपने अभी ट्यूनिंग किया है तो एक जमाने में बहुत ही आम हो गया था कि किसी भी बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए ना लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि आजकल IPL, PSL इतने सारे बॉलर हो गए, और बॉलर को भी वैसे बैट्समैन ज़्यादा बैटिंग करने लगे, अब तो बैटर ही ज़्यादा लोग करने लगे, लेकिन वो माहौल अब नहीं रहा जो बॉलर के लिए एक ज़माने में हुआ करता था। अगर बॉलर कुछ यूनिक कर रहा है तो उसको नाम दिया जाता था, रिवर्स स्विंग अगर है तो उसके लिए अलग नाम, स्विंग बॉलर है अलग नाम, है ना, बहुत अच्छी बाउंस है अलग नाम।

ज़्यादा बॉडी पर अगर यू नो बॉडी लाइन पर बोल कर आ रहा है और बैट्समैन पिक नहीं कर पा रहा, उसे चोट लग रही है, अलग नाम। सो ऐसे ही नाम दिया गया था सुल्तान ऑफ स्विंग, एक लेजेंड।

0: इंडियन टीम को भी बहुत बार हराया है, ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत बार हराया है, मतलब बॉलिंग में तो किंग थी ये टीम। आपको बताना है, अब ऑब्वियसली टीम का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन तबाही अगर मचाने वाला कोई बॉलर था सुल्तान ऑफ स्विंग तो वो यही था। यॉर्कर भी कर रही थी, इवन इनको टो क्रशर का भी नाम दिया गया था, लेकिन अब इस मजीद चीज के बारे में और नहीं बताएंगे वरना फिर रहेगा क्या। बाकी मैसेज की तरफ आते हैं, और सबसे पहला मैसेज जो आया है वो है स्विंग ऑफ सुल्तान। ओके, यहां पर दो है बातें, इनमें से एक्चुअली दो लोगों को कहा जाता था, लेकिन जवाब तो एक ही होगा ना, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि ये, लेकिन नाम आपने लिखा नहीं है भाई, एक ने तो जवाब दे दिया है लेकिन नाम लिखा नहीं है। मैं ढूंढ पा रहा हूं लेकिन आपका नाम नहीं है, बट आपने खैर जवाब जो है वो बिल्कुल सही दिया है। आपका नाम है मुबशिर फरहान, हाँ ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर मुबशिर फरहान ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हुए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुबैर बलोच हेयर, और फलाने टीम के जबरदस्त प्लेयर, बिल्कुल सही जवाब दिया जुबैर बलोच साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, बिल्कुल सही जवाब है, इनका नाम है रहमान। रहमान ने भी सही खेल का मुजाहरा किया और कहा कि स्पोर्ट्स की जानकारी तो हमें भी है बाबू। आई लव, ठीक है, आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है भाई ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है, और ये प्रोफाइल पे इनका नाम है, नाम मेरे को नहीं पता बट जवाब परफेक्ट। फिर उसके बाद साकी साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और स्पोर्ट्स की दुनिया का खबर भाई अपना रखता है, बहुत ही उम्दा, सही है, स्पोर्ट्स की दुनिया के हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से फजू भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप सुनाएं आप कैसे हैं। फरहत साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और किस प्लेयर को कहा जाता है, बिल्कुल सही। हरजिंदर ने भी सही जवाब दिया है, क्या बात है यार, बहुत ही फैन रहे हैं इस प्लेयर के जिनको सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता है। इमरान खान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा। फिर एहसान अली ने, ठीक है ये जवाब मैं मान सकता हूँ लेकिन नाम लिखो यार, एहसान साहब थोड़ा एहसान कर दो नाम लिखकर। फिर एक और जवाब है, बिल्कुल सही जवाब इनका भी है, और नाम जो है इनका है नसीम साहब। नसीम साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। अबू हमद ने भी सही जवाब दिया, अहमद सॉरी, रिजवान साहब ने भी सही जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान के प्लेयर हैं ये, चलो मैं इस बात को तो आसान कर देता हूँ, पाकिस्तान के प्लेयर है। शेख अहमद अबू इमाद ने सही जवाब दिया है, असद ने भी सही जवाब दिया है, वसीम साहब ने सही जवाब दिया, हयात खान ने सही जवाब दिया, हयात भाई बहुत ही उम्दा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हुसैन मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद, स्विंग ऑफ सुल्तान, ओके बिल्कुल सही जवाब। मुमताज साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, और मुमताज ने भी सही जवाब दिया है। और फिर आखिर में इकराम साहब ने भी खेल का मुजाहरा करते हुए कहा कि यार अब के खेल का तो पता नहीं क्या नाम है क्या नहीं, लेकिन पुराने जमाने में बहुत फॉलो किया करते थे ये क्रिकेट, और बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो सवाल है, सुल्तान ऑफ स्विंग किस बॉलर के लिए नाम यूज किया जाता था? इसका जवाब आपको देना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है 666-222-107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कल के क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे, और फिर बहुत सारी ऐसे न्यूज भी हमारे पास है जिसके बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा ब्रेक, वापस कुछ ही देर में, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और जहनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं, अगर सही इंतखाब किया जाए। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

स्टूडियो की घड़ी में 1:19 अब वक्त आ गया है कि जो आने वाले टूर्नामेंट है उनके बारे में भी बात कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक हमने जो बात करी है कि

पिछले हफ्ते क्या हुआ, वीकेंड में क्या हुआ, बास्केटबॉल में सिल्वर जीता कतर की टीम ने, हैंडबॉल में भी सक्सेस मिले, क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुकी है कतर की टीम, स्विमिंग की भी अपडेट दी, और फिर घुड़सवारी यानी कि इक्वेस्ट्रियन में जो गेम होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, उस पर भी बात करें। लेकिन आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि बड़े ही लाजवाब होने वाले हैं। 2026-27 मेंस जनरल लीग चैंपियनशिप का स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, और ये है कतर बास्केटबॉल लीग। कतर बास्केटबॉल फेडरेशन ने 2026-27 मेंस जनरल लीग चैंपियनशिप का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है। इसमें 9 क्लब्स 10 अक्टूबर से खिताब के लिए खेलेंगे, लड़ेंगे, और हमें पता चलेगा कि लीग का चैंपियन कौन बनेगा। और ये जो गेम शुरू होने वाला है तो 10 अक्टूबर से यानी कि आज से 6 दिन बाद आपको ये खेल देखने को मिलेगा। और फिर साथ ही अंडर 17 वर्ल्ड कप कतर, इसका इंतजार तो 15-20 मुल्कों के लोग कर रहे हैं। अंडर 17 वर्ल्ड कप कतर, इस मेगा टूर्नामेंट का मैच स्केड्यूल जारी हो चुका है, और ये 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक दोहा में खेला जाएगा, जिसमें 48 इंटरनेशनल टीम हिस्सा लेंगी और होस्ट है कतर। तो 22 नवंबर का जो मैच होने वाला है वो ग्रुप ए का मैच होगा कतर से इजिप्ट का, नोट कर लो 22 नवंबर। तो अंडर 17 का ये जो वर्ल्ड कप है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले साल भी काफी मजा आया था और इस साल भी काफी मजा आने वाला है। एक माहौल होता है यार कतर में, और कतर में फुटबॉल जैसा माहौल मुझे नहीं लगता और कहीं होता होगा। तैयार रहिए, और उम्मीद है कि 22 नवंबर को ग्रुप ए का मैच जो है वो कतर जरूर जीतेगी इजिप्ट से। इसी के साथ गल्फ कप चैंपियनशिप का भी आगाज होने वाला है। इस लीग का थर्ड एडिशन 13 अक्टूबर से शुरू होकर 30 अप्रैल 2027 तक चलेगा। तो अगर आपका अंडर 17 से मन भरे ना भरे, लेकिन गल्फ कप चैंपियनशिप लीग भी आपके लिए इंतजार कर रही है 13 अक्टूबर से, आज से 9 दिन बाद से, ठीक है, और 30 अप्रैल तक चलेगा, तो ये बहुत ही बड़ा टूर है। और फिर क्रिकेट टूर के बारे में अगर हम बात करें, श्रीलंका और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगी। तो ये भी एक जबरदस्त मैच होने वाला है। और इन सब के बीच अब बात ये होने वाली कि कल का मैच क्या हुआ, कल वेस्ट इंडीज ने क्या इंडिया को हराया या नहीं हराया, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि आप देर तक इतना मैच देखते नहीं है, आपका अगले दिन ऑफिस है और फिर जो मैच चल रहा है, मैच तो मज़ेदार है लेकिन काम भी तो है। कल के बारे में बात करें तो इंडिया की टीम ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया, 351 रन 50 ओवर में बनाया, जिसमें राहुल ने 129 का स्कोर किया और रोहित शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत दी, 92 रन बनाए 85 बॉल पे, लेकिन विकेट जो है 3 जल्दी गिर गए। उसके बाद केएल राहुल ने बेहतरीन संभालना, गायकवाड ने 57 बनाया और नमन धीर ने 30 रन का योगदान दिया। बट ये मैच जीत जाना चाहिए, लेकिन वेस्टइंडीज के शाय होप ने कहा कि अरे अभी ऐसे कैसे, 162 रन की पारी खेली, ओपन किया था, 143 बॉलों का सामना किया, 3 छक्के 17 चौकों की मदद से शाय होप ने 162 का स्कोर बना दिया, जहां पर और किसी ने इतना कोई अच्छा खेल का मुजाहरा नहीं किया। अगर हम कीमो पॉल को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा और किसी ने ऐसा कोई खास खेल नहीं दिखाया था, लेकिन 162 की जो पारी थी वो गजब की थी। जंगू ने भी लड़ाई करी, 67 रन का स्कोर किया, इन दोनों ने कम से कम ऐसी पार्टनरशिप जरूर करी जिसकी वजह से 352 का स्कोर कर लिया, 10 बॉल रहते हुए 5 विकेट पहले ही आसानी से वेस्टइंडीज ने मैच जीत लिया। अब बात करते हैं आज के सवाल के बारे में, और आज का सवाल बड़ा ही आसान था और उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब हमें सही मिला। ऑब्वियसली ज्यादातर जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। सवाल पूछा गया था, सुल्तान ऑफ स्विंग किस बॉलर के लिए कहा जाता है और कहा जाता था। मोस्टली लोगों ने सही जवाब दिया, एक आखिरी जवाब जो सही आना चाहिए था लेकिन गलत आया है, करम ने शोएब अख्तर लिखा है। भाई शोएब अख्तर स्विंग तो नहीं कराते थे, लेकिन रावलपिंडी एक्सप्रेस जरूर कहा जाता था उनको, बट सुल्तान ऑफ स्विंग थे वसीम अकरम। और सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम इकराम भाई को कहें, इकराम ने सही जवाब दिया, मुमताज ने सही जवाब दिया, हुसैन मोहम्मद ने सही जवाब दिया, हयात खान ने सही जवाब दिया, असद ने सही जवाब दिया है, फिर शेख अहमद ने सही जवाब

दिया है, रिजवान ने सही जवाब दिया है, अबू अहमद ने सही जवाब दिया है, एहसान अली ने कहा मुल्तान का सुल्तान सही है, इमरान खान ने सही जवाब दिया है, हरजिंदर सही जवाब देते हुए, फरहत ने सही जवाब दिया, साकी ने सही जवाब दिया है, फिर उसके बाद रहमान ने सही जवाब दिया। ऑल्दो सभी को बहुत ही आसानी से पता ही था कि कौन है, मेरे को पता है वजील भाई, कुछ नया बताओ। वेल, आप सबने सही जवाब दिया, खेल का बेहतरीन मुजाहरा किया है, और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे आज शाम 6 बजे अनप्लग्ड इवनिंग के शो में, जहां पर हम दुनिया की बातें करेंगे, एक सवाल होगा और इस सवाल का जवाब होगा। मुलाकात आज शाम 6 बजे FM 107 पे, सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 1:31
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, देसी।
4: जी दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं और सर्वर यानी नाजी और सर्वर, हम दोनों आ चुके हैं, पूरे एक घंटे आपके साथ रहेंगे और आप अपना हालचाल हमें बताइए, क्योंकि पूरे दो दिन के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। तो कैसे रहे आपके वीकेंड्स, अगर वीकेंड थे तो? अदरवाइज वैसे भी अपना हालचाल आप हमें बता सकते हैं, नंबर्स आपको पता है, चलिए रिपीट कर देते हैं आपके लिए। हमारे नंबर्स हैं 666-22-107, यहां पर आपके मैसेजेस हम जो है वो लेते हैं। भाई अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं देन द नंबर इज 4434377।
2: भाई उम्मीद करते हैं कि सब का दिन जो है अभी तक का अच्छा गुजरा होगा वीकेंड से आने के बाद। जाहिर है थोड़ा बहुत सेट होने में टाइम तो लग जाता है, मगर यह है कि संडे एक ऐसा दिन है जब जरा काम भी मेरे ख्याल में एकदम से तो नहीं आता है सर पे,
4: मंडे आते हैं, ट्यूसडे आते हैं,
2: एकदम से जरा सा आसानी होती है शुरू शुरू में पहले दिन हफ्ते के, मुझे ऐसा लगता है। बट जिनके जो काम जिस तरीके से हैं, फर्ज कीजिए कि हम, तो हमारे तो वैसे का वैसे ही रहता है मामला। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जैसा कि नाजिया ने बताया कि आप लोगों का वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा, इंशाल्लाह ताला यही उम्मीद करते हैं और आगे आने वाला वक्त भी अच्छा ही गुजरे। प्रोग्राम करते हैं बाकायदा आगाज। यहां पर हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, तो वक्त जाया करे बगैर आइए इनसे कनेक्ट हो जाते हैं।
4: हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करीम शाह जी हैं, कैसे हैं आप, खैरियत से भाई?
5: मैं तो एकदम बढ़िया, अल्लाह से राजी हूँ। आप दोनों कैसे हैं? वीकेंड तो बस काम करते करते गुजर गया।
2: काम करते करते गुजर गया। करीम भाई का वीकेंड अल्लाह ताला खैर करे, और तबीयत सेहत वगैरह सब अच्छी है आपकी करीम साहब?
5: बिल्कुल, कहते हैं ना साइंस मेडिकल में कि अगर आप स्ट्रेस, सोचने इधर उधर सोचने से बचना चाहते हो, हेडेक से, तो अपने आप को बिजी रखो।
2: अच्छा,
4: नाइस, बहुत अच्छा बोला आपने, अपने आप को बिजी रखना बहुत जरूरी है।
5: अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे ना, तो ये मेरा तजुर्बा है कि 100% आप अगर एक चीज से बच नहीं पाएंगे तो 70% चांसेस है कि आप उस चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। आप फिल्म में बैठे रहेंगे, जाहिर है आप फोन उठाएंगे, किसी को कॉल करना होगा, मतलब ये जो इर्द गिर्द जो है ना, हमारे जो दोस्त है, सलाम दुआ आ जाए तो जाहिर है फारिग होने में इनके साथ रिश्ता बढ़ता है, तो बस परेशानी आ जाएगी। तो आप अगर बिजी रहते हैं अपने काम के साथ तो यकीनन आप फ्रेश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि काम भी कुताही से कम नहीं है, अगर कोई एक लिमिट से करे तो अच्छी बात है।
4: बहुत ही अच्छी बात, ज़बरदस्त, और बहुत ही, हालांकि टॉपिक आज का नहीं है लेकिन आपने बात बहुत अच्छी की और मुझे बड़ा अच्छा ये बात सुन के लगा। टॉपिक भी हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल बताते हैं। तो करीम जी, आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है पेरेंट्स, यानी हमारे जो, हाँ, जो हमारे वालदैन हैं। जी जी, और हम आपसे जानना ये चाहेंगे, क्योंकि आप भी कभी बच्चे थे, हम सब कभी बच्चे थे, तो जानना ये है कि आपके हिसाब से बेहतर पेरेंट्स आपके लिए कौन है? क्या वो पेरेंट्स बेहतर होते हैं जो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों के साथ, या वो पेरेंट्स ज़्यादा आपके हिसाब से बेहतर होते हैं जो बहुत फ्रेंडली रहते हैं अपने बच्चों के साथ?
5: असल बात तो यह है, अगर हम इस्लाम के नज़र से देखा जाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सबसे पहले इस बात पे हमें शुक्र अदा करनी चाहिए कि हम एक इस्लामी फैमिली में पैदा हुए हैं, परवरिश कर रहे हैं। उसी नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो चीज़ प्यार मोहब्बत से एक इंसान को आप सिखा सकते हैं, मेरे ख्याल में वो किसी और तरीके से आप नहीं सिखा
2: सकते। सुनिए ना दिए क्या कितनी अच्छी बात कही है करीम भाई ने।
5: एक बच्चे को जी
2: एक बच्चे को ही क्यों, खाली बच्चे को ही क्यों करीम साहब, कोई भी हो बच्चे
5: बड़े।
2: हाँ हाँ बिल्कुल
4: भाई,
2: बच्चे
4: को
2: बच्चे कितने
4: भाई, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए आप अभी भी बच्चे हैं कि
2: बिल्कुल हूँ बिल्कुल
4: खत्म बात खत्म, ये तो अलग ही बात हो गई।
2: बिल्कुल हूँ भाई, बच्चा क्यों नहीं हूँ, किसी ना किसी का तो हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
5: देखो जी जी सरवर भाई आपने बहुत अच्छी चीज को इशारा किया, मैंने तो इंसान के हवाले से, लेकिन ये बात हकीकत है कि मैं खुद पहले एक बच्चा था, अभी एक बाप हूँ, एक भाई हूँ, एक चाचा हूँ, एक जिम्मेवार शख्स हूँ और बेअदबी माफ एक हस्बैंड हूँ। तो ये मसले मसाइल जो है मैंने ये चीजें बचपन में देखे हैं। तो अभी जब मैं बड़ा हो चुका हूँ, जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मैंने अपनी ये चीज ट्राई की हुई है कि अगर चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो या छोटा क्यों ना हो, आप उसको प्यार मोहब्बत से उनसे जो काम आप लेना चाहें ले सकते हैं।
2: अच्छा।
5: लेकिन डांट के कुछ इस तरह का, क्योंकि ये हर इंसान की अपना एक अना होती है जिसे होते हैं इज्जत नफ्स।
4: अच्छा अब यहाँ पर मैं एक चीज आपसे पूछूंगी करीम शाह जी, मान लेते हैं कि बच्चे जो हैं उन्हें सिर्फ प्यार मोहब्बत से ही समझाया जा रहा है, अब बच्चे जो हैं वो फोन को लेकर बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं, तो अब ऐसे में स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए पेरेंट्स में सिचुएशन में आएगी या फिर भी फ्रेंडली रहे?
5: बिल्कुल बिल्कुल, उनका उनको वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना, वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अब उस नौबत से बचना कैसा है, इसका भी इलाज है। आप अपना एक टाइमिंग रखो फोन का, आप जब आपके बच्चे घर में हैं इस्तेमाल करने का जरूरत ही नहीं है ना, आप एक एक सिस्टम रखो कि आपने किस हिसाब से फोन यूज करना है। जाहिर है ना कि आगे आजकल का माहौल है ही यही, जैसे सारे घर में आ जाएंगे, सामने टीवी चल रहा है, वहाँ पर बेटी है, वहाँ पर बेटा है, माजरत के साथ माँ बाप सारे बिजी रहते हैं। देखो आप बिला वजह फोन क्यों उठा रहा है, फोन हम यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए। जैसे कि अभी आप ऑफिस से चली गई तो फोन उठाने का मुझे नहीं लगता।
2: नहीं चलिए ये तो खैर हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, फोन आज का मुद्दा सिर्फ फोन ही नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें उनका दिल लग रहा है और जिससे हमें उनको रोकने की जरूरत है।
4: हाँ।
2: तो वहाँ सख्त होना चाहिए,
4: वहाँ होना चाहिए कि नहीं चाहिए?
5: जी जी भाई, अगर आप वो नुकसान वाली चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं।
4: अच्छा,
5: वो जो नुकसान वाली चीजें
4: आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो सोचे
5: बच्चे को नुकसान, अगर वो आला वो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर कसूर तो आपकी है ना मेरे भाई।
4: सर्वे आपकी गलती है।
5: तो आप
2: अच्छा हमें इसी बारे आज तक कुछ नहीं मिला, हम सोच रहे कि हमें कुछ दिया क्यों नहीं अम्मा ने, तो ये तो हमारे साथ अच्छाई की वजह से नहीं दिया जा रहा।
5: बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन वो सख्ती को हम एक लिमिट में रखें।
4: हाँ,
5: यानी पहले दिन से हम एक ऐसे लिमिट बनाए कि बच्चे को इस चीज का पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स किस चीज को बुरा मानते हैं, किस को सही मानते हैं। इतना अगर हम एक लिमिट रखेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे।
4: हाँ, ये आपने लाइन अच्छी कही कि हमें बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जब पेरेंट्स रोक रहे हैं तो वो तुम्हारे भले के लिए, ये लाइन उन्हें समझ में आए और फ्रेंडली वे में से समझाए।
5: मैं बात को कंप्लीट करता हूँ, अगर एक बच्चा 6, 2, 3, 4 साल का हो जाता है ना, तो हमें उस बच्चे से काम कराना चाहिए कि जूतियाँ खुद पॉलिश करो, अपने कपड़े खुद
4: धो,
5: एक जिम्मेदारी दे दे।
4: अभी तो आप 2 ही दिन के हुए हैं, अभी तो एक
5: जिम्मेदारी दे दे अपने बच्चों को, जैसे जैसे वो 6-7 साल के होते हैं ना, उसने अपना काम खुद करना है, फिर उनको 10-15 रुपए पकड़वाओ रखो ताकि वो ये चीज सीख सके।
2: ये तो आप बच्चों के हवाले से बात कर ली, करीम शाह के साथ क्या किया गया ये नहीं बताया
5: मुझे। हाँ, मेरे बारे में, मैंने जब से होश संभाला, मुझे इतना याद है, जब से होश संभाला मैं अभी 51 का होने को जा रहा हूँ। 51
4: माशाल्लाह,
5: मुझे जब याद है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने जब भी होश संभाला है, मुझे पूरी जिंदगी में मेरे माँ ने एक बार मारे हैं चमाटे चेहरे पे,
4: एक बार
5: पूरी जिंदगी में
4: सरवर भाई।
5: लेकिन मैंने जब से होश,
4: थोड़ा सा पानी रखा है मैंने आपके लिए,
5: जी जी मुझे याद,
2: जी जी
5: आज तक मैं कमा रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है।
2: यार ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिए
4: बहुत अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात,
2: क्या क्या चीजें याद आ रही है मुझे इस वक्त।
4: सरवर भाई किस किस से पिटे वो बताइए, वो चीजें याद आ रही।
2: करीम भाई
5: ये वो जो मेरी लाइफ है, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे नसीब में अल्लाह ने ये लिखा होगा, मैंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है और जो अभी मौजूदा मैं कर रहा हूँ ना, अभी भी मैं माशाल्लाह अपनी मर्जी से काम पे जा रहा हूँ, यानी मैं अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे लिए कम है। ये चीज मैंने लाइफ में देखा है। और रही अभी हमारे जो अभी जो बच्चे हैं माशाल्लाह, अभी तो बच्चे तो हम अपनी जो माजी को देखते हैं उसके लिए

0: सारे।
1: वाह वाह वाह वाह करीम भाई, बड़ी अच्छी तरीके से आपने मेरी बात रखी और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके भी। इंशाल्लाह जानेंगे आगे भी लोगों को क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए करीम साहब,
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: तो भाई एंगल को थोड़ा सा इस तरीके से समझिए कि हम बच्चों की फोन की उनकी किसी आदत की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। आपके साथ जो किया गया है, आपने जो बर्दाश्त किया है, आपने जो खुशी हासिल की है, आपने जो वक्त गुजारा है, आपके वालिदैन ने आपके साथ कैसा बर्ताव रखा, अगर आप शेयर करना चाहें, और क्या वो सही था, और क्या ऐसी चीजें थी जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, और घर में किसका राज चलता है आज तक, अम्मा का या अब्बा का, ये आप हमें बता सकते हैं।
2: और हम इसे और सिंपलीफाई कर देते हैं, लेट्स कीप इट लाइक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स वर्सेस फ्रेंडली पेरेंट्स।
1: अब बिल्कुल, इसके हवाले से ही बात कर रहे हैं, और क्यों क्यों मैं आपने अपना एग्जांपल जरूर देना है, है ना, वरना हम नहीं मानेंगे भैया यहां पे।
2: अपना एग्जांपल दीजिए एज अ चाइल्ड, और अपना एग्जांपल दीजिए एज अ पेरेंट आल्सो, अगर कुछ आप ऐड कर सकते हैं तो।
1: अगर आपकी शादी हो गई है वो भी छोड़ सकते हैं हमारे साथ, जो अभी शादी जिनकी नहीं हुई है तो आप कॉल कर सकते हैं हमें 443-443-77 पे, और मैसेज भेज सकते हैं 666-22-107 पे। एक और कॉलर लेते हैं नाजी ब्रेक पे जाने से पहले।
2: हाँ जी, हेलो
3: हेलो
1: हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि
1: वबरकातुहू।
3: मेरा नाम मोहम्मद अकरम।
1: मोहम्मद अकरम साहब, अहलन वसहलन, कैसे हैं अकरम भाई?
3: जी ठीक है, आप लोग की दुआओं से। आज का टॉपिक अच्छा है, ये बच्चों एज ए पेरेंट हो के बच्चों से मोबाइल या कुछ भी गैजेट
1: नहीं, ये नहीं है। अब इसको हम और अच्छा करेंगे।
3: ओके,
1: आपके वालदेन ने जो सख्ती करी आपके साथ या मोहब्बत करी, उसके हवाले से बात हो रही है। घर में किसका ज्यादा जोर चलता था, और क्या सख्ती करना अच्छा है, जो वालदेन सख्त होते हैं वो अच्छे हैं, या जो बहुत ज्यादा आराम बरतते हैं वो अच्छे होते हैं।
2: टॉपिक हमारा है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स वर्सेस फ्रेंडली पेरेंट्स। अच्छा,
3: क्योंकि मैं किसी को कोई पेरेंट्स को ऐसा देखा बहुत फ्रेंडली हो गए और है ना बच्चा हाथ से गया। और कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स में भी ये रहना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि भाई आप अगर गर्म है तो मैं ठंडा रहूंगा, एक पेरेंट्स में वैसा भी रहना चाहिए, ताकि उसको ना डर बिठा के रखना चाहिए कि भाई अबू आ रहे हैं, भाई अबू को मालूम पड़ेगा तो आपका तो काम हो गया भाई।
2: अच्छा एक चीज बताइए अकरम जी, अगर बच्चे डरेंगे आपसे तो हो सकता है बातें आपसे छुपाने लग जाए?
3: नहीं, क्योंकि मैं माशाल्लाह से मैं भी जैसा मेरे से पहले जो कॉलर से बोले 51 अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 51 क्रॉस कर चुका हूँ। तो आप है ना थोड़ा मेडिकेशन देना चाहिए और उनके साथ फ्रेंडली भी रहना चाहिए,
1: थोड़े मिर्च मसाले मैरिनेशन जरा सा करना चाहिए, ये कहना चाहती है वो मेडिकेशन से, मतलब उनका मतलब
3: ऐसा मेडिकेशन करना चाहिए कि भाई मैं कुछ पेरेंट्स को देखो हर बात पे मारते रहते हैं, हर बात पे मारते रहते हैं, नहीं उसमें बच्चा बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा उसका ना कोई के वे के,
1: जब जरूरी हो जब मैरिनेट करें और उसके हिसाब से सेका सिकाई करें,
2: कुछ रेफ्रिजरेट करें,
1: कितना ज्यादा सेकना है कितना हल्का सेकना है जरा बच्चे के हिसाब से।
2: नहीं सर, कब जरूरी है मैरिनेट करें और कब रेफ्रिजरेट करें,
1: फिर कब सेकें, कब सेकें, ये भी जरूरी है।
3: क्योंकि अगर आप जब तक उनको है ना ये नहीं बताएंगे कि भाई किस पे आप नाराज हो रहे हैं, क्या सही है क्या गलत, वो उस पर रहेगा। आप और
2: बताइए
3: पेरेंट्स का भी, मैं मजे की बात देखता हूँ कि भाई बच्चा जब छोटा रहता है और वो कुछ ऐसी हरकत करता है ना तो पेरेंट्स वो मेरा बेटा था वो कितना, अब बाबा वो छोटा है 4 साल का है 5 साल का है, हम लोग करेंगे उसको है ना वो भी समझेगा हाँ भाई सही चल रहा हूँ मैं,
1: तो
3: फिर वही आप है ना 8 साल के बाद वही सेम हरकत करेगा वो आपको पसंद नहीं आएगी।
1: नहीं वो तो सारी चीजें सही हैं, ये तो करेगा नहीं करेगा, आप आपके साथ क्या हुआ, आपकी फेक सिकाई कितनी हुई है,
3: मैं आप गिन नहीं सकता।
1: माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड।
3: क्यों, इसलिए हम लोग है ना, अब देखिए अब तोजा लाने जाते हैं कहीं भी जाते हैं ना, हमको मालूम है कितना चुकाना है, कैसे चुकाने पे कैसा बात करना है, ये मारम पीटी में हम लोग बहुत चीजें सीख लिए, इसलिए हम लोग है ना रूल से नमाज में उठते हैं बैठते हैं।
1: क्या शेर सुनाया अकरम भाई, बस यही जानना चाह रहा था मैं, और आपकी बात सुनते सुनते मुझे आप बीती याद आ गई भाई, वाह।
3: अब फॉर एग्जाम्पल अब मेरे बड़ा जो बेटा है माशाल्लाह अभी वो 22-23 का हो गया, उसको एक बार पीटा था मैं।
2: अच्छा।
3: वो जो एक ही बार,
1: क्या बोले, हफ्ते में एक बार पीटा,
2: एक बार सही से पीटा था
3: एक ही लाइफ में उसकी लाइफ।
1: अच्छा, मैंने कहा हर हफ्ते एक शेड्यूल रोस्टर में लिखा हुआ था।
3: मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो

0: वो जो मैं पीटा था तो उसके बाद वो जो चीज वो है ना एक स्टैम्प की तरह दूसरे मार्शल दूसरे बच्चों में छप गया कि बाबू ऐसा पीटे थे भाई को, वो अभी है ना कोई नहीं सब स्ट्रेट।
1: अच्छा नीचे वाले सारे जो हैं उनको पता चल गया कि ऐसा कुछ हो सकता है तो लिहाजा सब होश में रहे, वाह क्या बात है।
0: आप अगर पेरेंट्स भी ना फ्रेंडली नहीं रहेंगे ना स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी बच्चा छुपा के रहेगा।
1: अब फ्रेंडली होंगे कैसे, एक तरफ से तो हमने फेंक दिया कर रहा करके, अब वो कहेगा कि भैया अब ये बता दूं तो और सिकाई हो जाएगी तो वो बताएगा कैसे, यही तो कंफ्यूजन है।
2: ये टाइम दीजिए कि ये टाइम जो है आपकी सिकाई का रहेगा, ये आपके लाड प्यार का है।
0: अगर आप उसको उस पर डिस्कस नहीं किए और मारम पीटी शुरू कर दिए तो वो भी बोलेगा भाई फायदा नहीं मुझे बात करने
2: नहीं। मेरे ख्याल से अक्रम जी ये कह रहे हैं बैलेंस पेरेंटिंग होनी चाहिए, जहाँ स्ट्रिक्ट होना वहाँ स्ट्रिक्ट होइए और जहाँ पे फ्रेंडली होना वहाँ फ्रेंडली हो, तो मतलब
0: दोनों चीज है। स्कूल के प्रॉब्लम्स दोस्तों के प्रॉब्लम्स बच्चे बहुत खुल के शेयर कर देते हैं। हाँ भाई अबू को बोलेंगे तो कुछ ना कुछ मसला निकल जाएगा, मामा को बोलेंगे कुछ ना कुछ हल हो जाएगा, उन्होंने को एक आदत हो जाएगी। मगर आप छुपा के नहीं, मुझे 10 दिन के बाद पता लग रहा है जब क्यों नहीं बताएं, वो मसला बनने वाला है।
1: क्या बात है यार अकरम भाई, बहुत ही जबरदस्त और बड़ा मजा आया आपसे बात करके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साहब, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू फॉर द कॉल,
1: थैंक यू सो मच। तो अब बातें चल रही है इस तरीके की, तो मैंने कहा नाजिया के हवाले से भी एक गाना यहाँ पर चला दिया जाए। सचित टंडन और धावनी,
2: मेरा हवाला क्या है
1: अभी
2: पीछे मैंने गाया
1: नहीं, उसमें एक लव्ज यूज किया है जो आपके ऊपर बहुत सूट करता है, कहने का मकसद ये है मेरा। तो फिलहाल आप ये गाना एंजॉय कीजिए, इस वक्त नाजिया सरवर आपके

0: भाई मैं तो कहता हूँ जा जा जा नजरों से दूर। चलिए मशहूर होने वाली बात तो अपनी जगह थोड़ी सही लग रही है मुझे गाने के अंदर। अवतारिया निकित गांधी एंड तनिष्क बख्शी।
1: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: Right guys, welcome back. A very good afternoon. आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं 152 on the clock and yes we are connected to one caller.
0: अच्छा
2: Hello.
0: क्या बात है, आइए उनसे करते हैं बातचीत। Hi.
3: हाँ जी अलीगढ़ वाले सानू ना दूर करो जी।
0: वाह वाह
2: गावा जी वा, इस वीकेंड में आपकी ख्वाहिश अधूरी रह गई ना।
0: वाह वाह मैं आज सिर्फ वाह वाह करूंगा आप लोग की बातों।
3: क्या करूं नाजिया जी, मेरे पास जो जाल है ना मछली पकड़ने वाला या जो मेरे पास हथियार है मेरे को लगता है वो सही नहीं है।
2: नहीं
3: क्या आप, मछली थोड़ी मोटी है।
2: नहीं आप मछली पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, जब पकड़ना आपको मगरमच्छ
3: मगरमच्छ आएगा एलिगेटर।
0: एलिगेटर तो खाला होती है, मतलब मगरमच्छ
2: तो है
0: मगरमच्छ की। मैं लगा भैया कोई खाला सुन ले तो कब कहेंगे ये क्या कह रहे हैं हमसे। मेरा मतलब मगरमच्छ की खाला होती है, घड़ियाल जो होता है ना, घड़ियाल कहते हैं उसको।
2: घड़ियाल
0: बहुत अच्छा जानवर है,
2: बहुत शबाहत भी
0: बड़ा
2: है,
0: अच्छा जानवर है, जितना ही खा ले भूखा ही रहता
2: वो तो शबाहत है।
0: अच्छा मिलती है शक्ल
3: नाजिया जी, नाजिया जी इनको काबू करने का भी एक ही तरीका है।
0: अच्छा
2: क्या
3: मेरे को अभी
0: आपको काबू करने का तरीका बताने का भाई।
3: नहीं सर्वर भाई को मेरे को अभी कबड्डी वाला तरीका ही अपनाना पड़ेगा। सर्वर भाई
2: छूना पड़ेगा इनको, पाले
0: छू के भाग जाएंगे फिर क्या फायदा।
2: आउट हो गया।
0: नहीं नहीं ये कह रहे छूने के बाद वाला तरीका जो सब मिलके खेलते हैं।
2: अच्छा वो करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा,
0: खेलना पड़ेगा,
2: बस उसमें मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकती हूँ।
0: मुझे आपसे यही उम्मीद है।
2: मदद करना चाहिए सबकी।
0: गाव भाई कैसा रहा वीकेंड और क्या क्या किया आपने वीकेंड पे?
3: यार मूवी देखी कल दृश्यम 3।
0: ओ यार बता, इससे आगे मत बता देना यार। नहीं वो तो अच्छी तो है, ये तो पता ही अच्छी है।
2: बस मुझे बता दीजिए ज्यादा खुश कौन हुआ है मूवी में, अजय देवगन या फिर फाइनली तब्बू?
0: नहीं नहीं ऐसा ये क्या फायदा, पूरी फिल्म खुल दे रही है,
2: कहाँ खुल रही है अभी तो पूछ ही
0: नहीं। हम इतने में अंदाजा लगा लेते हैं।
2: नहीं ये साउथ की रिमेक है, आप ये मत लीजिए इसे हल्के में, यहाँ पे ट्विस्ट डालते ही डालते हैं।
0: अच्छा आपको कैसी लगी ये बताइएगा बस आप। बस
3: नाजिया जी सबसे पहले तो खुश होने वाली तो बात ही नहीं है उसमें, कोई एक भी करेक्टर ऐसा नहीं है उसका जो खुश दिखाई दिया वो पूरी मूवी में।
2: मेरे मतलब लास्ट में कौन सैटिस्फाई हुआ?

0: मैं फिल्म हम नहीं बात कर रहे हम नहीं बात नहीं भाई नहीं देखी दृश्यम मिटा दो ये वाली बात मिटा दो क्या भाई
1: अच्छा मैं तो
2: नहीं यार
1: वैसे अच्छा कैसी थी मूवी
0: बता के मानेंगे
1: अरे थोड़ा तो पता चल जाए कौन सा आपको सब पता चल जाए
0: क्यों पैसे देंगे हम
1: उसको स्पॉइलर नहीं है स्पॉइलर नहीं देंगे
0: इतने में स्पॉइल हो जाती है बहुत काबिल आदमी हो यार कैसे समझाऊं
1: वो तो दिख ही रहा
0: तो फिर गावा भाई
1: मत दिख ही रहा है हम लोग
2: गावाई सर्वर भाई सुन लो यार हमारे भी क्रिटिक्स
0: सुन लो यार
1: सुन लीजिए
2: तो वो क्या है सर्वर भाई वो मूवी एक ऐसी मूवी है ना मेरे हिसाब से हर किसी का भाई अपना अपना टेस्ट होता है अगर आप देखोगे ना फोकस करके सर्वर भाई तो मूवी आपको हिलने नहीं देगी इतना बड़ा सस्पेंस है उस मूवी में लास्ट तक
1: देख लिया मैं कह रही हूँ कि कोई स्पॉइलर नहीं आ सकता ये साउथ की रीमेक है भाई ऐसे सॉलिड उसमें ट्विस्ट डालते हैं
0: नहीं साउथ की रीमेक से उसका एंड जो है डिफरेंट है बिल्कुल
1: नहीं
0: साउथ वालों को भी यही कहना पड़ा अरे बात दूसरी तरफ चली जाएगी गावा भाई आपने
2: सर्वर भाई हाँ। एक बात और आपने बोला है ना भी उसमें ट्विस्ट है सच में जो लास्ट वाले 10-15 मिनट है
0: आई नो साउथ वाली मूवी से उसका जो क्लाइमेक्स है डिफरेंट है एंडिंग डिफरेंट है इसलिए वो लोग भी बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं अच्छा खैर मूवी के अलावा अब हम आ जाते हैं घर की अपनी अपने घर की मूवी पे आ जाते हैं गावा भाई क्या कहते हो कितनी सेका सिकाई हुई है कितनी मोहब्बत दिखाई है अम्मा अब्बा ने और कैसे थे आप मतलब अम्मा अब्बा के लिए
2: सर्वर भाई मेरी जो सिकाई हुई है ना वो जिस मोकरी से कपड़े धोते हैं ना हम लोग
0: पहले
2: तो वॉशिंग मशीन से पहले वही एक जरिया होता था कपड़े धोने का
1: थैंक गॉड तो वॉशिंग मशीन नहीं थी सोची क्या
0: क्योंकि जब कपड़े नहीं धुलते थे ना मतलब गावा भाई कपड़े नहीं धोते थे तो फिर इनको धोया जाता था फिर उसके बाद ये कपड़े धोते
1: नहीं जिस चीज से धोते थे उससे सोचिए
0: वाह
1: किस चीज से इनकी धुलाई उस वक्त मशीन होती तो इनकी धुलाई कैसी होती
2: जी सर्वर भाई उसका रीजन भी यही होता ना हम लोग खुद परेशान करते थे मम्मी की बात नहीं सुनते थे तो डेफिनेटली फिर उसके बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन होता ही था उनका
0: अच्छा मम्मी ज्यादा सख्त रही या पापा
2: मम्मी सर पापा पिताजी ने तो आज तक एक वर्ड भी नहीं बोला ऊंची आवाज में मैंने आपको पहले भी बताया
1: मुझे लगता है ये भी पेरेंट्स की स्ट्रेटजी होती है कि एक आदमी सख्त रहो एक अपना नॉर्मल रहो
2: यस यस यस नाजिया जी यही
0: मेरे मामले में दोनों क्या बातचीत नहीं कर पाते थे दोनों तरफ से शिकायत की होती थी ये मेरे साथ क्या गेम हुआ
1: तो केस ही अलग रहा
0: अच्छा अच्छा अच्छा दूसरी दफाई लगी हुई थी हमारे ऊपर
2: सही बात है इनका जो केस है ना दृश्य मूवी से भी डिफरेंट था सर्वर भाई का मानना पड़ेगा
1: इनका क्लाइमेक्स अलग से जो लिखा गया उसको तो सब प्रेज कर रहे हैं इसमें अभी भी कमी है क्लाइमेक्स कुछ और इसको और इम्प्रोवाइज किया जा सकता था
0: अच्छा गावा भाई कोई ऐसी बात जो याद हो आज तक मतलब मारपिटाई से रिलेटेड और क्या वो सही थी सख्ती से रिलेटेड
1: क्या तो रहे सही है
2: सख्ती से रिलेटेड सर्वर भाई मैं ज्यादा आपका लंबा टाइम नहीं खींचूंगा बस एक बात ही करूंगा जिंदगी में सर्वर भाई ये चीज मेरा पर्सनल तजर्बा है ठीक है जिंदगी में हमेशा अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चलो आपको कभी भी लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी
1: क्या बोला है वाह
0: वाह वाह वाह वाह
1: सर्वर ये पता चला आपको क्यों पैर हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं
0: वाह वाह वाह वाह क्या बात है
1: बहुत ही जबरदस्त लाइन
0: अच्छा अब आगे के लिए ये क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके हवाले से आप जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त लोग ये तो ठीक है ये तो आपने बता दिया ठीक है हाथ पकड़ के चलो अब वो तो फिर बर्दाश्त भी करना है और सुनना भी है मोहब्बत भी करनी है मोहब्बत मिल भी रही है तो क्या सख्ती बरतना जरूरी है
2: सर्वर भाई जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना मेरा बच्चा 2 साल 3 मंथ्स का है ठीक है बच्चों पे सख्ती असर नहीं करती सर्वर भाई एक चीज असर करती है अगर आपने बच्चे को टिकाना है जहाँ तक मेरा आइडिया है ना बच्चे का आपको ध्यान ही डाइवर्ट करना पड़ता है दूसरी तरफ अगर उसको शरारत करने से रोकना है तो
1: बहुत सही कहा आपने और उन सब की चीजों के लिए आपका टाइम आपका पेशेंस रिक्वायर्ड है और आपकी प्रेजेंस ऑफ कोर्स
2: सर्वर भाई देखिए आप एक चीज पे सख्ती कर लोगे जस्टिफाई है दूसरी पे कर लोगे तीसरी पे कर लोगे बच्चे पे नहीं सख्ती होती सर्वर भाई बच्चे पे रूल्स एंड रेगुलेशन आप नहीं थोप सकते आप बस उसको डाइवर्ट जरूर कर सकते हो आप
0: अच्छा और फिर जब वो इस उम्र पे पहुंच जाए कि अब अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए और है भी और उसके बावजूद भी हमें दिख रहा है कि नहीं भाई नहीं हो पा रहा मामला फिर
2: तो भाई आप भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो ना सर्वर भाई को
1: नहीं मैं बताऊँ उसके लिए क्या करना चाहिए जो आपके वैल्यूज हैं जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लेकर आप स्ट्रिक्ट रहें लेकिन व्हेन इट कम्स टू कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन पेरेंट्स को बहुत फ्रेंडली होना चाहिए जैसे अपनी बात बच्चा हर बार आपसे शेयर कर सके उसूलों में आप सख्ती रखिए लेकिन बातचीत में नहीं कई बार बातचीत में पेरेंट्स रखते हैं
2: सर्वर भाई आप भी थोड़ा

0: लगता हो ना भी आप सख्ती करते हो बच्चों के साथ, जो नहीं
1: पहले, पहले मैं सुन लूं उसके बाद मैं सोच रहा हूं
2: नहीं, इनका उल्टा बच्चे भी इन पे सख्ती कर रहे हैं।
1: अब्बा
2: कब सुधरेंगे?
1: ये देखिए दृश्यम 4 का क्लाइमेक्स जो है वो सामने आ गया।
2: बच्चे कहते हैं हम इतने सुधरे हुए, आप कब सुधरेंगे, आप कब बड़े होंगे?
1: हमारे तो बच्चे हमें सुधारने में लगे हुए। अच्छा ऐसा है क्या?
2: यही चल रहा
1: है। चलिए भाई गाबा भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं बस, यूं गए और यूं वापस आए। सुनते रहिए FM 107।

0: ऐसा वो ही रहता था, फिर कुछ खुल जाता था तो घर में कम रहा।
1: घर में कम रहा
0: जी।
1: अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं, ये अच्छा हुआ आपके साथ?
2: क्यों नहीं भैया, आप अजीब
1: बताएं, बोले तो सही, कुछ समझ में नहीं आ, कंफ्यूजन में हूँ भाई, सैड है या कुछ है?
0: अच्छाई के लिए था,
2: अच्छा ही हुआ ना,
1: अच्छाई के लिए था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काबू में नहीं आ रहे होंगे घर पे, इसलिए आपको भेजा गया नाना के पास। नाना सख्त थे
0: जी? सख्त, बहुत सख्त।
1: पता चला ना,
0: थोड़ा सा इधर उधर किया तो बस मोटाई शुरू।
2: इसीलिए तो नहीं रखा था कि बेटा बच्चा एकदम सही से संभल
1: के, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था इनको एक्चुअली कैंप में।
2: मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बड़ा फर्क है ट्रेंड बच्चों में और डिसिप्लिन बच्चों में, फर्क है,
1: फर्क है, वाकई फर्क है भाई, वाकई फर्क है। चलिए साहब, नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें जॉइन किया, और भी कुछ कहना चाहते हैं?
2: जज़ाकअल्लाह। और मैं कहूँगी जो ट्रेंड बनाते ना बच्चों को, वो गलत है।
0: अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, थोड़ा मैं सुनाता
1: हूँ, इजाजत है।
0: वो दिन कभी मत दिखाना मेरे खुदा, वो दिन कभी मत दिखाना मेरे खुदा, के अपने आप पर मुझे गुरूर हो जाए। मुझे रखना इस तरह सबके दिलों में, मुझे रखना इस तरह सबके दिलों में, कि हर कोई दुआ देने पे मजबूर हो जाए।
1: वाह, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा,
2: बहुत अच्छे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए। इंशाल्लाह ताला कल बात होती है आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: तो भाई ये थे नसीम भाई हमारे साथ, और मैसेजेस, वेदर का हाल, और उसके बाद ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। ये मैसेज क्यों नहीं खुल रहा है? कॉलर बिल्कुल, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड आफ्टरनून नादिया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम भाई। कहते हैं हैप्पी संडे आफ्टरनून, कैसा रहा दोनों का वीकेंड? होप गुड नादिया, ऐसा होप कर रहे हैं यूसुफ भाई। हाँ यूसुफ भाई, अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत अच्छा रहा और खैर रही। मुबीन बुखारी बगदादी साहब यहाँ पर खूब सारे वीडियोज भेजे हुए, मुझे लगता है अपने पोती या नवासे या नवासी या पोती के, तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर देख लेंगे। बाकी है कि सलाम के साथ कहते हैं आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून कतर सरवर जी, नाज़िया जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें आपके साथ एफएम 107 सलाम कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: एस गायब कर दिया मेरे नाम से, कहते हैं अरवर भाई, हाउ आर यू? और बात करने के मुंतजर हैं हमसे। अच्छा, शहजाद सलीम साहब, जैसे ही हमें स्लॉट खाली मिलेगा हम जरूर आगे बढ़ेंगे, मतलब आपसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सरवर और नाजिया आप दोनों? शुएब अंसारी यहाँ पर, हम लोग बिल्कुल ठीक है शुएब भाई, आप बताइए कैसे हैं? और कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है।
2: हेलो,
3: वालेकुम
1: अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू, वेलकम मिस्टर
2: सैयद खादिम हुसैन जी।
1: मैंने कहा शायद खुद बता देंगे अपना नाम,
2: मैंने कहा भूल गए,
1: इंतजार में बैठे, इंतजार में बैठे, इंतजार में, बोलो बोलो मेरा नाम बोलो।
2: और आप भी मिस्टर वैसे सोच रहे हैं,
1: मैं चाह रहा था खुद भाग लें, मेरा मतलब ये हिस्सा ले
3: भाई। हां सरवर भाई, आपने तो मेरी सांस बंद कर दी, मैं बोला शायद आप मेरा नाम भी भूल गए।
1: नहीं, मैं ये चाह रहा था कि आप भाग लें, एक्चुअली मेरा मतलब भाग लें,
2: मतलब आप भाग लें,
1: भाग लें से भागने वाला नहीं,
2: भाग लें, भाग लें,
1: मतलब आप इसमें हिस्सा लें, भाग हिंदी में मतलब होता है हिस्सा लेने का। तो
2: अच्छा, मैंने कहा
1: जिसके पास सैयद खादिम हुसैन जैसा आदमी दुआ करने वाला उसको क्या हो सकता है?
2: ये तो सच है,
3: बहुत शुक्रिया, बहुत
2: जलने वाले तो बहुत है,
3: दुआ तो हमेशा करते हैं।
1: अरे खादिम भाई इसके अंदर बहुत अच्छा ऐड करेंगे, खादिम भाई की खूब सिकाई हुई है मुझे पता है, रोटियां अलग सिकती थी, खादिम भाई अलग सिक रहे होते थे चूल्हे पे।
2: नहीं, ऐसा लगता ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता
1: खादिम भाई,
3: नहीं ऐसी बात नहीं है, दो चीजों पे मुझे बहुत ज्यादा नहीं, बस मुझे जो याद है दो या तीन बार।
1: अच्छा अच्छा, अब्बा के हाथों, अम्मा के हाथों,
3: अब्बा के हाथों, अम्मा के हाथों कभी मार नहीं गई। हाँ, अम्मा के हाथों
2: सर भाई, आपको ज्यादा कब पड़ी वो पूछे,
3: अच्छी अच्छी डिशेज और ये सब चीजें खाई हुई है। और अब्बा के हाथों, अब्बा के हाथों एक बार सुबह की नमाज पढ़ के मैं आया, बाबा ने मस्जिद में नहीं देखा था,

0: पूछे बगैर शुरू हो गई,
1: वाह
0: मार पिटाई शुरू हो गई।
2: पर आपको ये नहीं पता चला कि क्यों आपको मार रहे हैं?
1: मस्जिद गई नहीं, घर पे बैठे
0: था। वो सवाल जो था वो
1: अच्छा, आप

0: था कि ये जाके बताऊंगा इस वाली सब में ये उल्टे हाथ से इस नंबर पकड़ा हुआ था ताकि यकीन हो जाए।
1: और उसी दौरान आपके अब्बा पीछे वाली सब में खड़े थे, आपने इधर नंबर पे तो उनका मेरा नंबर
2: दिया था। सरवर भाई आप यकीन करें कि अगर हम उनके सामने ना आते मस्जिद में तो वो कभी हमें माफ नहीं करते थे, बोले जाओ दोबारा पढ़ो।
0: वाह एक्चुअली बहुत अच्छी
2: लड़की, मैंने देखा नहीं है,
0: मैंने भी यही अपना रखा,
2: मैंने देखे।
1: अच्छा इसीलिए आप दो बार पढ़ते हैं?
0: मैं दोबारा पढ़वाता
2: हूँ। और दूसरी बात ये कि क्रिकेट खेल के आ रहे थे तो मगरिब की नमाज हो चुकी थी और हम लोग क्रिकेट से वापस आ रहे थे तो हमारा एक भाई है रशिया में हुआ अभी हम
1: अच्छा।
2: लोग वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, अभी भी उधर खेलते हैं बाहर हाल।
0: अरे रशिया पहुंच गए खेलते खेलते, वाह
2: नहीं वो
0: मैं भी खेलूं क्रिकेट एक दिन रशिया
2: जाऊंगा। है डॉक्टर लेकिन वो उधर भी क्रिकेट खेलते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
2: जी, तो वो जब भी हम लोग वापस क्रिकेट से वापस आ गए बैट बल्ला यानी बैट बॉल और ये विकेट ये सारे मुझे दे दिए और शायद नाजिया बहन के साथ ये मैंने शेयर भी किया ये वाकया। तो मैं भाई ने मुझे पकड़ा दिया कि ये चलो आप लेके जाओ, आप छोटे हो तो आपको कुछ नहीं कहेंगे और बस हम लोग बाद में आते हैं। तो जैसे मैं घर में अंदर आया तो बाबा इंतजार में थे,
0: खून तो आपके हाथों में लगा था।
2: मैं बोला क्रिकेट बस
0: तो जाहिर बात है सबूत लेके जा रहे हैं आप, पूरा खून हाथों में लगा के जा रहे हैं।
2: तो हथियार तो मैं अपने पास लेके गया था बस बाकी
0: पकड़ लो
2: रिमांड ले लिया फिर उधर।
1: अच्छा ऐसे नहीं होता कि कोई बाप की अब्बा मार रहे हो बच के निकल जाए बच्चा,
0: बेचारा घर तो वापस आ गया अब या तो अल्लाह हाफिज हमेशा को कह के जा हां भैया अल्लाह हाफिज।
1: अरे नहीं तब गुस्सा कम हो जाएगा अगली मतलब थोड़ी देर दो चार घंटे बाद
0: आ जाएगा। शुक्र तीन तीन दिन भागम करते मैं ऐसी बात थोड़ी, वापस आने के बाद बेटा खा ले। हां जी
2: नहीं नहीं नाजिया बहन वो सजा डबल हो जाती थी फिर कि आप भागे क्यों।
1: अच्छा तब तक गुस्सा बना रहता था, मुझे लगा कि भाई वो उस वक्त गुस्सा बहुत है बाद में थोड़ा सबसाइड हो जाएगा।
2: और एक इस पे और एक और चीज ये थी कि एक बंदा आया उसने ये कम्प्लेंट हम वो इलाके में हमारे घर में सिर्फ फोन हुआ करता था ये लैंडलाइन और किसी और के घर में नहीं था। तो वो बंदे का फोन आया था, मैं उनके घर जाके खबर दी थी मैंने लेकिन वो बंदे को खबर नहीं पहुंची थी। वो फिर अगले दिन आया हमारे बाबा से शिकवा किए थे ऐसा एक फोन आया था और वो ये लोग मुझे नहीं बताए। तो वो उस टाइम बोले कि कौन था इधर, मैं बोला मैं था, बोला वो मैं था के साथ लगा दिया एक
0: यहाँ जाहिर बात है
2: सही है अभी बात सुनी नहीं थी पूरी, मैं बोला मैं तो खबर दिया था, बोला नहीं। तो उसने बाबा ने एक नसीहत की थी हमें, वो नसीहत आज भी हमें याद है और वो नसीहत ये थी कि तीन बातें याद रखो, एक झूठ नहीं बोलना, किसी के दरवाजे पे खड़ा नहीं होना और किसी की शिकायत घर में नहीं लेके आना। इस पे अमल करो हमेशा कामयाब।
0: वाह वाह वाह कादिम भाई वाह,
2: ये बात याद रखो कि ये बात हमने अपने बच्चों को भी दी हुई है वो और हम लोगों ने नसीहत वो वसीयत थी और हम लोग नसीहत कर रहे हैं।
0: वाह वाह वाह वाह
2: बाबा की वसीयत थी ये और हम लोगों की अभी नसीहत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें हमें याद है और उस पर हम लोग बहुत खुश दिल खुश होता है अभी कि ये तीन बातें कि ये मैं हर किसी से शेयर करता हूँ, किसी के दरवाजे में खड़ा नहीं होना, झूठ नहीं बोलना और किसी की शिकायत घर नहीं लेके आना, ये नहीं कोई शिकवा लाके दे रहे कि भाई ये इसने ये किया ये किया।
0: अब क्या करें जब तीनों आदतें तक किसी के अंदर हो ना दिया, प्लीज अपने आप को सुधारें इन आदतों से दूर करें अपने आप।
2: नाजिया बहन आप तो सीधा बात उधर लेके जाते हो साथ में, नाजिया बहन के बारे में अगर कोई बात करे ना तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता।
1: देखा मेरा भाई को देखा इसे कहते हैं जिंदगी में यकीन होना, ये भाई बहन का रिश्ता है।
2: बिल्कुल
0: चलिए साहब खादिम
1: भाई समझ में आया, अब तीसरे दिन बाद भी क्यों आपको
0: आपकी बातें और हमेशा की तरह बड़ी अच्छी बात है खादिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इन्नी सोनी गाना यहाँ पर सुनिए क्रेजी हबीबी और मेड इन इंडिया यानी कि गुरु रंधावा और तुलसी कुमारी एक दूसरे का साथ देते हुए। तो भाई किसकी कितनी सिकाई हुई, मेरी तो इतनी सिकाई हुई दादा मेरे बेचारे अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए मेरे ऊपर लेट जाया करते थे कि इसको नहीं मारो, अरबा मारते रहते थे जब भी बचता था मैं, जब दादा लेट जाते थे एक्चुअली मेरे ऊपर तो मैंने ये आदत बना ली थी कि जब भी सिकाई होने वाली दादा के पास निकल लो वो तो लेट ही जाएंगे बचाने के लिए।
1: ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी दादा भी निपट लिए सिक गए मेरे मतलब।
0: हाँ एक दो बार हुआ होगा उसके बाद अब्बा सिक गए।

0: चलिए साहब, इसी के साथ यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना है, एनर्जी आर पे सर्वर नादिया आपके साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है आज के मौजू के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: जी
2: क्या हाल चाल है शहजादा जी? अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप लोग कैसे हैं?
2: जी जी हम दोनों खैरियत से। आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मेरी तबीयत एक हफ्ते से ना बहुत खराब चल रही है।
0: अरे अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे।
1: यही मतलब फीवर और अपना बुखार और नज़ले। अभी दो दिन से थोड़ा मैं रिलैक्स हूँ।
0: अच्छा अभी अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है।
0: अल्लाह ताला आपको सेहत याब रखे भाई, अपना ख्याल रखा करें और जरूरी भी है कि आप अपना ख्याल रखें।
2: और नहीं वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ज्यादातर लोगों को इश्यूज हैं।
0: बात हो रही है आज घर वालों की, दादा दादी, हमारी दादी कहती थी आता मौसम और जाता मौसम है, इसमें हमेशा ख्याल करना चाहिए। तो शहजादा सलीम भाई आज का मौजूद आपने सुन ही लिया होगा।
1: जी जी जी,
0: क्या
1: जी,
0: कहते हैं उसके हवाले से?
1: जहाँ तक मेरा नजरिया है ना, मैं अपने बचपन में, मेरे को एक बार पनिशमेंट मिली थी मेरे घर में, मेरी वालदा ने दिए थे वो कोयले, ना कोयले जो काले कोयले होते ना वो जलाकर है ना, उसमें
0: सफेद वाले भी होते हैं
1: काले काले कोयले चला के उसमें ना लाल मिर्ची है ना सूखी वाली डालकर, और
0: बघार करना चाह रही होंगी मेरे ख्याल में दाल में, और आप सामने आ गए।
1: अब देख खांसी नहीं दिए थे मिर्ची
0: आंसू गैस, घर वाली आंसू गैस, घर वाली आंसू गैस।
1: अरे बहुत, हाँ वो कुछ ऐसा मतलब बड़ा इशू बन गया था ना, तो अच्छा, वालदा अच्छा। को है ना अब्बू ने दो हाथ चढ़ा भी दिए थे।
0: अच्छा।
1: और तो सारा गुस्सा है ना वालदा ने इस तरह निकाला ना कि मेरी भी है ना वो अच्छी तरह मतलब खातिर हुई थी।
0: अच्छा, तो मेरे ख्याल में किस्सा बताने वाला नहीं है यहाँ सबके सामने, मुझे ऐसा लग रहा
1: लेकिन जिस हिसाब से इस तरह से जो मतलब वाल्द पेरेंट्स का यानी वालिद वालदा का बच्चों के साथ व्यवहार रहा है ना, मैं तो अभी बड़ा होने के बाद जब मेरे बच्चे ना, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं अपने बच्चे को कभी नहीं मारा मैंने, हाँ नहीं कभी नहीं मारता मैंने, क्योंकि अभी हमारे मेरे पड़ोस के मेरे दो दोस्त लोग हैं ना, एक तो ना यूपी भाग गया था, मार खाते खाते इतना थक गया था वो यूपी चला गया था, हाँ बॉम्बे से वो यूपी चला गया था घर
0: में। मतलब यूपी में शरीफ लोग रहते हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब शरीफ तो सभी जगह रहते हैं, मतलब ये है कि मार पिटाई वहाँ कम हो रही है ये कहना है।
1: जब ये मोबाइल का सिस्टम भी नहीं था, जब ये मोबाइल का सिस्टम नहीं था तो खत से पता चल रहा है कि यहाँ पहुँच गया है बंदा।
0: अरे वो मेरे पास आए वहाँ से सीधे, मेरी मुलाकात हुई, आगे की फिल्म मैं बताता हूँ।
1: बिल्कुल। तो वो उनके वालिद ने ना फिर है ना अपना रवैया है ना मतलब चेंज किया, लेकिन इस तरह से जो मतलब रहा है ना, जो सिस्टम जो रहा है ना बच्चों के साथ, मतलब इस तरह
0: बहुत ज्यादा सख्ती वाला,
1: तुक्का मार देना और उठा के पटक देना ना,
0: वेरी बैड।
1: तो वो कहीं ना आपके जो एक मोहब्बत एक बाप बेटे के रिलेशन में है ना, बहुत बड़ी दरार डाल सकता है वो, बड़ा खतरनाक।
0: बहुत अच्छी बात कही यार।

0: अच्छे दादा भाई आपने
1: बहुत ही अच्छी बात,
0: बहुत अच्छी बात कही वाकई,
2: ये जरूरी है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ है। और मेरा एक दूसरा दोस्त है ना, उसके अब्बू भी ऐसी मारते थे ना, उसने एक स्टंट क्या किया, उनका हाथ से ना उनकी लकड़ी पकड़ के ना अपने हाथ से पंच मार के ना दो टुकड़े कर दिया और घूरा, यानी सोचो
0: किसके अब्बू के,
2: वो कैसा अपने अब्बू के, यानी
0: अब्बू
2: जो लकड़ी
1: लकड़ी के दो टुकड़े
2: बरसना शुरू किए ना उसपे, तो उसने एक हाथ से पकड़ कर और एक हाथ से ना पंच मार के ना लकड़ी के दो टुकड़े कर दिया।
1: फिर अब बैट लाए लिया तोड़ा
2: अगर, अगर नहीं नहीं लेकिन देखो अगर उसका अगर, अगर, अगर ये रिएक्शन देखो कितना डेंजरस है, यानी यानी वो बेटे ने मतलब उसने अपना सारा अपना जो है ना मुक्का जो है ना वो लकड़ी पे निकाला।
0: मैं समझ गया हाँ, नहीं मजाक सेट के वाकई जहाँ शहजादा भाई हमें पहुंचाना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
2: और वो हद पार भी कर सकता था
0: और आजकल करी भी जा रही है, आजकल करी भी जा रही है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हर रिश्ते को अल्लाह ताला महफूज रखे
2: के अपने बच्चों को,
0: बिल्कुल सही। इसमें कहीं ना कहीं कुछ वालिदैन की ऐसी जिम्मेदारी होती है, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि कोई ऐसी बात है जो आपसे बात करते मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कि कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन होता है खुदा ना खास्ता, जो एक परेशानी होती है खुदा ना खास्ता, वो अम्माएं या अब्बा जो हैं वो बच्चों पे निकाल देते हैं, कोई भी बात हो, ऑफिस का मसला हो, घर का मसला हो, दोस्तों का मसला हो, क्योंकि वही दिख रहा है सामने और उसी पे ही बस चल रहा है, तो ऐसा ना करें। अच्छा कई जगह मैंने तो ये भी कहता हुआ सुना, जब तक मारो नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो ये भी हो रहा है, तो ये सारी चीजें उसी रास्ते पे लेके जाती है जो आपने बताई एक्चुअली।
2: अच्छा और है ना, और कितने लोग ताने कैसा देते बोले ना कि बहुत दिन से ना वो बेल्ट नहीं खाया है ना, बेल्ट कर लिया, तो वो
0: हमारे एक और चलता था ना हमारे खाल मसाला मांग रही है, हमारे यही चलता था खाना पीने का माहौल, खाने पीने का घर पे माहौल रहता था, तो खाल मसाला मांग रही है हमसे ही कहा जाता था।
2: जहाँ तक है ना मतलब मोहब्बत और खुलूस और एक है ना फ्रेंडशिप, हाँ बिल्कुल एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप है ना, तो बच्चों के साथ है ना ये काफी आपको है ना बहुत
0: में
2: ना मोटिवेशन आपको भी मिलता है, बच्चों को भी मिलता है, दोनों को
0: बहुत
2: बढ़िया, और कोई चीज अलग
0: था बहुत अच्छे भाई। खादिम भाई कह रहा हूँ शहजादा सलीम साहब अभी वो गए थे इसलिए वो याद आ गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई शहजादा सलीम साहब, ने बहुत अच्छी बात
1: कही, बहुत ही अच्छी बात,
0: मुझे लगता है कंक्लूड भी कर दिया आपने टॉपिक को एक तरीके से,
1: सीरियसली वाकई
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
0: कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, वक्त भी हुआ जाता है और उसके बाद हम कॉल की जानिब भी बढ़ेंगे। यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रही बात, मोबिन बुखारी ने लिखा 89C और शोएब अख्तर खाली नाम लिख के चले गए हैं, ये हो क्या रहा, मैंने कोई सवाल ऐसा किया था, या अपने स्कूल का सेक्शन कैसे बताने लगे,
1: सेक्शन सुबह की बात, सुबह
0: अच्छा, और 89C मोबीन बुखारी का ही सेक्शन हो सकता, 89C आप समझ नहीं है। अच्छा यहाँ पे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: ओके सरवर भाई, नाजिया बाजी, आई होप आप लोग ठीक होंगे, काफी दिन बाद आप लोगों की आवाज सुनी है, अच्छा लगा मूर फरत साहब यहाँ पर, हमें भी अच्छा लगा आपका मैसेज आया मेरे भाई, कहाँ थे आप इतने दिनों से, कहते मेरे अब्बू का कुछ पता नहीं, अम्मी तो बहुत नर्म थी यार। नाजिया आप पढ़ दीजिए यूसुफ भाई का मैसेज है, वो कहते हैं यूसुफ भाई कॉल ही कर लिया करें, हमें बता दिया करें कॉल करने के लिए, अब ये पूरा लेटर में हमारे 7 मिनट चले जाएंगे। खैर कहते हैं कि अम्मी तो बहुत नर्म थी, कभी कभी गुस्सा करती थी, मुझे तो याद भी नहीं कि वो कभी मारती थी, हाँ बड़े भाइयों को कभी कभी मारती थी, और मैं अपनी बच्ची को ना मारता हूँ ना ही डांटता हूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आया तो जरूर जोर से आवाज से डरा देता हूँ,
1: हाँ ये अच्छा है,
0: वो सुनने के
1: थोड़ा बहुत तो कहना भी
0: चाहिए, वो सुन के रोने लगती है, जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो मेरी आंखें भी भीग जाती हैं, आय हाय हाय हाय यूसुफ भाई, हाँ मेरी वाइफ कभी थोड़ा डांटती है, आपकी बात थोड़ी हो रही थी यूसुफ भाई, यहाँ तो बच्चे की बात हो रही थी, वो कोई बात नहीं सुनती है जब डांटती नहीं, बच्चे के लिए कह रहे हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स मुतवासित रहना चाहिए, मुतवासित रहना चाहिए, बहुत ज्यादा मारना या चिल्लाने से और भी ज्यादा नरम भी रहें, यानी दोनों सूरतों में औलाद बिगड़ जाती है, तो सिचुएशन के हिसाब से बच्चों को ट्रीट करना बेहतर है।
1: बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब कि बैलेंस पेरेंटिंग एंड दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन है हमारे साथ?
3: क्या हाल है आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह,
3: जी मेरा नाम रियाज है।
1: अच्छा,
3: मेरे नसीब में यही दोस्त ये लास्ट कॉल

0: जाती है।
1: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आगे भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह।
0: नहीं, उसके उसके पीछे एक रीजन है ना। उसके पीछे रीजन ये है कि सरवर भाई को मेरा नंबर मालूम चल गया, तो जैसे ही मेरा नंबर देखते है उसको दावत याद आती है कि मैंने तो किसी को दावत दी थी। तो भाई साहब या तो बात लंबी कर देते हैं या तो गाना चला देते हैं कि ये कल किसी तरीके से फट जाए।
2: वो भी यही कह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे।
1: कौन?
0: नहीं मैं आपसे बात नहीं कर रहा है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा।
2: अच्छा आपसे बात नहीं कर रहा भाई? मैं आपसे मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा है, मैं नादिया से बात कर रहा हूँ।
0: नहीं आप इस वक्त बात ना करें, हम बात कर रहे हैं।
2: अच्छा
0: ऐसा ना ही करो। मैं
2: नहीं नहीं रियाज भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, मेरा भाई कैसा रियाज भाई जैसा।
0: मैं सोच रहा था मेरे नंबर मेरा नंबर आपने दावत के नाम से सेव तो नहीं किया कि वो आ रहा है तो आप
2: ऐसे ही है एक्चुअली ऐसे ही है। रियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। भाई अब वक्त नहीं रहा क्योंकि बिल्कुल आखिरी टाइम हो गया, इंशाल्लाह कल जल्दी कॉल करिएगा तो आपसे लंबी बात करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 10-15 मिनट से लगा हुआ हूँ
2: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम पहले बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: ओके
2: अब हम कॉल नहीं ले पाएंगे। अब्दुल जब्बार है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जब्बार फ्रॉम चेन्नई, हेड बेल्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम अब्बा ओनली बट लेटर इट वॉज वेरी डिसिप्लिन फॉर ऑल फाइव ब्रदर्स। ओके अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई नादिया सिस्टर, उम्मीद है कि ठीक होंगे। टॉपिक मस्त है, मेरी अम्मी जान मामा ठाकुर हैं, नमाज के बारे में मैं दो बातों का लेकिन जब जान की मार खाने का मजा कुछ और है। अबू जान की बार, ओ अबू कहना चाहते हैं। खैर बहरहाल ये थे कौन हमारे साथ, रहमान। असल में वक्त कम है तो हमने कहा
1: बस जाते जाते जैसे आप सबने कहा उसी को हम वापस से दोहराएंगे कि हाँ बैलेंस पेरेंटिंग बहुत जरूरी है, उसूलों में सख्ती मामले में नरमी, यही हो सकता है।
2: बाकी हनी सिंह जो कह रहे हैं वो तो आपको बताइए। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल इसी तरह रखिए जो हमने आज बातचीत करी है। हल्का फुल्का हिसाब किताब रखो यार, जिंदगी गुजर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। खैर के साथ वैसे ही टाइम कम है, बाकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुनते और देखते रहना FM 107।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऐसे

नाम की जिन्होंने पहले बैट से अपने मुल्क का नाम रोशन किया और अब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई जिम्मेदारी संभाल रहा है। ये नाम है तमीम इकबाल खान। तमीम इकबाल बांग्लादेश के सबसे मशहूर ओपनिंग बैटर्स में शुमार होते हैं। 1989 में चट्टोग्राम में पैदा होने वाले तमीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2007 में कदम रखा। उनकी एग्रेसिव बैटिंग, कवर ड्राइव्स और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ कॉन्फिडेंस ने बहुत जल्द उन्हें बांग्लादेश नेशनल टीम का अहम हिस्सा बना दिया था। तमीम ने अपने इंटरनेशनल करियर में 70 टेस्ट, 243 ODIs और 78 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और तीनों फॉर्मेट्स में मिलाकर 15,249 रन बनाए। देखा जाए तो वह बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन का माइलस्टोन क्रॉस किया। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 सेंचुरीज भी शामिल हैं। सो दैट्स एन एस्टाउंडिंग फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ बांग्लादेशी फॉर्मर क्रिकेटर हु हैज बिकम अ रोल मॉडल और अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। तमीम की खास बात ये थी कि वो तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले बांग्लादेश के पहले और अब तक वाहिद बैटर हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका हाई स्कोर 206 है जबकि ODI क्रिकेट में उन्होंने 158 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स खेली। T20 इंटरनेशनल में भी तमीम ने सेंचुरी बनाई और 2016 T20 वर्ल्ड कप में ओमान के खिलाफ 103 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। आपने सुना 2016, विच मींस तमीम इकबाल इज नॉट अ पास्ट क्रिकेटर। आई मीन कहने का मतलब है कि 40 साल पुरानी बात नहीं है, बहुत बहुत रीसेंट बात है और ही हैज बिकम द यंगेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट। एंड ये जो सिलेक्शन, जो अपॉइंटमेंट किया गया था वो पिछले साल किया गया था एंड उसके बाद अगर हाल के परफॉर्मेंस की बात करूं फॉर बांग्लादेश क्रिकेट टीम, तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने कई ऐसे यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं जिससे ये साबित होता है कि तमीम इकबाल की लीडरशिप सही रास्ते पर है, सही डायरेक्शन पर है। 2011 में तमीम इकबाल को विजिटिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऑनर भी मिला और ये अवार्ड उनके इंटरनेशनल करियर का अहम अचीवमेंट्स में से एक है। बांग्लादेश की नेशनल टीम के लिए तमीम इकबाल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे बल्कि कप्तान भी रहे। 2019 से 2023 तक उन्होंने बांग्लादेश की ODI टीम की कप्तानी की और उनकी लीडरशिप में बांग्लादेश ने 35 ODIs में 21 मैचेस में फतेह हासिल की। 2023 में तमीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी 17 साल की सर्विसेज को सैल्यूट किया। उनका इंटरनेशनल करियर 2007 से 2023 तक वाज स्प्रेड आउट एंड 16 सालों में तमीम इकबाल ने एस्टैब्लिश किया कि साउथ एशियन, स्पेशली बांग्लादेश जैसे एक मुल्क से जो क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करती है, वहां पर ये एक तरह का डैशिंग ओपनर, स्टाइलिश बैट्समैन। तमीम इकबाल डिफाइंस एवरी मोमेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट ग्लोरी। स्पेशली मुझे याद आता है 2007 वर्ल्ड कप में जब तमीम इकबाल की उस शानदार पारी ने इंडिया को मात दी थी। आई मीन बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया था। दैट वाज अ शॉकिंग रिजल्ट एंड अ बिग रिजल्ट फ्रॉम बांग्लादेश क्रिकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन तमीम इकबाल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 2026 में उनकी क्रिकेट जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। पहले वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एडहॉक कमेटी के हेड बने और फिर 7 जून 2026 को BCB के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। तमीम BCB के 18th प्रेसिडेंट और 6th इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। यानी जिस शख्स ने सालों तक बांग्लादेश के लिए क्रीज पर ओपनिंग की, वो अब बोर्ड रूम में बांग्लादेश क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए फैसला कर रहा है। तमीम इकबाल का सफर एक क्रिकेटर से एडमिनिस्ट्रेटर तक का सफर है और ये एक तरफ उनके नाम हजारों इंटरनेशनल रन्स हैं तो 25 सेंचुरीज और कप्तानी का तजुर्बा है और दूसरी तरफ उनके सामने अब बांग्लादेश क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लीड करने की जिम्मेदारी है। तमीम इकबाल बांग्लादेश का स्टार ओपनर, फॉर्मर कप्तान और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नासिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने बैंकिंग का पूरा तरीका बदल दिया है। जी हाँ, आज का टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। कुछ साल पहले तक बैंक का कोई भी काम करने के लिए हमें ब्रांच पे जाना पड़ता था। अकाउंट बैलेंस चेक करना हो, फंड्स ट्रांसफर करने हो, बिल्स पेमेंट करनी हो या फिर स्टेटमेंट हासिल करना हो, हर काम के लिए लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन आज डिजिटल बैंकिंग ने ये सब काम हमारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर तक पहुंचा दिए। सिंपल वर्ड्स में कहें, डिजिटल बैंकिंग उन तमाम बैंकिंग सर्विसेज को कहते हैं जो इंटरनेट या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आपका ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है, अकाउंट मैनेजमेंट है, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट है, लोन एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, सब कुछ शामिल है। आजकल सिर्फ कुछ क्लिक्स के जरिए आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा है कन्वीनियंस। आपको बैंक के वर्किंग आवर्स का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप घर पर हो, ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, बैंकिंग सर्विसेज आपके स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होती हैं। और दूसरा बड़ा फायदा है टाइम सेविंग। जी हाँ, बैंक ब्रांचेस में जाकर फॉर्म फिल करना, लंबी क्यूज में वेट करना अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना? लेकिन डिजिटल बैंकिंग इस प्रोसेस को फास्ट और कन्वीनियंट बनाता है। तीसरा बड़ा बेनिफिट है फाइनेंशियल कंट्रोल। जी हाँ, मोबाइल एप्स और इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप हर ट्रांजेक्शन मॉनिटर कर सकते हैं। आपको अपने खर्चों और अपनी सेविंग्स का बेहतर अंदाजा रहता है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में मददगार साबित होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डिजिटल बैंकिंग हर किसी के लिए इक्वली यूजफुल है? जवाब है हाँ और ना, आई मीन जरूरी नहीं है। मास पॉपुलेशन के लिए डिजिटल बैंकिंग बहुत फायदेमंद साबित हुई है, खास तौर पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो, बिजनेस ओनर्स हो। वो लोग जो बिजी रूटीन रखते हैं उनके लिए ऑनलाइन बैंकिंग एक बहुत ही कन्वीनियंट सोल्यूशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रूरल एरियाज की या दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की, तो उनके लिए डिजिटल बैंकिंग आज भी चैलेंज है। डिजिटल बैंकिंग की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज उन तक आसानी से पहुंच भी नहीं पाती और इस तरह से उन्हें बैंक को विजिट करना है, उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होता, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो या वो लोग जो स्मार्टफोन्स या मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करने की आदत नहीं रखते, उनके लिए डिजिटल बैंकिंग मुश्किल है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस का भी एक बड़ा इशू है। अगर नेटवर्क वीक हो या इंटरनेट अवेलेबल ना हो तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और डिजिटल बैंकिंग ने वाकई बैंकिंग सेक्टर में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। आज के दौर में डिजिटल बैंकिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि स्मार्ट बैंकिंग का मतलब सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है बल्कि सेफ और इन्फॉर्म्ड बैंकिंग भी है। टेक्नोलॉजी पर भरोसा कीजिए लेकिन हमेशा उसे समझदारी के साथ यूज कीजिए। स्मार्ट मनी का आज का लेसन ये है कि डिजिटल बैंकिंग ऐप आपका वक्त बचाते हैं लेकिन उसकी सिक्योरिटी आपकी वाहिद जिम्मेदारी है। बस अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर

सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस एम्बुलेंसेस फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: FM 107 presents Tech Update. Tech Update. Assalamualaikum, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और आज भी कमाल की वेबसाइट्स हैं, मजेदार वेबसाइट्स हैं। और आज मैंने सोचा कि ना सिर्फ काम आने वाली वेबसाइट्स मगर ऐसी हों जिनमें नॉस्टैल्जिया छुपा हो। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होनी चाहिए ना जो आपको बैठे बैठे कहें यार ये तो बड़ी कमाल की चीज बता दी, इसने बढ़िया टाइम पास हो रहा है मेरा। तो आज टाइम पास करने के लिए भी कुछ चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। नंबर वन ऑन द लिस्ट वेबसाइट का नाम है cartoons.me, पर ये सी से शुरू नहीं होता कार्टून्स, ये के से शुरू होता है। सो KARTOONS.ME cartoons.ME। अब क्या होगा, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको अपने बचपन के बहुत सारे कार्टून्स नजर आएंगे जो आप लिटरली देख सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं, माँ बाप मैंने देखे तो चाहते हैं बच्चों को वो कार्टून्स दिखाएं जो 1990s में अर्ली 2000s में आते थे, क्योंकि उन कार्टून्स में कुछ बात थी यार, वो एक चार्म थी उसमें, बड़ी कमाल की चीज थी। अभी तो पर वो जो कार्टून्स थे वो देखने लायक थे, उसमें आप कुछ भी देख सकते हैं और पूरी लिस्ट आपके सामने जाएगी, जस्ट हैव टू क्लिक एंड प्ले इजीली। सो cartoons.me पे आप जा सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए नहीं, यू कैन आल्सो जस्ट टाइम पास कर रहे हैं एंड यू जस्ट वांट टू वॉच। मैं इस पर करेज द काउली डॉग देख के आया हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। सो KARTOONS.ME अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली जो वेबसाइट है ये बड़ी काम की है, इसका नाम है लूट और आगे हाइफन या डैश drop.io, ध्यान से सुनिएगा गलती हो सकती है। लूट LOOT लूट फिर डैश फिर ड्रॉप DROP.IO, ये सुनिएगा गौर से। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको दुनिया जहां में जितने भी स्टार्टअप्स बनाए गए बिजनेस आइडियाज के तौर पे आगे ले जाया गया और वो फेल हो गए, तो वो कहां फेल हुए और क्या सही कर सकते थे वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये लिटरली केस स्टडी है और बड़ी बड़ी कमाल की चीज है। आपको कोई बिजनेस आइडिया आप देख सकते हैं, बिजनेस आइडिया ऐसा किसी ने कभी ट्राई किया है, और अगर किसी ने ट्राई किया है तो क्या वो फेल हुआ है, और अगर फेल हुआ है तो कहां फेल हुआ है, और अगर फेल हो गया ये करके तो क्या करके वो कामयाब हो सकता था, सारी डिटेल आपको मिलेगी। सो प्लानिंग समथिंग इन फ्यूचर, आई थिंक बहुत बहुत कमाल की चीज है। मुझे भी दो तीन चीजें नजर आई, हालांकि मेरे अंदर बिजनेस एक्यूमन माइनस में है तो मैं सोच भी नहीं सकता, बट यू हैव इट इन यू, तो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं वेबसाइट का नाम फिर से बता देता हूँ, लूट LOOT डैश ड्रॉप DROP.IO, ठीक है। चलो अब आए हो तो तीसरी भी सुन लो। अगली वेबसाइट का नाम है myemulator.cc myemulator myemulator.cc। इसमें जब आप जाएंगे तो निंटेंडो के बहुत सारे गेम्स जो अर्ली एरा के थे, जो रेट्रो गेम्स हैं, वो सारे के सारे आप इजीली खेल सकते हैं। छुट्टियों का खेल है भाई ये, बहुत बढ़िया टाइम पास है, मुझे बड़ा मजा आया इसको एक्सप्लोर करने में, एंड आई लव्ड इट कि मैं इजीली सुपर मारियो ब्रदर्स 3 खेल सकता हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि उसमें उसकी पूंछ होती थी मारियो की, उड़ा करता था, जिन्होंने मारियो को बहुत दिल लगा के प्यार किया वही जानते हैं। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके मूविंग ऑन टू अनदर वन, मतलब खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो खबर देखिए बड़ी सिंपल सी है लेकिन बड़ी कमाल की है, बड़ी हैरान कर देने वाली है। दुनिया में अब वायर्ड एयरबड्स आना शुरू हो चुके हैं। पता नहीं आपको इस बारे में अभी जानकारी मिली है कि नहीं, पर रीसेंट टाइम्स में देखा होगा कि लोग जो हैं वो वायरलेस एयरबड्स छोड़ के वायर्ड वाले की तरफ जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसका सबूत दो, मैं आपको सबूत देता हूँ। बोस जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, वो वायर्ड हेडसेट बना चुकी है, मार्केट में उतार दिया, पीपल आर लविंग इट। तो ये जो पीछे पहिया घुमा है ये भी बड़ी कमाल की चीज है, पीपल आर नाउ विलिंग टू बाय वायर्ड हेडसेट, क्योंकि लग रहा है भाई यही सही है। वो जो आपको याद है मॉडर्नाइज सीडी प्लेयर का जमाना था, तो बोस ने कहा कि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो उन्होंने इसके अंदर काफी सारी चीजें डाली हैं। एयरबड्स में कनेक्टिविटी दी है, 4.2 फुट लॉन्ग USB-C केबल, और इसमें काफी कंट्रोल्स हैं जो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे।

0: और ANC सेटिंग मोड भी है, तो क्वाइट मोड भी है, अवेयर मोड भी है और नॉइस कैंसिलेशन भी है. तो कमाल है यार ये, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. और इसमें लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट भी डाला है ताकि नॉइस कैंसिलेशन आपको उतनी ही लेवल की मिल सके. एक्सलेंट, ये थी अपडेट, मिलते हैं अगली वाली में. स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: स्कैम अलर्ट.
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं. और उम्मीद है कि इन स्कैम्स के शो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे. और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये थोड़ा सा इमोशनल फ्रॉड अवेयरनेस का या स्कैम का शो हो सकता है, क्योंकि ये आपके हेल्थ से, आपके फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके रिलेटिव के हेल्थ से रिलेटेड ये स्कैम हो सकता है. ये स्कैम क्या है? इस स्कैम का नाम है ट्रीटमेंट स्कैम. दोस्तों ये स्कैम काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं. ट्रीटमेंट स्कैम एक निहायत ही संगीन धोखा है एक्चुअली, जहां प्रेडेटरी स्कैमर्स ऐसे मजबूर लोगों को टारगेट करते हैं जो किसी बीमारी के इलाज की तलाश में होते हैं. ये स्कैमर्स ऑनलाइन अनऑथराइज्ड हेल्थ सर्विसेज, फेक क्लिनिकल स्कीम्स और ऐसी मेडिकल कंसल्टेशंस मार्केटिंग के जरिए बेचते हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती. अपने झूठे दावों को सच साबित करने के लिए वो नकली क्लिनिकल ट्रायल्स रिजल्ट और धोखेबाज मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का सहारा लेते हैं. बेबस और परेशान मरीज मदद की उम्मीद में अपनी जेब से बहुत बड़ी रकम ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो बिल्कुल बेअसर होती है, जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंट होलिस्टिक क्लिनिकल रिजर्वेशंस या नकली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. इस फ्रॉड की वजह से ना सिर्फ लोगों का बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है, बल्कि मरीजों का असली और प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत डीले हो जाता है, जो उनकी जान के लिए खतरनाक साबित होता है. दोस्तों कई बार ये स्कैमर्स मरीज के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, या फिर उनके इस तरह के इलाज जो बहुत ज्यादा महंगे हैं उनको सस्ता करके भी दिखाते हैं. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मरीज के मेडिसिन को सस्ता कर बेचते भी हैं. और ये प्रोडक्ट यानी कि मेडिसिन आपके पास आता भी है, लेकिन ये नकली भी हो सकता है. लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने के कुछ तरीके भी हैं, और जो सबसे पहला तरीका है वो है हमेशा सर्टिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाना. किसी भी ऑनलाइन मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें. हमेशा किसी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ही अपना इलाज करवाएं. कई बार ऑनलाइन कोई डॉक्टर बना बैठा है और कहता है कि भाई वो किसी प्रॉब्लम को या किसी मेडिकल या किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम को आसानी से सही कर सकता है. वो सिर्फ 200 या 500 कतरी रियाल लेता है, या फिर इंडियन रुपीज लेता है या पाकिस्तानी रुपीज लेता है, और वो आपको आसानी से ट्रीट कर सकता है ऑनलाइन. वो आपसे बैठेगा, बात करेगा, वो कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जो कि डॉक्टर ही इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप इस तरह के झांसे में आ जाते हैं और फिर आप उनको कंसल्टेशन फीस दे देते हैं. उसके बाद आप जो उन्होंने मेडिसिन बताया है आप वो मेडिसिन भी खरीद लाते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह से आपको फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होता है. मेडिसिन का पैसा आ जाता है, उन्होंने जो आपको मेडिसिन के बारे में बताया वो भी इलॉजिकल किसी भी तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी हेल्थ को सही नहीं करता है, और फिर आपके साथ हो जाता है स्कैम, क्योंकि आप कंसल्टेशन फीस भी दे चुके हैं. उसके अलावा मेडिकल क्योर्स और झूठे दावों से भी बचें. अगर कोई प्रोडक्ट या क्लिनिक अचानक हर तरह की पुरानी या लाइलाज बीमारियों को फौरन ठीक करने का दावा करे तो होशियार हो जाएं. मेडिकल साइंस में हर चीज का एक प्रॉपर और सर्टिफाइड प्रोसीजर होता है. तीसरा तरीका है इन स्कैम से बचने का, हेल्थ अथॉरिटीज की वेरिफिकेशन करना. किसी भी नई दवा, हेल्थ प्रोडक्ट या क्लिनिक की रिजर्वेशन करने से पहले चेक करें कि क्या वो आपके मुल्क की ऑफिशियल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं. दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को स्कैम होने से बचा सकते हैं. उम्मीद है कि आपको ये शो से काफी कुछ पता चला होगा कि कैसे ये हेल्थ को लेकर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको टारगेट कर सकते हैं, आपको स्कैम कर सकते हैं, आपकी जेब को, आपकी हेल्थ को लेकर खाली कर सकते हैं. इसलिए आज के वक्त में नए जमाने के नए स्कैम को समझने के लिए जरूरी है कि आप होशियार रहें और सुनते रहें FM 107, क्योंकि इस तरह के स्कैम के बारे में हर रोज मैं आपको इत्तला करता हूं और आगाह करता हूं, और आप उम्मीद है कि होशियार भी बन रहे होंगे. इसी के साथ मुझे यानी कि

0: फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको अलर्ट करते हुए। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है डरिए नहीं समझिए RJ A for अमिता के साथ AI लॉक्ड पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए तो सुनिए AI RJ A for अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
4: हेलो अस्सलाम वालेकुम FM 107 सुन रहे हैं आप मैं हूँ आपकी फॉर अमिता और आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते का ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ AI अनलॉक्ड तो जनाब ये वो शो है जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेबोरेटरी से निकाल कर सीधा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लेके आते हैं क्योंकि AI अब सिर्फ साइंटिस्ट की चीज नहीं है ये अब हमारी सड़कों में है हमारी बिजली के खंभों में है और शायद हमारे अगले रेड लाइट में भी जरा एक सीन सोचो आप गाड़ी में बैठे हैं सिग्नल लाल है और सामने से कोई गड्डी भी नहीं आ रही है लेकिन आप गाड़ी देखते हैं फिर सिग्नल देखते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं ये टाइम वेस्ट हो रहा है यार अब जरा इमेजिन करो एक ऐसे शहर में हो आप जहां वो लाइट खुद सीखती है वो ट्रैफिक को देखती है समझती है कि रश कब आएगा और क्यों बनने से पहले ही खुद को बदल लेती है वेल यही है आज का टॉपिक आज हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज और AI की और देखेंगे कि कैसे AI ट्रैफिक और बिजली को संभाल रही है उन जगहों पर जैसे सऊदी अरेबिया का जो नियम है इंडिया का गिफ्ट सिटी है हम एक ऑनेस्ट सवाल भी पूछने वाले हैं कि इसमें से कितना हिस्सा आज रियल है और कितना अभी भी सिर्फ एक विजन एक ख्वाब है जो कागज पर है उसके बाद हम चलेंगे दुनिया भर की लेटेस्ट AI खबरों की तरफ जिसे हम AI अराउंड द वर्ल्ड कहते हैं और एंड में हमारा हमेशा वाला फेवरेट सेगमेंट होगा टूल ऑफ द वीक जहां मैं आपको एक बिल्कुल फ्री टूल दिखाऊंगी या यूं कहें सिखाऊंगी जिसे आप आज रात ही ट्राई कर सकते हैं साथ ही एक छोटा सा ट्रिक भी कि बेहतर प्रॉम्प्ट कैसे लिखें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं FM 107 के हर जगह पर हम मौजूद हैं बेशक आप वहां पर जुड़ सकते हैं या फिर हमारा जो नंबर है 666-22-107 इसके जरिए भी आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं और आज का सवाल ये है कि आपकी जिंदगी का सबसे बुरा ट्रैफिक जैम कौन सा था कब आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे वो जैम जहां आपको लगा

कि अब तो हमारी गाड़ी यहाँ से निकल ही नहीं सकती, हमारी उम्र बीत जाएगी. जरूर उसके बारे में हमसे शेयर करें 666-22-107 पर. तो चले अब आगे बढ़ते हैं और सबसे बेसिक सवाल से, और वो सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी होती क्या है. एक सिंपल तरीका समझने के लिए है और उसे आप ध्यान से सुन लें कि सिटी को एक इंसानी जिस्म समझो, ठीक है. आपको ये इमेजिन करना है, सड़कें हैं जैसे आर्टरीज, ठीक है, जिनसे ट्रैफिक बहता है. बिजली की लाइन्स हैं जैसे नर्व्स, ठीक है, जो पूरे शहर को सिग्नल भेजती है. पानी के पाइप्स हैं जैसे रागा या वेन्स, ठीक है, जिनसे जरूरी चीजें सर्कुलेट होती है. अब एक स्मार्ट सिटी इस जिस्म में तीन नई चीजें डालती है. पहला सेंसर्स, ये है आंखें और कान, ये हर जगह लगे होते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं. दूसरा है डेटा, ये है मेमोरी, हर सेंसर जो देखता है वो याद रखा जाता है. और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इज AI, ये है दिमाग जो पैटर्न पहचानता है और डिसाइड करता है कि अब क्या करना चाहिए, या खुद कर देता है, ठीक है, या इंसान को सजेस्ट करता है कि हम ये चीजों में तब्दीलियां ला सकते हैं. तो बेसिकली स्मार्ट सिटी एक ऐसा शहर है जो अपने आप को महसूस कर सकता है, समझ सकता है और रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा अपना जिस्म, हमारी अपनी बॉडी, हम जो फील करते हैं. अगर हमें गर्मी फील होती है तो हमें डेफिनेटली पसीना आता है, बिल्कुल वैसा. लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी है कि ऑटोमेशन और AI में फर्क होता है. ऑटोमेशन का मतलब होता है फिक्स्ड रूल्स फॉलो करना, जैसे एक वॉशिंग मशीन एक ही साइकिल पर बार बार चलती है. AI का मतलब सीखना है, पैटर्न समझना है और प्रिडिक्ट करना है ताकि आगे के काम और अच्छे से हो सके. ज्यादातर स्मार्ट सिटीज दोनों का मिक्सचर होती है और इसे मिक्स करके काम करती है. और आज हम देखेंगे कि कहाँ ऑटोमेशन है और कहाँ असली AI है. तो जनाब, AI से पहले कैसे होता था, चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि समझ आए कि बदलाव कितना बड़ा है. पुराने जमाने में, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब जस्ट टू टेल यू, सिर्फ कुछ साल पहले की बात है कि ट्रैफिक लाइट्स फिक्स टाइमर पर चलती थी. मतलब एक इंजीनियर आता था, एक नंबर सेट कर देता था, जैसे ही ये लाइट 45 सेकेंड रेड रहेगी, फिर 30 सेकेंड ग्रीन, और वो नंबर सालों साल उसी तरह से चलते रहता था, चाहे रात के 2 बज रहे हो या सुबह के 4 बज रहे हो या फिर कोई भी मौसम हो, ठीक है. अगर सिटी इंजीनियर्स चाहते थे कि टाइमिंग बेहतर करें तो उनके पास दो ही रास्ते होते थे, या तो महंगे सेंसर्स लगा दो जो हर सिटी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, या फिर मैनुअल तरीके, मतलब कोई इंसान खड़ा होकर हाथ से गाड़ियां गिनता था. सोचिए, मतलब एक इंसान सड़क के किनारे खड़ा हो, काउंटर पकड़े हुए हो और गिन रहा हो कि कितनी गाड़ियां गुजरी. ओहो, ये प्रोसेस स्लो भी था, महंगा भी और बोर करने वाला भी था. अब बात करते हैं बिजली की. बिजली के साथ तो और भी ज्यादा मुश्किल थी कि ज्यादातर यूटिलिटीज कंपनी को पता चलता था कि भाई कहीं फॉल्ट है, जब कस्टमर्स फोन पर शिकायत करते थे, भाई हमारे इलाके में बिजली नहीं है. उसके बाद कंपनी का कोई बंदा गाड़ी में बैठकर निकलता था, पूरे इलाके में घूमता था, तार देखता था, खंभे चेक करता था ताकि फॉल्ट ढूंढी जा सके. इस पूरे प्रोसेस में घंटे दो घंटे लग जाते थे, कभी कभी तो पूरा दिन. तो ये था पुराना तरीका, स्लो, महंगा और लोगों के लिए ना काफी फ्रस्ट्रेटिंग. अब देखते हैं कि AI ने इस चीज को कैसे बदला, और इसके लिए हम चलते हैं सीधा इंडिया, जहां पर गुजरात की गिफ्ट सिटी की हम बात करते हैं. गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, एक ऐसी स्मार्ट सिटी है जो आज इस वक्त काम कर रही है. ये कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है, ये अभी जिंदा है. इसका दिमाग, मतलब ब्रेन, एक जगह है जिसे कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, या शॉर्ट में C4. ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां से पूरे शहर की निगरानी होती है. बिजली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, पानी, वेस्ट वाटर, कचरा मैनेजमेंट, अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल्स एंड सड़क की रोशनियां, सब कुछ एक ही जगह से देखा जा सकता है. जरा स्केल समझो, इस सिस्टम से 70,000 से ज्यादा इनपुट और आउटपुट पॉइंट्स कनेक्टेड हैं. मतलब एक सेंटर में बैठा हुआ एक इंसान एक ही स्क्रीन पर 70,000 से ज्यादा चीजों को स्टेटस के तरीके से देख सकता है. ये नंबर सुनकर ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है. अब आते हैं असली AI का हिस्सा, सिक्योरिटी और सर्वेलियंस के लिए 417 से ज्यादा AI बेस्ड नाइट

जो लीक डिटेक्ट कर लेते हैं इससे पहले कि लीक बड़ा मसला बन जाए। अब दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजाइन चॉइसेस जो गिफ्ट सिटी में यूज की गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग। नॉर्मल तरीका ये होता है कि हर बिल्डिंग में अपना एक अलग एसी लगता है। गिफ्ट सिटी में इसके बजाय एक ही सेंट्रल प्लांट से ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, पूरे एरिया में पाइप्स के जरिए भेजा जाता है और हर बिल्डिंग बस उसे यूज कर लेती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके से तकरीबन 30% कम एनर्जी यूज होती है। सोचिए, एक ही बड़े प्लांट से पूरे एरिया को कूल करना इंडिविजुअल एसीज के बजाय, ये कितना एफिशिएंट है। दूसरी बात, ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन। इसमें कचरा सड़कों से ट्रक में नहीं उठाया जाता, इसके बजाय कचरा अंडरग्राउंड पाइप्स के जरिए तकरीबन 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से सक कर लिया जाता है, मतलब खींच लिया जाता है और सीधा कलेक्शन पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो आपको सड़कों पर कचरा उठाने वाले ट्रक्स दिखाई ही नहीं देते, ना वो बदबू आती है और ना ही वो ट्रैफिक जैम। तो इस तरह से नतीजा ये निकलता है कि गिफ्ट सिटी एक अच्छा एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे एक सिटी अपनी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटली कनेक्टेड रख रहा है, उसे ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है, या यूं कहें बना सक रहा है, चाहे वो 100% AI हो या ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AI अराउंड द वर्ल्ड की। अब वक्त है हमारे इस फेवरेट सेगमेंट का, जहां पर हम दुनिया भर की खासम खास अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। तो खबर नंबर एक, यस, नियोम का AI डेटा सेंटर। याद है हमने पहले बताया था कि नियोम ने अपना अप्रोच बदला है और इस बारे में काफी जिक्र होता है। अब इसका सबूत भी आ गया है। नियोम के ऑक्सीगन एरिया में एक डेटा सेंटर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। ये एक पार्टनरशिप है ह्यूमेन और डेटा वर्ल्ड के बीच की। सो प्लान ये है कि इसके पहले फेज में 100 मेगावाट पावर एक्सपेक्टेड है और पूरी फैसिलिटी जब मुकम्मल होगी तो 360 मेगावाट तक जाएगी और ये 2028 तक उम्मीद किया जा रहा है। इसका अनाउंसमेंट रियाद में लीप कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि AI को चलाने के लिए जबरदस्त मेन पावर और कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। तो जहां भी ये डेटा सेंटर्स बनेंगे वही तय करेंगे कि AI की दुनिया में कौन आगे है। समझ में आई बात। खबर नंबर दो इज, ग्रीन लाइट और आगे बढ़ रही है। गूगल का ट्रैफिक लाइट AI, जो हमने अबू धाबी के कॉन्टेक्स्ट में बात जब की थी तो उसका जिक्र किया था, अब और भी ज्यादा शहरों में फैलते जा रहा है। क्यूबेक सिटी कनाडा का पहला शहर था जिसने इसे 2025 में अडॉप्ट किया था और अब डेली हाइव की जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक वैंकूवर ने भी गूगल के साथ पार्टनरशिप कर ली है। ये चीज बताती है कि स्मार्ट सिटी AI अब सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये धीरे धीरे एक रोजमर्रा का टूल बनते जा रहा है। और अब तीसरी बड़ी खबर इस, मॉडल रेस जारी है। सितंबर में नए AI मॉडल्स की एक बड़ी लहर आई, ठीक है। ट्रैकर्स के मुताबिक गूगल का जेमिनी 3.8 फ्लैश 2 सितंबर को रिलीज हुआ, अलीबाबा का Qwen 3.8, ओमनी फ्लैश 18 सितंबर को आया और XAI का ग्रॉक 4.7 21 सितंबर को लॉन्च हुआ। इसका मतलब ये है कि जो टूल्स स्मार्ट सिटीज के पीछे काम कर रहे हैं, मतलब AI मॉडल्स खुद, वो लगातार तेज और सस्ते होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो एग्जांपल्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। यस, इस फील्ड में चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, इसीलिए ओल्ड हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टूल ऑफ द वीक की बात करते हैं, विच इज माई फेवरेट पार्ट। अब बात है टूल ऑफ द वीक में किस चीज की। आज का टूल है गूगल नोटबुक LM। ये गूगल का बिल्कुल फ्री AI रिसर्च असिस्टेंट है और इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करता है जो आप खुद अपलोड करते हैं, मतलब ये इंटरनेट के रैंडम जवाब नहीं बनाता, ये सिर्फ आपके दिए हुए मटेरियल से जवाब देता है और हर जवाब के साथ ये बताता है कि वो जवाब किस सोर्स से आया है। इसी वजह से ये गलत बनावटी जवाब देने के चांस
कम कर देता है। चलिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल देखते हैं, सिर्फ चार स्टेप्स हैं इसके। स्टेप नंबर वन, जाइए notebooklm.google.com पर, ठीक है, और अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। नंबर टू, न्यू नोटबुक पर क्लिक कीजिए, फिर अपने सोर्सेज ऐड कीजिए जैसे PDFs, वेब पेजेस या यूट्यूब लिंक्स। आप एक नोटबुक में 50 तक सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, ट्राई कीजिए अपने खुद के शहर का स्मार्ट सिटी प्लान अपलोड करना या कोई न्यूज़।

0: आर्टिकल जो आपके शहर के बारे में हो, उसके बाद फोर्थ स्टेप अब सवाल पूछिए या फिर उसको ऑडियो ओवरव्यू फीचर ट्राई कीजिए, ठीक है? ये एक पॉडकास्ट स्टाइल कॉन्वर्सेशन बनाता है आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फ्री वर्जन में आपको रफली 3 ऑडियो ओवरव्यूज रोजाना मिलते हैं। अब एक छोटा सा प्रॉम्प्ट टिप भी दे देती हूँ, ठीक है, जो बहुत काम आएगा। इसको कहते हैं RTCF फॉर्मूला। एक अच्छा प्रॉम्प्ट 4 हिस्सों में बनता है। रोल मतलब AI को बताइए वो कौन है, जैसे तुम एक सिटी ट्रैफिक इंजीनियर हो। टास्क दीजिए मतलब AI को काम बताओ, जैसे AI ऑप्टिमाइज ट्रैफिक लाइट्स कैसे कम कर सकता है ये समझाओ। कॉन्टेक्स्ट मतलब ऑडियंस कौन है ये बताना है। और फॉर्मेट मतलब जवाब किस शक्ल में चाहिए, जैसे मुझे 5 छोटे बुलेट पॉइंट्स चाहिए, ठीक है? इस पर अब फर्क देखिए। एक वेग प्रॉम्प्ट होता है, मुझे स्मार्ट सिटीज के बारे में बताओ, ये बहुत वेग है। देखिए फर्क, पहला प्रॉम्प्ट वेग था, दूसरा प्रॉम्प्ट क्लियर था क्योंकि उसमें रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट था। तो इससे आपको सही जवाब सही तरीके से मिलेंगे। तो जनाब इतना ही था आज के हमारे एपिसोड में। एंड आई एम वेरी सर्टेन कि आज का हमारे एपिसोड कहीं ना कहीं कारगर हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आया होगा। आज हमने देखा कि एक स्मार्ट सिटी असली में है। लोग कहते ना कि इट्स अ मैजिक, इट्स नॉट अ मैजिक, वो असलियत में है। AI तब सबसे बेहतर काम करता है जब इंसान उसका गोल सेट करते हैं और उसके रिजल्ट्स को चेक करते रहते हैं। ये एक टूल है, एक पार्टनर है, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो जनाब आज का एपिसोड आपको कैसे लगा आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर, या आप हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, या सोशल मीडिया पे आरजे अमिता को भी ढूंढकर अपने जवाब दे सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, हमने आपसे सवाल पूछा था कि आपने अपने ट्रैफिक जैम की कहानियां जो है, मतलब जहां पर आप जब फंसे तो आपको लगा कि हाय यहां पर फंसे फंसे हमारी उम्र ना बीत जाए, तो वो स्टोरीज आप हमसे शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके मैसेजेस, आपके व्यूज, आपके सजेशंस हमारे शो को और भी ज्यादा कमाल का बनाते हैं, है कि नहीं? तो अभी मैं कहूंगी मुझे दीजिए इजाजत। अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए क्या करना है, क्यूरियस रहिए, स्मार्ट रहिए और अनलॉक करते रहिए क्या AI के सारे रूल्स को, ताकि आप अपनी लाइफ को और आसान बना सके, ठीक है? तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.
1: AI Unlocked. RJ A for Amita ke saath, sirf FM 107 par. Dil Se Desi. Access granted.
2: Number one hits music station.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
6: Gen Z. Gen X. Gen Alpha. Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
7: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
8: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। देसी
9: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01 यानी इट्स टाइम फॉर।
3: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है भाई? तो आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन FM 107। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर। तो कैसा गुजरा वीकेंड और ये हफ्ते का जब नया दिन शुरू हुआ, सो हाउ वाज योर डे? अब तक आपको कैसा लगा, कैसा महसूस किया आपने एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? हाँ हाँ, सब बता सकते हो 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, क्योंकि ये एक लौता शो है जो कि आपका अपना पर्सनल म्यूजिकल शो है जहाँ पर आप अपने मूड से बिल्कुल यू नो रिफ्रेश हो जाते हैं, अपने पसंद के गाने सुनते हैं, अपनी हर चीज़ को ईज्ड आउट करते हैं, है कि नहीं? तो आज हमने सोचा क्योंकि हफ्ते का नया दिन शुरू हुआ है तो थीम बड़ी ही सिंपल है, वो कौन से मज़ेदार गाने हैं, वो कौन से ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स हैं आपकी लाइफ के जो कि आपको एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स देते हैं या आपके मूड को रिफ्रेश करते हैं या इस तरह से कि आप उस गाने को कभी मिस ही नहीं करते, यू लव इट सो मच। तो वो कौन से गाने हैं जो कि आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा है एंड टॉप चार्ट्स पर प्ले हो रहे हैं? सो 666-22-107, 666-22-107 पर अपने डेडिकेशंस, अपने स्टोरीज के साथ बताएं या किसी खास को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी बताएं, नंबर आपको पता ही है। और अभी शो की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ। मैं तो कहूँगी कि हम सब म्यूज़िक लवर्स हैं तो हमें अच्छे अच्छे गानों की लत लग गई है और यहाँ पर जब बैनी दयाल और शालमली कहते हैं लत लग गई तो वो गाना बड़ा कमाल का लगता है कि नहीं? सो लेट्स एंजॉय टुगेदर, स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप। तो जनाब द रिक्वेस्ट शो की शुरुआत हो चुकी है जहां पर हमने अभी तक लत लग गई गाना एंजॉय किया जो कि हमारी तरफ से तोहफा था आपके लिए। लेकिन कौन सा वो गाना है जो कि आपकी प्लेलिस्ट पर टॉप कर रहा है एंड यू वांट टू लिसन? सो 666-22-107 666-22-107 पर बेशक बता सकते हैं अपने नाम के साथ अपनी स्टोरीज अपने डेडिकेशन जरूर हमसे शेयर करें, है कि नहीं? कल अभी हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी को तहे दिल से सलाम है ना। और यहाँ पर मोर फरहत जो हमारे लिसनर हैं बड़ी मजे की बात कह रहे हैं कि अमिता गुड इवनिंग और वीकेंड तो हमारा आया चला गया पता ही नहीं चला, बिरयानी बनाने में ही निकल गया। कोई बात नहीं, वीकेंड होती ही ऐसी चीज़ है कि पहले इंतज़ार करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि फिर कब आएगा। फिलहाल आपके लिए एक कमाल की रिक्वेस्ट आई हुई है जिसे सुनकर आप सभी को मज़ा आने वाला है। रहीम की रिक्वेस्ट है और वो कहते हैं कि अमिता मैं इमरान हाशमी एंड हिमेश रेशमिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वैसे तो उनके सारे कम्बाइन सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है लेकिन अभी ये लेटेस्ट वाला गाना प्ले करोगी क्या? बजेगा ही बजेगा, वो भी पूरा पूरा। कुछ ही देर में आप फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं, आई रियली लव दिस सॉन्ग। और उसके बाद फरहान एंड शान अहमद की रिक्वेस्ट है और कह रहे हैं कि अमिता ये गाना तो प्लीज बजा ही दो। वैसे स्टोरी नहीं लिखी लेकिन जो भी ये गाना सुनता है कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई स्टोरी होती ही है। सैयारा ये गाना भी आपको हम पूरा पूरा सुनाने वाले हैं। और हमारे बाकी के लिसनर्स भाई सोचो मत, बताओ वो कौन सा गाना है जो कि आपकी म्यूजिकल प्लेलिस्ट पर टॉप कर रहा है इस वक्त, लाइक राइट नाउ। शेयर करो 666-22-107 पर और क्यों आपको वो गाना पसंद है ये भी बता सकते हैं। फिलहाल हिमेश रेशमिया एंड इमरान हाशमी का ग्रेट कॉम्बिनेशन असीस कौर की आवाज के साथ, लेट्स एंजॉय टुगेदर। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Absolute cinema.
3: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट. पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही. सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर. दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
4: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. और भाई आज की थीम बड़ी सिंपल है. वो कौन सा गाना है जो कि आपकी प्लेलिस्ट पर टॉप पर रहता है और आपकी जब मर्जी होती है आप सुन लेते हो यार अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए? कौन सा गाना है वो? शेयर करो 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपनी स्टोरीज, अपने डेडिकेशंस. और अभी हम बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ. सो इस गाने की रिक्वेस्ट की है मेहर अजीज ने और जावेद अली जी की आवाज़ है. क्या बात है, नकाब फिल्म का ये गाना है. वैसे इस गाने का जो म्यूज़िक है वो हॉलीवुड के गाने से इंस्पायर्ड है, बट स्टिल ये गाना बहुत ब्यूटीफुल है. सो हम इसे पूरा एंजॉय करने वाले हैं. और इसके बाद हम सुनने वाले हैं, रिक्वेस्ट आई है इमरान बानी की. मतलब ये गाना तो अक्सर शादियों में बजता है और इस गाने को जो रिक्वेस्ट करे, बता दो इमरान जी क्या है इसके पीछे की कहानी, राज क्या है?
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है.
4: क्या बात है.
5: दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है.
4: नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ और सच में बड़ा शानदार गाना. मतलब मुझे तो लगता है कि इंडिया में जब ये धड़कन फिल्म रिलीज हुई थी हर शादी में ये गाना लाउड स्पीकर्स पे बजता था. मुझे तो वो यादें आती हैं. आपकी कौन सी याद है आप शेयर कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली ये सारे हिट गाने पूरे आपके लिए आने वाले हैं. आपकी प्लेलिस्ट का कौन सा हिट गाना है जो आप कभी भी सुन सकते हैं, यू ऑलवेज लव इट, शेयर कीजिए 666-22-107 पर अपने नाम के साथ. और अभी लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक. स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
3: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
2: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
4: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 PM हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप। एंड द रिक्वेस्ट शो जनाब, हफ्ते की शुरुआत, और मैंने कहा कि भाई वो कौन से गाने जो आपके प्लेलिस्ट का हिस्सा हमेशा रहते हैं, लाइक दो सॉन्ग्स जो हमेशा टॉप करते हैं, आप कभी भी सुन सकते हैं किसी भी वजह के लिए। हाँ, तो मुझे अभी मैसेज आया है फलक का, एंड उन्होंने बेहद खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट की है, जो कि अब्दुल हनान एंड समर जाफरी का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। द सॉन्ग इज खसारा। बताना चाहती हूँ कि ये गाना इसी साल रिलीज हुआ, एंड जब ये रिलीज हुआ तो वो कहते हैं ना, चार्ट्स टॉपिंग डोमिनेंस था 100 days तक। 100 days, गौर कीजिएगा, सारे म्यूजिकल प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 पर था। सो कसारा, दिस इज द सॉन्ग जो कि आप पूरा पूरा सुनेंगे। और उसके बाद सबीर की रिक्वेस्ट है, एंड ये भी बहुत खूबसूरत गाना है। आई शुड टेल यू कि अर्ली 2000s में जब ये मूवी आई थी द ट्रेन, आई शुड टेल यू कि एक डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक और नॉस्टैल्जिक एंथम ये बन चुका था। के की आवाज में, सो यस, खसारा एंड बीते लम्हे, ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं। सो गेट रेडी टू एंजॉय, और अपने जो कहते हैं ना पर्सनल इमोशनल मोमेंट्स में खोना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहते हैं, उन्हें चेरिश करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। और इस वक्त सोचिए कौन सा वो गाना है जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, यू वॉन्ट टू लिसन टू इट, तो ज़रूर शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर अपनी स्टोरीज के साथ, अपने डेडिकेशंस। और अभी बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। क्या बात है, मतलब प्लेलिस्ट में ऐसे कमाल कमाल के गाने हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी याद को ताज़ा करते हैं कि नहीं। आपके रिक्वेस्ट को सुनकर मुझे ऐसा ही एहसास हुआ। वेल, आगे भी रिक्वेस्ट है जिन्हें हम प्ले करेंगे, लेकिन पहले हम आपके फिल्मी नॉलेज को चेक करने वाले हैं। सो चलो क्विज टाइम पर देखें क्या सवाल है।
0: क्विज टाइम।
1: तो क्विज टाइम पर आज एक गाना बीच से आपको सुनाया जाने वाला है, और प्ले करने से पहले बता दूं कि इसमें सोनम कपूर है। हाँ, अब सुने ये गाना।
2: सुहानी सुहानी है ये कहानी जो खामोशी सुनाती है।
1: और इस फिल्म में उनका नाम आयशा है। बताए बताए बताए बताए कौन सा गाना है ये। सोचे सोचे इस गाने का नाम मुझे लिखें अपने नाम के साथ, एंड डेफिनेटली अगर आपने सही गैस किया तो ये गाना पूरा पूरा आपके नाम हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ, जो कि मोहम्मद सादिक ने रिक्वेस्ट की है, एंड इट्स अ वेरी प्रिटी सॉन्ग। जो भेजी थी दुआ, उफ ये गाना सुनो ना तो ऐसे गूज बम्स एकदम फील होते हैं पूरे बॉडी में। हाँ, सो डेफिनेटली शंघाई फिल्म का ये गाना आपकी राहों में पूरा पूरा आएगा। और उसके बाद श्रेया घोषाल का एक गाना काफी वो कहते हैं ना कि ग्लोबली हिट हो रहा है, एंड द सॉन्ग इज बेरी पिया। हाँ जी, तो ये मोहम्मद हुसैन ने रिक्वेस्ट की है। डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा आपको सुनाने वाले हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बस इंजॉय करने इन गानों को यही FM 107 पर दिल से देसी ही।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। देखिए, हमारे द रिक्वेस्ट शो बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है और क्विज टाइम पर मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, एक गाना आपको बीच से सुनाया, कहा सोनम कपूर इसमें है एंड उनका नाम इस फिल्म में आयशा है और गाना ये था जिसे आपको पहचानना था।
2: सुहानी सुहानी है ये कहानी जो खामोशी सुनाती।
1: कौन सा गाना है ये जिसे अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया, उनकी आवाज भी है, निखिल डिसूजा की भी आवाज है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। ओके, सो लेट मी टेल यू, ये गाना है शाम फ्रॉम द मूवी आयशा, जिसे हम पूरा पूरा प्ले करने वाले हैं और हमारे लिसनर्स को लगता बहुत चैलेंजिंग लगा, लेकिन हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन्होंने सही पहचाना। सो उनके नाम है रियाज, अमन एंड मोहम्मद यूसुफ खान, तो ये गाना आपके नाम होने जा रहा है और हमारे उन तमाम लिसनर्स के नाम भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं पूरा एक घंटा और द रिक्वेस्ट शो की शान को बढ़ाते हैं, है कि नहीं। चलिए, इसी बात के साथ अब आप दीजिए मुझे इजाज़त, वक्त हो गया मेरे जाने का। अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं देन 666-22-107 ये नंबर तो आप नोट कर ही लीजिए, साथ ही FM 107 के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं और आप दे दीजिए इजाजत। जाते जाते ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफसियाती तवानाई को ताज़ा करने का

0: आपको एक काम करती हूँ, ये फिजिक्स के दरवाजे थोड़े से बंद करते हैं और इसको सिंपलीफाई सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसे। अगर मेरे कंप्यूटर में एक 3D मॉडल है तो भाई प्रिंटर से कैसे समझता है?
1: एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले डिजिटल 3D डिजाइन क्रिएट होता है। डिजाइन कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर यानी CAD सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। फिर सॉफ्टवेयर डिजाइन को बहुत सारी थिन लेयर्स में डिवाइड करता है
0: और फिर प्रिंटर हर लेयर को इंडिविजुअली क्रिएट करता है।
1: एग्जैक्टली। इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि मटेरियल कहाँ डिपॉजिट करना है, किस शेप में है और किस तरह नेक्स्ट लेयर के साथ कनेक्ट करना है।
0: और इसी प्रोसेस की वजह से 3D प्रिंटिंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए इतनी यूजफुल बन गई है भाई।
1: बिल्कुल। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना हो तो प्रोसेस लेंदी हो सकता है। आप डिजाइन बनाते हैं, मोल्ड डेवलप करते हैं, पार्ट्स ऑर्डर करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर चेंजेस के लिए दोबारा प्रोसेस रिपीट करते हैं।
0: अच्छा, और अगर आपको मोल्ड चेंज करना हो ना इसका, तो इसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, दोनों चीजें लग सकती हैं।
1: एग्जैक्टली, सही बोल रही हो सफा। लेकिन 3D प्रिंटिंग में डिजाइनर डिजिटल फाइल को मॉडिफाई कर सकता है और फिर अपडेटेड वर्जन प्रिंट कर सकता है।
0: यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई प्रिंट, टेस्ट, प्रूव और फिर दोबारा प्रिंट।
1: क्या बात है। और ये साइकिल जितनी बार जरूरी हो रिपीट की जा सकती है।
2: Anytime, anywhere. कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

उर्दू रेडियो एफएम सेवेंटी अख्तिताम मुतलाता है। दोहा के निवाही इलाके मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।

0: और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे मुलाकात होती है स्टार्टअप स्टोरीज के साथ। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आ चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेवल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही।
2: वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, नेक्स्ट जेन है शो का नाम। मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ और हमारी सफा। यस, तो अब चलते हैं हमारे स्टार्टअप स्टोरीज के सेगमेंट की तरफ और आज हम बात कर रहे हैं मेकर स्पेसेस और फैब्रिकेशन लैब्स की, और पैसे भी इस बात की कि ये यंग प्रोडक्ट डिजाइनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।
0: तो भाई अमिता, देखें मेकर स्पेस नाम सुनकर ना मुझे पहले ऐसा लगता था
2: हाँ
0: कि शायद कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग बस क्रिएटिव प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं। नाम सुना ना, मेकर्स स्पेस।
2: एब्सोल्युटली, और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ। मेकर स्पेसेस और फैब्रिकेशन लैब्स ऐसी फैसिलिटीज होती है जहाँ यूजर्स को डिफरेंट टूल्स और इक्विपमेंट तक एक्सेस मिल सकते हैं।
0: मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 3D प्रिंटर्स?
2: जी, 3D प्रिंटर्स, लेजर कटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, डिजाइन सॉफ्टवेयर, दूसरे डिजिटल फैब्रिकेशन टूल्स, हर फैसिलिटी में इक्विपमेंट डिफरेंट हो सकता है।
0: और ये स्पेशली स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूजफुल हो सकता है। पता क्यों? क्योंकि हर बंदे के लिए घर में एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रखना प्रैक्टिकल नहीं होता ना।
2: एग्जैक्टली, इमेजिन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। कंप्यूटर पर उसने डिजाइन आ दिया, लेकिन अब क्या पता कि ऑब्जेक्ट कैसा लगेगा, क्या वो स्टेबल होगा, क्या उसका साइज प्रैक्टिकल है, क्या मटेरियल सफिशिएंट है।
0: स्क्रीन पर तो सब लगता है ना।
2: बिल्कुल, लेकिन फिजिकल प्रोटोटाइप बनाने के प्रॉब्लम्स सामने आते हैं जो कंप्यूटर पर नजर नहीं आते,
0: और ये प्रोटोटाइप की इम्पोर्टेंस होती है भाई।
2: सो प्रोटोटाइप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का सैंपल नहीं होता, प्रोटोटाइप एक क्वेश्चन का फिजिकल आंसर होता है, यानी क्या मेरा रियल वर्ल्ड काम करेगा।
0: और हाँ, अगर आंसर है नहीं या थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो फेलियर नहीं होता, वो अफर्मेशन होती है।
2: और स्टार्टअप वर्ल्ड में ये माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर को जल्दी लर्न करना है।
0: अच्छा, कतर के कॉन्टेक्स्ट में भी ना ये इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि कतर इंटर्नशिप, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है आजकल। यंग के लिए फैब्रिकेशन और इनोवेशन फैसिलिटीज एक ब्रिज क्रिएट कर सकती है, ये समझने वाली बात।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि कतर में QSTP का फैब्रिकेशन लेबोरेटरी, कतर नेशनल लाइब्रेरी का इनोवेशन स्टेशन, स्किल 7 का एजुकेशन और प्रोटोटाइपिंग इकोसिस्टम, और मादा इनोवेशन का मादा फैब लैब जैसे स्पेसेस यंग इनोवेटर्स को टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंटेशन के एनवायरमेंट से कनेक्ट करते हैं।
0: ये सिर्फ टेक्नोलॉजी कंज्यूम नहीं करता बल्कि टेक्नोलॉजी क्रिएट, मॉडिफाई और एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है।
2: एग्जैक्टली, और ये लगता है ये एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को भी चेंज करता है।
0: अच्छा, ये कैसे हो सकता है, जरा इसको एक्सप्लेन करें।
2: ठीक है, तो पहले सवाल होता था कि क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग अफोर्ड कर सकता हूँ। डिजिटल फैब्रिकेशन के एनवायरमेंट में सवाल चेंज होकर हो सकता है, क्या मैं प्रोटोटाइप बिल्ड कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट क्यूल है।
0: और जब आपके पास वर्किंग प्रोटोटाइप हो ना, तो इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स या पार्टनर्स को आइडिया समझाना भी बहुत इजी हो जाता है भाई।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और एक ड्रॉइंग एक्सप्लेन करना और एक्टिव फिजिकल ऑब्जेक्ट हाथ में देना, दोनों एक्सपीरियंसेस ना डिफरेंट होते हैं।
0: अच्छा, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल पता है क्या है? वो ये है कि अगर यंग पर्सन फर्स्ट प्रोटोटाइप फेल हो जाए तो क्या होगा भाई?
2: तो वो एक्चुअली लर्निंग का पार्ट होगा सफा। फर्स्ट प्रोटोटाइप का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है।
0: तो भाई मेकर स्पेस सिर्फ मशीन प्रोवाइड नहीं करता, वो एक्सपेरिमेंटेशन का माइंडसेट भी एनकरेज कर सकता है।
2: एग्जैक्टली, और यहाँ ट्रेडिशनल एक्टिविटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी कम होती है। आप किस आइडिया हो, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो या बिजनेस कॉन्सेप्ट, डिजिटल टूल्स उस आइडिया को टेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं।

0: सकते हैं।
1: तो भाई हमारा स्टार्टअप है कि अगर आपके पास एक ब्रिलियंट प्रोडक्शन आइडिया है या प्रोडक्ट आइडिया है लेकिन फैक्ट्री नहीं है, तो क्या एक मेकर स्पेस आपकी पहली फैक्ट्री बन सकता है?
0: शायद फैक्ट्री नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप हो सकता है।
1: और हो सकता है वो फर्स्ट स्टेप ही एक फ्यूचर बिजनेस की बिगिनिंग बन जाए। तो भाई इसी थॉट के साथ अब एक काम करते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है टेक टॉक।
0: टेक टॉक,
1: तो भाई टॉक की तरफ बढ़ते हैं। और अब टेक टॉक में हमारा वक्त आ गया है टेक्नोलॉजी को थोड़ा और क्लोजली समझने का। देखिए टेक टॉक में आज का क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर एक्चुअली काम कैसे करता है?
0: तो चलिए मिस्ट्री को सिंपल करते हैं। सबसे पहले किसी को आइडिया आता है, हाँ
1: फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फोन। हाँ फोन स्टैंड, ठीक है।
0: हाँ सही कह रही हो कि फोन स्टैंड का आइडिया आया। तो अब आइडिया को कंप्यूटर पर 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है,
1: यानी स्क्रीन पर फोन स्टैंड का कंप्लीट डिजिटल मॉडल बना दिया जाता है।
0: जी, और इस स्टेज पर डिजाइनर शेप, डायमेंशंस और स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, फिर आती है स्लाइसिंग।
1: अच्छा स्लाइसिंग सुनकर ना लगता है कि जैसे हम पिज्जा कट कर रहे हैं, बस वो स्लाइस जैसी आया तो दिमाग पिज्जा का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
0: हाँ सही कह रही हो। वेल थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं हम कि स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर डिजिटल मॉडल को बहुत सारी थिन हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डिवाइड करता है,
1: और फिर प्रिंटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हर लेयर को कैसे क्रिएट करना है।
0: एग्जैक्टली, फिर प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। प्रिंटर सिलेक्टेड मटेरियल को लेयर बाय लेयर करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है।
1: और क्या हर 3D प्रिंटर सेम मटेरियल यूज करता है?
0: नहीं, डिफरेंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज डिफरेंट मटेरियल्स यूज कर सकती हैं। कुछ सिस्टम्स प्लास्टिक फिलामेंट यूज करते हैं, कुछ रेसिन, कुछ पाउडर्स और स्पेशलाइज्ड कंपोजिट्स। इंडस्ट्रियल सिस्टम्स मेटल्स और एडवांस मटेरियल्स के साथ भी काम कर सकते हैं।
1: ओह वाओ, तो फिर प्रिंटर भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए 3D प्रिंटिंग एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं के टेक्नोलॉजीज का ब्रॉडर फैमिली है।
1: चलो भाई यहाँ तक तो आ गए, अब बताओ प्रिंटिंग के बाद क्या होता है?
0: टेस्टिंग, फिजिकल ऑब्जेक्ट को चेक किया जाता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या डाइमेंशंस करेक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट एक्चुअली वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो डिजाइनर चाहता था।
1: तो चलो भाई अगर हम कह लें कि अगर वो नहीं करता तो
0: डिजिटल डिजाइन मॉडिफाई होती, प्रिंट टेस्टिंग
1: और फिर इम्प्रूवमेंट।
0: एग्जैक्टली, ये साइकिल मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकती है।
1: तो भाई अगर हम पूरा प्रोसेस सिंपल वर्ड्स में कहें ना, आपको बताएं, तो पहले आइडिया, फिर डिजिटल डिजाइन, फिर स्लाइसिंग, फिर प्रिंटिंग, फिर टेस्ट, फिर इम्प्रूवमेंट और फिर
0: परफेक्ट। लेकिन यहाँ एक टेक्नोलॉजी पूरी भी है, डिजिटल फैक्चरिंग के लार्ज इकोसिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है।
1: इस इकोसिस्टम में और क्या आता है?
0: कंप्यूटर एडिटिंग, 3D स्कैनिंग, डिजिटल मॉडलिंग, कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरी, रोबोटिक ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन और डिजिटल फैब्रिकेशन।
1: मतलब फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग में प्रिंटर अकेला नहीं होगा, मल्टीपल चीज एक साथ काम करेंगी।
0: और यहाँ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस इंटरेस्टिंग होता है।
1: अभी देखें, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक क्वेश्चन होता है हम आइडियल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं,
0: और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और क्वेश्चन पूछ सकती है, हम इफिशिएंटली एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट बनाएं जो एक पर्टिकुलर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट करता है।
1: यानी मास प्रोडक्शन के साथ कस्टमाइजेशन का क्या कोई पॉइंट है?
0: जी, और इसी वजह से डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल प्रोडक्शन और कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है।
1: अच्छा मुझे ऐसा लगता है ये चीज यंग जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट के अंदर ये है कि आइडिया से डिस्टेंस कम करने में हेल्प कर सकती है।
0: बिल्कुल, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए सिर्फ मशीन चलाना सीखना इनफ नहीं है, डिजाइन समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और टेस्टिंग करना भी जरूरी है।
1: और भाई इसी बात से हम नेचुरली अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और अमिता हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट?
0: जी, क्योंकि अब बात वाले है स्किल्स की, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कुछ और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हमारा स्किल अप सेगमेंट आज का फोकस है रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड इटरेटिव डिजाइन थिंकिंग पर।
1: अच्छा अमिता, मुझे लगता है सेगमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है

0: कास्ट विजन का परफेक्ट होना जरूरी नहीं.
1: बिल्कुल सही कह रही हो. और शायद 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड सबसे वैल्यूएबल स्किल प्रिंटर ऑपरेट करना भी नहीं बल्कि डिजाइन प्रोसेस को समझना होता है.
0: यानी आइडिया को टेस्ट करना.
1: जी, रैपिड प्रोटोटाइपिंग का बेसिक फिलॉसफी है कुछ क्रिएट करो, टेस्ट करो, प्रॉब्लम डिस्कवर करो, दोबारा टेस्ट करो.
0: इसे डिजाइन कहा जा सकता है.
1: एग्जैक्टली. इटरेटिव का मतलब है कि डिजाइन एक ही बार फाइनल नहीं होता, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होता रहता है.
0: और ये मतलब स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है भाई, क्योंकि इनोवेशन रेयरली फर्स्ट अटेम्प्ट में पकता है. ये हकीकत है.
1: बिल्कुल. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आइडिया खराब है. हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट ने आपको वो इन्फॉर्मेशन हो तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए ये थी.
0: अब ना अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट वाली जो एग्जांपल थी ना, उसे कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं.
1: यस. तो इमेजिन कीजिए अपने कंप्यूटर पर एक ब्यूटीफुल स्टैंड डिजाइन किया पर वो परफेक्ट लग,
0: फिर आप उसे
1: और फोन वो स्लाइड कर जाता है.
0: मतलब डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल यूज है ना वो जीरो है.
1: हाँ, एग्जैक्टली. अब आप क्या के ऐड करेंगे या डिजाइन इंप्रूव करेंगे?
0: नहीं भाई, ऑब्वियसली होती तो मैं तो से भी, मेरी मेरी जान अटकी हुई है. मुझे वो आना है फोन का स्टैंड.
1: यस. तो आप एंगल के बेस को डर करते और फोन के लिए बेटर सपोर्ट क्रिएट करते, ठीक है? फिर सेकेंड वर्जन प्रिंट होता
0: और मान लेते हैं कि सेकंड वर्जन स्टेबल है.
1: हाँ.
0: लेकिन अब मटेरियल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है भाई.
1: तो फिर एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई. अब डिजाइन को लाइटर और मटेरियल एफिशिएंट बनाया जा सकता है.
0: और फिर आता है थर्ड विजन.
1: एग्जैक्टली. इसको इटरेटिव डिजाइन थिंकिंग कहते हैं.
0: अच्छा, इससे ना मुझे एक और इम्पोर्टेंट लेसन मिला इतनी सारी बात करके कि फेलियर को इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट करें. हमने पहले सिर्फ ये बात सुनी लेकिन जब हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से इसे देखते हैं तो वाकई में चीजें समझ में आती कि नहीं, इट्स नॉट फेलियर, इट्स समथिंग टू लर्न.
1: एब्सोल्युटली. और यंग पीपल के लिए ये सेट एकेडमिक से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक बहुत यूजफुल लगता है.
0: अच्छा, इस फील्ड में आपको क्या लगता है कौन से स्किल्स चाहिए?
1: 3D मॉडलिंग, ठीक है, डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव इंजीनियरिंग थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, देन प्रोडक्ट टेस्टिंग और इवैल्यूएशन, डिजिटल फैब्रिकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप.
0: ओ भाई, इतना कुछ है. यानी कि एक 3D प्रिंटर के अराउंड काम करते हुए यंग जनरेशन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं सीख रही होती, वो क्रिएटिव और बिजनेस थिंकिंग भी डेवलप कर सकती
1: है. एक्चुअली सिंपल की जर्नी को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं. पहले अंडरस्टैंड करो, फिर इंजन करो, लाइन करो, बिल्ड करो, टेस्ट करो एंड देन इम्प्रूव करो.
0: और हाँ, ये बात आप भूल गई और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि भाई इम्पोर्टेंट वर्ड है इम्प्रूव.
1: एम्फसाइज
0: किया जाए इसे.
1: यस, क्योंकि प्रोटोटाइप फाइनल आंसर नहीं होगा. प्रोटोटाइप एक चिंता है.
0: अच्छा, क्या आइडियल वर्ल्ड में एक्चुअली काम करेगा?
1: एग्जैक्टली.
0: और जब तक आंसर परफेक्ट ना हो ना, डिजाइनर एक्सपेक्ट करता रहता
1: है. इसी प्रोसेस में इनोवेशन डेवलप होती है.
0: तो भाई देखो भाई, अगर कोई यंग लिसनर आज हमें सुन रहा है ना और वो ये सोच रहा है कि भाई मेरा आइडिया परफेक्ट नहीं है इसलिए मैं इसे स्टार्ट ही नहीं करूंगा, तो शायद 3D प्रिंटिंग की दुनिया उसे ऑपोजिट लेसन देती है.
1: स्टार्ट करो, टेस्ट करो, गलती से सीखो और इम्प्रूव करो भाई. इनोवेशन का मतलब हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट होना नहीं होता. इनोवेशन का मतलब है बेटर आंसर ढूंढते रहना.
0: और शायद इसीलिए 3D प्रिंटिंग सिर्फ एक मशीन नहीं है, आप कह लें कि ये एक माइंडसेट भी रिप्रेजेंट करता है.
1: एग्जैक्टली. और चलिए इसी बात के साथ अब हम अपने आखिरी पर पहुंच गए हैं.
0: तो भाई डिस्कशन एंड साइन ऑफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं. साथियों देखें, आज हमने 3D प्रिंटिंग और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें, ये मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी भाई. और मुझे तो आज के जमाने में, जैसे हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, ऑनलाइन ये बच्चों के खिलौने वगैरह बनते हुए देख लिए भाई. मार्केट में सेल हो रहे हैं वो. शो पीसेस बना रहे हैं लोग.
1: अब तो डिमांड ही उन्हीं के. हमने देखा 3D प्रिंटिंग जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड नहीं है, ये एक ब्रॉडर चेंज का भी पार्ट है. सफा जहाँ डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजिंगली डिजिटल

0: फ्लेक्सिबल ऑप्टिमाइज हो रहा है.
1: ट्रेडिशनल की जो जर्नी है ना, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जर्नी आप अगर इमेजिन करें तो वो ये आपके आइडिया, फैक्ट्री, प्रोडक्शन और फिर
0: जबकि डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की पॉसिबल जर्नी हो सकती है आइडिया, डिजिटल डिजाइन, प्रोटोटाइप, टेस्ट, इम्प्रूव और फिर प्रोडक्ट.
1: और भाई इस डिफरेंस का इम्पैक्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है.
0: हाँ, एक यंग डिजाइनर को हर आइडिया टेस्ट करने के लिए इमीडिएटली लार्ज प्रोडक्शन फैसिलिटी की जरूरत नहीं हो सकती. पहले प्रोटोटाइप क्रिएट किया जा सकता है.
1: एक स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करके उसे टेस्ट कर सकता है, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है.
0: हाँ, और एक स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को मास प्रोडक्शन से पहले एक्सपेरिमेंटर से.
1: अच्छा, और एक आप कह रहे हैं एक और चीज ये कि एक कस्टमर के लिए फ्यूचर में प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना इजियर हो सकता है.
0: लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह 3D भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है.
1: फॉर एग्जाम्पल, क्या 3D मैन्युफैक्चरिंग को जेन्युइनली मोर एक्सेसिबल बनाएगी?
0: क्या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का नेचर चेंज होगा?
1: प्रिंटिंग मटेरियल्स और वेस्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा?
0: डिजिटल डिजाइन का ओनरशिप किसके पास होगा? अगर किसी ने एक डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन क्रिएट किया, दूसरा पर्सन उस फाइल को यूज करके प्रोडक्ट बना ले, तो इंटेलेक्चुअल का क्या होगा?
1: और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल अमिता, अगर ऑलमोस्ट एनीवन किसी ऑब्जेक्ट कर सकता है तो सेफ्टी कैसे इंश्योर होगी?
0: एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. सिर्फ कुछ क्रिएट कर सकना इनफ नहीं है, हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि जो क्रिएट कर रहे हैं वो सेफ, यूजफुल और रिस्पॉन्सिबल हो.
1: और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है. भाई देखें, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट सकती है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन मटेरियल्स, एनर्जी यूज और वेस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता.
0: बिल्कुल, फ्यूचर इनोवेशन का मतलब सिर्फ कैन वी मेक इट नहीं होना चाहिए, सवाल ये भी होना चाहिए शुड वी मेक इट और शुड वी मेक इट और इसका इम्पैक्ट क्या होगा.
1: अच्छा लगता है कि आज की डिस्कशन का सबसे पावरफुल आइडिया ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन चेंज हो रही था
0: और शायद रियल रेवोल्यूशन प्रिंटर खुद नहीं है.
1: मुझे लगता है रियल रेवोल्यूशन ये आइडिया है कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से नहीं एक डिजिटल फाइल स्टार्ट हो सकती है.
0: आइडिया जो कल सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर था आज प्रोटोटाइप बन सकता है
1: और प्रोटोटाइप कल एक प्रोडक्ट बन सकता है भाई
0: और प्रोडक्ट कल एक बिजनेस बन सकता है
1: और शायद किसी यंग एंटरप्रेन्योर का कोई फर्स्ट बिग आइडिया हो.
0: इसीलिए नेक्स्ट जेन का मैसेज सिंपल, टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज मत कीजिए, उसे समझिए, एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि आप खुद क्या क्रिएट कर सकते हैं.
1: और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया है, कोई इनोवेशन का किसी इनोवेशन कॉन्सेप्ट हो सकता है ना किसी के पास,
0: एग्जैक्टली,
1: या कोई ऐसी या कोई ऐसा आइडिया है जो आप लगता है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से बेटर हो सकता है, तो yes. चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. 666-22-107 इज द मैसेज. और अगर चाहें तो हमारा सोशल मीडिया,
0: यस, FM 107 जो कि हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, भी आप अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं अपने नाम के साथ और बताएं जरूर कि आप नेक्स्ट जेन के लिए आइडिया दे रहे हैं.
1: तो भाई आज के एपिसोड में हमने बात की 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मेकर स्पेसेस, डिजिटल फैब्रिकेशन, इटरेटिव डिजाइन और फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग. भाई
0: हाँ, और याद रखिए इनोवेशन का मतलब हमेशा परफेक्ट आइडिया होना नहीं है.
1: कभी कभी इनोवेशन का है एक आइडिया होना, यही काफी होता है.
0: हाँ, उसे बिल्ड करना,
1: टेस्ट करना,
0: गलती से सीखना
1: और फिर उससे और भी बेटर चीज बनाना.
0: क्या बात है. वेल, मैं अभी तक आपके साथ ही, मेरा नाम है अमिता और हमारी
1: सफा आपके साथ
0: और आप सुन रहे थे नेक्स्ट जेन हमारे FM 107 पर,
1: जहाँ हम बात करते हैं न्यू जनरेशन के आइडियाज की, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और स्किल्स की. भाई
0: तो अगली मुलाकात तक अपने आइडियाज को सिर्फ आइडियाज मत रहने दें,
1: उन्हें एक्सप्लोर करें, टेस्टिंग करें और मुमकिन हो तो रियलिटी में कन्वर्ट भी करें.
0: हाँ, तो हम कहेंगे कि स्टे क्यूरियस,
1: स्टे क्रिएटिव
0: और सबसे इम्पोर्टेंट
1: कीप क्रिएटिंग.
0: चलिए इसी के साथ कहते हैं अल्लाह हाफिज
1: और मुलाकात.

6622107 और दूसरा नंबर है 4434377। तो 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। वैसे आज के दिन क्या हाल चाल है, कैसी रही, और क्रिकेट के दीवानों के लिए तो बड़ी बुरी खबर है, अगर इंडिया 351 बनाने के बाद हार गई यार, ये तो बड़ा ही अफसोस वाला हुआ यार। और ये 351 के बाद हार गई, ये एक गम, ज्यादा गम इस बात का कि 100 रन जो इतना बेहतरीन खेल खेले केएल राहुल बाबू, उनकी जो पारी है वो खराब चली गई। शाय होप ने यार 162 मार दिए, क्या ताबड़तोड़ खेल का मुजाहरा किया वेस्ट इंडीज ने, और वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने अच्छा, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, अच्छी करी। बैटिंग के मामले में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं देखूँ तो मुझे गायकवाड़ भी नहीं, लेकिन केएल राहुल ने बहुत ही सेंसिबल पारी खेली। लेट आना, विकेट गिर गया, विकेट संभालना, खेलना और फिर टीम को 351 का स्कोर देना, यार ये तो कला वाली बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हारे। खैर कोई मसला नहीं है, सवाल जो है उस पर आते हैं यार।

0: नहीं चलना चाहिए नए जमाने में आपको नया अफसोस बनाना चाहिए ओह आई एम सॉरी
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
0: मतलब वही है कि जो बात गुजर गई तो जाने दो नए दिन है नया अफसोस बनाओ खैर 6:04 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अब वक्त आ गया कि सवाल कर लिया जाए सवाल आज का जो है वो बड़ा ही लाजवाब है मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ये सवाल देखा था आई होप कि आपने भी शायद अगर सोशल मीडिया चलाया हो उन दिनों तो आपने ये सवाल देखा होगा इसका जवाब आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये कतर को लेकर है
3: मेरे सवाल का जवाब दो
0: ये उन लोगों के लिए है जो 2 साल के लिए आए थे 4 साल के लिए आए थे 1 साल के लिए आए थे और सोचा था कि कमा वमा के चले आएंगे घर लेकिन आज 30 साल रुके 25 साल रुके 20 साल रुके और 5 साल से तो मैं ही हूँ ऐसे कई लोग हैं जो आए थे कुछ वक्त के लिए लेकिन बड़े लंबे वक्त से कतर में रह रहे कतर की कई बातें उनको पसंद आ गई और आज वो कतर को छोड़ना नहीं चाहते और सवाल भी यही है कि आप एक वजह बताएं या 2 वजह भी हो सकती है 3 वजह भी हो सकती है लेकिन अगर टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए 2-3 वजहें ऐसी क्या हैं जिसकी वजह से आप कतर छोड़ नहीं सकते यार एक तो दिल में होगी चीज ना कि यार कुछ भी हो यार कतर में बाकी जो मामले हैं वो एक तरफ लेकिन फला बातें एक तरफ कि यार इसकी वजह से मैं कतर छोड़ने वाला नहीं हूँ कतर में रहूंगा वो क्या वजह है इसका जवाब आपको देना है नंबर है 666-22-107 ये तो व्हाट्सएप का नंबर है बाकी आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 443-443-77 ठीक है तो दोनों नंबर बड़े आसान है आप याद करके रख सकते हैं और आपको जवाब देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे के एक को वजह जिसकी वजह से आप कतर छोड़ नहीं सकते वो वजह क्या है ये आपको बताना है कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पे मैंने एक जगह सवाल देखा था और मुझे लगा हाँ यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार कई लोगों ने उसमें जवाब दिया था अपने-अपने मर्जी अपने दिल से लोगों ने जवाब दिया था तो मैंने कहा क्यों नहीं ये सवाल हो जाए कि रेडियो जो सुन रहे हैं एफएम 107 जो सुन रहे हैं उनके जहन में क्या है लोगों के जहन में क्या है असल में फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ जी हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू
0: माशाल्लाह हबीबी क्या हाल है
4: अल्हम्दुलिल्लाह फजल भाई आपसे मुखातिब हैं
0: अरे वाह फजल साहब कैसे हैं आप उम्मीद है कि बेहतरीन होंगे और ये संडे का दिन नया हफ्ता मुबारक और क्या हाल चाल है आपके
4: अल्हम्दुलिल्लाह साहब अल्लाह का करम है और आपके रेडियो की भी मेहरबानी है
0: माशाल्लाह तो अभी आप कतर में कितने साल से रह रहे हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए साथ और थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ इंडिया में 2 साल सऊदी में 2 साल दुबई में 3 साल ओमान में 3 साल लंदन में 3 साल और कतर में आके जो हम जमे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए
0: 16 साल और बाकी जगह भी आपने मतलब ये लिख कर रखा है क्या आपको याद है माशाल्लाह इतनी जगह
4: जी
0: तो भाई साहब अब तक तो आपकी उम्र मुझे लग रहा है 90 साल हो जानी चाहिए और 90 साल के हिसाब से आपकी आपकी जो आवाज है वो बहुत जवानी वाली लग रही है यार
4: जी मैं 50 इयर्स हूँ मैंने जब अपना मुल्क छोड़ा था मैं 20 साल का था
0: अच्छा
4: 30 तो साल से सहराओं की खाक छानते छानते कतर में आके मैंने खेमा डाल लिया
0: क्या बात है यार लेकिन आप कह रहे हैं आपकी उम्र 50 की है आपकी आवाज 30 की लग रही है मुझे और जिस हिसाब से आपने मुल्क के नाम बताए उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है आप 50 नहीं आप 70-80 साल के एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं ये क्या है यार
4: मैं इंडिया जब छोड़ा था 20 साल का था
0: अब मुझे मुझे
4: भाईजान
0: फजल साहब एक बाकी सब तो बात होती रहेगी मेरे को अपना डाइट बताओ यार ये क्या खाते हो क्या पीते हो आपकी आवाज मुझे 50 वाली लगी नहीं रही है
4: सर मैं डाइट बहुत कम खाता हूँ देखिए हेल्दी रहने का और खुश रहने का मैंने एक पैटर्न बना लिया है
0: कि शादी नहीं करेंगे
4: खाओ ज्यादा करो
0: अच्छा।
4: कम खाओ और ज्यादा काम करो
0: कम खाओ
4: मैं खाता हूँ रोटी भी खाता हूँ लेकिन कम खाता हूँ भूख से 1/3
0: अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह अच्छा मैं
4: ज्यादा पीता हूँ
0: जितने लोग
4: अपनी भूख को कवर करने के लिए पानी ज्यादा पीता हूँ
0: अरे वाह यार, ये तो कुछ अलग ही बात है। मैंने उल्टा देखा है, जितनी इंसान को भूख होती है उससे ज्यादा खा जा रही है यार। वो तो इतना ज्यादा भूखा आदमी बैठा है जिसको पैसे की जितनी नीड है उससे ज्यादा खा जा रहा है।
4: और एक चीज आपको बताता हूँ, ये जो डाइट कंट्रोल होती है या जो भी होती है,
0: हाँ,
4: मेरे पास अपने लॉन्ग टर्म प्लान है, 10 ईयर्स में मुझे कहाँ पहुँचना है, तो अच्छा, वो चीज मुझे मुठभेड़ करती है कि भाई अगर आपको मेहनत करना है तो भाई डाइट तो अच्छी हो, हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए ना दस साल।
0: अरे यार बहुत कर रही है, मैं तो वही देख रहा हूँ कि यार आप 50 के हैं, आवाज ली। अच्छा मैं बाहर वालों से पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपने अभी इनकी आवाज सुन ली है दोस्तों, मेरे को बताओ फजल भाई की एज आपको क्या लगती है? इनने तो 50 बताई है, आपको आवाज से क्या लग रहा है? मैं बाकी लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, बाकी देखते हैं फजल भाई क्या लोगों की आती है। खैर अब सवाल पर आते हैं।
4: तीन जो पॉइंट्स आपने बोले हैं कतर के बारे में,
0: हाँ
4: तो सर देखिए मैं दूसरी कंट्रीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ कतर को अप्रिशिएट करूं।
0: क्या बात है, ये कहा आपने कि ऐसी बात कहो तो मेरे को कोड़े वाला आदमी मारेगा भी नहीं कि दूसरे की बात कर दी, इसको सू तो पहले इसने रोका क्यों नहीं
4: जी। पहला पॉइंट जो कतर का मैंने देखा है,
0: हाँ,
4: कि जो यूके में मैंने सिस्टम्स देखे थे,
0: हाँ,
4: अल्हम्दुलिल्लाह वही सिस्टम, बल्कि इम्प्रोवाइज, यूके से भी इम्प्रोवाइज सिस्टम मैंने कतर में देखे हैं। क्या इम्प्रोवाइजेशन मैंने देखा है कि यहाँ रेशियल इक्वालिटी बहुत प्यारी है इफ आई कंपेयर टू यूके।
0: अरे बिल्कुल, मुझे लगता है अच्छा सबसे परफेक्ट रेशियल तो आपने बिल्कुल सही कहा, उसके अलावा मुझे ना जो और भी खूबसूरत बात लगती है कि हर जॉब की रेट बहुत दीती है। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी वाले हैं ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि बहुत यार सिक्योरिटी को डांट दिया और अपने काम निकाल लिया। बाकी जगहों पे मैंने ये चीज देखी है, बट अगर आप सिक्योरिटी वाले ना तो आपकी पावर आपके अपने पास है। इवन कोई बड़ा आदमी भी है ना तो वो सिक्योरिटी वाले बड़े आदमी की गलती को पकड़ के उसको जिम्मेदार ठहरा सकता है।
4: और एक चीज आपको बताता हूँ,
0: हाँ,
4: मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूंगा, देर आर सम जीसीसी कंट्रीज जहाँ पे एक्सपैट्रिएट्स की वो रिस्पेक्ट नहीं है जो कतर
0: में आए हैं। क्या बिल्कुल सही बात कही है यार आपने।
4: मैं मेरा जो है बिजनेस ही ऐसा है कि I'm meeting some billionaire and billionaire Qataris, और वो इतने इज्जत से बात करते हैं मेरे भाई कि how are you, how's your family, how long you are in Qatar, ऐसे लगता है जैसे यार इतना अच्छा भी बंदा हो सकता है क्या।
0: हाँ, जब आपकी कल्चर में चीजें हो ना, जब आपकी फैमिली बहुत बेहतरीन खूबसूरत हो, वो चीजों को बहुत ही कायदे से लेकर चलती हो, रिस्पेक्ट करती हो, तो ये ना बाकी जेनरेशन में भी देखने को मिलता है और ये कतर में देखने को मिला भी है।
4: और वो लोग जो कतरीज है ना वो बताते भी हैं,
0: हाँ,
4: रीजन क्या है,
0: हाँ,
4: वो लोग बोलते हैं कि आपने हमारी कतरी इकोनॉमी यानी हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है एंड वी अप्रिशिएट दैट एंड वी आर नॉट जस्ट इंडियंस मेरे भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट द चीफ
0: मतलब जो भी रिस्पेक्ट के लिए। ये बात हो गई, दूसरी और कोई बात?
4: हाँ, साथ यहाँ की क्लीनलीनेस, यहाँ की ट्रैफिक, देखिए ट्रैफिक फाइन्स को लेके बहुत सारे लोगों के कंसर्न है, बट इन जनरल यहाँ का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है बहुत प्यारा है।
0: हाँ परफेक्ट, मुझे सिर्फ
4: अननेसेसरी कोई किसी को परेशान नहीं करता रोड पे।
0: हाँ,
4: और अच्छा, और सबसे प्यारी बात मुझे जो लगी,
0: पीएम
4: मूवमेंट,
0: वीआईपी
4: मूवमेंट होता है सर, मैंने देखा है 10 मिनट से ज्यादा हमें अपनी गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: करेक्ट,
4: वीआईपी मूवमेंट के दौरान
0: बिल्कुल,
4: जबकि हमारे मुल्कों में देख लीजिए इंडिया पाकिस्तान में 2 घंटे हो जाते, 3 घंटे हो जाते, कौन
0: फजल भाई माशाल्लाह पिछले 4 मिनट से दोस्तों हमारे साथ हैं लाइन पे। इनने बहुत बार कोशिश करी, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, काम नहीं लूंगा, उसके बाद भाई ने आखिरी में बर्दाश्त से बाहर हो गया जबान से निकल गई अब चलो आपकी बात है फजल भाई, मैं 2 कोड़े खा लूंगा लेकिन आपने काफी सही बात कही कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ता।

0: इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको कस्टमर मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ दोहा में कस्टमर की कोई कमी नहीं है। हाँ। कमी है तो कस्टमर सेगमेंटेशन की। आप गलत आदमी के पास जा रहे हो, इससे आपका टाइम भी खराब हो रहा है और आपको बिजनेस भी नहीं कर रहा है। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर मैं रोल्स रॉयस का सेल्समैन बन जाऊँ तो, और मैं जा रहा हूँ 25,000-50,000 वाली के पास, तो मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ।
1: ये तो परफेक्ट बात कही।
0: जिसकी सैलरी कम से कम 1,00,000 के ऊपर हो, 1,00,000-1.5 लाख, 2 लाख रियल जिसकी सैलरी हो, उसके पास मैं जाऊँ रोल्स रॉयस बेचने के लिए तो मैं कामयाब। ये चीज को मेरे भाई आप लोग याद रखिए, सही कस्टमर सेगमेंट को हमने टारगेट करना है और सबसे बढ़िया तरीका गूगल है।
1: फजल भाई मैं ना एक ये हफ्ते ना एक बिजनेस पे भी सवाल होगा, तब आप कॉल करिएगा, तब आप बहुत ही क्लियरली समझा सकते हैं जब हम सवाल करेंगे बिजनेस पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही आपने यू नो एग्जांपल दिया, थैंक यू। और जाते जाते एक और बात सुनते जाइए, बिलाल साहब ने आपके लिए कहा है कि सर ये AI है, आपकी आवाज AI है।
0: सर मैं मेरा काम काफी हद तक AI से जुड़ा है, लेकिन आवाज मेरी नॉर्मल है।
1: फजल भाई जाते जाते हल्का सा प्रमोशन कर ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, और सवाल ये है कि कतर में अगर आप रह रहे हैं इतने सालों से, तो काफ़ी चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी, तो एक कोई बात या दो कोई बात ऐसी बातें जो जिसकी वजह से आप कतर नहीं छोड़ सकते, आप नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो क्या हैं कतर की वो खूबसूरत बातें जिसकी वजह से आप कतर में रहना चाहेंगे, वो आपको बताना। नंबर है 666-22107, 666-22107। बाकी आगे बढ़ेंगे, तौफिक साहब का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम तौफिक साहब, और हिशाम ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद एक और ये मैसेज है, इकरा का मैसेज, और ये दूसरे से है, ये कतर का नंबर नहीं है, कहा है टैक्स फ्री सैलरी। ये क्या मस्त बात है भाई, टैक्स फ्री सैलरी, ये सबसे टॉप पर होना चाहिए मुझे लगता है, कि अगर इस पे टैक्स लगने लग गया तो भाई ये गर्दन कहाँ लेके जाना है मेरे को कोई बताओ। अगर टैक्स लगा तो भाई छाती जो है जमीन में लेकर लौट जाऊंगा मैं। मैं नहीं दूंगा, मेरे से मत लो। लेकिन टैक्स फ्री का मतलब भाई ये ज़्यादा ही उछल जाए, बट एक और चीज़ है कि अगर टैक्स फ्री आपको मिल रही है तो अच्छी बात है, अगर टैक्स लग गया तो ऐसा नहीं कि आपको पैसे मिले फिर आपको टैक्स देना है, नहीं नहीं नहीं, फिर कट के ही आएगी आपके पास सैलरी, कट के आएगी। बाकी 990 वाले जो भी भैया हैं प्लीज कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77, लैंडलाइन पर कॉल करिए, मोबाइल वाला जो नंबर है वो है 666-22107, ये व्हाट्सअप वाला है, 6662-2107 ये है व्हाट्सअप। फिर मोइज साहब ने एक ऑडियो भेजी है, मोइज भाई आपके ऑडियो को सुनने के बाद हम फिर उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस जब आएंगे तो सवाल पे जो जवाब आए हैं हमारे व्हाट्सएप पे उस पर हम दोबारा रुख करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सवाल एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ मैं।
2: मेरे सवाल का जवाब दो।
1: सवाल यह है कि इतने सालों से आप रह रहे हैं कतर की, एक या दो ऐसी बातें जिसकी वजह से आप कतर नहीं छोड़ना चाहते, वो क्या हैं? आप इसका जवाब हमारे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, नंबर है 666-22107, या लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं, 990 वाले भैया ये आपका नंबर है, 443-443-77, 443-443-77, इस पर आप कॉल कर सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: हाँ जी दिल से देसी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का और 6:20 हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त आ गया कि आप लोगों के बाकी के मैसेज ले लिए जाए। रियाज भाई ने मैसेज किया है, कहते फजील भाई मैं तो चाहता हूँ कि कोड़े वाला भाई आपको कोड़े हैं इसलिए मैं कॉल नहीं करूँगा, कितने दिन कोई और टॉपिक पकड़ कर आपको पढ़वाऊँगा कोड़े। अरे ये इनका नंबर है 0185। रियाज साहब कुछ ही देर में आपको अभी ना हमारे व्हाट्सअप की जो प्रोफाइल पिक है वो दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है? सो आई एम रियली सॉरी। अब आप कुछ ही देर में ब्लॉग जैसा है वो कुछ होने वाले हैं क्योंकि ऐसे मैसेज जो है वो हमारे कोड़े वाले भैया पढ़ते हैं और फिर वो अपने हिसाब से काम लेते हैं। वेल आगे एक और मैसेज है, परवेज साहब कहते हैं कि कतर को छोड़ना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, उसका रीज़न है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये बात तो है यार, आप जो है मैंने 3 ऐसे किस्से बताने अभी आपको जिसके वजह से किससे क्या मतलब एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक तो आप खुद भी अकेले रात को कभी भी घूम ले, किसी बात का डर नहीं है। कुछ ऐसे जगहें हैं, यहाँ पर नहीं कोई और जगहें हैं, ऑब्वियसली नॉट इन कतर, जहाँ पर आप रात को निकलेंगे तो आपको डर लगे कहीं ऐसा नहीं कोई आके मार के हमारा पर्स ले जावे, हैं कोई आके गुद्दी पे कोई चपका ना जाए, कोई मजे मजे के चक्कर में हमको टक्कर ना मार दे। हैं आप कहीं टहलने निकले हुए रात को अपने दोस्तों के साथ, पता चला कोई पीछे टक्कर मार के निकल गए, यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। काहे कि आप पहली बात रोड पे टहलेंगे नहीं, आप अपना फुटपाथ पे चल रहे हैं, वहाँ किनारे की तरफ चल रहे हैं, अपने दोस्तों के यारों के साथ अगर घूम रहे हैं तो आपको किसी बात का डर नहीं कि कोई रैश ड्राइविंग करेगा शहर के अंदर, है ना। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर फीमेल्स भी रात को 12, 1, 2, 3 कोई भी वक्त रख लो लोग निकलते ही हैं। फ्राइडे सैटरडे का अगर दिन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का दिन है तो 12-1 तक तो मॉल में ही भीड़ रहती है, फिर वहाँ से लोग पैदल जाते हैं, फीमेल्स भी पैदल जाती हैं, फिर कई ऐसी फीमेल्स हैं जो 3-4 यू नो रनिंग वगैरह करती हैं सुबह सुबह 3-4, तो उनको भी किसी भी तरह का डर नहीं है। 12-1 तक तो आमतौर पर मॉल से बाहर लोग निकलते हैं, उसके बाद टहलती घूमती उनको कोई किसी तरह की डर नहीं है। एक और तीसरा रीज़न है और वो है कि आप अपने मुल्क में एक बार सोचिए कि अपने यू नो पेरेंट्स को या अपने छोटे बच्चों को रात के 12-1 या 11 या 9-10 छोड़ो 12-1 8-10 किसी इवन बड़े शहर में भी मेट्रो से अपने छोटे बच्चों की जिनकी उम्र है यू नो 12-13-15 उनको आप बगैर किसी रोक टोक के, क्या ऐसा हो सकता है कि मेट्रो में जाओ बेटा सफर करो? बट यहां होता है, मैंने अपने कई दोस्तों के बच्चों के बारे में सुना है, वो फुटबॉल खेलने जाते हैं किसी जगह पे, वो क्लाइन करे हुए तो उनको रात को अगर आना है 7-8 आ रहे हैं, कभी वो कैब से आ रहे हैं तो उनको फिक्र नहीं है। आप अपने मुल्क में कभी कभार सोचते हैं कैब से, अरे नहीं यार वो पता नहीं कैसे कैब वाला हो क्या हो, कहीं नहीं होता। फिर उसके बाद आप मेट्रो से सोचे, अरे नहीं रात को 8-9 मेट्रो से बच्चा आएगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया,

0: लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। आप बच्चे इवेंट में भी जा रहे हैं, इवेंट से आते आते रात को 8-9 बज जा रहा है, कॉलेज का इवेंट है, स्कूल का इवेंट है, कोई मसला नहीं है, किसी बात का डर नहीं, रात को 9-10 बजे भी आसानी से वो घर पे आ जा रहे। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में कतर बेस्ट है, किसी बात का डर नहीं है, कैसे भी सफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है, नाम तो नहीं लिखा है, सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम, आई थिंक इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फॉर ऑल, एनी टाइम लेट नाइट यू कैन गो आउट, नथिंग टू वरी, बिल्कुल फ्रेंडली पुलिस एंड पीपल आर मेडिकल एंड मेडिकल फैसिलिटी, एग्जैक्टली परफेक्ट वाली बात जो है वो मेडिकल फैसिलिटी, आप खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ हो भी जाता है तो एक तो हर सूबे में या कहें हर छोटी जगहों पे भी हेल्थ सेंटर है, और अगर हेल्थ सेंटर में काम नहीं हो रहा, बड़ा कुछ मामला है, तो आप एमरजेंसी में आ सकते हैं। और रात बेरात कभी भी ऐसा नहीं कि भीड़ इतनी है कि फलाना फॉर्म भरो, ऐसे करो और फिर उनके वहाँ लेकर जाओ, नहीं नहीं ये तो लेटे हुए हैं तो इनको स्ट्रेचर लगेगा, स्ट्रेचर तो ख़त्म हो गया, ये सब झंझट नहीं है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी ये बात कही है, नाम तो लिखा नहीं, और बाकी सफाई भी लिखा है भाई ने, प्रोफाइल पे सह लिखा है बस। ओके मेरा भाई, आगे एक और मैसेज है, नो लोड शेडिंग हेयर, इस्माइल खान ने कहा है क्योंकि नो लोड शेडिंग हेयर, भाई ये वाला मेरे को समझ नहीं आया, लोड शेडिंग क्या होता है, मेरी नॉलेज कम हो सकती है भाई यान। बाकी एक और मैसेज है, हफीज साहब ने ऑडियो भेजी, ऑडियो कुछ देर में हम सुनेंगे, एक ऑडियो आई थी जो मैंने कहा था कुछ देर में सुनेंगे, नाम है सैयद मोइज, मोइज भाई मैंने ऑडियो तो सुना है यार, देखो ब्लू टिक भी है, बट और दो तीन ऑडियो सुने थे, मैं भूल गया हूँ कि आपने कहा क्या एक्चुअली में। मैं एक बार फिर से सुनूंगा अभी कुछ देर में, फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो क्या आपको आवाज आ रही है, आपने उधर से म्यूट कर काट दिया कॉल भाई, खैर कोई बात नहीं, एक और कॉलर है हमारे साथ, जी हेलो अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम सलाम भैया,
0: फजील कौन बात कर रहे हैं, तौफीक साहब कैसे हैं, हां जी
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: तौफीक भाई क्या ऐसी बात है जो जिसकी वजह से आप कतर नहीं छोड़ना चाहेंगे,
1: सबसे पहले तो मेरा पैदाइश भी इधर ही है, जी ना मरना मेरा इधर है, और इधर खुशहाल कोई भी हो इधर खुश रहेगा, एक चीज में सब चीज में,
0: हाँ तो अच्छा, लेकिन मतलब अगर हम फैमिली वाइज, क्योंकि मुझे पता है आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है, तो फैमिली वाइज अगर मैं पूछूं आपसे स्पेसिफिकली, फैमिली वाइज क्या बेस्ट है जिस वजह से आप कतर नहीं छोड़ना चाहते,
1: बिल्कुल फैमिली के, फैमिली बिल्कुल बेस्ट है ना, दुनिया में नंबर वन है,
0: नहीं तो क्या है रीजन, क्या है रीजन, क्या है फैमिली वाइज अगर देखें तो,
1: खुशहाल होगा, तालीम है, सब कुछ है, एक नहीं है, सब चीज में बोलो, बाकी सब लोग खुद डिसाइड करें, सब चीज एक चीज नहीं,
0: अच्छा तो तालीम, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और उसके अलावा एक बार ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए तो पूरे शहर का भ्रमण, एक और कॉल आ रही है, हम उसको उठाते हैं क्योंकि वक्त जो है वो बड़ा मुख्तसर है, और कॉलर पिछले वाले आ गए, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी कौन बात कर रहा है, अरे रकीब साहब, आपकी आपके आपके नाम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शायरी में होता है पता है,
2: वो तो पता है, तो वो मीनिंग तो नहीं है शायद।
0: ऐसा क्या कांड कर दिया है आपने कि दुनिया भर में आपका नाम जो है शायरी में लिया जाता है मेरा भाई।
2: ये भी अभी अभी पता है, इतना बहुत बहुत सा डिफरेंस के बाद मिला था, ये मीनिंग भी है शायरी में।
0: रकीब साहब आपसे वही सवाल का जवाब चाहिए जो बाकी लोग जवाब दे रहे हैं, अगर सवाल मैं एक बार फिर से पूछूं तो वो सवाल ये है कि एक कोई रीजन जिसकी वजह से आप कतर नहीं छोड़ना चाहते,
2: तो बेसिक रीजन है फैमिली के साथ जो रहते हैं उनके रीजन है, बच्चे के लिए किड्स एक्टिविटीज है, मैं दो तीन कंट्रीज में रह चुका हूँ, किड्स के लिए एक्टिविटीज यानी तो कुछ एंगेजिंग थिंग्स है कतर में, वो दूसरे कंट्रीज में नहीं है,
0: दूसरे कंट्रीज में नहीं है,
2: सही है। और जस्ट एन एग्जाम्पल ले लो तो मैं दो दिन पहले गया था 3-2-1 म्यूजियम को,
0: हाँ बहुत बढ़िया म्यूजियम है, तो
2: बहुत बढ़िया म्यूजियम है, बच्चे के लिए इतना सारे एक्टिविटीज है, इतने सारे चीज है, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके लर्निंग के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, उनका इंटरेस्ट ज्यादा करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है,
0: करेक्ट,
2: ऐसा बहुत कम मिलता है, बहुत

0: और अच्छा एक और प्लस पॉइंट ये हो जाता है जब आपके बच्चे इस तरह की चीजों के सामने आते हैं, जब वो नई नई चीजें सीख रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में देख रहे होते हैं और इस तरह के ओलंपिक स्टेडियम में होते हैं या फिर म्यूजियम में होते हैं ना, तो काफी कुछ बाकी शहरों के यानी इस कंट्री के नहीं बाकी कंट्री के बच्चों से ज्यादा एडवांस हो रहे होते हैं, उनको ज्यादा बेहतर समझ हो रही होती है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आपने देखा यहाँ के बच्चे जो अंग्रेजी बोलते हैं भाई साहब ऐसा फ्लुएंट इंग्लिश, और दूसरे मुल्क के बच्चों का ऐसा है क्या बोल दिया अंकल हाँ फिर दोस्ती नहीं हो पाती, ये भी एक नुकसान है
1: सही बात
0: चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करते हुए रकीब साहब, थैंक यू मेरा भाई, जजाकल्लाह। उसके अलावा अभी मुझे याद आ गया है, मैं मोइज भाई की ऑडियो जो है सुनने के बाद जब इनसे बात करता था मुझे याद आया, मोइज भाई ने कहा था कि कतर में जो सुकून है, जो शांति है ना, उसको लेकर अगर बात करें तो वो परफेक्ट है और इसकी वजह से मैं कतर नहीं छोड़ना चाहूँगा, और ये काफ़ी हद तक बात सही भी है। सुकून है, कई बार ऐसा होता कि यार इतना तो चाहिए नहीं सुकून जितना यहाँ पर है लिटरली मेरे साथ एक दो बार हुआ कि इतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आदत है भाई, अपन 25-28 साल तक इतने शोर में गुजार रहे ले हैं कि उसके बाद अब इतना सुकून मिल गया है कि मन को बर्दाश्त ना हो रही यार मतलब हमारे घरों में जब तक यार लड़ाइयां ना हो, साल में एक बार होता है ना कि या तो अब्बा लड़ रहे हैं या फिर वो अगल बगल वाले होते हैं वो नालियों के लिए लड़ रहे हैं, या फिर वो एक का घर बन रहा है और एक के घर में पलस्तर हो रहा है तो उस पलस्तर को अपने घर में गिर गया इसकी वजह से चिल्ला रहे हैं कि क्यों गिर गया है, या फिर वो छत बन रही है तो छत में जो है तुम्हारे जो भी यू नो बाउंड्री है, तुम्हारा बाउंड्री हमारी तरफ कैसे है, हमारा तुम्हारी तरफ, ये सब जब तक ये लड़ाइयाँ ना हो यार तो मज़ा नहीं आता है। अब मैंने इतना ज्यादा देख लिया है तो मेरे को इतना सुकून चाहिए भी नहीं जितना यहाँ है मेरा तो कभी कभार ये हो जाता है कि अरे कोई किसी को पीट क्यों नहीं रहा है, मैं ही कर दूं क्या, पीट दूं किसी को तो फिर कोड़े वाले भैया मिल गए थे बाकी एक बाबू हैं कह रहे हैं मैं तो आरजे फजील की वजह से कतर नहीं छोड़ रहा। देख लो भाई, पहले रियाज भाई ने कोड़े से मारवाने की बात कही, अब जो है बात पलट दिया, गाना प्ले करवाना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद तौफिक साहब कहते हैं मेरा जीना मरना कतर में, अरे भाई साहब बस जीना जीना कर लो यार, जीना मरना क्या। इस्माइल कहते हैं बिजली नहीं जाती यहाँ, देख रहे हो इंसान जब 25-30 साल ऐसे रहा हो कि रात को 2 बजे चली जाती है, फिर सुबह 5 बजे आती है, फिर दोपहर में 2 बजे जाती है, शाम को 5 बजे आती है। हाँ भैया हमारे का तो यही सिस्टम है, कभी कभार रात को 9 बजे भी चली जाती है, 11 बजे तक लेकिन आ जाती है भाई जब जिए ही ऐसे हैं और हर वक्त जब लाइट मिल जाए तो दिमाग काबू में नहीं रहता भाई साहब, ये भी तो है बाकी राशिद खान ने मैसेज किया है, ऑडियो दिया है, ऑडियो हम कुछ देर में अभी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, लिखा है किस भाई ने, मोहम्मद एहसान उबैद कुरैशी, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, वजह लिखी है क्या हाल भाई, सलाम वालेकुम मिस्टर फैसल ने लिखा, मेरा हाल एकदम चकाचक, आप सुनाइए। फरहत साहब कहते हैं फज्जू भाई मोहब्बत फज्जू भाई, छोड़ के जाना ही नहीं है कतर को, हम इसीलिए तो पूछ रहे क्या चीज़ ऐसी है। बाकी लिखा है जो मोहब्बत हुई है कतर से इंडिया में, 300 गज पर घर बना के ही जाना है। अरे भैया 300 गज, 100 नहीं 200 नहीं 300, रहा नहीं जाता, तलब ही ऐसी कि भाई साहब इतना कमा लूंगा 300 गज का घर बना के पूरा खानदान को जलाऊंगा, और ऐसे नहीं खानदान को जलाऊंगा कि लड़ लूंगा ना, खानदान को ऐसे जलाऊंगा कि आइए दावत में आइएगा, हाँ वो पीछे हमारे पूरा एकदम लॉन बना हुआ भाई साहब, लॉन में बैठेंगे बारबेक्यू करेंगे, हाँ वहां पर 2 चीज जल रही होगी, एक तो कोयले और एक आपके, इंशाल्लाह फरहत साहब बनेगा। आगे लोड शेडिंग का मतलब है गैस का लोड शेडिंग, अच्छा गैस बिजली का खर्चा कम है, अरे हाँ तो लेकिन बड़ा अजीब लगेगा कि भाई साहब मैं कतर इसलिए नहीं छोड़ कि 15 रियाल की गैस वो भर जाती है, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है 300 ले लिया है, अरे माशाल्लाह फरहत साहब ने 300 ले लिया है, अब बनवाओ तुम 80-90 वाले में 80-90 गज में घर बनवाओ, बाकी 100 हाँ तुम 220 छोड़ दो मेरा भाई, मजा आ जाएगा। फैसल साहब कहते हैं जब तक आप हम भी कतर में हैं, क्या बात है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, तक तुम जाओ पजील भाई तब तक तो है कतर में, उसके बाद का तो नहीं पता

0: रहूंगा अभी,
1: अभी तो कहीं नहीं जा रहा भाई, अब मेरे पास तो 100 गज की भी इकट्ठा नहीं हुए पैसे। अभी तो ऐसा है कि माइनस 100 गज चल रहा है, आप सोच रहे हैं माइनस 100 गज, भाई उधारी चुका रही हूं ना अभी। अभी अभी बहुत आगे जाना है, अभी 120 गज का उधारी चुकाया है, अभी 100 गज का उधारी बाकी है।
2: ले ले ले ले ले। सुना क्या?
1: हाँ सुना, अभी तो बहुत बहुत दूर तक जाना है दोस्त। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लेने से पहले खत एक बात आपको लिखनी है, और वो कुछ भी हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है आपको खतर में सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी चीज, सबसे बेहतरीन चीज क्या लगती है जिसकी वजह से आप खतर छोड़ेंगे नहीं। एक लाजवाब बात जो आपके साथ आखिरी सांस तक रहेगी वो क्या है खतर की, वो लिखिए कि यार फला चीज जो है ना हमेशा साथ रहेगी। मेरे लिए यार कतर की रोड, भाई गाड़ी चलाने में जो कतर में मजा है ना वो अपने मुल्क में नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं इसीलिए। वो अपने मुल्क नहीं है क्योंकि वहां पर गाड़ी चलाओ ना तो बात नहीं हो पाती, यहां गाड़ी चलाइए तो शांति में बात हो जाती है, वहां पर खड़खड़ गई एक तो गाड़ी की आवाज, ऊपर से आप चल रहे हैं तो ऐसी बात हो रही होती, इतने गड्ढे माशाल्लाह। चांद की याद आ जाती है। ओके, फिलहाल 6:34 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, एक खत लिखना है डियर कतर, और उसके बाद आप अपनी मनपसंद बात अपने कतर से कहिए। 666-22-107 है हमारा व्हाट्सएप का नंबर, यहाँ पर आप आकर बता सकते हैं। बाकी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.a।
5: सुन रहे हैं प्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
6: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन 107 दिल से देसी
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 best इकबाल है दोस्तों. अब सभी का आज का सवाल कि कतर क्यों सबसे ज्यादा खूबसूरत है और एक वजह जिसके बाद आप कतर को कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे. वल कई लोगों ने अपनी अपनी तरह से जवाब दिया, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिकल और भी कई बातें. लेकिन अब हम आ गए हैं खत पर, यानी कि एक बात, एक दिल से लिखी हुई बात, कतर को आप क्या कहेंगे जिसकी वजह से आप कतर को बहुत चाहते हैं और कभी छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे. वेल, फरहत साहब ने लिखा है कि 18 साल होगा कतर में. भाई अभी 15 साल रहे तो इंशाल्लाह साथ दे, बस हिम्मत साथ दे. हाँ यार, कतर में अकेले रहना भी एक अलग तरह का टास्क है जिसको कंप्लीट करना होता है साल दर साल, और फिर एक महीने की छुट्टी मिलती है. अच्छा, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो 4 साल लगातार नहीं जाते हैं और फिर एक एक महीने की छुट्टी जो है ना वो चिमुलेट करते हैं, एक साथ रखते हैं और फिर एक बार में छुट्टी देते हैं. भाई वो क्या बात है यार, मैंने गया दाद. मैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा एक दोस्त था, मतलब दोस्त क्या, सलून वाले भैया थे, वो 4 महीने गायब हो गए. अब क्यों, मर्द आदमी यार यही करता है, जहां से वो बाल कटा था फिर वहीं से कर रहा है. वो 4 महीने के लिए चले गए, फिर मैं अजीब ही बनकर घूम रहा था. समझ नहीं आता ना किधर जाऊं फिर. बाकी इस्माइल साहब ने लिखा है, डियर कतर, तू मुझे छोड़े ऐसा हो नहीं सकता और हम तुझे छोड़े ऐसा मैं होने नहीं दूंगा. इस्माइल खान साहब पूरा एकदम फिल्मी हो जाते हैं. मुबीन साहब ने लिखा है, सलाम वालेकुम. अस्सलाम, सभी लिसनर्स को टॉपिक जान दो, बस सुन रहा हूँ, जमाना गया बोलने का, अब सुनो भी दूसरा. अरे मेरा भाई मुबीन भाई की मैसेज. फजील भाई गुड मॉर्निंग एंड यू नो कतर में गुड मॉर्निंग, चलो मैं समझ लेता हूँ, गुड इवनिंग. कतर में क्यों पसंद है, मुझे यहाँ की सिक्योरिटी और यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो तरीके तौर तरीके हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यहाँ पर 10-15 साल निकाल दूंगा आपको सुनते सुनते. अरे मेरा भाई आसिफ भाई, मतलब जीत लोगे क्या, दिल एक ही तो दिल है यार, कितनी बार जीतोगे. पढ़या ये लिख तो अच्छा लेते हैं. रियाल फॉलोज मेरे भाई, रियाल फॉलोज. क्या बात है, फैसल साहब कह रहे हैं ना, आपने जो बात कह दी वो बहुत ही अच्छा है. सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम. नाम है एहसान उबैद, कहते हैं कि फैसिलिटीज़ में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कह ही दिया और हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बात किया और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के बारे में कहते हैं कि आप कतर में किसी भी जगह पर रहें, इतना बड़ा एक तो मुल्क नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको 1 से 2 घंटे 2.5 घंटे में आप अपना रास्ता जो है वो पकड़ लेते हैं और आपका रास्ता मुकम्मल हो जाता है. और कनेक्टिविटी भी, इवन आपके पास अगर कार नहीं भी है तो कनेक्टिविटी इतनी बेहतर और बेहतरीन है कि आप आसानी से पहुंच सकते हैं. बीट आप मेट्रो का इस्तेमाल कर लें या फिर आप बस का इस्तेमाल कर लें, बेस्ट है. फिर राशिद खान ने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हुए और एक बहुत उम्दा बात कही है जो एक्चुअली में अभी तक किसी ने कही नहीं, और वो है मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, यानी कि PHCC है या फिर हमद है, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है ना, आप एक बार दिखाने जाते हैं, आम तौर पर क्या होता है, आप एक बार दिखाने गए, घर आ गए, फिर किसी को कोई चिंता नहीं है. आपको इस बात की चिंता है कि यार पैर में चोट लगी है यार,

0: पारा जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, ड्रेसिंग के लिए, लेकिन कतर में फॉलो अप लेते हैं। तो आपको याद रहे ना रहे, है ना, चाहे बच्चे को लेकर हो, चाहे वो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम को लेकर हो, वो फॉलो अप लेते हैं कि आप ठीक है कि नहीं है, आपको दोबारा कब आना है, आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, आपको इस वक्त पे आना है, इस डेट को आना है, इस टाइम को आना है, तो वो फॉलो अप लेते रहते हैं। और राशिद खान ने ये बात बिल्कुल सही कही है, मेडिकल फैसिलिटीज़, कनेक्टिविटी, ये सारी बातें लोगों ने बहुत ही उम्दा तरीके से बयान करी। और सच में एक बात तो है ही नहीं कतर की कि हम जिसके वजह से कतर में रहना चाहे, ऐसी अनेक बात है जिसके वजह से हम कतर को ताउम्र छोड़ना ही नहीं चाहते भाई। मेरा एक और रीजन है भाई, एक तो गाड़ी चलाने में मजा, दूसरा एक सबसे लाजवाब रीजन है, वो है गार्लिक और हमस जो दिया है मुझे कतर ने, मजेदार। एक रेक्स और मिल जाती मुझे तो दिल जो है और भी ज्यादा कतर से लग जाता लेकिन 100% से 101% कहाँ होता है, तो 100% तो लगा ही हुआ है, 100% दिल जो है वो कतर से लगा ही हुआ है। फिलहाल ये था आज का सवाल और आप लोगों के जवाब, इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम को 6 बजे, दोपहर के 1 बजे नहीं, शाम को 6 बजे मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है अनप्लग्ड इवनिंग। इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है। अल्लाहु

0: FM 107 पर पैगाम।
1: मुशाहिदे में आया है कि हम जिंदगी में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि नफरत के बीच से एक घना दरख्त कब बनता है पता ही नहीं चलता। यकीन जानिए कि जिंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि इंसान मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। नफरत के लिए लोग वक्त न जाने कहां से निकाल लेते हैं। छोटी छोटी बातों से दरगुजर करने और दूसरा करने की आदत डालिए।
0: पैगाम ऑन FM 107।
2: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फवक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट छत पर है तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मतलब अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स देखना बहुत मददगार साबित होता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: था सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी राहों का तमाशा, जाते जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं आता। वो ख्वाब जो बरसों से ना चेहरा है ना बदन, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं आता। निदा फाजली को कभी उनके कलम तो कभी रोजी रोटी ने खूब घुमाया। फिर उनका एक अहम रहा 60 के दौर भारत में, जब वो सपनों की बुनाई करने वाले शहर मुंबई आ पहुंचे। यहाँ के कई मीडिया हाउस और अखबारों से जब उनका कलम मिला तो अपने आप शोहरत उनके कदम चूमने लगी। 1968 में निदा फाजली ने कुछ ऐसा लिखा जिसके उर्दू के बाजार में आते ही हलचल मच गई और उन पे ध्यान गया कमाल अमरोही साहब का। इन दिनों अमरोही साहब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ रजिया सुल्तान फिल्म बना रहे थे, जिसके गानों को लिखने वाले थे जान निसार अख्तर साहब, लेकिन अचानक उनका इंतकाल हो गया और ये अधूरा काम पूरा करने की भारी जिम्मेदारी निदा फाजली को गई।
1: ये पहला पायदान था बॉलीवुड का, हालांकि उनका अंदाज और बॉलाज आपस में दोस्ती गहरी ना कर सके, पर निदा फाजली ने लिखा वो कमाल कर गया। जैसे तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं तो लगता है तेरी महफिल है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसके बाद नए जमाने ने भी निदा फाजली को याद किया और उन्होंने अपने कलाम का जादू दिया फिल्म सुर में, जिसमें लकी अली थे। निदा फाजली ने लिखा जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, कभी शाम ढले तो मेरी जिंदगी में आ जाना। और फिर सरफरोश जो आपके जहन में हमेशा ताजा रहेगी, कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। फिर आया एक सैलाब 90 के में, असल सैलाब नहीं एक टीवी सीरियल जिसका नाम था सैलाब, पर सच में सैलाब आया इसकी शोहरत में, क्योंकि इसके टाइटल ट्रैक को लिखा निदा फाजली साहब ने, गाया जगजीत सिंह ने, और फिर हर कोई इसका इंतजार करने लगा। दोनों जोड़ी एक दूसरे को वो अंग्रेजी में काफी कॉम्प्लीमेंट करती थी। निदा साहब ने एक किताब भी लिखी मुलाकातें, जिसमें अपने साथ के शायरों के बारे में बेबाकी से लिखा। फिर कई किताबें आई लिखा उनकी अहम, जिसका दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर।
0: 8 फरवरी 2016 को निदा फाजली साहब का दिल रुक गया और रुक गया एक बड़ा दौर। 78 साल की उम्र में निदा फाजली साहब का इंतकाल हुआ।
2: इत्तफाक ये रहा कि उनकी लिखी गजलों की आवाज और उनके दोस्त जगजीत सिंह की यौमे पैदाइश पर ही उनका इंतकाल हुआ। यहाँ दोनों इस दिन को मशहूर करा उदास भी।
1: 1988 से लेकर 2013 में ले पद्मश्री तक निदा फाजली के नाम कई अवार्ड्स हैं, पर सबसे बड़ा इनाम तो लिखने वाले को तब मिलता है जब उसकी कलम से निकली स्याही का एक एक लफ्ज जिंदा रहे सालों तक।
0: 2016 में निदा फाजली साहब के इंतकाल के चंद महीनों बाद राज्यसभा में सियासी बहस चल रही थी और इसी गर्मी को ठंडा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने निदा फाजली साहब का लिखा हुआ पढ़ा। वो गजल थी, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फिजा, तुम अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी बदल सको तो चलो।
3: आप सुन रहे हैं महफिले शायरी, महफिले शायरी सिर्फ FM 107 पर। 107 पर।

0: तो लिसनर्स, महफिल शायरी में आज हमने तस्करा किया नदा फासली का, और क्या खूब तस्करा हुआ है। अब बारी है हमारे खुसूसी सेगमेंट बैदबाजी की, जिसकी शुरुआत आज मैं ही करती हूँ।
1: और आपका टर्न भी है, आपका टर्न भी है इस बार, क्योंकि पहला मैंने किया, फिर कबीर ने, और अब आप।
0: इजी एपिसोड। और अच्छा, ये कानून चाह रहा है, बकायदा हमने रूल्स बनाए हुए हैं महफिल शायरी के, तो आज मेरी बारी है। तो चले आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत शेर से। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। ओए होए,
2: नसीर साहब का चेहरा आ गया जहन में मेरे, पूरी सरफरोश की पिक्चर समझ में आ जाती है। मुझे लगता है कि हर मूवी का, हर फिल्म का एक ऐसा होता है कि मेमोराइज्ड वर्जन होता है, किसी गाने में छुपा होता है, गाना पूरी पिक्चर याद दिला देता है। ये बिल्कुल वैसी गजल है जो
0: हाँ, मेरा और दिल चाह रहा था कि मैं इसको ना लय में पढ़ना शुरू करूं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसा मजा नहीं आ रहा।
2: इन चीजों के साथ क्या ना, बैकग्राउंड में
0: खुद ब खुद
2: म्यूजिक,
0: बिल्कुल वैसे ही।
2: तो आपने ये खत्म किया है, ये
0: बिछा
2: ना आपने, ठीक है। तो अभी हम जरा आगे बढ़ते हैं। ये से मेरी बारी, ये बहुत आता मेरे पास। चलिए, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम महल को, तो चलो
0: क्या,
2: चलो भाई
3: चांस की बारी है,
0: अब सीन की बारी है,
1: चलो मेरी बारी,
0: चलो तो चलो यानी वाओ।
1: अच्छा, वाओ से कुछ नया आया इस बार, नहीं तो अलिफ और ये
0: बिल्कुल,
1: एक बार नून जरूर आया।
0: बिल्कुल, अब पहली दफा वाओ से समाप्त करते हैं, क्या सुनाती है हमें सीन।
1: तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में,
0: हाय हाय हाय,
1: वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता।
0: बस यही एक मसला है
2: यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि निदा फाजली साहब और जॉन एलिया के बीच के जो थॉट्स है ना, वो आपस में बीच रस्ते मिले,
0: मिल रही है, बिल्कुल हो गया।
1: तो अलिफ से खत्म हुआ है, अब अलिफ से आप शुरू करेंगी महविश।
0: अच्छा, मैं शुरू करूंगी, मेरी बारी है। सही, मैं इतना शेरों में ना महफ हो गई थी कि मैं भूल गई थी कि मेरी बारी आने वाली है। तो अलिफ अलिफ अलिफ से क्या होना चाहिए,
2: आप वो कर दीजिए, अलिफ बेटे से हम छोटे से थे, मम्मी मारती थी, हम रोते थे। अलिफ
0: सही, तो अलिफ अलिफ से, क्योंकि इतनी दफा आता है ना, तो अलिफ को सोचना पड़ता है, कुछ नया भी हो कुछ,
1: और खास तौर पे ये हमने डिसाइड किया है कि हम सभी के शेर नहीं लेंगे, बस उस खास जो हमारे शायर मतलब वीक हैं तो उनके ही,
0: उन्हीं को, क्योंकि हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। तो ये एक जरा और मुश्किल
1: टास्क है।
0: चले तो फिर निदा फाजली, अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, जाने किस किस से गिला था पहले।
1: उफ,
0: ये तो मेरी वाली वाकई कैफियत हो गई है। अब मैंने भी सोच डिसाइड कर दिया यार, अब इतने क्या मतलब दिल पे गम लगाने,
2: धीरे धीरे जो शेर हैं बड़े पर्सनलाइज्ड होते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है
0: काशी कर रहे
2: हैं। हाँ, जो नहीं कहना चाहते ना, वो इन इन इन आशारों के जरिए कहीं ना कहीं निकल जाएगा।
1: देखिए, महफिल शायरी में आई हो, पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करेंगे।
2: तो आपने फिर से मुझे ये दे दिया क्या
0: जी,
2: क्या कर रही हैं आप, मुझे कभी अलिफ और नून तो कुछ तो मिले, हमेशा ये
0: आपके जो है ना चल रहा है भाई।
2: ओके, तो ये से शहर है कि नुमाइश लगी हुई है कोई,
0: वाह,
2: ये शहर है कि नुमाइश लगी हुई है, दो आदमी भी मिला बन के इश्तिहार मिला। अभी अलिफ आ गया है फिर से, इनके पिछली बार भी अलिफ ही मिला था,
1: क्योंकि
2: ये सोच रहा था कि इन्होंने पंचलाइन क्यों नहीं मारी थी देर से,
1: शेर जाता ना, फिर मैं सोचा नहीं मार देती हूँ, फिर मुझे बाद में याद आएगा तो बुरा लगता है।
0: बात ही क्यों बैठी रही तू।
1: अलिफ से, अब अलिफ तो भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अलिफ बहुत बड़ा चुका है,
0: वो भी निदा फाजली।
1: तो अलिफ से बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ जहन में आया है, शायद आपको पसंद आए, कहिए इरशाद।
2: इरशाद, इरशाद,
0: अब भाई ना आ जाए बाहर से।
2: ओ बाहर शायद, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए
1: जी। अपने लहजे की हिफाजत कीजिए, अपने लहजे की

0: हिफाजत कीजिए, शेर हो जाते ना मालूम भी।
1: ओए होए क्या बात है भाई,
2: ये मतलब आपने तो
1: क्या बात, अपने लहजे की हिफाजत कीजिए,
2: ये बाउंड्री के बाहर ही स्टेडियम के बाहर गए हैं।
1: ना मालूम अफराद से डायरेक्ट हम शेर तक आते
2: वही तो वही मैं कह रहा हूँ ना, बाउंड्री के पार नहीं गया है ये, स्टेडियम के बाहर गया है ये। बाहर जब बॉल जाती है ना, हाँ। किसी गाड़ी पे शीशा तोड़ देती है, बिल्कुल वैसा वाला
0: आठ रन मिले, मुझे छह नहीं मिले आठ मिले,
2: शीशा
1: फिर से ये
0: फिर से ये आ चुका है
1: निदा फाजली, और ये थोड़ा दिमाग पे और जोर देना पड़ेगा मुझे कि ये से मैं क्या ढूंढू।
2: अब मुझे विकेट कीपर की तरह करना पड़ेगा, शाबाश शाबाश आएगा आएगा महेश।
1: अच्छा अभी खत्म हुआ ये के ऊपर, और शेर भी बड़ा जबरदस्त शेर था
2: इरशाद,
1: तो अब थोड़ी सी हम मतलब यकीन के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। यकीन से मेरे जहन में एक शेर आ रहा है,
2: ठीक है।
1: यकीन चांद पे सूरज में एतबार भी रख, यकीन चांद पे सूरज में एतबार भी रख, मगर निगाह में थोड़ा सा इंतजार भी रख।
2: यही तो चाहिए,
1: अब आ गया आपके पास है,
0: have some patience,
2: have some patience। अच्छा तो फिर अभी हे आया है ना मेरे पास,
0: चलो कुछ नया आया है।
2: तो अगला जो है फिर से बड़ा ही दुनियावी है, ऐसा है कि आज तो बड़ा जरूरी है, ऐसे लोग चाहते ना एक दूसरे को देखते हैं और प्रोफाइल भी देखते हैं, बैकग्राउंड भी चेक करते हैं, कुछ ज्यादा ही चेक होता है बैकग्राउंड। तो ये उस वक्त पे लिखा हुआ शेर है जो आज बिल्कुल लागू होता है। तो इरशाद कही, इरशाद
1: इरशाद
2: शुरू करते हैं फिर। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो यही बात ना,
1: यही बात है भाई, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो एग्जैक्टली चले, आजकल बहुत सारे दोस्त का शिकार भी हैं, तो वाकई सही बात है, कई बार देखना चाहिए, एक दफा में कोई समझ में नहीं आता,
2: इसलिए सोशल मीडिया के पोस्ट पे ना जाएं, कई बार देखें,
1: कई बार देखें।
2: चलिए क्या आया समझ,
0: मेरे हिस्से में फिर से अलिफ आ चुका है, फिर मैं इस अलिफ से बड़ी परेशान हो चुकी हूँ।
1: लेकिन ये है कि अलिफ और ये से शेर हैं भी बहुत,
2: बहुत
1: शुरुआत भी बहुत होती
2: है।
0: तो ये एक शेर है जो कि बहुत इंस्पायरिंग भी है,
1: सही।
0: जैसे कि हम अपने अपने मुल्क से आए हैं कतर,
1: हाँ।
0: और यहाँ पे बस गए हैं आके, कतर ने हमें बहुत कुछ चीजों से नवाजा है,
1: हाँ।
0: ये एक कंट्री हमारा होम बन गया है,
1: हाँ।
0: होम अवे फ्रॉम होम,
1: हाँ।
0: तो एक हॉस्टलर होने के नाते मतलब ये वाला शेर मेरे दिल को छू रहा है, तो मैं वो वाला शेर आपको सुनाना चाहूंगी।
1: बिल्कुल,
0: तो इरशाद माई,
2: इरशाद इरशाद।
0: अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं।
2: बात तो सही है,
1: क्या बात है,
2: बात तो सही है,
1: क्या बात है।
0: तो जहाँ जहाँ जिंदगी ले जा रही है उधर ही हम चलते जा रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: और ये सही भी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, प्लान, हाँ प्लानिंग कुछ नहीं होती है,
2: आप कहते ना पानी बन जाओ फिर कोई टेंशन नहीं है, बहते जाओ जो भी रास्ते में जैसा शेप मिले आपको वो लेके आगे बढ़े, एंड यही आसानी है, मतलब जहाँ आपने ठहर के
1: जहाँ आप इस फलसफे को समझ लेते ना जिंदगी।

0: करते, कुछ चीजें ना समझ में बेहतर है,
1: बेहतर है
0: कहते रहो।
1: तो क्या ये नुन्ना तो नहीं आ गया कहीं?
2: नहीं, अब ये मुकम्मल हो गया है, हमारे तीन राउंड्स मुकम्मल हो गए हैं।
3: क्या बात,
1: जबरदस्त। तो हमने जो है ये मुकाबला, जो सख्त मुकाबला था, हमने कर डाला।
2: बात मैं कहना चाहूंगी, ये नज्म है जो मुझे बहुत पसंद है।
1: अच्छा, निदम आफरी की
2: जी, तो वो क्या मैं पढ़ लूँ? इजाजत है?
1: बिल्कुल
0: इजाजत है,
1: आपको इजाजत है।
2: अच्छा ठीक है, तो नज्म कुछ यूं, तो हर रिश्ते का अंजाम यही होता है, फूल खिलता है, महकता है, बढ़ जाता है। तुमसे वैसे तो नहीं कोई शिकायत, लेकिन शाख व सब्ज तो हसास फजा होती है, हर कली जख्म की सूरत ही जुदा होती है। तुमने बेकार ही मौसम को सताया, वरना तुमने बेकार ही मौसम को सताया, वरना फूल जब खिल के महक जाता है, खुद ब खुद शाख से गिर जाता है।
0: क्या बात है,
1: क्या बात,
0: ओहो, क्लाइमैक्स।
1: हाँ,
0: देखिए
1: बहुत,
0: इसलिए मैं कहता हूँ कितने भी लोग ये सुन रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई पसंदीदा अशआर होगा, कोई शेर होगा, कोई गजल होगी, नज्म होगी, तो आप हमसे जरूर जरूर शेयर। देखिए आप इतना बनेंगे तभी शो और भी आगे जाएगा, और इंशाल्लाह भी समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं, किस तरफ जाना है, ये राहें आप ही हमें समझाएंगे। तो सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे बड़े जरूरी हैं। इनफैक्ट अगर आप ये सुने और आपको कुछ सुनाना है तो खुद भी हमें जरूर टैग कीजिएगा, FM107 कतर, इस नाम से हमें
1: शो का नाम लिखना ना भूलिएगा, हमें पता चल जाए कि आप ये हमारे लिए
2: जी कबीर महवेश और आरजे सीन के साथ।
0: बिल्कुल, तो आप जो देंगे स्टोरीज बनाएंगे अपनी, और आपके पास हो सकता है स्टोरी उसको शेयर करें, तो वो सुने कि आपको क्या पसंद आ रहा है और आपकी आवाज शायरी पढ़ते हुए कैसी है, तो ये किस्म का।
1: हाँ बिल्कुल, और ये भी कि आप हम लोगों को, हमारे जो पर्सनल हैं, आप उस पे भी हमें टैग कर सकते हैं, हम उसको जरूर रीशेयर करेंगे।
0: बिल्कुल, तो आज का एंटी क्लाइमेटिक सीन कौन देने वाला है? क्या आपने तो पिछले मरतबा बाय बाय खुदा हाफिज वगैरह कह दिया था,
2: इस बार मुझे लगता है महविश दे देंगे।
0: हाँ ठीक है,
1: ठीक है, वैसे तो खैर काफी हद तक हो ही चुका है, मतलब हमने जो कुछ बताना था आप लोगों को हम बताई,
2: लेकिन कायदे कानून वाले लोग हैं,
1: तो
2: सबको
1: सबको बराबर की बारी मिलेगी। तो आज मेरी बारी है ये शमा बुझाने की इस महफिल की, तो वो शमा मैं बुझा देती हूँ, फूक मार के नहीं, बल्कि आपको अल्लाह हाफिज कह के। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलते हैं एक बहुत ही जबरदस्त से शायर के साथ, और आप जैसे कबीर ने भी कहा है कि आप हमें फीडबैक भी जरूर दीजिए, हम पसंदीदा शेर भी जरूर बताइए, और अगले जुमे को हमें सुनना ना भूलिए इसी चैनल पे, यही हम तीनों यानी कबीर, सीम और मैं महविश आप लोगों के साथ होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
2: अल्लाह हाफिज।
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नासिया. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने बैंकिंग का पूरा तरीका बदल दिया है. जी हाँ, आज का टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज. कुछ साल पहले तक बैंक का कोई भी काम करने के लिए हमें ब्रांच पे जाना पड़ता था. अकाउंट बैलेंस चेक करना हो, फंड्स ट्रांसफर करने हो, बिल्स पेमेंट करनी हो या फिर स्टेटमेंट हासिल करना हो, हर काम के लिए लाइन में लगना पड़ता था. लेकिन आज डिजिटल बैंकिंग ने ये सब काम हमारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर तक पहुँचा दिए. सिंपल वर्ड्स में कहें, डिजिटल बैंकिंग उन तमाम बैंकिंग सर्विसेज को कहते हैं जो इंटरनेट या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं. इसमें आपका ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है, अकाउंट मैनेजमेंट है, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट है, लोन एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, सब कुछ शामिल है. आजकल सिर्फ कुछ क्लिक्स के जरिए आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री भी देख सकते हैं. डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा है कन्वीनियंस. आपको बैंक के वर्किंग आवर्स का इंतजार नहीं करना पड़ता. आप घर पर हो, ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, बैंकिंग सर्विसेज आपके स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होती हैं. और दूसरा बड़ा फायदा है टाइम सेविंग. जी हाँ, बैंक ब्रांचेस में जाकर फॉर्म फिल करना, लंबी क्यूज में वेट करना अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना? लेकिन डिजिटल बैंकिंग इस प्रोसेस को फास्ट और कन्वीनियंट बनाता है. तीसरा बड़ा बेनिफिट है फाइनेंशियल कंट्रोल. जी हाँ, मोबाइल एप्स और इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप हर ट्रांजेक्शन मॉनिटर कर सकते हैं. आपको अपने खर्चों और अपनी सेविंग्स का बेहतर अंदाजा रहता है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में मददगार साबित होती है. लेकिन सवाल ये है कि क्या डिजिटल बैंकिंग हर किसी के लिए इक्वली यूजफुल है? जवाब है हाँ और ना. जरूरी नहीं है. मास पॉपुलेशन के लिए डिजिटल बैंकिंग बहुत फायदेमंद साबित हुई है, खास तौर पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो, बिजनेस ओनर्स हो, वो लोग जो बिजी रूटीन रखते हैं उनके लिए ऑनलाइन बैंकिंग एक बहुत ही कन्वीनियंट सोल्यूशन है. लेकिन अगर मैं बात करूँ रूरल एरियाज की या दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की, तो उनके लिए डिजिटल बैंकिंग आज भी चैलेंज है. डिजिटल बैंकिंग की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज उन तक आसानी से पहुंच भी नहीं पाती और इस तरह से उन्हें बैंक को विजिट करना है, उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं. हर इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होता, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स हो या वो लोग जो स्मार्टफोन्स या मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करने की आदत नहीं रखते, उनके लिए डिजिटल बैंकिंग मुश्किल है. इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस का भी एक बड़ा इशू.

याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि स्मार्ट बैंकिंग का मतलब सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, बल्कि सेफ और इन्फॉर्म्ड बैंकिंग भी है। टेक्नोलॉजी पर भरोसा कीजिए, लेकिन हमेशा उसे समझदारी के साथ यूज कीजिए। स्मार्ट मनी का आज का लेसन ये है कि डिजिटल बैंकिंग ऐप आपका वक्त बचाते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी आपकी वाहिद जिम्मेदारी है। बस अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और आज भी कमाल की वेबसाइट्स हैं, मजेदार वेबसाइट्स हैं। और आज मैंने सोचा कि ना सिर्फ काम आने वाली वेबसाइट्स मगर ऐसी हों जिनमें नॉस्टैल्जिया छुपा हो। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होनी चाहिए ना जो आपको बैठे बैठे कहें यार ये तो बड़ी कमाल की चीज बता दी, इसने बढ़िया टाइम पास हो रहा है मेरा। तो आज टाइम पास करने के लिए भी कुछ चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। नंबर वन ऑन द लिस्ट वेबसाइट का नाम है cartoons.me, पर ये C से शुरू नहीं होता कार्टून्स, ये K से शुरू होता है। सो KARTOONS.ME cartoons.ME। अब क्या होगा, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको अपने बचपन के बहुत सारे कार्टून्स नजर आएंगे जो आप लिटरली देख सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं, माँ बाप मैंने देखे तो चाहते हैं बच्चों को वो कार्टून्स दिखाएं जो 1990s में अर्ली 2000s में आते थे, क्योंकि उन कार्टून्स में कुछ बात थी यार, वो एक चार्म थी उसमें, बड़ी कमाल की चीज थी। अभी तो पर वो जो कार्टून्स थे वो देखने लायक थे, उसमें आप कुछ भी देख सकते हैं और पूरी लिस्ट आपके सामने जाएगी, जस्ट हैव टू क्लिक एंड प्ले इजीली। सो cartoons.me पे आप जा सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए नहीं, यू कैन आल्सो जस्ट सिट टाइम पास कर रहे हैं एंड यू जस्ट वांट टू वॉच। मैं इस पर करेज द काउडली डॉग देख के आया हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। सो KARTOONS.ME। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली जो वेबसाइट है ये बड़ी काम की है, इसका नाम है लूट और आगे हाइफन या डैश drop.io। ध्यान से सुनिएगा, गलती हो सकती है। लूट LOOT लूट, फिर डैश, फिर ड्रॉप DROP.IO। ये सुनिएगा गौर से, वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको दुनिया जहां में जितने भी स्टार्टअप्स बनाए गए बिजनेस आइडियाज के तौर पे आगे ले जाया गया और वो फेल हो गए, तो वो कहां फेल हुए और क्या सही कर सकते थे वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये लिटरली केस स्टडी है और बड़ी बड़ी कमाल की चीज है। आपको कोई बिजनेस आइडिया आप देख सकते हैं, बिजनेस आइडिया ऐसा किसी ने कभी ट्राई किया है, और अगर किसी ने ट्राई किया है तो क्या वो फेल हुआ है, और अगर फेल हुआ है तो कहां फेल हुआ है, और अगर फेल हो गया ये करके तो क्या करके वो कामयाब हो सकता था, सारी डिटेल आपको मिलेगी। सो प्लानिंग समथिंग इन फ्यूचर, आई थिंक बहुत बहुत कमाल की चीजें, मुझे भी दो तीन चीजें नजर आई, हालांकि मेरे अंदर बिजनेस एक्यूमेंट माइनस में है तो मैं सोच भी नहीं सकता, बट यू हैव इट इन यू तो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं वेबसाइट का नाम फिर से बता देता हूँ, लूट LOOT डैश drop.io। ठीक है, चलो अब आए हो तो तीसरी भी सुन लो। अगली वेबसाइट का नाम है myemulator.cc, myemulator emulator myemulator.cc। इसमें जब आप जाएंगे तो निंटेंडो के बहुत सारे गेम्स जो अर्ली एरा के थे, जो रेट्रो गेम्स हैं, वो सारे के सारे आप इजीली खेल सकते हैं। छुट्टियों का खेल है भाई, ये बहुत बढ़िया टाइम पास है, मुझे बड़ा मजा आया इसको एक्सप्लोर करने में, एंड आई लव्ड इट कि मैं इजीली सुपर ब्रदर्स 3 खेल सकता हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि उसमें उसकी पूंछ होती थी मारियो की, उड़ा करता था, जिन्होंने मारियो को बहुत दिल लगा के प्यार किया वही जानते हैं। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, मतलब खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो खबर देखिए बड़ी सिंपल सी है लेकिन बड़ी कमाल की है, बड़ी हैरान कर देने वाली है। दुनिया में अब वायर्ड एयरबड्स आना शुरू हो चुके हैं। पता नहीं आपको इस बारे में अभी जानकारी मिली है कि नहीं, पर रीसेंट टाइम्स में आप देखा होगा कि लोग जो हैं वो वायरलेस एयरबड्स छोड़ के वायर्ड वाले की तरफ जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसका सबूत दो, मैं आपको सबूत देता हूँ। बोस जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, वो वायर्ड हेडसेट बना चुकी है, मार्केट में उतार दिया, एंड पीपल आर लविंग इट। तो ये जो पीछे पहिया घुमा है ये भी बड़ी कमाल की चीज है, पीपल आर नाउ विलिंग टू बाय वायर्ड हेडसेट, क्योंकि लग रहा है भाई यही सही है। वो जो आपको याद है मॉडर्नाइज सीडी प्लेयर का जमाना था, तो बोस ने कहा कि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो उन्होंने इसके अंदर काफी सारी चीजें डाली हैं। एयरबड्स में कनेक्टिविटी दी है, 4.2 फुट लॉन्ग USB-C केबल, और इसमें काफी कंट्रोल्स हैं जो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे, और ANC सेटिंग मोड भी है, क्वाइट भी, अवेयर मोड भी है, और नॉइस कैंसिलेशन भी है। तो कमाल है यार ये, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और इसमें लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट भी डाला है ताकि नॉइस कैंसिलेशन आपको उतनी ही लेवल की मिल सके। एक्सलेंट, ये थी अपडेट, मिलते हैं अगली वाली में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।

0: को आपकी हेल्थ को लेकर खाली कर सकते हैं। इसलिए आज के वक्त में नए जमाने के नए स्कैम को समझने के लिए जरूरी है कि आप होशियार रहें और सुनते रहें FM 107, क्योंकि इस तरह के स्कैम के बारे में हर रोज मैं आपको इत्तला करता हूं और आगाह करता हूं, और आप उम्मीद है कि होशियार भी बन रहे होंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको अलर्ट करते हुए। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@umc.qa।
2: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी दस्तरखान पर कुछ खाने अपने सादा अज्जा की वजह से मशहूर होते हैं। सुरेद एक ऐसा रिवायती खाना है, रोटी, सब्जियों और गोश्त से तैयार होने वाला ये खाना सादगी को भरपूर जायके में बदल देता है। सुरेद में आमतौर पर पतली रोटी खास तौर पर रुक्का को टुकड़ों में रखा जाता है, फिर इसके ऊपर गोश्त, सब्जियों और मसालों से तैयार गर्म शोरबा डाला जाता है। रोटी शोरबे को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और नरम, खुशबूदार और को गर्म करने वाला खाना बन जाता है। इस खाने में आलू, गाजर, टमाटर, तुई और प्याज जैसी सब्जी शामिल की जा सकती है। गोश्त या मुर्गी के साथ पकाए जाने वाले अंदाज के अलावा सब्जियों वाला सुरेद भी तैयार किया जाता है। हर घर की रेसिपी में मामूली फर्क हो सकता है, मगर इसका बुनियादी निजाम यानी रोटी को खुशबूदार शोरबे के साथ पेश करना हमेशा कायम रहता है। सुरेद को समझने के लिए हमें पुराने गर्ल्स घरों को, जो उनकी जिंदगियां होती थीं, उनको जहन में लाना होगा। ऐसे खाने उस जमाने में पसंद किए जाते थे जो सादा अज्जा से तैयार हो जाए, ज्यादा लोगों के लिए काफी हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भी लें, साया कम से कम। बची हुई रोटी या फिर दस्तियाब सब्जियों को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता था कि सिर्फ पकाने का हुनर नहीं बल्कि चीजों को कदर करने की एक सोच भी थी। कतर में सुरेद का ताल्लुक खास तौर पर रमजान और खानदानी जमात से जुड़ा हुआ है। अफ्तार के वक्त गर्म शोरबे वाला ये खाना लोगों को ताकत और सुकून देता है। कई घरों में इसे फैमिली गैदरिंग या खास मौकों पर भी पेश किया जाता है। सुरेद की सबसे दिलचस्प बात इसकी बनावट है। अगर रोटी बहुत देर तक शोरबे में रहे तो बिल्कुल घुल सकती है, और अगर बहुत कम वक्त के लिए मिले तो जायका अंदर तक नहीं जाता। इसलिए तजुर्बेकार खवातीन और बावर्ची जानते हैं कि रोटी और शोरबे का तवाजुन किस तरह से कायम करना है। इस खाने का रिश्ता सिर्फ किचन से नहीं बल्कि मेहमान नवाजी से भी है। बड़ी थाली में पेश किया गया सुरेद कई लोगों को एक साथ बैठने का मौका देता है। लोग खाना खाते हुए बातें करते हैं, एक दूसरे का ख्याल पूछते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लम्हे शेयर करते हैं। यही वजह है कि सुरेद को कम्फर्ट फूड कहा जाता है। इसकी गर्माइश सिर्फ शोरबे से नहीं आती बल्कि उन यादों से आती है जो घर, बुजुर्गों और मिल बैठने से जुड़ी होती हैं। कतरी कुजीन की एक खूबी ये भी है कि वो साहिल और सहरा दोनों माहौल से मुतासिर नजर आती है। सुरेद में इस्तेमाल होने वाली रोटी और सब्जियां रोजमर्रा जरूरियात और दस्त

0: वो कौन सी बातें हैं जो एक शख्स को अजीम बनाती हैं वो कौन से काम हैं जो इस शख्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं जानना चाहोगे
1: जानना चाहोगे
0: अपने मैदान अमल में कारनामे दिखाने वाले और अपने हौसलों से समुद्र का लीना चीरने वाले ऐसी ही अजीम शख्सियतों और जाबाजों की दास्तान लेकर आए हैं हम इनकी जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डालें सुनिए स्टोरीज अनटोल्ड डे फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: झुर्रियों में कहानियां बच्चों की आंखों में नई उड़ान मिलकर लिखती है जिंदगी की नई दास्तान अस्सलाम वालेकुम मरहबा कैसे हैं आप सब हां मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और अनटोल्ड स्टोरीज में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका इंट्रोडक्शन आपको विकिपीडिया जैसी साइट्स में भी नहीं मिलेगा मतलब उनके नाम की एंट्री वहां पर भी नहीं है पर ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को अपने सेल्फलेस लव से पूरी तरह से बदल दिया है वेल ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स हैं और इनका नाम है अल्बेरो वर्गास जो कि कोलंबिया से हैं जिन्होंने कम उम्र में ही बुजुर्गों की देखभाल और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने गार्जियन एंजल्स नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें बच्चों को बुजुर्गों के साथ समय बिताने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया इस प्रोग्राम के जरिए अल्बेरो ने बुजुर्गों और बच्चों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद की है जिससे दोनों को काफी फायदा हुआ अल्बेरो वर्गास का काम हमें ये याद दिलाता है कि उम्र कोई भी हो हम सभी दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने इस एंटायर सोसाइटी में पॉजिटिव थिंकिंग से बदलाव ला सकते हैं यस तो आज अल्बेरो वर्गास की कहानी आप सुनेंगे हमारी जुबानी अनओल्ड स्टोरीज में तो आप कहीं ना जाएं बने रहें एफएम 107 पर दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम वेलकम वंस अगेन मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज अनटोल्ड स्टोरीज में हम बात कर रहे हैं अल्बेरो वर्गास की जो कि एक ऐसी शख्सियत है

0: जिन्होंने लोगों को ये बताया कि आपके पास जो भी है आप उससे लोगों की मदद कर सकते हैं, अगर पैसे नहीं है तो थोड़ा वक्त देकर भी। और इस तरह से सोसाइटी को बेहद खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया, जहां पर इनका मैसेज वर्ल्ड फेमस होते जा रहा है। तो शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर अल्बेरो वर्गास की जिंदगी में इतना बदलाव कैसे। सो अल्बेरो के माता पिता ये नॉर्दर्न सैंटांडर पोर्टो विल्चेस में रहते थे और वहां पर खेती किसानी करके अपने परिवार का पोषण करते थे। लेकिन इनके गांव में कुछ ऐसे ग्रुप्स आ गए जहां पर वायलेंस शुरू हो गया, तो अल्बेरो के माता पिता को अपने एंटायर फैमिली के साथ बुकारामंगा आना पड़ गया और वहां पर एक छोटी सी बस्ती में इन्होंने फिर से शुरुआत की। जिंदगी की कठिनाइयां स्ट्रगल्स चलती चली जा रही थी, लेकिन अल्बेरो के मॉम डैड पीछे नहीं हट रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें कैसे भी करके अपने बच्चों की अपने परिवार की देखभाल करनी है। पर अल्बेरो की जो माँ थी वो एक्चुअली सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही अल्बेरो के लिए। तो अल्बेरो की माँ जो कि खेती किसानी करती थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें खेतों में काम करने वाले जानवरों के बारे में भी पता था, और जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो कैसे उनकी टेक केयर करना ये सब उन्हें आता था। तो कहा जाए अल्बेरो की माँ जो थी वो सेल्फ टॉट नर्स थी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जानवरों को और लोगों को दोनों को ही ठीक करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में अल्बेरो की माँ लोगों की मदद करना शुरू कर चुकी थी। उन्होंने अपने बच्चों में बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज खोद खोद के डाली हुई थी, यानी कि दो चीज जो अल्बेरो की माँ ने सिखाई थी, पहली कि जिंदगी में आप कहीं भी रहो कुछ भी करो उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना मत भूलना, और दूसरा जैसे भी हो सके गरीबों की या जरूरतमंदों की मदद करना।
1: Son of Eliezer Vargas and Ismenia Romero, the seventh of eight children, was raised with toughness and discipline, but also with many values. His mother, leading by example, taught him the solidarity, responsibility, generosity and love for the people. Fundamental aspects that led him to form firm and solid personality.
0: जब अल्बेरो 6 साल के थे तो ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी उनके साथ आकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि मेडिकल का खर्चा उठाने के लिए उतने पैसे नहीं थे, तो अल्बेरो की माँ दिन रात एक करके उनके दादाजी की टेक केयर करती थी, उनका ख्याल रखती थी। अल्बेरो जब अपनी माँ को देखते थे तो वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते थे, और उन्हें लगता था कि मुझे मेरी माँ की तरह बनना है। तो वो भी अम्माजी को असिस्ट करते थे, उनकी हेल्प करते थे, उन्हें कॉफी लाके देना, उनके साथ लिखना पढ़ना, उनसे बातें करना, कहानियां सुनाना। इस तरह से अल्बेरो और उनके दादाजी का रिलेशन काफी डीप हुआ। धीरे धीरे वक्त बढ़ते जा रहा था और अल्बेरो की जिंदगी का जो सबसे बड़ा कमिटमेंट या यूं कहें सबसे बड़ा मिशन उनके दादाजी से शुरू हुआ, जब उन्हें लगा कि उन्हें बुजुर्गों की मदद करनी है, उनका ख्याल रखना है। समय के बाद अल्बेरो के दादाजी चल बसे, और ये हुआ तो अल्बेरो बहुत हुए। उन्हें लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब उनका कोई ना कोई और दोस्त तो बनना चाहिए, तो वो अपने पड़ोस में निकल पड़े और जाकर ढूंढ लगे ऐसे बुजुर्ग लोगों को जो उनसे दोस्ती करें और उनसे बातचीत करें। पर क्योंकि जिस लोकेलिटी में ये रहते थे वहां पर क्राइम रेट बहुत था और ये छोटे बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है लोग इन पर बिल्कुल विश्वास करते थे। अब क्योंकि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो अल्बेरो से बात ही नहीं करना चाहते थे। पर अल्बेरो भी ढीठ थे, उन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी के बाद कोई ना कोई तो उनका दोस्त बनेगा। वो रोज उनसे मिलने जाते, सारे बुजुर्गों से उन्हें कहानियां सुनाते, उनके साथ मिलकर प्रेयर करते, और ऐसे जब वो रोज आना जाना करते रहे तो कम से कम 20 बुजुर्गों ने अल्बेरो को अपना दोस्त बना लिया, और उस वक्त अल्बेरो सिर्फ 8 साल के थे। लेकिन 20 बुजुर्गों के साथ दोस्ती करने के बाद अल्बेरो को ऐसा लगा कि वो हर किसी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, हर किसी को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, हर किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि स्कूल में लीडरशिप और गवर्नेंस पर काफी कुछ पढ़ाया गया है,

0: मदद करना शुरू कर दिया, उनसे मिलना शुरू कर दिया, उन्हें जिस भी चीज की जरूरत थी किसी ना किसी तरह से उन तक ये पहुंचाया करते थे। वैसे अब अल्बेरो की बात और इसकी कहानी एक जर्नलिस्ट की नजर में आई जो कि वैन गॉग या लिबरल से थे और उन्होंने इनकी स्टोरी छाप दी जिसकी वजह से काफी लोगों ने अल्बेरो को डोनेशन दिए।
1: अल्बेरोस गुड डीड बिकेम नोन इन 1988 थैंक्स टू अ जर्नलिस्ट नेम्ड यूक्लिडेस अर्डिला ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर कॉल्ड वैनगार्डिया लिबरल who interviewed him and asked him about his ideas and goals and announced to all Bucaramanga the sense of humanity and simplicity of a child living in a poor and caste neighborhood called Regadero. During this interview, Albeiro was baptized as the Angel of the North. The news flew so fast that more than 8,000 kilometers away from Colombia, in France, a journalist called Tony Committee decides to find and live the experience of Albeiro. For a few days, he goes into north of this and becomes Albeiro's shadow, recording every step, every moment, and in a very meaningful documentary titled The Little Angel of Colombia.
0: वैसे इस डोनेशन से इनका तो हो रहा था, डोनेशन बहुत कम थे, तो एक बड़े अमाउंट की इनको तलाश थी जिसके चलते ये अपने बुजुर्गों की हेल्प कर सके। तो ये कहानी अल्बेरो वर्गास की आगे बढ़ी गई और कैसे अल्बेरो वर्गास का फाउंडेशन एंड द गार्डियन एंजल्स बना, चलिए आपको बताते हैं। तो अल्बेरो महज 14 साल के थे और इतनी छोटी उम्र में इनके काम की बात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंची और हर किसी का अटेंशन इन पर आ गया। फ्रेंच एम्बेसी से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की बात हुई और कहा कि जब अल्बेरो 18 साल के हो जाएंगे उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा। लेकिन अल्बेरो ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं, 18 साल होने में तो अभी मुझे और 4 साल लगेंगे और ऐसा अगर हुआ तो जो मेरे बुजुर्ग हैं वो शायद ठंड और भूख से चल बसेंगे।
1: अल्बेरो वार्गास हैड नो मनी एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड नॉट इवन एज। However, nothing stopped him from starting and continuing with courage. Yesterday was a corner in a poor house, a street, a park. Now it's a work done, a dream made real that he thoroughly enjoys, but yet an unfinished task.
0: ये सुनने के बाद लोगों के दिलों में सनसनी सी दौड़ गई और फिर स्पेशल अरेंजमेंट्स हुए जिससे अल्बेरो को सपोर्ट किया गया। अब 14 साल की उम्र में अल्बेरो को बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने थे। तो बुकारामंगा में एक ऐसा घर था जो खाली पड़ा था, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था। उस घर को अल्बेरो ने ट्रांसफॉर्म किया ओल्ड एज होम में और जितने भी एल्डरली इंडिविजुअल्स थे, जितने भी बुजुर्ग थे, उनको वहां पर रखा। और इस तरह से अल्बेरो की एंजल्स कस्टोडियस फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जहां पर लगभग 500 बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है और ये बुजुर्ग ही रहते हैं।
1: The guardian angels for Albeiro Vargas Foundation are a symbol of life and hope. They are the staff and the guide for the grandparents. The reason for this work is the love and commitment, along with a group of professionals. And they learn simple things from the experiences and stories of the teachers of life. The guardian angels have the mission to guide, to help, to support the activities of the grandparents.
0: In fact, इस foundation के जरिए अल्बेरो और उनकी team, जो caregivers होते हैं, यानी कि जो nursing homes में काम करते हैं, उनको भी training देते हैं कि कैसे बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है। देखा जाए अब तक 56 नर्सिंग होम्स जो कि सैंटेंडर में है, वहां पर इन्होंने केयर को ट्रेन किया है। वैसे अल्बेरो का ये जो गार्जियन एंजल्स फाउंडेशन है, इसमें लगभग 90 स्टाफ मेंबर्स हैं।
1: अ मोर कन्वीनिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउज हिम टू प्रोवाइड मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड केयर 24 आवर्स अ डे फॉर मोर ग्रैंडपेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स इन एरियाज लाइक gerontology, medicine, physiotherapy, psychology, social work, occupational therapy, nutrition and more.
0: और अल्बेरो मेक श्योर करते हैं कि हर एक

बुजुर्ग का इंडिविजुअली ख्याल रखा जाए, उनकी देखभाल की जाए, उनकी बातों को, उनकी कहानियों को सुना जाए। इनफैक्ट उनके लिए जो केयर पॉलिसीज होती हैं उस पर ये काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो नर्सिंग होम्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए नेशनल टैक्स का एनफोर्समेंट हो सके। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता को अकेला छोड़ दिया है, उन पर लीगल एक्शंस लिए जा सके। सो यस, ये है अल्बेरो वर्गास, जिन्होंने कमाल की कोशिशों से आज इन बुजुर्गों को उनका घर दिया। कुछ और भी बातें हैं अल्बेरो वर्गास के बारे में जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: वेलकम वंस अगेन. एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. अनटोल्ड स्टोरीज में आज हम बातें कर रहे हैं द गार्जियन एंजल अल्बेरो वर्गास की. तो जनाब, अल्बेरो वर्गास की जर्नी जो अभी हमने सुनी, आई एम वेरी श्योर कि आपने एक चीज तो समझी होगी कि ये शख्स ऐसा है. ये क्या, दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा हो सकता है? अगर उसके अंदर पक्का इरादा हो और स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो दुनिया को आसानी से बदला जा सकता है. वैसे अगर अल्बेरो के बचपन से लेकर अब तक का सिनेरियो देखें तो अल्बेरो क्या है कि एक जो मुझे बनाती है, डिफाइन करती है, वो है मेरा परसिस्टेंस और साथ ही साथ मेरा स्ट्रॉन्ग विल पावर, क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता और इसी वजह से आज आगे बढ़ते जा रहा हूँ और बुजुर्गों की मदद करते जा रहा हूँ, उनके राइट्स के लिए लड़ते जा रहा हूँ. और कहते हैं कि यही वो चीज है जो दुनिया को बदल सकती है. और ये भी है ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है. तो अगर ऐसा कोई विचार किसी के मन में है तो जब आपके दिल में इच्छा होगी तो इसे पूरे करने की हिम्मत भी होगी और जब हिम्मत आ जाएगी तो काम डेफिनेटली पूरा हो जाएगा.
1: अल्बेरो's sense of responsibility for the older adults presents and thinking of the self-sustainability of the institution. He created a strategic support unit, Ruitoque Casa Mayor, the first Colombian Eastern Gerontology Center.
0: So Alberto Vargas ka the Guardian Angel Foundation 1992 mein formally established hua. और अल्बेरो की डायर टीम के सेल्फलेस लव से, कमिटमेंट से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फाउंडेशन है, ये फ्लरिश होते जा रहा है और इनकी मेहनत से हजारों बुजुर्गों की जिंदगियां सवरी हैं और आगे भी रहेंगी.
1: This is possible thanks to the contribution and support of all of you. It is a cause that demands considerable sacrifices and generosity. An example of solidarity are the friends of France, who for more than 20 years have joined unconditionally through Voices for Alberto Vargas Foundation, led by Patrick Bouglot, through which are regularly raised donations and corporate growth opportunities.
0: So hats off to Alberto Vargas, jinki kahani aaj Untold Stories mein hum aap tak lekar aaye. Aur aapko aaj ka hamara show kaisa laga, aap humse zarur share karein. 666-22-107 पर, 666-22-107 पर. और चाहे तो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है FM 107 का, उसके जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने आरजे अमिता को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढूंढ सकते हैं. अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और हाँ, बने रहिए FM 107 पर. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पास बहुत बड़ा अजर है। यानी अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि माल बुरा है, औलाद बुरी है, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या माल तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है या अल्लाह के करीब ला रहा है। सामने किराम, अब रुख करते हैं एक वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: अब एक और जाविये से इस्लाम की खूबसूरती को देखने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर वालों पर अल्लाह की रजा की नीयत से खर्च करता है तो वो उसके लिए सदका होता है। तो इस्लाम घर वालों पर खर्च को भी इबादत करार देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में एक अजीम हकीकत बयान फरमाई। अय्याज़ इब्न हिमार रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों पर नज़र फरमाई, अरब हों या अजम, उनके बेशतर लोग गुमराही में मुबतला थे सिवाय चंद अहले किताब के जो हक पर बाकी थे। फिर सुभानहु व तआला ने यह अजीम किताब नाजिल फरमाई यानी कुरान उतारा। तो सामिन किराम, इस खुतबे में इस अजीम हकीकत की तरफ इशारा है कि ये बहुत बड़ा शरफ है हमारे लिए, साथ साथ ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर हम वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा हैं तो हमें कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा, क्योंकि यही वो किताब है जिसने कल दुनिया बदली थी और यही वो किताब है जो आज भी दिलों को जिंदा कर सकती है। सामने किराम, अब हम उस आयत की तरफ लौटते हैं जिसकी तिलावत हमने की थी। या यूहन्ना सुकद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में कुरान को मौइज़ा कहा है, नसीहत कहा है, दिलों का इलाज कहा, हिदायत कहा और रहमत कहा। सवाल यह है कि नसीहत लोगों में क्या तब्दीली लेकर आई। इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कुरान के नज़ूल से पहले इंसानों की हालत क्या थी, क्योंकि जब तक हमें बीमारी का अंदाज़ा ना हो दवा की अजमत भी पूरी तरह समझ में नहीं आती। समझने कराम, अरब माशरे में बहुत से अच्छे सिफात मौजूद थी, सखावत थी, मेहमान नवाजी थी, वादा निभाने का जज्बा था, बहादुरी थी, इज्जत नफ्स थी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक, मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। और कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तकमील उस चीज़ की होती है जो पहले से मौजूद हो मगर नाकस हो। अगर कोई चीज़ सिरे से मौजूद ही ना हो तो उसे मुकम्मल नहीं किया जाता बल्कि नए सिरे से पैदा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अरबों में बहुत सी अच्छी सिफात थी लेकिन वो सिफात इंसानियत को कामिल इंसान बनाने के लिए काफ़ी न थी, क्योंकि इंसान सिर्फ अखलाक के चंद मज़ाहिर का नाम नहीं। इंसान की असल ज़िंदगी उसके दिल, उसकी रूह, उसके ईमान और उसके रब से ताल्लुक में होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह वही भेजी। यहाँ कुरान को रूह कहा गया है। रूह के बगैर जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। जिस्म हरकत कर सकता है, चल फिर सकता है, लेकिन रूह निकल जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह कुरान के बगैर इंसान बज़ाहिर जिंदा नज़र आता है, खाता है, पीता है, तिजारत करता है, तालीम हासिल करता है, लेकिन हकीकत में उसकी रूह मुर्दा होती है। कुरान आया तो इंसानों में हकीकी ज़िंदगी पैदा हुई। इसलिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया है, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह और उसके रसूल की दावत कबूल करो जब वो तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है। वह कुरान ज़िंदगी बख्श

0: घोड़े सिर्फ ऐसे हुसन दिखने के लिए रखे हुए नहीं थे। उस दौर में ऐसे घोड़े कुव्वत, तैयारी और इज्तिमाई जिम्मेदारी का एक अहम जरिया भी थे।
1: अब मतलब तला भाई, अब यहाँ से वो मशहूर इंटरप्रिटेशन शुरू होती है ना, यानी घोड़े इतने ज्यादा थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें देखते देखते वक्त भूल गए।
0: जी जी जी, यही वो तफसीर है जिसके हवाले से शुरू से हम उसके तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने अहले किताब से मनकूल एक रिवायत की बुनियाद पर इनायत की तशरीह की है। इस रिवायत के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने घोड़े पेश किए गए और वो उनका मुआयना करते रहे। घोड़ों की कसरत और उनमें इन्हिमाक ऐसा हुआ कि नमाज असर का वक्त गुजर गया और सूरज गुरूब हो गया। फिर इस आयत को उस हिस्से यानी इन्नी अहबबतु हुब्बल खैर अन ज़िक्री रब्बी का ये मतलब लिया गया है कि मैंने अपने रब के जिक्र यानी नमाज के मुकाबले में घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दे दी। फिर हत्ता तवारत बिल हिजाब का मफहूम ये बताया गया कि सूरज पर्दे में छुप गया यानी गुरूब हो गया। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रुद्दुहा अलै, अरे इन्हें मेरे पास वापस लाओ। और जब घोड़े वापस आए लाए गए तो फतफक मसहम बिसूक वलाना, यानी उस तफसीर के मुताबिक ये बात बताई गई कि उन्होंने उन घोड़ों की पिंडलियों और गर्दनों पर तलवार चलाना शुरू कर दी। यानी इस रिवायत में उसे यानी इस वाकये को इस कोताही के बाद एक तरह के यानी कफारा के तौर पर, इकदाम के तौर पर बयान किया गया है।
1: भाई लेकिन यहाँ मुझे अब दो सवाल आ रहे हैं तला भाई। पहला ये कि भाई कुरान यहाँ सूरज का लफ्ज तो बोला ही नहीं गया है इसके अंदर, कुरान के अंदर, है ना। और दूसरा ये कि मसाह मतलब सुनकर आमतौर पर जहन में यही हाथ फेरना या टच करना याद आता है, जैसे हम वजू में करते हैं, कहते हैं ना मसाह कर लो।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: फिर इसको काटना कैसे, मतलब समझ।
0: जी सर भाई, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया और यही वो मकाम है सर भाई जहाँ दूसरी तफसीर सामने आती है। और हमारे सामने यानी ये तफसीर बिल्कुल हम इसे राजे भी कह सकते हैं, अगरचे मशहूर तफसीर जो है ना वो ये कि वो काट दिए गए थे, लेकिन जो तफसीर आपको इल्मी तौर पर भी आपको वो सही लगेगा हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इस तशरीह में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने असर के बाद या शाम के वक्त वो खूबसूरत और उम्दा घोड़े पेश किए गए। उन्होंने उन्हें देखा और अल्लाह की उस नियामत पर खुश हुए। फिर फरमाया इन्नी अहबबतु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी। यहाँ अन ज़िक्र रब्बी का मफहूम ये नहीं कि अल्लाह के जिक्र के बजाय मुझे उसकी मोहब्बत ज्यादा उसकी तरजीह, बल्कि अपने रब की जिक्र की वजह से अपने रब की याद के बायस, यानी ये मोहब्बत अल्लाह से गफलत की मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा नियमत से वो मोहब्बत है जो इंसान को मुनम यानी नियमत देने वाले रब की याद दिलाती। घोड़ा उन्होंने यहाँ घोड़ों ने उन्हें अल्लाह की याद और मजीद याद दिलाई।
1: तो यानी पहली तफसीर में घोड़े अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाली चीज बन रहे थे और दूसरी तफसीर में जो अभी आपने वादे की वहीं घोड़े अल्लाह सुभान व तआला की नेमत हैं जिनको देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह को याद कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यही दोनों तफसीरों के दरमियान एक बुनियादी फर्क है। जैसे कि आपने कहा एक मंजर में घोड़े गफलत का सबब है, दूसरे मंजर में वही घोड़े जिक्र और शुक्र का वसीला है। वैसे यहाँ आपको ये बता दूँ ये लिंग्विस्टिक्स के हवाले से एक बहुत ही अहम बात है, जो जिनको अरबी जबान में दिलचस्पी है और नहु सरफ जानते हैं वो इस बात को ज़रूर जानेंगे कि अरबी जबान में जो हर्फ आन है ये बाज़ मौके पर सबब और तालील का मफहूम भी देता है। इसी की मिसाल कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से आती है, वमा कान इस्तिग़फार इब्राहिम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के लिए इस्तिग़फार एक वादे की वजह से हुआ था, अम्मा वाइदा यानी वादे की वजह से हुआ था जो उन्होंने उसे किया, उसे पूरा किया था या उसका ये वादा किया था। तो इस लुगवी इम्कान को यहाँ भी सामने रखा गया है, गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मुझे उन घोड़ों से मोहब्बत है और ये मोहब्बत मेरे रब की याद से जुड़ी हुई है।
1: तो फिर हत्ता सौरत बिल हिजाब में छुपा कौन, सूरज नहीं घोड़े?
0: हाँ जी, इस तफसीर के मुताबिक घोड़े। बिल्कुल, ये सूरज का लफ्ज तो यहाँ इन आयात में इसको मेंशन ही नहीं किया गया सूरज। यहाँ जो मुफस्सिरीन किराम इस पर डिपेंड कर रहे हैं वो इसको बिलफर्ज महजूफ मान रहे कि यहाँ सूरज का सूरज मुराद लिया गया है। लेकिन आप जरा इस तस्वीर को जहन में रखिए कि मैदान में घोड़े दौड़ रहे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें देख रहे हैं। दौड़ते दौड़ते वो इतनी दूर निकल जाते हैं कि किसी पहाड़ी टीले या किसी दूसरे आड़ के पीछे निगाहों से ओझल हो जाते हैं। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक के वो पर्दे के पीछे छुप गए। देखिए इस तस्वीर को कितने खूबी से यानी बयान किया गया है।
1: सही,
0: सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रुद्दू आले, अरे दोबारा इन्हें मेरे पास वापस लाओ। यानी वो मंजर ही कुछ अलग है ना। जरूर भाई।
1: सही।

0: रही। तो अब फ्लो भी इंटरेस्टिंग लग रही है भाई। घोड़े सामने आए, फिर दौड़ते हुए नजरों से ओझल हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उन्हें वापस लाओ। फिर जब वो वापस आए, फताफिका मशहन बिसूकी वल आना।
1: जी बिल्कुल सर भाई, आपने ये आयत, इसको मैं दोबारा अगर इस तरह कहूंगा तिलावत करके बता देता हूँ, फताफिका मशहन बिसूकी वल आना, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। कहाँ एक तफसीर है कि वो तलवार से वार कर रहे थे, और ये कहाँ ये तफसीर है कि वहाँ गर्दनों और टांगों पर हाथ फेरने लगे, जैसे
0: मोहब्बत
1: में फेरा जाता है। बिल्कुल, घोड़ों का मालिक या उनका माहिर उन्हें करीब से देखता है, उनके गर्दन थपथपाता है, टांगे देखता है, उनकी सेहत और तैयारी का जायजा लेता है। अब्दुल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से भी ये माना मनकूल है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की टांगों पर इस तरह जो है ना गर्दनों पर हाथ फेर रहे थे, और इमाम तबरी ने भी इस कौल को आयत की तफसीर के ज्यादा करीब करार दिया है।
0: तो भाई तला भाई, तो फिर जो इमेज बचपन से जहन में हो सकती है कि भाई घोड़े लाइन में खड़े हुए हैं और उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, इस तफसीर में वो सीन ही नहीं। यहाँ तो एक रूलर अपने घोड़ों को इंस्पेक्ट कर रहा है, उन्हें देख रहा है और उन पर हाथ फेर रहा है।
1: जी बिल्कुल सर भाई, जैसा कि आपने ये बातें कही, तो इसमें दरअसल यही हम बताना चाह रहे हैं कि यही ज्यादा राजे तफसीर है, और इसके तीन बुनियादी असबाब हैं। पहला सबब यह है, घोड़ों को काटने वाली जो पहली रिवायत है, ये किसी मुहकम कुरानी आयत या साबित सुन्नत पर कायम नहीं, बल्कि इसे इसराइली रिवायत में शुमार किया गया है। दूसरा, ये दूसरी तशरीह जो हमने घोड़ों के साथ मोहब्बत के अंदाज में जो फेरने की बात, मसा की बात आई है, यहाँ मकामी नबूवत से ये बात ज्यादा मुनासिबत रखती है, क्योंकि नबी हैं वो, तो जानवरों के साथ उनका क्या मामला होगा, ठीक है ना। पहली तशरीह कबूल की जाए तो एक ही वाक्य में ये मानना पड़ता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों में ऐसे मशगूल हों कि नमाज छोड़ दी। अगर उन पर उस वक्त असर की नमाज उसी सूरत में फर्ज थी और फिर उसके बाद घोड़ों की गर्दन और टांगे भी काट दी, तो ये एक के बाद दो कई सारे आप मसाइल नबी के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये उनके मकाम के साथ वो शायन निशान बात नहीं बनती। तीसरा सबब यह है कि ये जो दूसरी तशरीह की बात कही गई और बाज़ मुफस्सिरीन ने भी इसकी तायीद की है, तो ये उन उसूलों से ज्यादा हम आहंग हैं जिन पर सही तफसीर कायम होती है, और सही तफसीर के वो उसूल क्या है, सही मासूर हो, यानी रिवायात सही हो, ये नहीं कि इसराइली रिवायत ये वो सही हो, और अरबी जबान सियाक कलाम और कुरान के मकासद से हम आहंग हो।
0: क्या बात है। तो भाई यहाँ एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, कभी एक स्टोरी इतनी मशहूर हो जाती है कि हम असल आयत को भी उसी स्टोरी से या उसी स्टोरी के चश्मे से पढ़ने लगते हैं, फिर जब दोबारा कुरान के एक्चुअल अल्फाज देखें तो पता चलता है कि भाई आयत ने कुछ डिटेल्स कही नहीं जो हम बचपन से स्टोरी का हिस्सा समझते आए हैं।
1: जी सर,
0: ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई कि सुभान अल्लाह, जितनी बार कुरान खोलो कुछ ना कुछ नया ही पता चलता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने इसके डीप में उतरते जाएंगे उतना ही आपको नए मजामीन और नए मानी आप इसको हासिल करते जाएंगे, और यही कुरान का फहम और शऊर और ये समझने का हुसन है कि कुरान को कुरान के अल्फाज से समझना ये भी एक कमाल है, रिवायत को रिवायत की जगह रखना, और जो बात कुरान ने नहीं कही उसे कुरान के सर पर नहीं रख देना। ठीक है,
0: ये इससे तो यही समझ में आता। बिल्कुल, सुभान अल्लाह,
1: सबसे पहले कुरान है, फिर सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी नुक्ते पर इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी तफसीली गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि हत्ता तवारत बिल हिजाब, यानी यहाँ तक कि वो पर्दे में छुप गए। सवाल ये है कि छुपा कौन, तो पहली तफसीर के मुताबिक जैसे कि हमने कहा कि वो सूरज इसका माना लिया गया है, लेकिन इमाम राजी कहते हैं सूरज के जिक्र आयत में कहाँ है, आयत में तो सरात के साथ जिक्र किसका हुआ है, साफिनातुल जिहाद, घोड़ों का, लिहाजा जो जमीर है इसे अरबी टर्म में से जमीर कहते हैं, तो ये जमीर को पहले से मजकूर चीज यानी घोड़ों की तरफ लौटाना ज्यादा करीब है।
0: तो भाई यानी अगर मैं एक न्यूट्रल लिसनर की तरह सुनूं तो सवाल बिल्कुल नेचुरल है कि अगर टेक्स्ट में घोड़े ऑलरेडी मेंशन है और सूरज का नाम ही नहीं आया तो वो छुप गए को पहले घोड़े के साथ कनेक्ट करके देखने चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन भी कहती है कि भाई उन्हें मेरे पास वापस लाओ, तो सीक्वेंस एक दूसरे से कनेक्ट हो तो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर भाई, बहुत ही सादा अंदाज में आपने इसको बहुत ही उम्दा तरीके से पेश किया है ये बात। तो घोड़े वहाँ पेश किए गए, घोड़े दौड़ते हुए निगाहों से ओझल हुए, फरमाए उन्हें वापस लाओ, घोड़े वापस आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम की गर्दनों और टांगों पर हाथ फेरने लगे। एक मुसलसल मंजर, एक मरबूत तस्वीर, एक आयत दूसरी आयत का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ रही है, اور اس طرح جو ہے نا یہ سیاق و سباق آیت کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے واضح ہو جاتے ہیں.
2: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن
3: آر جی طلحہ اور آر جی سرور کے ساتھ صرف FM 107 پر.

0: और उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया। फिर वो हमारी तरफ रुजू हुए। यहाँ कुरान ने साजमा लाया गया है सुम्मा अनाब, वो पलटे अपने रब की तरफ। अनाब इनाबा से है, यानी रुजू करना, पलटना। तो सरू भाई जरा याद कीजिए, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तारुफ भी पहले किस लफ्ज से हुआ था? निअमल अब्दु इन्नहु अवाब, बेहतरीन बंदा, बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाला। और यहाँ आजमाइश भी आई तो फिर वही वस्फ, उसी डिस्क्रिप्शन दोबारा अमली सूरत में यहाँ जिक्र किया गया, सुम्मा अनाब।
1: यानी स्टोरी का एक लफ्ज बार बार सामने आ रहा है कि रिटर्न, वापसी, है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम की भाई ग्रेटनेस की अगर बात करें तो सिर्फ इसमें ही नहीं कि उनके पास किंगडम था, उनके पास बादशाहत थी। जब इम्तिहान आया तो उन्होंने अपना रुख अल्लाह सुबहानहु तआला की तरफ कर लिया, लेकिन फिर जो दुआ उन्होंने मांगी वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई।
0: बिल्कुल, देखिए आजमाइश आई सर भाई, आजमाइश के बाद ही वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, तो ये दुआ, फिर दुआ की बात आ जाती है। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने रब के दरबार में ये दुआ करते हैं, रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहद मिन बादी इन्नका अंतल वहाब।
1: सुभानअल्लाह,
0: ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा। अच्छा सामने करा, पहले यहाँ रब्बिग़फिरली की बात आई है, यानी मगफिरत। सबसे पहले मगफिरत का सवाल है। अच्छा, मगफिरत के बाद उन्होंने क्या कहा? मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के शाया निशान ना हो, तो बेशक तू ही बहुत अता फरमाने वाला। देखिए ये किस तरह की दुआ है। अब किसी को दिल दिल में ये सवाल को ये कर सकता है कि इस तरह की बादशाहत तलब की जा रही है कि किसी के बाद, जो बाद में किसी को ना मिले, ठीक है। तो देखिए दरअसल अंबिया इकराम वो उनके साथ जो हादसात पेश आते हैं, जो भी मुश्किलात पेश आती हैं, वो उनसे मानी अक्स करते हैं। तो जब उनकी कुर्सी में या उनका वो एक मौलूद के इंतज़ार में थे, कोई उनके मौलूद हो, तो बिलाखिर जब ऐसा एक मौलूद आया जो जिसके अतराफ भी नहीं, बस जिस्म का एक लौथड़ा उनके कुर्सी पर रख दिया गया, तो फिर उन्होंने वो मैसेज ले लिया कि हम सोचते हैं कि भाई हमारी नस्ल से जो है ना ये खिदमत चलेगी, ये वो, लेकिन अल्लाह का जो इरादा है, अल्लाह ने तो तुम्हें बादशाही देनी है, और ऐसी बादशाही जिसकी जो वस्फ हम आगे बताएंगे इंशाल्लाह अजीज, तो यही है। तो उन्होंने अल्लाह का इशारा समझ लिया, और ये कि वो जिस तरह उनके बाद जो मौलूद वो उनका वो नामुकम्मल था, तो समझ लें कि उन्होंने ये समझ लिया कि ऐसी बादशाही उन्हें वो इसका इशारा है, ऐसी बादशाही का जिसके बाद, जो उनके बाद किसी को ना मिले, ऐसी सल्तनत जो मेरे बाद किसी और को ना मिले।
1: यहाँ एक चीज मुझे और मेरे ख्याल में सुनने वालों को हैरान करती है कि आम तौर पर अगर कोई इम्तिहान से गुजरे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कहे कि भाई या अल्लाह जो चला गया बस वो वापस दे दें, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ उससे बहुत आगे चली गई। जैसे तला भाई ने बताया, वो कह रहे हैं कि वहब ली मुल्कन, यानी अल्लाह से मांग रहे हैं तो फिर अल्लाह की शान के मुताबिक मांग रहे हैं, ये देखते हुए कि मांग किससे रहा हूं भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सुभान अल्लाह।
0: यानी मांगते हुए अपने आप को ये ना छोटा ना समझे, छोटी चीजें ना मांगे, मांगे
1: सही।
0: अल्लाह सुभान ताला के लिए कोई बात नहीं, वो हर शय को मालिक है और वो आपको कुछ भी दे सकता है। तो इस वजह से कहते हैं कि अल्लाह से जब मांगते हो दिल खोल के मांगो।
1: क्या बात है भाई, बिल्कुल कोई कसर ही नहीं छोड़नी चाहिए ना, क्यों नहीं। और अल्लाह ताला जब भी मोमिन हाथ उठाता है अल्लाह की तरफ तो उसको दुनिया में मिलता है, और भाई जखीरा होता रहता आखिरत के लिए।
0: बिल्कुल,
1: तो मांगते रहिए।
0: तो अल्लाह के जो वस्फ यहाँ लाया गया है, सिफत आयत के आखिरी अल्फाज में देखिए, इन्नका अंतल वहाब, तू ही वहाब, अल वहाब यानी बहुत ज्यादा, बार बार और बेहिसाब अता फरमाने वाला, ठीक है। तो यहाँ कुरान दुआ का जवाब भी हमें बताता है कि आगे क्या हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जमीन की अजीम सल्तनत मांगी थी, तो रब्बुल आलमीन ने उनके लिए क्या किया? हवा को मुसख़र कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है, फसख़रना लहु रीहा तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैथु असाब, हमने हवा को उनके ताबे कर दिया जो उनके हुक्म से नरमी के साथ चलती जहाँ वो चाहते।
1: भाई वाह, बट एक मिनट तला भाई, यानी भाई घोड़े उस टाइम पे तो घोड़े ही होते थे जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, लेकिन अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा ही ट्रांसपोर्ट बन गई। सुभान अल्लाह, और वो भी

0: ऐसी हवा जो उनके हुक्म से चले।
1: देखें यहाँ दरअसल घोड़े की बात आपने यहाँ लाई है तो ये बहुत ही एक सही एक कंपैरिजन है। तो इससे पहले हमने घोड़े का किस्सा जिक्र किया था, अब अल्लाह सुभान व तआला ने उनको जो हवा मुसखर कर दी वो घोड़े से कहीं ज्यादा रफ्तार में तेज है।
0: सही,
1: घोड़े की अपनी रफ्तार है, अपनी ताकत, अपनी हद है, लेकिन यहाँ अता का पैमाना ही बदल गया। फसखरना लहु रीह, हवा उनके लिए मुसखर कर दी गई। और दूसरे मकाम पर कुरान इसकी रफ्तार की एक झलक दिखाता है, गुदुवुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन, उसका सुबह का सफर एक महीने की मसाफत और शाम का सफर भी एक महीने की मसाफत के बराबर।
0: सुभानअल्लाह,
1: यानी वो फासले जिन्हें आम सफर में तवील मद्दत दरकार होती है अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए समेट दिए। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, कुरान एक और लफ्ज इस्तेमाल करता है, रुखान, अच्छा नरमी और सहूलत के साथ। तसव्वुर कीजिए आज हम दुनिया के जदीद तरीन जो जहाज में बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, तो फिर ऐलान आता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, आगे कोई मसला आने वाला है, फिजा खराब हो तो जहाज हिलना शुरू कर देता है, रास्ता तब्दील हो सकता है, लैंडिंग मौखर हो सकती है।
0: सही।
1: लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए
0: ये कोई मसला ही नहीं था।
1: रुखान हैसु असाब, यानी नरम नरमी के साथ, हवा की रफ्तार है, हवा की भी अपनी रफ्तार है और सफर भी हमवार है, तो ये तवाजुन बड़ा अजीब है। सुभान अल्लाह,
0: तो भाई बादशाहत का स्केल अब समझ में आ रहा है। सुभान अल्लाह, वही जैसे कि हमने बात शुरू करी कि जब मांगना है तो ऐसा मांगो, अल्लाह ताला देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। और यहाँ सिर्फ जमीन या कहना चाहिए किले या पैलेस और आर्मी वाली बादशाहत का ही जिक्र नहीं हो रहा है दोस्तों, नेचर का एक एलिमेंट यानी हवा। भाई वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उनके लिए मसखर है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सोर्स में आगे शैतान का भी जिक्र है।
1: जी जी, यहाँ सल्तनत का दायरा जो है ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये सल्तनत और भी वसी हो जाती है, फिजा के बाद जमीन। अल्लाह फरमाता है والشياطين كل بناء وغواص, और शयातीन में से हर तरह के मैमार और गोताखोर भी उनके लिए मुसखर कर दिए गए। तो एक ग्रोह तामीर कर रहा है बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े ढांचे और मुख्तलिफ तामीराती काम, और दूसरा वगवास, समंदर की गहराइयों में उतरने वाला।
0: सुभानअल्लाह, तो यहाँ मैं एक बात और जानना चाहूंगा तलब भाई, मतलब शैतीन की बात हो रही है तो इसका मतलब जिन्नात से ही मुराद है?
1: बिल्कुल, शैतीन से मुराद जिन्नात ही है, जैसे कि आपने बताया, मेंशन किया है। तो यानी यहाँ जिन्नात का जो दायरा बहुत वसी है, इसमें अच्छे जो साले जिन भी हैं और शैतान जिन भी हैं, सब तरह के हैं, तो उनके लिए ये सब भी मुसखर कर दिए गए थे, तो वो उनके लिए काम करते थे,
0: सबको उनके ताबे कर दिया। यानी एक तरफ कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड और दूसरी तरफ डाइवर्स अंडर द सी, क्या बात है, गोताखोर जो जाके समंदर में भी काम कर रहे हैं भाई, सुभान अल्लाह। तो अब ये जो बादशाहत है लिटरली हवा से जमीन और जमीन से समंदर तक, मतलब इतनी वसी होती नजर आ रही है, सुभान अल्लाह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और यही हकीकत है कुरान के दूसरे मकामात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए किए जाने वाले अजीम कामों का भी जिक्र आता है। गोया एक ऐसे सल्तनत जिसके वसाइल इंसानी हदूद तक महदूद नहीं। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान में मलिका सबा बिल्कीस का वाकया भी आता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में वो दाखिल होती हैं तो सामने एक ऐसा शफाफ फर्श देखती हैं कि उसे पानी समझ बैठती है। कुरान कहता है क़ीला लहा उदखुलि सरह फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जा वकशफत अन साक़ीहा।
0: वाह,
1: उनसे कहा गया महल में दाखिल हो जाइए। सर भाई, ये जो आपने आयत सुनी और वाह कहा ना, तो कुरान की तावीरी अंदाज में भी एक वो मजा है।
0: क्या
1: आपको पता चलता है कि बिल्कुल इसकी वो मिठास है,
0: सारी चीजें बयान करना,
1: बिल्कुल
0: हम वक्त इतना कम होता सामेईन कि इसको हम बयान नहीं कर सकते, मतलब पूरा पूरा दिन कम पड़े।
1: आप जरा इसके माने को मैं बता देता हूँ, ये आयत जो इसका माना क्या है। उनसे कहा गया कि महल में दाखिल हो जाइए, जब उन्होंने उसे देखा तो उसे गहरा पानी समझा और अपनी पिंडलियां खोल ली। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया इन्नहु सरहुन मुमर्रदुन मिन क़वारीर, अरे ये तो शीशे से बना हुआ यानी हमवार और शफाफ महल,
0: यानी इतना ट्रांसपेरेंट कि पहली नजर में ग्लास का एहसास ही ना हो और पानी नजर आए। तो भाई आज किसी मॉडर्न बिल्डिंग में ग्लास फ्लोर देखकर हम इम्प्रेस्ड तो हो जाते हैं, यहाँ कुरान एक ऐसी रॉयल सीन का जिक्र कर रहा है जहाँ बिल्कीस ने उसे पानी समझ लिया।
1: जी सर भाई, और इसी लम्हे में, प्रोग्राम के इस लम्हे में एक मरतबा जरा ठहर कर हम जरा अल्लाह सुभान व तआला ने जो नेमतें दी थीं सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हवा मुसखर, तामीर करने वाले मुसखर, गोताखोर मुसखर।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.